अभी आप सुन रहे थे महिषासुर मर्दिनी 102.7 एफएम पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 5:32 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

गजानन जननी, सभी विघ्नों के भय से मुक्त करने वाली माता, सभी जन का शुभ करने वाली माता, इनकी सदा ही जय हो, सदा ही विजय हो।

हे अम्बे, हम सभी तेरे चरणों में अर्पित फूल मात्र हैं। फूलों पर मनराते भंवरे हैं जो तेरे फेरे मारते रहते हैं। हे माता, तू ही हमारी पालन करने वाली धरती का आधार तू है। बाकी सब सुख दुख झूठे हैं। तू ही सत्य, तू ही शिव है।

हे समस्त संसार के पालनकर्ता, हे ईश्वर, आप ही सब कुछ हैं। ना हम धर्मी हैं ना अधर्मी, ना हम बंधन में हैं ना मुक्त। ये तो आपकी ही माया है जिसमें ये संसार चल रहा है। अपनी कृपा इस संसार पर बनाए रखिए।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 102.7 एफएम पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी,

0: लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

चिंतन। महात्मा गांधी का कथन है, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती, ये एक अदम्य इच्छा शक्ति से पैदा होती है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु, विस्तार ही जीवन है और संकुचन ही मृत्यु। ये था चिंतन। अब भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लिखा जोखा। अब से कुछ देर बाद सुबह 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का नाच भाग 337। शताब्दी की भक्ति रचनाएं। संगीत सरिता कार्यक्रम में चल रही है ये श्रृंखला। आमंत्रित कलाकार हैं गायक और संगीतकार शेखर सेन। इनसे ममता सिंह ने बातचीत की है। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। संगीत सरिता कार्यक्रम सुबह 6:45 पर और शाम 6:45 पर सुना जा सकता है। आज इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी होगी। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सुबह 7 भूले बिसरे गीत 7:30 पर हम ही राही प्यार के। दिन में 12:05 पर यादों की महफिल 1 सुरीला सफर 2:30 पर सदाबहार नगमे और 3 मन चाहे गीत।

सुबह 8 बजे समाचार प्रभात। दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार, 2:15 पर दोपहर समाचार, शाम 6 बजे हिंदी में समाचार और फिर रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या। सुबह 8:15 पर और दिन में 2 बजे त्रिवेणी होगी। 8:30 पर चित्रलोक, 8:00 कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार गुरुदत्त पर। ये कार्यक्रम सुबह और शाम 9:30 पर सुना जा सकता है। गीतों भरी कहानी यादों की तपिश, इस कहानी का दूसरा भाग सुबह 10 बजे। लेखिका और वाचिका ममता सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। दिन में 11 बजे मैटिनी शो के अंतर्गत वेलनेस गुरु डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से ममता सिंह की बातचीत सुनिएगा, प्रस्तुति जुबैर खान की है।

नाट्य तरंग 3:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा। आज का नाटक है प्लास्टिक की घास। इस नाटक का पहला भाग सुनिएगा। लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक तीना नाथ। बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से बातचीत सुनवाई जाएगी। बातचीत नेहा शर्मा ने की है। प्रस्तुति थी श्री कांबले की। शाम 5:00 छाया गीत सुनिएगा। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 7:00 विशेष जयमाला कार्यक्रम होगा। आज का जयमाला कार्यक्रम संगीतकार उषा खन्ना ने प्रस्तुत किया है, जरूर सुनिएगा। 7:45 पर ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा। हवा महल के अंतर्गत आज सुनिएगा सुनो कहानी श्रृंखला में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी कंचन का दूसरा भाग। स्वर ममता सिंह, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई। ये कार्यक्रम रात 8:00 होगा। 8:15 पर चित्रलोक होगा। 9:00 आपके लिए। 10:00 छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11:00 आप सुनेंगे मैटिनी शो। कार्यक्रम विवरण अभी आपने सुना। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आपको बता दें कि विविध भारती के कार्यक्रम आपके रेडियो सेट के अलावा इंटरनेट स्ट्रीमिंग, डीटीएच, वेव्स एप्लीकेशन, न्यूज ऑन एआईआर पर पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुने श्री रामचरित मानस का अन्नाज। सुनिए भाग 337।

वानर और आसुरी सेनाओं के युद्ध का अंत होता नहीं दिखता। सारा प्रांतर शवों से पट गया है। रक्त और मज्जा की जैसे नदियां बह चली हैं। इनमें भूत पिशाच स्नान कर रहे हैं। चील और कौवे कटे अंग लेकर उड़ते और आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। अजीब विभत्स दृश्य उपस्थित है। लेकिन रावण अपनी सेना का उत्तरोत्तर संगार होता देख माया रचने की सोचता है। इधर श्री राम को पैदल देखकर इंद्र अपने सारथी मातली के साथ अपना रथ भेज देते हैं। श्री राम जब रथारूढ़ होते हैं तो वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। उधर रावण ने अपना माया जाल फैलाया। स्वयं राम को छोड़कर वानर भालू सेना को जगह जगह कई राम और लक्ष्मण दिखाई देने लगे। ये दृश्य देख लक्ष्मण भी मूरत की तरह ठगे से खड़े रह गए। किंतु श्री राम से इस दृश्य का भेद और अपनी सेना का असमंजस छिपा न रहा। वे बोले, हे वीरों, युद्ध करते करते तुम लोग थक गए हो, अतः तुम्हें विश्राम चाहिए। अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। शेखर सेन जैसे महान गायक, साधक, संगीतकार हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। शेखर दादा, एक बार फिर से आपका स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार, और सभी श्रोता वृंद को हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। और आज मैं चाह रहा हूं एक अद्भुत रचना के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करना।
1: जी,
2: ये कालखंड था 1961 का।
1: जी,
2: और उस समय भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी कि हमने चीन से अपना युद्ध हारा था। और मैं ये मानता हूं कि जब भी कोई अतीव दुख हो, बहुत अधिक दुख जिसका कोई उपचार न हो,
1: जी जी,
2: तो उसमें कहीं पर कोई संगीत, कोई गीत, कोई प्रार्थना ही एक फाहे की तरह उसको धीरे से सहलाती है, ताकि हम अपना दर्द भूल सकें।
1: बिल्कुल, औषधि का काम करती
2: बिल्कुल
1: है।
2: और इसी समय जो फिल्म एक आई थी, उस फिल्म का एक गीत आपको सुना रहा हूं, जिसमें बहुत ही विद्वान गुणी संगीतकार जयदेव जी ने संगीत दिया था।
1: जी जी,
2: और गाया था लता मंगेशकर जी ने। आप जब ये रचना सुनेंगे तो आप स्वयं साथ में गाने लगेंगे, लेकिन इस रचना को सुनाने के पहले मेरा एक आग्रह है।
1: जी जी,
2: आप में से जो संगीत के विद्यार्थी हैं वो उसको इस दृष्टि से सुने कि ये शायद उन बहुत ही बिरले गानों में से है जहां स्थाई और अंतरे की धुन एक ही है।
1: जी,
2: लेकिन सा बदल गया है। स्थाई जो है वो सा से है, और वही धुन, वही नोटेशन अगर आप म से गाएं तो वो अंतरा बन जाता है।
1: जी जी,
2: तो मैं आपको पहले गा के सुनाता हूं, तो आपको रचना याद आ जाएगी।
1: जी।

0: अब मैं स्थाई में अंतरा गा सकता हूँ, अंतरे की धुन में स्थाई गा सकता हूँ,
1: क्या बात
0: क्योंकि
1: है,
0: नोटेशन वही है। केवल सा से अगर वो नोटेशन गाया जाए तो स्थाई है, मध्यम से गाया जाए तो अंतरा है।
1: जी
0: और ऐसी रचना के लिए मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे आदरणीय जयदेव जी के उस महान प्रतिभावान संगीतकार की प्रतिभा को नमन करें। और लता जी ने इसको जिस ढंग से गाया है
1: जी
0: वो
1: जी
0: तो खैर अद्वितीय है, अतुलनीय है।
1: जी
0: मैं चाहूंगा श्रोता आनंद लें। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम।

0: दोनों फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में हमारे श्रोता सुन रहे थे। शेखर दादा, अब इस गाने के बाद आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनवाएंगे?
1: मैं अभी तक तो आपको शब्द सुना रहा था, स्वर सुना रहा था
0: जी,
1: लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको शब्द सुनाऊं।
0: जी जी जी, क्या?
1: और 600 वर्ष पहले सिख पंथ के जो प्रवर्तक थे आदरणीय गुरु नानक देव जी, उन्होंने एक विलक्षण परंपरा को जन्म दिया था। उस कालखंड में अगर आप देखें तो उत्तर भारत में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने संगीत के माध्यम से उपासना की पद्धति शुरू की, जो हमारे यहाँ हवेली संगीत के नाम से प्रसिद्ध
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और पूर्व में देखें तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन गा रहे थे और गवा रहे थे, पर पंजाब में गुरु नानक देव जी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ कवि भी थे, उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की और उन्होंने इसको कहा कि केवल मेरे या मेरे शिष्यों के या मेरी परंपरा को मानने वाले ही नहीं
0: जी जी,
1: बल्कि अन्य संतों की रचनाओं को भी हम संकलित करें
0: जी।
1: और एक गुरु ग्रंथ साहब के रूप में उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है ग्रंथ साहब, वही प्रकाश स्तंभ की तरह सिख संप्रदाय को दिशा निर्देश देता रहेगा। तो ये हमारे यहाँ एक बड़ी अद्भुत परंपरा उन्होंने चालू की और अगर आप कभी देखने का आपको अवसर मिले गुरु ग्रंथ साहब, तो हर एक शब्द के ऊपर
0: जी
1: उसके राग का नाम लिखा हुआ है कि किस राग में उसको गाना है।
0: बहुत बढ़िया जानकारी।
1: तो ये एक बड़ी अद्भुत परंपरा कि संगीत के साथ, प्रार्थना के साथ और आध्यात्मिक शब्दावली के साथ उन्होंने जोड़ा और उन्होंने कहा कि इसमें जो कुछ भी है वो शब्द है क्योंकि वो शब्द ब्रह्म है
0: जी। क्या बात।
1: तो उसके बाद जो खालसा पंथ की

0: क्या बात है, अद्भुत रचना आपने सुनाई और अद्भुत स्वर में आपने समा बांधा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब हमें लगता है कि इस कड़ी को यहीं पर समेटना होगा। श्रोताओं से लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। तबला संगत आशीष बिश्वास। तकनीकी सहायक HR पाटले। संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद।

मजो सुल्तानपुरी के बोलते वसंत देसाई की तर्ज अर्धांगिनी फिल्म का ये गाना था। आपको बता दें कि हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को भारतीय डाक दिवस मनाया जाता है। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी और 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हर साल भारत में मनाया जाता है नेशनल पोस्ट वीक यानी राष्ट्रीय डाक सप्ताह। हर दिन एक अलग अलग आयोजन होता है, उसमें से एक आयोजन फिलेटली या डाक टिकट जमा करने पर भी होता है। चिट्ठियां बहुत जरूरी हिस्सा रही हैं हमारी जिंदगी का।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: फागुन फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कमर जलालाबादी के बोल थे, संगीत ओपी नैयर का था। अब हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम और चितलकर की आवाजों में पतंगा फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत सी रामचंद्र का।
1: हेलो हिंदुस्तान का तेरा तू, हेलो मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हम ही रही प्यार के।

0: बजा दे तो।
1: साहिल उद्यान जी के बोल थे एस डी बर्मन की तर्ज, प्यासा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आज है गुरुदत्त की याद का दिन और राज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 पर उन्हीं पर केंद्रित।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने

0: जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन है, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुर स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन
5: तो शुरू करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेट

0: एटलीस्ट 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
2: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह यह दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
4: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
3: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
5: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
3: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जन सेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
6: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना दयाकल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
3: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम किरकेट्टा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
7: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
8: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
7: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
8: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
7: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
9: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी डाक दिवस पर आधारित है। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी कारण विश्व डाक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 1 जुलाई सन 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना। पहली बार जब वर्ष 1766 में भारत में डाक व्यवस्था शुरू की गई, आज ये विभाग गांव शहरों में बड़ी संख्या में सेवाएं दे रहा है। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1854 को हुई। भारतीय डाक विभाग 9 से 14 अक्टूबर के बीच डाक सप्ताह मनाता है। भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई और 1 अक्टूबर 1854 में महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया। भारत में पहला ऑफिस कोलकाता में सन 1774 में खोला गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है, इसमें जुड़े कर्मचारियों की सेवाओं को मान सम्मान मिले एवं लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में पोस्ट की भूमिका के साथ साथ वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान के लिए जागरूकता लाना है।

चिट्ठी, खत और पत्र केवल कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं होते, वे दो दिलों के बीच बने उस पुल की तरह होते हैं जिसे दूरी भी तोड़ नहीं पाती। वे अपने साथ किसी अपने की आवाज, उसकी याद और उसके मन की धड़कन लेकर आती। चिट्ठी लिखना और पत्र पाना, एक इंतजार के बीच कितनी व्याकुलता होती थी। डाकिये के आने की राह देखना, अपने नाम की चिट्ठी देखकर मुस्कुराना, सब में एक मीठी सी खुशी छुपी होती थी। कितनी चिट्ठियों को संभाल कर रखा जाता था। आज जिनके पास ये चिट्ठियां हैं, वे उनमें माता पिता, दोस्त, पति पत्नी, भाई बहन, अन्य रिश्तेदारों का प्यार, चिंता, प्रतीक्षा, प्रेम की भावनाओं से आज भी जुड़ जाते होंगे। सब कुछ उन कागजों में सांस लेने लग जाता है। वो दौर आंखों के आगे तैर जाता है।

आज तकनीकी आधुनिकता के दौर में सब चिट्ठियां इंटरनेट और मोबाइल्स में आ गया है, लेकिन पत्रों को लिखने, भेजने और जवाब पाने का इंतजार भी दिल में खुशी ले आता है। ये माना कि मोबाइल में फटाफट लिखा और एक क्लिक पर सामने वाले के पास पहुंच गया, लेकिन वो चिट्ठी पत्रों की जगह तो नहीं ले सकता। आज डिजिटल दुनिया ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया है, लेकिन कभी कभी लगता है हमें फिर से उस चिट्ठी वाले समय की जरूरत है, जहां किसी के दो शब्द पाने के लिए दिल घंटों नहीं दिनों तक इंतजार करता था। चिट्ठियां चली गईं, डाकिया चले गए, पर किसी अपने के संदेश का इंतजार आज भी वही है, क्योंकि माध्यम बदले हैं, भावनाएं

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
1: ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: वादा, हाँ जी वादा।
0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे चित्रलोक।

आइए सुने चित्रलोक। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक साथ बहुत सारे विशेष दिन आज, गुरुदत्त की याद का दिन, रेखा का जन्मदिन, राष्ट्रीय डाक दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस।

तनवीर गाजी के बोलते मोनाली ठाकुर की आवाज। अक्टूबर फिल्म का ये गाना आपने सुना आज 10 अक्टूबर। अक्टूबर फिल्म का गाना अक्टूबर में। शांतनु मोहित्रा का संगीत था जिन्हें हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया मध्य प्रदेश सरकार ने। और अब A.R. रहमान की आवाज गूंज रही है विविध भारती पर सुबह के 8:35। 10 अक्टूबर की सुबह।

ए आर रहमान और साथियों की आवाजें थी। फिल्म का नाम दिल से। विविध भारती पर चित्र लोक, यूनुस खान की फिल्म, गुलजार के बोल, रब्बी शेरगिल की आवाज, जब तक है जान।

सुची रैना और रेखा भारद्वाज की आवाजें थीं। आज है अभिनेत्री रेखा का जन्मदिन, भानु रेखा गणेशन। 10 अक्टूबर 1954 को रेखा का जन्म हुआ था और रेखा की जो फिल्म यात्रा है वो बहुत ही शानदार रही है। एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने की हैं और हम आपको उस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, रेखा को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए, जिसने रेखा को शोहरत की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उनके अभिनय का लोहा सारी दुनिया ने माना। मुजफ्फर अली की फिल्म उम्र अफजान।

0: शहरयार की भूल थी, खयाम की तर्ज उमराव जान फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आशा जी को मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गायिका का, और इस फिल्म के लिए रेखा को मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: जिसे तुम भटकना कहती हो ना मानसी, मैं उसे और जानने की तलाश कहता हूं, एक दूसरे को जानने की तलाश। मैं इस जमीन पे भटकता हूं कितनी सदियों से, गिरा है वक्त से कट के जो लम्हा उसकी तरह, वतन मिला तो गली के लिए भटकता रहा, गली में घर का निशान ढूंढता रहा बरसों। तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकता हूं, तुम्ही से जन्म तो शायद मुझे पनाह मिले।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
3: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
2: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
3: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
2: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अरिजीत सिंह की आवाज थी। फिल्म का नाम था द स्काई इज पिंक। और अब मेट्रो इन दिनों फिल्म का गाना कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

फैसल जाफरी और संदीप श्रीवास्तव की भूल थी, प्रीतम की तर्ज थी, पेपॉन की आवाज थी, फिल्म का नाम था मेट्रो। इन दिनों इसी के साथ खत्म होता है आज का चित्रलोक कार्यक्रम।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सलाम उस विलक्षण प्रतिभा को, एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक जज्बाती इंसान।
1: किसी इंसान से कोई शिकायत? मुझे शिकायत है समाज को उस ढांचे से जो इंसान से उसके इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना पुस्तली समझा जाता है, चुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिली।

0: तो।
1: गुरुदत्त की फिल्में अपने समय से बहुत आगे थीं। कामयाब रही हो या नाकाम, उन्होंने शिद्दत भरी कहानियाँ दी, कहानियों से रुलाया, हंसाया।

गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। साथ ही में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी सभी फिल्मों में दिखती है।

आइए गुरुदत्त की जिंदगी की कुछ बेमिसाल कहानियाँ आपको सुनवाएं। गुरुदत्त की जिंदगी के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं, उनकी बहुत सारी फिल्मों से आप वाकिफ हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यादगार अनमोल वाक्य। गुरुदत्त और देवानंद की दोस्ती बड़ी गहरी थी। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात प्रभात स्टूडियो पुणे में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही जगह पर धुलने और इस्त्री करने को जाते थे। एक बार बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ, वो ये कि गुरुदत्त की शर्ट देवानंद के यहाँ और देवानंद की शर्ट गुरुदत्त के यहाँ चली गई और दोनों ने एक दूसरे की शर्ट भी पहन ली। दोनों की जब स्टूडियो में मुलाकात हुई, अचानक गुरुदत्त की नजर देवानंद की कमीज पर गई। उन्हें पहचानी सी लगी और वे पूछ बैठे, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा सकपकाए पर बोले, ये शर्ट मेरे स्त्री वाले ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आपने जो कमीज पहनी है वो कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में कहा कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों को बात समझ में आ गई और जोरदार ठहाका लगाते हुए एक दूसरे के गले मिल गए और फिर उनकी दोस्ती का बंधन हमेशा के लिए मजबूत हो गया। पूना शहर में घूमते हुए एक दिन गुरुदत्त ने देवानंद से कहा, देव, अगर मैं कभी निर्देशक बनूंगा तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। देवानंद ने उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और अगर मैंने कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस की तो तुम मेरे पहले निर्देशक होगे। देवानंद को ये वादा याद रहा। जब नौकेतन फिल्म्स के बैनर तले बाजी फिल्म बनने का फैसला हुआ तो निर्देशन की जिम्मेदारी देवानंद ने गुरुदत्त को सौंपी।

ये था बाजी फिल्म का गीत। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई और दोनों के बीच प्रेम का झरना प्रस्फुटित हुआ। उस समय गीता रॉय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थीं। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थीं। सरल इतनी थीं कि रसोई में वे सब्जी काटने बैठ जाती थीं। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थीं कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने

नहीं सुनता था। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के पास पहुंचाया करती थी और 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह के बंधन में बंध गए।

0: गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर में कई नए तकनीकी प्रयोग भी किए। जैसे फिल्मबाजी में उन्होंने दो नए प्रयोग किए। 100 mm के लेंस का क्लोजअप के लिए इस्तेमाल पहली बार किया, करीब 14 बार। इससे पहले कैमरा इतने पास कभी नहीं आया कि उन दिनों कलाकारों को बड़ी असहजता के अनुभव से गुजरना पड़ा। तब से उस स्टाइल का नाम ही गुरुदत्त शॉट पड़ा।
1: बैठ जाओ। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो जानते हो रास्ता कहाँ जाके खत्म होता है?
2: यही, इसी जगह।
1: वाह वाह, क्या कहने सादर जवाबी।
2: आपको और कुछ पूछना है?
1: हाँ, बहुत कुछ पूछना है। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? यहाँ अच्छो अच्छो के छक्के छूट जाते हैं। तमीज से बात करो।
2: आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। मैं उसके लिए तैयार होकर आया हूँ।
1: देखो, मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं, न ही मैंने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया, और न ही मैं तुम्हारे सुख को बदला लेना चाहता हूँ।
2: दूसरे ले ही चुके हैं, आप भी ले लीजिए।
1: कौन ले रहा है बदले तुमसे?
2: कोई नहीं।
1: सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है कि तुम ये नीच काम फॉर्म छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा।
2: मुझसे कहे कि इतनी हमदर्दी, समझा?
1: मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे तो सिर्फ उस लड़की का ख्याल आता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। क्या तुम्हारा उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है? तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना प्यार करती है।

किसी भी फिल्म में पहली बार गानों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। वैसे ही फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान में सिनेमा स्कोप में बनी पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म के लिए गुरुदत्त कुछ अनोखा, कुछ हटके करना चाहते थे, जो आज तक भारतीय फिल्म के इतिहास में कभी नहीं हुआ। संयोग से तभी एक हॉलीवुड की फिल्म कंपनी 20th Century Fox ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमा स्कोप में बनने वाली फिल्म की शूटिंग खत्म की थी और उसके स्पेशल लेंस मुंबई में उनके ऑफिस में छूट गए थे। जब गुरुदत्त को इसका पता चला तो वे अपने सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति को लेकर तुरंत वहां गए, लेंस लेकर कुछ प्रयोग किए, रशेस देखे और फिर फिल्म के लिए इस फॉर्मेट का उपयोग किया।

संगीता दत्त की हसीन आवाज में गाए और फिल्म स्टूडियो की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए इस गीत में भी एक ऐसा प्रयोग किया गया जो बाद में बहुत मशहूर हुआ अपने बेहतरीन लाइटिंग के खूबसूरत संयोजन की वजह से। गुरुदत्त इस क्लाइमेक्स के सीन में कुछ अलग ही नाटकीयता और रियल लाइफ का विरोधाभास प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। ब्लैक एंड व्हाइट रंगों से नायक और नायिका के मन की एक रस्ता खालीपन और दौलत के खत्म होते एहसास को अलग ही अंदाज में फिल्माना चाहते थे। जिस दिन उन्होंने नटराज स्टूडियो में शूटिंग शुरू की तो उनके सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने उन्हें वेंटिलेटर से छन कर आती धूप की एक तेज किरण दिखाई तो गुरुदत्त बेहद रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस इफेक्ट को ही उपयोग करने का मन बनाया।

लिया। वे वीके मूर्ति से बोले, मैं शूटिंग के लिए भी सनलाइट ही चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रभाव की मैं कल्पना कर रहा हूँ वो बड़ी आर्क लाइट से अथवा कैमरे की अपर्चर को सेट करके नहीं आएगा। तो फिर तो बड़े बड़े आईने स्टूडियो के बाहर रखे गए, जिनको बड़ी मेहनत से सेट करके वो प्रसिद्ध सीन शूट किया गया, जिसमें गुरुदत्त और वहीदा के बीच में वो तेज रोशनी का बीम आता है। साथ में चेहरे के क्लोजअप में अनोखे फैंटम इफेक्ट से उत्पन्न हुए एम्बियंस से हम दर्शक ठगे से रह जाते हैं।

0: गुरुदत्त के नाम से लगता था कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। उनको बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वो महान नर्तक उदय शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए। 16 साल की उम्र में उन्हें एक मिल में 40 रुपए माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने अध्यापक को एक भगवद गीता, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोट और बहन ललिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। गुरुदत्त जब गीता रॉय के लिए कोई उपहार खरीदते तो बहन ललिता के लिए भी कुछ न कुछ खरीद के लाया करते थे। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे और जब उनमें और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। उदय जी के पास ही गुरुदत्त को एहसास हो गया कि फिल्मों में वे न सिर्फ अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि रोजगार से भी नाता जुड़ जाएगा। गुरुदत्त पुणे पहुंचे और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में काम मिल गया। 1945 में फिल्म लाखा रानी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1946 में फिल्म हम एक है में उन्होंने सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाल ली। सन 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी से गुरुदत्त का अनुबंध समाप्त हो गया। उन दिनों गुरुदत्त संघर्षरत देवानंद और रहमान के साथ एक कमरे में रहते थे। फिर गुरुदत्त मुंबई चले आए। वे करीब 10 माह तक बेरोजगार रहे। फिर उन्होंने अमीय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। गुरुदत्त को उन दिनों लगने लगा कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें फिल्म निर्माता भी बनना होगा। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बना ली और उस बैनर पर पहली फिल्म आर पार बनाई जो सन 1954 में रिलीज हुई।
1: अगर फिर मैंने तेरी कमीनी सूरत यहाँ देखी तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखो।
2: लाला जी, आप अगर इतने ऐठे हुए ना होते तो मैं आपको सब कुछ समझा देता।
1: अबे तू जाता है कि नहीं? जो कुछ देखा है उसके बाद कुछ समझना बाकी रह गया? हमारा नौकर और हमें तक उठने की कोशिश करता।
2: नौकर जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सर भी नहीं उठा सकता।
1: नमक हराम की बातें तो सुनो, सर उठाएगा। अबे तेरी हैसियत ही क्या है सर उठाने की? कल तक तो सड़कों में भूखा मरता था, है? तुझ में और एक नीच भिखारी में फर्क क्या है?
2: वक्त वक्त की बात है लाला जी, आज यारों का वक्त ढीला है तो आप लाल पीले होकर बातें कर रहे हैं और कल जब यही वक्त पलटे।
1: जा जा, बड़ा आया वक्त पलटाने वाला। पहले किसी काबिल हो ले, फिर आंख मिलाकर बात करना। चल दफा हो यहाँ से।
0: इसके बाद गुरुदत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाई सन 1955 में। ओपी नैयर के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने खूब मशहूर हुए।

गुरुदत्त ने आगे भी जितने फिल्में बनाई उनमें गीत संगीत का संयोजन बेमिसाल रहा। चौदवी का चांद हिंदी सिनेमा के 10 सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रधान फिल्मों में से एक गिना गया। उनकी फिल्मों के संगीत का आकर्षण आधी सदी से लगातार जादू जगा रहा है। आइए सुने ये।

0: इसके बाद गुरुदत्त ने जो फिल्में बनाई उनमें प्यासा, कागज के फूल, साहबीबी और गुलाम भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील के पत्थर का काम किया। इन तीनों फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त एक रूप हो गए। गुरुदत्त के बारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान क्या कहती हैं?
1: आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है। तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे। डायरेक्ट तो वो बहुत ही बढ़िया थे क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉर्ट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और उसमें तो मैं कहूंगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज एनहांस हुई थी मन और बढ़िया दिखती थी।

0: गुरुदत्त बचपन से ही बड़े रचनात्मक थे। उन्हें पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक था। अपनी पतंगे खुद ही बनाते और फिर उड़ाते थे। उनका बचपन कोलकाता में गुजरा था, शायद इसीलिए उन्हें कोलकाता से बड़ा लगाव था। जब वे कोलकाता जाते तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झालमुड़ी जरूर खाते थे। एक बार वहीं जब वे झालमुड़ी खा रहे थे तो देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने, हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज लगा रहा है।
1: विजय बाबू, आज सत्तार भाई आपकी स्पेशल मालिश करेंगे और वो भी फोकट।
0: वहीं से उनके मन में एक किरदार ने आकार लिया और जॉनी वॉकर के लिए खास तौर से ये गाना लिखवाया गया।

0: सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चमटी में बड़े बड़े घुन। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चमटी में बड़े बड़े घुन। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, चाहे घबरा।
1: फिल्मी दुनिया के खजाने में गुरुदत्त से जुड़े तमाम किस्से हैं जो आज आपकी रेडियो सखी यहाँ आपको सुना रही है। एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिल लुधियानवी की नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग के रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहाँ पहुँच गए, लेकिन संगीतकार सचिन देव बर्मन पहुँचे नहीं थे। गुरुदत्त ने मोहम्मद रफी से कहा, आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना देते। रफी ने थोड़ी देर सोचा, सकुचाए और उस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर उतनी नहीं थी, लेकिन सीन में वास्तविकता जरूर आ गई।
2: गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया।

0: ठुकरा रहा था मुझको।
1: तो ये शायर भी है?
2: शायर? अरे तू देखती रही उसकी कुछ पांच से नगमे उसके सर के पीछे पड़ी है।
0: ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा गबे गया।
3: फिल्मों के सर्जक गुरुदत्त यूं तो स्वभाव से बड़े गंभीर और चुप रहने वाले थे, लेकिन गुरुदत्त के भीतर एक मस्ती करने वाला शरारती बच्चा भी था। वे पतंग उड़ाते, मछली पकड़ते और खूब फोटोग्राफी किया करते थे। लोनावाला में उनका एक फार्म हाउस था जहां वो हर साल जाकर खेती किया करते थे। उन्हें फिशिंग में भी दिलचस्पी थी। पवई झील में जॉनी वॉकर और गुरुदत्त खूब मछली पकड़ा करते थे। एक बार उन्हें एक स्कूटर पसंद आ गया। वे उसे चलाते हुए स्टूडियो जा रहे थे, तभी सिग्नल के पास गाड़ी रुकी तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे जैसे तैसे गाड़ी से वहां से निकले। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि कश्मीर में उन्होंने एक बार एक शिकारा देखा तो वे उस शिकारा को कश्मीर से खुलवाकर पवई झील ले आए थे।

आधे घंटे के इस विशेष कार्यक्रम में गुरुदत्त रूपी आसमान को समेटना मुश्किल है। आज हमने उनकी फिल्मोग्राफी की बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए हमने की उनके बारे में किस्सा गोई।

इस कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: गीतों भरी कहानी, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर है ममता सिंह का।
0: अब तक आपने सुना आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करते हुए लॉन में आ गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था, मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में। हर इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे। जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी फोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थी, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। सही मायनों में तो प्रणव सर जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती। बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कॉम्पिटिशन उसके लिए सजा थी, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन। वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठ कर कमरे में बंद हो गई थी। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना। एक्स्ट्रा

मेरी कूलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं। अरे, समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी, जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। अब सुनिए आगे की कहानी।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था। वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। बारहवीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था। सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे, जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला? हाँ, आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला? अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का? मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या, सौम्या, सौम्या। मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने? तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है। तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में? दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है। जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी। मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं? मां, वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हां, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहां लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थी, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी। बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना। हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहो मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता। दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली, आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं। वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ, पर अब नहीं। मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए पिछड़े घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, उबने लगी हूँ मैं।

एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर है आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल, तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोस ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब सी खिली थी, टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

0: से बहुत बिंदास अल्हड़ दिव्या के चेहरे के पीछे एक संवेदनशील रचनाशील सृजनकर्मी भी छिपा है। शायद उसकी संवेदनशीलता, उसकी रचनात्मकता ही उसे बार बार टेलीविजन की दुनिया में जाने को उकसा रही थी। पहले मास मीडिया की पढ़ाई पूरी करनी है और कम से कम इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो, ताकि बाद में पीएचडी की जाए और फिर तैयारी से टेलीविजन की दुनिया में काम किया जाए। उसकी तमन्ना है कि वो खुद लिखे और खुद ही प्रोड्यूस करे। सिर्फ धारावाहिक ही नहीं बल्कि एनिमेशन फिल्म भी बनाने के सपने का अंकुर उसके मन में फूट गया था। दिव्या की आंखों में अनगिनत चमकीले सपने परवाज लेते हैं। उसका हर सपना घर वालों के विचारों की वेदी पर झोंक दिया जाता है। उसके घर वालों के लिए ये सब कोरी बकवास के सिवा कुछ नहीं। उनका मानना है कि पढ़ाई कोई भी कर लो, पढ़ाई के बाद ब्याह करके घर गृहस्थी तो संभालनी है, जबकि दिव्या ने गृहस्थी को कहीं तीसरे या चौथे पायदान पर रखा था। पहाड़ों के सर्पीले रास्तों से गुजरते हुए जब दिव्या अपने दोस्तों के साथ लौटने लगी तो सामने से विनोद भैया आते दिखाई दिए। मन तो किया कि झटके से वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। विनोद भैया आकर दिव्या के कान में फुसफुसाकर बोले,
1: उस लंबू से सट सट कर ताली दे देकर इतना खींचे क्यों निपोर रही थी तू हैं?
0: विनोद भैया, दिव्या को जलती आंखों से लिलोड़ते हुए विनोद भैया बाइक स्टार्ट करके पल भर में आंखों से ओझल हो गए। दिव्या तिलमिलाकर रह गई।

पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए थे। इस घर में ये वक्त लड़कियों के लिए बाहर से लौटने का नहीं है। छोटे भाई सोनू ने दरवाजा खोला और अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने में वो मशगूल हो गया। चाचा हाथ में रिमोट लिए टीवी के चैनल बदल रहे थे। टीवी बंद करते हुए उन्होंने दिव्या को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराध करके लौटी हो। कॉरिडोर पार करती हुई वो बेडरूम तक पहुंची भी नहीं थी कि चाचा की रौबदार आवाज ने कानों में चोट पहुंचाई। बेतरह थकी हुई दिव्या का मन कर रहा था कि चाचा की पुकार को अनसुना करके सीधे बिस्तर पर पड़ जाए, लेकिन चाचा की हैसियत इस घर में पापा से भी बढ़कर थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि चौल में इतनी लंबी जिंदगी बिताने के बाद जब से टावर में घर लेने का सपना पूरा हुआ तो घर की एक मुश्त रकम का इंतजाम चाचा ने किया था। लोन अमाउंट भी उनका ज्यादा था। घर खरीदने में पापा की पूंजी कम लगी थी, जबकि दिव्या तीन भाई बहन मिलाकर 5 लोग हैं और चाचा के परिवार में विनोद भैया, चाचा चाची, कुल मिलाकर 3 लोग। मतलब ये एक आदर्श संयुक्त परिवार था। दिव्या सिर झुकाकर अपराधी की तरह सामने सोफे पर बैठ गई। विनोद भैया की लगाई आग चाचा की जबान के जरिए घर में धधक रही थी। उनकी लाल आंखें शोले उगल रही थीं और उसमें वो जल रही थी। ऊपर से तो वो बुद्ध बनी थी, लेकिन उसके मन में विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ रहा था। दिव्या अपने आप से ही पूछ रही थी कि आखिर उसका दोष क्या है, जमाना कहां पहुंच गया है। स्त्रियां धरती के हर छोर पर पहुंच गई हैं, स्पेस तक में अपना परचम लहरा रही हैं। ये संकुचित सोच के चाचा लड़कों के साथ घूमने क्या चली गई, घर सिर पर उठाए हुए हैं। खुद तो चाची की सहेलियों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर रस ले लेकर बतियाते हैं, हाँ, लेकिन दिव्या इस घर की बेटी है और वो लड़कों के साथ घूमने गई तो गलत करार दिया गया और उसे चाचा से बेवजह मार भी खानी पड़ी। इस आदर्श परिवार में बड़े होकर भी बात बात में पिट जाना आम बात है और ये उनके संस्कार में शुमार है। विनोद भैया ने दिव्या और इरफान को लेकर अफसाना गढ़कर चाचा और पापा से कह सुनाया था, वो भी इस तरह जैसे दिव्या कई दोस्तों के साथ न गई हो बल्कि अकेली इरफान के साथ गई हो, जबकि इरफान भी अन्य लड़कों की तरह महज एक दोस्त था। मम्मी ने भी चाचा पापा के पंचम सुर में अपना मंद्र सप्तक का सुर मिला दिया था। दिव्या, ए दिव्या, लड़की हो, इरफान से मिलना जुलना कम करो, समझी कि नहीं। लड़की का चरित्र सफेद चादर की तरह होता है, एक छींटा भी दाग लगा देता है उसमें। तुम जानती हो हमारे यहां ये सब नहीं चलता है। उस दिन दिव्या का दिल दर्द से कराह रहा था। अनगिनत खरोंचे लगी थीं। मानशेष घाट में देखे फूल मुरझा गए थे। बेचैन मन आंसुओं का झरना बन बहता रहा बहुत देर तक। कमरे का दरवाजा अंदर से उसने बंद कर लिया।

रोने के बाद मन हल्का हुआ तो दिव्या ने मोबाइल उठाया, फेसबुक पर मालशेज घाट की पहाड़ियों की तस्वीरें अपलोड की और व्हाट्सएप पर अपनी सहेलियों से बहुत देर तक चैट करती रही और तस्वीरें भेजती रही, इसी बहाने अपना जी बहलाती रही। दिव्या हमेशा ऐसा करती थी, जब उसे ज्यादा डांट पड़ती या मार पड़ती तो पहले खूब रोती थी, लेकिन उसके आंसू उसे सख्त बनाते थे और फिर इस तरह परिस्थितियों से जूझने का हौसला उसके भीतर पैदा हो जाता था। उस दिन के मार के बाद दिव्या ने अपने आप को काफी निसंग पाया, डांट और मार का असर भी अब कम होने लगा था। उस दिन वो चाचा की डांट और मार से पिकनिक का सुखद एहसास कसैरा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोशल नेटवर्किंग का दामन थाम कर सुकून महसूस कर रही थी। उन दिनों घर में एक सिलसिला सा बन गया था, बात बात में दिव्या को एहसास कराया जाता कि वो एक लड़की है, उसे सलीके से रहना चाहिए। इसके उलट दिव्या कॉलेज के माहौल के अनुरूप खुद को बदल रही थी और ढाल रही थी। रायमा अक्सर उसे खुलेपन की तरफ खींचती, वो कहती, अरे यार थोड़ी आजाद ख्याल बनो, वरना किसी भी मर्द के पल्लू में बांधकर कैद कर दिया जाएगा और सारी जिंदगी गृहस्थी की चक्की पीसती रहोगी।

दिव्या, ओ दिव्या, हाय हाय स्वीटहार्ट, तुझे क्या हुआ? किन ख्यालों में कहाँ खोई है तू? दिव्या, तुझे कब से आवाज दे रही हूं मैं? एवी रूम में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। ड्रामा की रिहर्सल है और इस बार प्रणव सर और तानिया मैम भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? अच्छी बात, चल चल। ओ अरे हाँ, अरे तेरा लिखा अधूरा ड्रामा इरफान ने पूरा कर दिया। जानती है कितना अच्छा लिखा है उसने? तानिया मैम अपने रोल से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इरफान को आज खूब कस के गले लगा लिया। दिव्या की आंखों के सामने वो दृश्य कौन गया जब उसे तुषार से हाई फाई करते हुए विनोद भैया ने देख लिया था। घर जाकर कैसी चुगली की थी उसने, और इस बात को लेकर भी घर में हंगामा हुआ था। चाचा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ा था। चाचा की डांट एक अनपढ़ की तरह थी जिसे सुनना बुखार सी पीड़ा देता था। उस घर में विनोद भैया की भूमिका महज एक जासूस की थी। अगर घर वाले कॉलेज का ऐसा ओपन माहौल देख लें तो जाने क्या हो जाएगा, दिव्या सोचती है। घर और बाहर की दुनिया कितनी अलग है, कितनी अलग। घर में जो गलत है वही बाहर कॉलेज में नॉर्मल है, रूटीन है। इन सब बातों पर तो आजकल किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन दिव्या के घर में ये एक तरह का अपराध है, बुराई है ये। चल चल दिव्या, चल, तू ड्रामा की हीरोइन है और जानती है हीरो का रोल

कौन अदा कर रहा है पता है? दिव्या ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ये सुनने के बाद भी। अरे बाबा पूछ तो सही, कौन है? पूछेगी नहीं? दिव्या अपनी पलकें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर उठा देती है। प्रणव सर, पता है प्रणव सर। अनमनी सी दिव्या उठकर अपने रूम की ओर चल देती है। जाते जाते कहती है, राइमा सुनना, सर और मैम को मैसेज दे देना प्लीज, आज मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी प्लीज। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे, चल ना चल। नहीं मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कहते हुए दिव्या बरामदे की ओर मुड़ जाती है। रायमा उसका मन टटोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। हॉस्टल के कमरे में जाकर दिव्या ड्रामा के स्क्रिप्ट निकालती है। कल तो रिहर्सल में जाना ही होगा। रिहर्सल में नहीं जाऊंगी तो रीडिंग कैसे होगी, और एक रीडिंग बहुत जरूरी है। अपने आप से ही वो गुफ्तगू करती है, आखिर ये चमकीला सपना मैंने ही तो देखा है, मेरे ही सपने का हिस्सा है ये, फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है, क्यों क्यों घबरा रही हूं मैं? अगर अपनों से दूर होने की कसक आज इतनी ज्यादा क्यों सता रही है, आखिर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। भारी मन से स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लगती है दिव्या, साथ में अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। जब भी मन के भीतर तूफान मचा हो, हवाओं का रुख बार बार एक ही दिशा में भागा जा रहा हो, तो मन को संभालना समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आज दिव्या का मन खुद से ही जद्दोजहद कर रहा है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अगर डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं हुई तो अगले सेमेस्टर के लिए फीस के पैसे कहां से आएंगे? पिछले सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस पूरी नहीं हुई थी। इरफान और रायमा ने मिलकर बाकी फीस ऑनलाइन भर दी थी। उनका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं? अगले दोनों सेमेस्टर में ज्यादा फीस की जरूरत होगी, प्रोजेक्ट वर्क भी ज्यादा होगा, प्रोजेक्ट वर्क में लगने वाली सामग्री बहुत महंगी होती है, कहां से आएगी ये रकम? दिव्या का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वो जब मन से परेशान होती है तो अपने आप को अकेलेपन के महासागर में डुबो देती है, अपने एकाकीपन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहती। अपनी पीड़ा को वो तार तार महसूस करती है, अपनी बेचैनी को सहलाती है और उससे जूझती भी है। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने हालात पर भी, घर वालों पर भी। लेकिन एकाकीपन के उसके ये लम्हे उसके प्रिय होते हैं। ऐसे में वो या तो अपनी डायरी उठाती है या फिर खिड़की से बाहर खाली खाली नजरों से दूर तक देखती है।

शून्य में देखती हुई वो अपनी डायरी उठाती है। पन्नों के बीच एक मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। मुंबई से वर्धा तक का टिकट होता है, वो भी जनरल टिकट। अजीब थी वो रात, ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर अंधा आसमान, जैसे कुछ नीचे सरक आया हो। आसमान में टंगे चांद और जगमग करते सितारे यूं लग रहे थे जैसे कि दिव्या हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने बैग में रख लेगी। खाली आंखों के सामने वो दृश्य तिर जाता है जब घर से अकेली निकल आई थी दिव्या। दिव्या ने बैग में थोड़ा सा सामान रखा था। इरफान और राइमा को भी उसने अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई थी, लेटर आया, उसे मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिल गया था। टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उसे 5 साल के लिए वर्धा में रहना पड़ेगा। सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। 5 साल पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाओगी, पराए शहर में जाकर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? और किसके साथ रहोगी हैं? वहां न कोई नातेदार न रिश्तेदार। हॉस्टल में रहने के नाम से पापा और चाचा ने ऐसे 10 हादसों का जिक्र किया था जिनकी खबर अखबार में छपी थी। हॉस्टल में रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम लोग तुम्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। अगले दिन राइमा घर आई थी समझाने। इरफान और तुषार ने भी फोन पर मम्मी से बहुत इसरार किया था। आंटी, दिव्या को जाने दीजिए ना, हम सब साथ रहेंगे, उसकी देखभाल कर लेंगे। दिव्या ने घर वालों को बहुत समझाया, मम्मी मेरे साथ राइमा रहेगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। फिर मम्मी, आजकल तो फोन का जमाना है, मान जाओ ना बात। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम दिन में कई कई बार बात कर सकते हैं। अरे वीडियो कॉल करेंगे, वेबकैम के जरिए हम एक दूसरे से चैट करेंगे। मम्मी अभी आप भी वीडियो कॉल कर लेती हो ना। मम्मी प्लीज एक बार इजाजत दे दो। बोझिल कदमों से चलती हुई दिव्या का मन अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन घर वालों को छोड़कर यूं चुपके से आना उसके कलेजे पर जैसे आरी चल रही थी और वो पीड़ा से कराह रही थी। रास्तों का पता नहीं, नदी के उस पार टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी, कैसे जाएगी वो उस पार? कोई साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बूते पर पूरी पढ़ाई कैसी होगी? क्या होगा मेरा? कैसे रहूंगी मैं अपने घर वालों के बिना? वो विचारों की गहरी खाई में उतरती गई। चलते चलते दिव्या स्टेशन पहुंच गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने सामने खाली पड़ी एक बेंच पर अपनी काया को जैसे धकेलते हुए बिठा दिया था। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था, गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई थी और दिव्या की आंखों पर भी गहरी धुंध थी। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं। सारी गाड़ियों का वक्त और गंतव्य बिल्कुल निर्धारित था, पर दिव्या की ट्रेन का ना तो नियत समय था और ना ही नियत मंजिल। किस शहर में जाना है ये तो पता है, लेकिन किस ट्रेन से जाना है ये तो दिव्या ने भी नहीं सोचा था। न तो उसके पास यात्रा का टिकट था और न ही पराए शहर में पहुंचने के बाद का कोई ठिकाना। मंजिल इतनी दूर थी कि वो ऊहापोह में थी। पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं।

क्या यूं ही मैं टूटकर घर लौटूंगी? नहीं, यूं टूटकर घर नहीं लौटना है। उस रात कई गाड़ियां आती और जाती रहीं। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करती हुई खुद ही हौसले से डग भरती हुई वो एक ट्रेन में बैठ गई। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा, उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर अपनी हथेलियां रख ली थीं। हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदें चिपक गई थीं। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम को चाय के वक्त यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलेटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में नाटक के गीत का वो हिस्सा गूंज रहा है जो उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा।

आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: ट्रैफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। मैटिनी शो कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वेलनेस गुरु डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने।
1: विविध भारती के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वेलनेस गुरु यानी फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर राज अशोक शेट्टी जी को। राज अशोक शेट्टी जी, विविध भारती के स्टूडियो में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
5: नमस्कार ममता जी, विविध भारती के सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। है
1: कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
5: बहुत बढ़िया, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, कोई मुझे दिखते नहीं थे, लेकिन अंदर बहुत सारे काम चल रहा है। फैंटास्टिक, आई एम फीलिंग वेरी गुड, थैंक यू
1: जी। डॉक्टर राज, हमें बताइए कि आज हर तीसरा व्यक्ति परेशान है अपनी सेहत से, और उसे किसी न किसी दवा की जरूरत पड़ती है। और हमने जो आपके बारे में जाना है वो ये कि आप लोगों को फिट रखने के बहुत सारे गुर बताते हैं, बहुत सारे नुस्खे बताते हैं कि वो बिना दवा के अपने को फिट रख सकते हैं। सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है 4+1=100, जबकि 4 और 1 का जोड़ तो 5 होता है, तो ये फॉर्मूला क्या है और इसके बारे में बताइए, और किस तरह से इसे दिनचर्या में शामिल करें?
5: ये आजकल में बहुत पहले से ही चलते आ रहा है कि भाई लोग परेशान है हेल्थ को लेकर के, लाइफस्टाइल को लेकर के, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में नहीं बात करके सबको इसके बारे में जानते ही है। और 4+1=100, इसको मैजिक ऑन बॉडी फार्मूला बोलते हैं। तो ये मैजिक करता है, कैसा करता है कि हर एक इंसान को ये फॉर्मूला लागू पड़ता है
1: जी।
5: ये हम ऐसा सोचते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, हमको तो अच्छा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हर एक को तकलीफ जिंदगी में होता ही होता है। तो 4+1=100 ये आपके लिए भी, मेरे लिए भी है, मेरा वाइफ के लिए भी है, मेरा बच्चे के लिए भी है, और मेरी माँ बाप के लिए भी है। तो मैटर ये बनता है, व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100, ये फॉर्मूला क्यों बनी है, इसी में मैंने पीएचडी किया हुआ है।
1: अच्छा।
5: इट इज अल्टरनेटिव मेडिसिन, तो थीसिस का नाम है 4+1=100 ओबेसिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है
1: जी।
5: तो पंच तत्व से अगर शरीर आया है तो पंच तत्व में ही विलीन होने वाला है
1: जी। जी।
5: तो पंच तत्व से आए हुआ शरीर को आपको 5 पावर्स देना होता है। तो पंच तत्व अगर हम बात करते हैं तो हमारा, अगर आप हम हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1, ये अग्नि तत्व है
1: जी।
5: फिर आता है उसके बगल का 4, ये 4 उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व
1: जी, जी।
5: 4 उंगली को अगर हम गिनते हैं तो सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100-100 साल की जिंदगी होती है। तो ये फॉर्मूला मेरा नहीं है, ये कुदरत का फॉर्मूला है, हर एक को इसे अपनाना बहुत जरूरी होता है
1: जी।
5: तो ये कुदरत से आए हुए फॉर्मूला से अगर हमारा शरीर बनी हुई है तो इसे 5 पावर देना जरूरी है
1: जी।
5: वो क्या 5 पावर है? वो 5 पावर होता है, सबसे पहला होता है अग्नि तत्व, दैट इज अ परिश्रम देना जरूरी है। फिर आता है वायु तत्व, तो वायु तत्व यानी कि आपको श्वास कैसा लेना है, कैसा छोड़ना है और कैसा रिटेन करना है
1: जी।
5: फिर आता है स्लीप यानी कि नींद कैसा लेना है
1: जी।
5: फिर आता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट यानी कि आप खाना कैसे खा रहे हो, कितना न्यूट्रिशन बॉडी को देना है, कैसा देना है, उसके बारे में बातें होती है, सुनना जरूरी होता है। फिर आता है जल तत्व, पानी का महत्व, शरीर में कितना पानी देना है, ये बस इतना ही है। ये 4+1=100 अगर एक इंसान समझ लेता है तो उनको पूरा जिंदगी भर वो खुश रहेंगे, आराम से रहेंगे, बहुत ज्यादा तकलीफ परेशानी नहीं होगा, और दवाई से तो दूर ही रहेंगे
1: जी।
5: तो ये रियलिटी है। तो ये 4+1=100 इज 100 ईयर्स ऑफ लाइफ, 100 साल तक जीने का सही तरीका
1: जी।
5: तो
1: जी।
5: मैं ये फॉर्मूला अपना खुद के ऊपर भी अपना रहा हूं, मेरा इस वक्त आप मेरा एज देख रहे हो तो 63 का हूं, और मुझे लगता

0: कि और भी कुछ साल तक मैं इससे फिट रहूंगा, ऐसा मुझे लगता है, अगर
1: जी
0: यही फॉर्मूला मैं अपनाता रहूंगा।
1: बिल्कुल। अब आपने अपनी उम्र बता दी है, लेकिन हमारे श्रोता आपको देख नहीं पा रहे हैं। हम उनको बता दें कि आप बिल्कुल 63 के नहीं लग रहे हैं, बल्कि यूं कहें कि 33 तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन 43 से आगे आप नहीं दिख रहे हैं, 40 के अंडर 40 दिख रहे
0: बस
1: हैं।
0: यही फॉर्मूला का इसका बदौलत है।
1: तो वो जो फॉर्मूला है ये तो आपने बता दिया, और इस बारे में आपने पीएचडी के वो 5 तत्वों की जानकारी आपने दी। 5 तत्वों का समायोजन अपनी जिंदगी में कैसे करें, क्या करें कि ये सब कुछ ऐसा फिट रह सके, मतलब वो तत्व क्या है? और
0: बस
1: जैसे आपने कहा वायु तत्व, और कितनी फूड लेना है, कितनी नींद लेना है, तो उसका मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी
0: या
1: दीजिए।
0: अगर आप बोल रहे हो ना कि इंसान बहुत परेशान है, बच्चे बहुत इरिटेट हो रहे हैं, बड़ों की बातें नहीं सुन रही है, और ऊपर से एडवर्टाइजमेंट्स इतना आते हैं, ललचावन एडवर्टाइजमेंट इतना सारे आते हैं, बहुत सारे जो खाने का पैकेट्स देख करके बच्चे ललचा जाते हैं, जो भी आप देखते हो तो बच्चों को लगता है कि ये मुझे खाना चाहिए, वेफर से लेकर के हर वो चीज। और ऐसे बड़ों में भी क्या हो गया कि घर में खाना कम बनता है, पार्सल बहुत ज्यादा बाहर से आता है, और जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो एक्चुअली नहीं होता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो एडवांस टेक्नोलॉजी इतना सारा हो
1: जी
0: चुका है, जो परिश्रम होना चाहिए वो है ही नहीं है, तो जो पसीना निकलना चाहिए वो नहीं निकलते, जो किसी को भी थोड़ा मेहनत परिश्रम लेकर करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, ये पूरा हर एक चीज आप अगर देखते तो रोड रेजेस भी अगर होता है तो परेशान होकर घर से निकलते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं। और उसके अलावा भी क्या है कि जो एंगर मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं लोगों में, जल्दी गुस्सा आ जाता है
1: जी
0: और इरिटेट हो जाते हैं, और ये पूरे चीज का मेन कारण क्या है कि नींद, ठीक से नींद नहीं करना, ठीक से पानी नहीं पीना, ठीक से श्वास नहीं लेना, और ठीक से खाना नहीं चबाना, और ठीक से परिश्रम नहीं करना, ये इन चीजों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर हम बात करेंगे तो जो भी हमारे जो श्रोतागण जो है, जो
1: जी
0: लिसनर्स जो है, वो अपना लाइफ डे टू डे में उतार सकते हैं। ये कैसा हो सकता है, देखिए हमारा शरीर तो कुदरत से आया है, वो तो गारंटी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरीर कुदरत से आया, कुदरत में ही जाने वाला है, जहां से आया वहीं पर ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो 5 पावर कुदरत ने जो नियम दाया था, सी एक फिलोसॉफिकल बातें करता हूं कि जब
1: जी
0: कुदरत जब हमको शरीर दे रहा था तो हमारे ऊपर एक नियम कानून था। जब ये मैं आकाशवाणी का अंदर आया तो गेट में बोला गया था कि भाई आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, परमिशन लेके आना है, पूरा एक नियम कानून है, तो नियम कानून के अंदर ही हमें रहना है। ऐसा कुदरत में जब हमको ये शरीर मिला था, कुदरत ने कंडीशन किया था, ये आपको शरीर में दे रही हूं तो ये शरीर में आपको रहना है,
1: जी
0: रहना है 100 साल तक रहना है, तो 100 साल रहने के लिए उसके लिए मुझे रेंट चाहिए, वो रेंट
1: जी
0: में क्या चाहिए, हमें 2 किलो सोना चाहिए, 4-5 बंगलो चाहिए, या
1: जी
0: फिर यू नो इतना प्रॉपर्टीज चाहिए, ये पूरा नहीं चाहिए, उसको चाहिए सिर्फ 5 पावर चाहिए। वो कौन सा 5 पावर चाहिए, पानी देना है, खाना देना है, नींद देना है, श्वास देना है, और लेबर देना है। इसमें परसेंटेज यूज होता है,
1: जी
0: 100% अगर हम बात करें तो परसेंटेज का 100% पानी 72% है, हमें इतना पानी देना है, सिर्फ 12% खाना देना है, यानी कि न्यूट्रिशन देना है। फिर आते हैं 6% हमें को नींद देना है,
1: जी
0: 6% श्वास देना है,
1: जी
0: सिर्फ 4% हमें लेबर देना है। तो ये इतना चीज हमें शरीर को देना है, ये समझना जरूरी है, ये समझने के लिए थोड़ा सा विस्तार से हमें बात करना जरूरी है।
1: जी
0: तो पॉइंट ये बनता है कि 100% अगर हमको रहना ये दे दिया तो कुदरत खुश होकर के 100 साल के ऊपर 20 साल और हमें बोनस में मिलेगा, सो 120
1: क्या
0: साल की
1: बात है,
0: जिंदगी गारंटेड हो जाती है। और आजकल अर्ली एजिंग आ रहा है, लोग जल्दी बूढ़े होते जा रहे हैं, जब तक जिएंगे बीमारी से जिएंगे तो
1: जी
0: बहुत परेशान होकर जिएंगे, पूरा अगर आप जिंदगी का 25% 30% जो रास्ते
1: बिल्कुल
0: में बोलते हैं ना, हम लोग ट्रैवलिंग भी करते रहते हैं और बाकी 25-30% झगड़े में गुजार देते हैं, बाकी 20-25% कन्फ्यूजन में गुजारते हैं, मांड मांड हम जी लेते हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: जब 100 साल की जिंदगी कुदरत ने दिया है, ये 5 चीजों को समझ लेंगे ना, रोड रेजेस रहेगी ना, हम ज्यादा करके गलत सिस्टम में नहीं रहेंगे, और अपने आप को अच्छे से जी सकते हैं, रोज अच्छे से जी सकते हैं, दैट
1: जी
0: मीन्स यू शुड वी कैन लिव इन प्रेजेंट, हम प्रेजेंट में बहुत सही तरीके से जी सकते हैं।
1: जी
0: तो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है कि हम पानी से शुरू करते हैं कि
1: जी
0: पानी कैसे पीना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, उस बेस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
1: कैसे
0: आप क्या
1: पीना
0: बोलते
1: चाहिए,
0: हो?
1: कैसे पीना चाहिए पानी, और कैसे खाना
0: ओके
1: चाहिए,
0: आप
1: बताइए।
0: देखिए, मैंने बोला 72% हमारा शरीर जो है पानी में, हमारे जो टिश्यूज बोलते हैं ना, जो मांस होता है, अब आंख है, कान है, हड्डी छोड़ के बाकी पूरा पानी ही है एक्चुअली,
1: जी जी
0: टिश्यूज, दैट इज अ 72%। यानी कि अगर आप अंतरिक्ष से धरती को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखता है, 75% पानी दिखती है, 25% आपको जंगल और जमीन दिखती है, तो हमारा शरीर भी वही है। आपका जो वन थर्ड जिसको हम बोलते हैं,

0: सो दैट इज हमारा पानी कैसा होना चाहिए, आपका वजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है
1: जी,
0: हर बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक, ये मैं जो बोल रहा हूँ सुनना जरूरी है कि आपका वजन कीजिए। दाखला तरीके मेरे वजन इस वक्त 70 kg का है, अगर मैं 70 kg का हूँ तो मुझे कितना पानी पीना चाहिए? मुझे एक बात बताइए ममता जी, पानी आप कितना पीते हो दिन का?
1: हमें तो ऐसे नहीं आकलन कर सकते, हाँ एक बोतल रहती है साथ में, एक बोतल दिन में, और मुझे लगता है रात को एक बोतल दो दो ढाई लीटर तक मुश्किल से पानी पी
0: मतलब
1: लेते हैं।
0: कोई प्रॉपर कैलकुलेशन है?
1: प्रॉपर कैलकुलेशन
0: आप 1 लीटर भी पियेंगे या 3 लीटर भी पियेंगे?
1: हाँ कभी
0: प्यास लगे तो कभी कभी 1 लीटर पूरा पी लिया।
1: हाँ कभी कभी बोतल यूं ही रखी रह जाती है, भूल जाते हैं।
0: दैट मीन्स दैट इज अ प्रॉब्लम। कुदरत ने आपको नियम बनाया था, आपको मेरा बॉडी में 72% पानी तो देना ही है
1: जी,
0: और बॉडी में पानी जो है हर आधा घंटे में कम से कम 30 ml पानी निकल जाता है। 72% पानी में अगर मान लीजिए कि 5% निकल जाएगा तो कितना बचा? उतना परसेंटेज बचा, 68-70% बचा। फिर हर आधा घंटे में पानी बाहर निकल रहा है तो हमारा पानी संतुलन 72% तो हमें रखना ही है, एनी गिवन टाइम पानी 72% से कम नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी, उससे ज्यादा पानी देंगे ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा, ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए कम पानी भी नहीं होना चाहिए। अगर हर आधे घंटे में पानी अगर इतना पानी जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, पानी को रिप्लेस करना जरूरी, यानी कि जितना पानी गया उतना पानी आपको पीना जरूरी है। दैट मीन्स पूरा दिन में, यानी कि 8 घंटा अगर आप सोने का निकाल देते हो 16 घंटे में आपको कम से कम 30 बार पानी पीना चाहिए। वो भी कितना पानी चाहिए? एनी गिवन टाइम कभी भी आपको आधा ग्लास से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। कोई बोलते कि 1 glass, 2 glass, 3 glass पानी पीना चाहिए, नहीं, ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा। तो हमें पानी थोड़ी थोड़ी पीना चाहिए, जैसे कि घर के अंदर पूल का पौधा है तो पानी हमको छिड़कना पड़ता है, अब बाल्टी भर के पानी तो नहीं डालेंगे।
1: बिल्कुल,
0: सो दैट इज द रीजन कि हमको एक साथ में पानी उठा करके ऊपर से पानी पीते हैं, वो भी नहीं पीना चाहिए। तो पानी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसके लिए 72% ही आपको रखना जरूरी है। दैट मीन्स एक कैलकुलेशन के हिसाब से मेरी अगर वजन 70 kg की है, x3 करना है मुझे 0.03%, दैट मीन्स 7 × 3 = 21, यानी कि 2 लीटर और 100 ml, यानी कि मुझे 2 से 2.25 लीटर पानी मुझे 16 घंटे में फिनिश करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ ये बॉडी के लिए 2 लीटर पानी पीना चाहिए, 16 घंटे में आपको उसको डिवाइड करना चाहिए। आपका पानी का जो कैलकुलेशन है 16 घंटे में डिवाइड करेंगे तो आपका पानी का कैलकुलेशन मिल जाता है।
1: तो ये पानी के बारे में थी। अब मतलब आपने क्या कहा,
0: सिर्फ पानी जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है अपना शरीर का। लोगों को पानी पीना नहीं आता बिकॉज वो पूरा बॉटल उठा के पी जाते हैं, वो नहीं पीना चाहिए, हवा में पीना नहीं चाहिए, होठ पे लगा के पानी को खींचना चाहिए। ये ही लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, पानी पीना आना चाहिए इंसान को। जब पानी पीने को अच्छे से आ जाएगा, देखिए आप बच्चा दौड़ के आएगा पूरा घटाघट करके पानी पिएगा, आधा लीटर 1 लीटर पानी पी जाएगा, वो भी जल्दबाजी में पिएगा, वो कभी नहीं करना चाहिए। थोड़ा शांत होकर के पीना जरूरी है और हर आधे घंटे में अगर आप पानी पी रहे हो आपको प्यास लगेगी नहीं।
1: जी जी,
0: यानी कि इंसान को कभी प्यास लगना नहीं चाहिए, तो प्यास लगने से पहले पानी पी लेना चाहिए।
1: और बच्चे तो ये भी कहते हैं अरे मुझे प्यास नहीं लगती, बच्चों को अगर कहा जाए पानी पीने के लिए वो कहते हैं मुझे तो प्यास ही नहीं लगती क्योंकि दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, उनको प्यास महसूस नहीं होती।
0: तो
1: बच्चों की और एक समस्या डॉक्टर साहब वो है मोटापा, और उनकी जो सोशल मीडिया मोबाइल स्क्रीन की लत ये भी है, तो कई बार इससे जो बेचैनी के कारण एकाग्रता की कमी होती है बच्चों में, ये आजकल समस्या बढ़ रही है। तो ऐसे में फिटनेस के लिए बच्चों में एकाग्रता बनी रहे, उनका मोटापा कम हो, चिड़चिड़ापन कम हो, इन सब के लिए उसमें माता पिता की क्या भूमिका होती है और बच्चों की क्या भूमिका होती है, कैसे शुरुआत करें फिटनेस की ओर कैसे बढ़े?
0: पेशेंस जो है वो माता पिता ही दे सकते हैं। ओके, बच्चों का जो भी प्रॉब्लम इश्यूज आ रही है वो तो सोशल मीडिया की वजह से आ रही है, स्कूल पे ये तो कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है।
1: फिटनेस के लिए क्या करें?
0: कॉम्पिटिशन के साथ ही फिटनेस जुड़ा हुआ है, तो आपको कॉम्पिटिशन यानी कि आपको क्या बनना चाहते हो उस लाइफ में उसके बेस पर होता है। पेरेंट्स थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं बच्चों को ये करना ये करना, बच्चों को एक्चुअली उनमें क्या रुचि है। उसके बाद अगर डे वन से ही बिगिनिंग से अगर आप घर के अंदर का वातावरण अगर ऐसा बना के रखेंगे, जैसे कि भाई थोड़ा सा जिम एक्टिविटीज होगा या फिर पुलअप्स का कुछ हो सकता है, या फिर जैसे कि घर का जो बातचीत में क्या होता है, क्या बनना चाहता बच्चा, IPS बनना चाहता है, IAS बनना चाहता है, या फिर एक डिपेंड होता है बिजनेसमैन भी बनना है, तो उसके लिए फिटनेस का होना बहुत जरूरी है। घर का डिसिप्लिन यानी कि कितना बजे उठना है कितना बजे सोना है, ये सब कुछ आता है सोने पर। बच्चा कितना बजे सो रहा है, अगर वो 12-1 बजे के बाद सोता है दूसरा दिन आप उसे कोई भी चीज को उम्मीद आप मत रखिए, बिकॉज वो चिड़चिड़ा रहने वाला है, बिकॉज बॉडी में जो रिपेयर होना था वो नहीं हो पाया। तो ये जो टॉपिक है ना मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, बिकॉज हम पानी का जो बात किया है, पानी का इंपॉर्टेंस बच्चों को समझाना जरूरी होता है।

0: कि ये बच्चा हर आधे घंटे में प्यास लगने तक वेट नहीं करना है, प्यास लगने से पहले पानी पी लेना, बिकॉज बॉडी का नीड है, बिकॉज हर आधे घंटे में पानी बाहर जा रहा है, थ्रू यूरिन से जा रहा है, आंसू से जा रहा है, पसीना से जा रहा है, और हमारे पोर से पानी बाहर जा रहा है। अगर पानी बाहर जा रहा है तो पानी अंदर आना जरूरी है। अगर पानी ठीक से नहीं पियेंगे, बॉडी उनका ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, माल फंक्शन करेगा, इसका मतलब वो चिड़चिड़ा ही रहेगा और कुछ चीज समझ में नहीं आएगा, लेथार्जी तक जाएगा, या कुछ चीज स्कूल में भी उनको नींद आने लगेगी, या फिर उनका पसीना बदबू आने लगेगी। ये पूरा सोशल इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों में,
1: ज्ञान है। लेकिन यहाँ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो नुस्खे क्या हैं,
0: नुस्खे
1: वो फिटनेस के लिए नुस्खे कैसे उन्हें जोड़े, कि उन्हें एक्सरसाइज से जोड़े, सांस के प्रयोग से,
0: या इसके स्कूल का जो वातावरण कैसे उसके ऊपर डिपेंड रहता है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते कि स्कूल का क्या है, हम नहीं जानते। अब स्कूल प्रबंधन तो करेगा उनको क्या एक्टिविटी देना है क्या नहीं देना है, वो बात हो जाती है। अगर स्कूल से बाहर आने के बाद की अगर हम बात करें तो बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कुछ भी है उनका स्कूल वर्क जो है रात को 8 बजे से पहले फिनिश करवा देना चाहिए। खाना जो उनको 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, ओके। उसके बाद उनके पास कुछ नहीं होना चाहिए, उनके पास सिर्फ एंटरटेनमेंट थोड़ा देर के लिए होना चाहिए, दैट इज कोई भी चीज, फिजिकल हो सकता है या टीवी हो सकता है, व्हाट एवर द माध्यम, मोबाइल से नहीं। उसके बाद फिर वो जल्दी सो जाएंगे, सुबह अगर वो जल्दी उठ जाते हैं तो उनके पास बहुत टाइम होता है स्कूल के लिए। अगर मान लीजिए कि उनको 8 बजे जाना है तो यहाँ पे वो लोग 7:30 बजे उठते हैं, फिर भाग दौड़ करते हैं, फिर उनके पास फिटनेस के लिए टाइम नहीं होता। अगर वो जल्दी सो जाते हैं तो उनके पास 2 घंटा एडवांसली मिलता है, उस 2 घंटे के अंदर उनका होमवर्क भी हो जाएगा और उनके पास एक एक्स्ट्रा आवर्स भी बचेगा। उस एक एक्स्ट्रा आवर्स में उनके पास अगल बगल में जिम होता है, आजकल हर सोसाइटी में जिमनासियम्स होती है, इसका मतलब वजन उठाना नहीं होता है, कुछ एक्टिविटी, थोड़ा वॉक पे चले गए, रनिंग पे चले गए, हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, कुछ भी एक एक्टिविटी अगर कर लेंगे, उनका फिटनेस कहीं नहीं गया। एक की मतलब है कि उनके जल्दी सोने से सुबह उनको 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। लेट सोएंगे उसका कोई मतलब नहीं, वो कितना भी बड़ा होमवर्क क्यों ना हो, उन्हें लेट कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज बॉडी का जो अंदर का जो रिपेयरिंग जो होता है दैट हैपेंस ओनली बिटवीन रात का जो 11 से लेकर के सुबह का जो 2 बजे का जो टाइम का जो होता है, उस टाइम पर किसी को जागते नहीं रहना चाहिए। मुझे भी, आपको, बच्चों को, किसी को भी उस वक्त जागना नहीं चाहिए, उस वक्त सोना चाहिए ताकि उनका बॉडी अच्छा रहे, फिर जाकर के उनका फिटनेस प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। आप कुछ भी बोलो बच्चे करने लगता है।
1: जी जी।
0: अगर आप बच्चा देरी से सो करके, देरी से उठ के भागदौड़ करके करेगा और बोलो कि आप शाम को फिटनेस करो, तो वो नहीं हो सकता है, बिकॉज वो उसके लिए उसका बॉडी तैयार नहीं होगा। फिर हम जोर जबरदस्ती करेंगे, अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। सुबह जल्दी उठेंगे तो अच्छे मन से सब कुछ कर पाएंगे, फिर उनमें एक ताकत आने लगती है, मुझे ये बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे ये बनना है, ये बनना है, उसमें चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, सोना बहुत जरूरी है, स्लीप पॉइंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर।
1: जी जी जी, बिल्कुल सही समय पर सोना। और आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है,
0: नहीं सोते बच्चे, मोबाइल
1: पूरी रात जगते,
0: हरेक का घर में आजकल क्या हो गया, 2-2, 3-3 कमरे तो है, बच्चे अंदर डोर लॉक करके क्या कर रहे हैं नहीं मालूम।
1: बिल्कुल सही।
0: सो दिस इज व्हाट, घर के अंदर का डिसिप्लिन के ऊपर सब कुछ होता है।
1: जी जी। डॉक्टर राज, आपने मार्शल आर्ट किया है, कराटे सीखा है, और देख के ये लग रहा है कि आप तो बहुत फिट हैं, लेकिन ये कहना आसान है, करना बड़ा कठिन होगा। आपने तो लंबी, हमें लगता, साधना की है, और बहुत सारे आपके वीडियोज देखे जिसमें आपने बहुत सारे कर्तव्य दिखाए हैं। हमें बताइए कि अमूमन जैसे घर में लड़कियां होती हैं तो हम कहते हैं कराटे सिखाओ, क्योंकि वो आगे चलकर अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, तो किन लोगों को ये मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, किन लोगों को नहीं सीखना चाहिए?
0: आप अगर महिलाओं की अगर बात कर रहे हो, मार्शल आर्ट तो सबको सीखना चाहिए, अलग बात होता है। मार्शल आर्ट बहुत डिसिप्लिन्ड आर्ट होता है, बट बहुत मस्कुलिन एक्टिविटी औरतों को नहीं करना चाहिए। यानी कि कुदरत ने हमको 2 नियम से भेजा हुआ है, एक है पुरुष प्रकृति और एक प्रकृति है, प्रकृति मतलब माता है, यानी कि स्त्री है, और एक पुरुष है। सो क्या होता है कि भाई इट्स कुदरत ने बना के भेजा है मस्कुलिन एंड फेमिनाइन, डिफरेंस वो है। तो औरतों को औरतों का ही एक्सरसाइजेस होते हैं, उनका एक वातावरण, उनका चलने का हर एक वो चीज बिल्कुल नया नाजुकता होता है, वही चीज मर्दों में कम मिलता है, बिकॉज ऑफ मस्कुलिन होता है। तो इसके लिए मस्कुलिन प्रवृत्ति जो होती है, जो प्रोटेक्टर बनते हैं वो, कि भाई एक है तो उनका एक्सरसाइज करना, बॉडी बिल्डिंग करना, या फिर स्पोर्ट्स करना, फलाना, है ना, ये पूरा एक चीज होती है। मगर आजकल वो जो 50% जो बोलता है ना, जो स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, वो कानून बना दिया ऐसा, बट कुदरत ने नहीं बनाया। कुदरत ने औरत को औरत ही बनाया है, मर्दों को मर्द ही बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा औरतों का जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, उनका जो मसल्स, इतना कुदरत ने नहीं दिया है जितना मर्दों को दिया है,
1: ताकत भी नहीं दिया,
0: ताकत नहीं दिया, बिकॉज उनका अलग किस्म का ताकत है, मगर वो अलग तरीके का होता है। बट आजकल क्या हो गया कि बहुत ज्यादा लोग, वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है औरत, 35 साल के बाद

0: वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना वेट ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डर ने मसल्स नहीं दिखाना है, ओके वो चीज अलग, वो फील्ड है, वो स्पोर्टिव फील्ड होती है, वो फील्ड में जाने वाले फिर उसी में रहते हैं, वो ऐसे बन जाते हैं। एक औरत जो है, औरत का एक्टिविटी करते रहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है उसको, वो नया नाजुकता रहेगा, फिर आगे जाकर के बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा किक्स करेंगे, बहुत ज्यादा फाइट करेंगे, तो उसमें उनका चलने का चाल बदल जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा, मेल का जो हॉर्मोन्स होता है वो उसमें आने लगते हैं, दैट मींस उनका देखो एक चाली उनका अलग पड़ जाती है, तो फिर वो उनका ड्रेसिंग अलग हो जाती है, फिर एक औरत से धीरे धीरे धीरे वो मर्द में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही मर्दों को औरतों का औरत जो एक्टिविटी करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि कुछ हार्मोन इंबैलेंस होता है, इसका मतलब वो अबनॉर्मल होते हैं ऐसा नहीं है, रहेंगे सब कुछ ठीक ही रहेगा, बट मेरे सलाह, मैं मार्शल आर्ट अगर कर रहा हूं तो मेरे क्लासेस में मैं सेल्फ डिफेंस सिखाता हूं, उन्हें बहुत ज्यादा कराटे रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं करवाता हूं, औरतों के एक्सरसाइज जो होता है वही हम करवाते हैं जो उनमें आगे जा करके उनमें कोई तकलीफ ना हो, उनका जो लोअर एरिया में कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनमें बॉडी का स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होना चाहिए ना, कि ये सबसे हम सोच समझ कर एक्सरसाइज करते हैं। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं बहुत अच्छा होना चाहिए कि वहां जाकर के सीखना जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि फिल्म देख लिया किसी ने कुछ भी करवा दिया, कोई बहुत लेग स्प्लिट करवा दिया, और ये सब मस्कुलिन एक्टिविटी बहुत ज्यादा औरतों को नहीं करना चाहिए, बस एक बात है कि सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए अपना प्रोटेक्शन के लिए, मगर अच्छे तरीके से, यही मैंने वापस पानी पे आया, पानी लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, नींद लेंगे और श्वास अच्छे से लेंगे, फिर ये जो परिश्रम सिर्फ 4% से ज्यादा नहीं करेंगे तो उनको कभी भी सेल्फ डिफेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज वो बहुत समझदार बन जाते हैं, वे कोई गलत रास्ते में जाएंगे ही नहीं, हो तो इसके लिए फॉर्मूला जो है ना हमारे वो पकड़ के ही चलना है।
1: और ये बड़ी सही बात बताई कि अमूमन लड़कियों को ये बोला जाता है कि उनको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट सीख लेना चाहिए, जूडो कराटे में डाल देना चाहिए, तो ये सही बात बताई कि किन लोगों को चाहिए, जरूरत है, किन लोगों को नहीं जरूरत है। यहाँ पर एक बात जहन में आई है, वो ये कि डिप्रेशन और चिंता से परेशान हाल लोगों के लिए व्यायाम, फिटनेस के उपाय कितने कारगर होते हैं और किस तरह से?
0: देखिए, फिटनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हर एक के लिए, औरत मर्द का कोई इसमें भेद नहीं होता है, बच्चे वेलनेस मैनेजमेंट बोलते हैं कि उनका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, आजकल प्रॉब्लम लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर है, हर एक को जो सोने से लेकर के उठने तक, अगर हम पानी एडजस्टमेंट कर लिया तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आता है, तो न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, खाना कैसा खाना चाहिए, खाना खाने के बाद आपका नींद कैसा हो, नींद के बाद आपका ब्रेथ कैसा हो, ब्रेथ के बाद आपका परिश्रम कैसा हो, तो इसका मतलब क्या है कि फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन करना जरूरी नहीं होता है,
1: जी जी,
0: सिर्फ योगा ही काम नहीं आता, एरोबिक्स ही काम नहीं आता है, जुम्बा ही काम नहीं आता है, तो आपका वेलनेस मैंने आपका ब्रीथिंग, आपको पहले अपना शरीर को पहले समझो, आपका शरीर क्या बोलता है, इस वक्त आपका वजन क्या है, कोई कोई ऐसा है कि वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 100 किलो के ऊपर चले जाता है, उनका पोस्चर खराब हो जाता है, चलने में दिक्कत, घुटने में तकलीफ, ओके, फिर उसके बाद घर का जो बहुत माहौल कुछ सही नहीं होता तो उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो बहुत सारे चीजों को मिला करके वहां पर तकलीफें शुरू होती है, तो इसके लिए अगर वो एक सही वेलनेस गुरु के अंडर पहुंच जाते हैं, अगर उनका सुबह अगर अच्छा हो जाती है, रात तक वो सही रहेंगे, यानी कि उनका जो एक्सरसाइज में इतना कैलोरीज बर्न होना चाहिए,
1: जी
0: जितना आप कैलोरी खाते हो उतना कैलोरी आप सही तरीके से बर्न कर रहे हो, और आपका बॉडी अच्छे से स्ट्रेच कर रहे हो, और आपका ब्रीथिंग सिस्टम अच्छा है, आपका जो ब्रेन फंक्शन अगर सही है, आप ब्रेन को कितना ट्रेन कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट्स ऑल डिपेंड होता है कि आप सुबह का एक आधा एक घंटा दो घंटा आप कहाँ जाते हो, किधर आपका टाइम व्यतीत करते हो, और किसके साथ आप बैठते हो, क्या करते हो, जो आजकल गार्डन में जो एक्सरसाइज होता है, पर घूम के आते हैं सब, हर एक को सुबह जल्दी उठ करके एक 1.5-2 घंटा देना जरूरी होता है, फिर कुछ लोग दोपहर को एक्सरसाइज करते हैं, शाम को एक्सरसाइज करते हैं, नेसेसिटी नहीं होता है, आप सुबह का सिस्टम सेट करो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, और कुछ 1.5 घंटा अपने लिए दे दो, फिर बाकी बचा 8 घंटा सोने का अगर छोड़ेंगे तो बाकी बचा 14 घंटा 14 आवर्स आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, कोई क्लेश नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है, इसका मतलब सब कुछ आपका सुबह का 2 घंटे के ऊपर आधारित है,
1: तो वो 2 घंटे में कुछ टिप्स आप बता सकते हैं,
0: आपको अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर योग कर लेना चाहिए, एरोबिक्स होता है या जिम होता है, मतलब अच्छे इंस्ट्रक्टर्स होना जरूरी है, वो ट्रेंड होना जरूरी है कि आप मिलजुल के कैसे एक्सरसाइज, आप घर पे भी कर सकते हो, आजकल ऑनलाइन भी बहुत हो जाता है, हर वो चीज आपको मिल जाती है, सब कुछ है, मगर डिपेंड होता है आप कितना लेजी है। ये बोलते हैं कि नहीं आज टाइम नहीं, आज ऐसा हो रहा है, आपके पास बहाने बहुत है। एक्सरसाइज नहीं करने के लिए बहाने लाखों है
1: जी, बिल्कुल टाइम नहीं है।
0: हाँ जी, टाइम नहीं होता है, बट आप टाइम निकाल सकते हैं, आपके पास कुदरत ने 24 घंटा दिया है, आप उसमें

0: सात से आठ घंटा सोने का निकाल देंगे, 16 घंटे आपके पास है, 16 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि आप 8 घंटे से ज्यादा क्या काम करते हो, 9 घंटा 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं होता है, फिर बाकी बचा 8 घंटा क्या कर रहे हो आप। तो यहाँ पर आपके पास टाइम नहीं बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, हस्बैंड जल्दी जाते हैं, ओके, या फिर किसी को जल्दी ऑफिस जाना है, रात को लेट आते हैं, या बच्चों का, या हर एक चीज को मैनेज करना औरत के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी स्मार्टली खुद के लिए 2 घंटा निकाल के सब कुछ पॉसिबल है।
1: जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों में काम करते हैं, 12-14 घंटे का काम है, तो उनके लिए बीच में भी समय होता है जहाँ पर वो छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं।
0: बहुत कुछ आता है।
1: डॉक्टर राज, हमें यहाँ बताइए कि बहुत कम उम्र की लड़कियों में आजकल पीसीओडी की समस्या होती है और उनकी बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती, खान पान की दिक्कतें होती हैं, तो क्या फिटनेस का जो फंडा है आपका, इन जो एक्सरसाइजेज वगैरह, इन सबसे कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, किस तरह से, बताइए।
0: एक तो प्योरली रिलेटेड स्ट्रेस भी होता है, थोड़ा हेरिडिटी फैक्टर होता है उनपे, वारसांगिक जिसको बोलते हैं, कि उनका मां से और उनका मां से आता है, तो ये बात तो है। पर आजकल का जो खाने पीने का जो तरीका जो है, खास करके बहनों में, औरतों में, तो ये थोड़ा सा एक गांव की बात अलग है, बट सिटी में जो ज्यादा करके रहते हैं बाहर के खाने पे ज्यादा डिपेंड होते हैं, और खास करके जो आईटी सेक्टर में जो महिलाएं काम करते हैं, या फिर जैसा कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम करते हैं, पूरे दिन बैठ के काम करते हैं, ओके, बैठे रहना एक इश्यू बनता है। और उसके अलावा भी अगर देखा जाएगा तो उनका जो नींद का पैटर्न सही नहीं होता है
1: जी,
0: बहुत लेट से सोते हैं और लेट से उठते हैं, और उसके अलावा बैठे रहते हैं और खाना कोई ढंग का नहीं खाते, ये रियलिटी है, ये एक रीजन है। और ऊपर से मोटापा, एक वेट जो उनका होना चाहिए, आपका वेट बहुत आसानी से माप सकते हैं कि एक फुट होता है, 12 इंच होता है, तो 1 फुट का 12 किलो, ऐसे 5 फुट है, औरत 5 और 5, 1 5 2 5 5, ज्यादा से ज्यादा 5-7 का हाइट के होते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो एनीथिंग 55 kg to 70 kg का बीच में होना चाहिए किसी को भी। अभी आजकल 80-90 से ऊपर क्रॉस हो रहे कुछ लोग, तो यही सबसे जब होता है तो एक ओवरवेट की वजह से फिर ये पूरा अंदर का सिस्टम बदलने लगता है। फिर भी उसका उपाय क्या होता है कि भाई सबसे पहले आप वेट कंट्रोल पे रखो, ब्रीथिंग अच्छे से करो, और खाना न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट सही तरीके से करो, और सही तरीके से योग अभ्यास करेंगे, कभी भी पीसीओडी का प्रॉब्लम नहीं आता है, ये रियलिटी है। और मेरे पास काफी लोग ऐसे आते हैं तो उनका विद इन 1-1.5 महीने के अंदर अंदर उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बिकॉज सही तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं, सही तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हैं, और सही उनको परीक्षण मिल जाता है, उनको मालूम है कि कितना पानी पीना चाहिए, कैसा श्वास लेना चाहिए, कितना नींद होना चाहिए, ये हर एक चीज उनको आइडिया होता है। सो दिस इज व्हाट इज, ये मैंने बोला ना कि 4+1=100 फॉर्मूला अगर सही तरीके से समझ जाएंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं है
1: जी।
0: तो हमने पहले तो समझा, तो पानी का समझ लिया ना, अभी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट होता है, दैट इज अ भू तत्व, जल तत्व हो गया तो भू तत्व हो गया, और हमारा पास अभी भी 4 पॉइंट बाकी है, दैट इज अ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के बारे में देखना है, फिर आता है नींद का मैनेजमेंट देखना है, फिर ब्रेथ मैनेजमेंट देखना है
1: जी,
0: फिर लेबर मैनेजमेंट देखना है
1: जी।
0: तो दिस इज व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट इश्यू
1: जी।
0: तो अगर आप कोई भी आप प्रॉब्लम लो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये फॉर्मूला के अंदर है
1: जी,
0: तो आप कुछ भी पूछो, आप फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप नींद कितना घंटा करते हो, तो नींद आप भले 8 घंटा करते होंगे लेकिन कब सोते हो, अब बोलते हैं कि रात को मैं 12-1 बजे सोती हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, बाकी बचा नींद मैं दोपहर को कर लेती हूँ, नो, ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता है। रेस्ट ले सकते हो, नींद जो लेना है आपको 24 घंटे में एक ही बार लेना है, 24 आवर्स में एक ही बार आपको नींद करना है,
1: क्या बात है,
0: दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इश्यू। तो नींद इज क्या है कि भाई 8 घंटे का नींद, 7 घंटा मिनिमम सोना है, 8 घंटा मैक्सिमम सोना है, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं, उससे ऊपर मतलब क्या हो जाएगा कि आपसे नुकसान शुरू हो जाएगा
1: जी,
0: कम नींद भी तकलीफ देता है, ज्यादा नींद भी तकलीफ देता है
1: जी।
0: सो मैटर इज वेरी सिंपल, तो आपका 4+1=100 में ये पांचों चीजों को मिलाना बहुत जरूरी है, वो परसेंटेज वाइज मिलाना जरूरी है, मैंने बोला 72%, 12%, 6%, 6% और 4%
1: जी,
0: तब जाकर के 100% हम जी सकते हैं
1: जी। तो आपने 5 तत्वों की बात की डॉक्टर साहब, आपने पानी का बोला कि वजन के हिसाब से इतना कैलकुलेट करना, बाकी को कैसे,
0: मैंने बोला कि उसके बाद का बात आती है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट,
1: वो
0: पानी का बिल्कुल बगल में क्या है, देखिए 5 उंगली अगर आप देखते हो, किसी किसी का 6 उंगली होती है अलग बात है, लेकिन कॉमनली 5 उंगली होती है, 5 उंगली अगर हथेली देखेंगे सबसे अगर आप देखो तो छोटा उंगली होती है, छोटा उंगली दैट इज जल तत्व है, 5 तत्व का। सेकेंड आता है भू तत्व है, दैट इज भू तत्व इन द सेंस के लैंड रिलेटेड होता है, दैट मीन्स जंगल है, लैंड है।

0: ऑर्गेनिक अर्थ, अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं उसको, उसके हिसाब से देखा जाओ हमें सिर्फ 12% हमारे बॉडी में सिर्फ 12% खाना देना है, दैट मीन्स न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। हमारा शरीर के लिए न्यूट्रिशन चाहिए करीबन करीबन 70 न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है डेली की, रोज का, क्योंकि हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हाथ पांव हिलाते हैं, मसल्स एक्टिविटी है, तो वजन उठाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, हर एक के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ये जो न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, खाना खाने से मिलती है। सनलाइट इज वन न्यूट्रिशन, पानी एक न्यूट्रिशन है, हवा भी एक न्यूट्रिशन है, उसके अलावा भी हमको 67 न्यूट्रिशन और देना है हमें। जिंक आता है, गोल्ड आता है, ठीक
1: जी
0: है, ये हर एक आयन आता है, प्रोटीन्स आते हैं, हर वो चीज, कार्बोहाइड्रेट से लेकर के हर वो चीज हमको देना होता है। ये पूरा न्यूट्रिशन हम खाने में हमको मिलता है। वो खाना कैसे होना चाहिए, रॉ खाना होता है, कुकड होता है,
1: जी
0: फ्राइड होता है, इन चीजों में, तो पानी तो हम पी लिया है, सनलाइट तो हमको मिल लिया, बाकी जो चीजों को उसको डिवाइड करके हमें खाना, ये खाने का पद्धति हमको समझ में आना चाहिए। एक खाना हम सब एक साथ में मिलकर खा लेते हैं, अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाके एक थाली ऑर्डर देते हो, उसके अंदर रॉ भी आता है, फ्राइड भी आता है, कुकड भी आता है,
1: जी
0: सब
1: जी
0: कुछ आ जाता है, हम पूरा मिला देते हैं। एक्चुअली खाना खाने का तरीका क्या है, आपको तीन खाना साथ में नहीं खाना चाहिए,
1: जी जी
0: तीन खाना कभी साथ में नहीं खाना चाहिए। कौन सा तीन खाना नहीं साथ में खाना चाहिए,
1: जी
0: कुक्ड,
1: हाँ कच्चा
0: फ्राइड
1: अच्छा
0: और रॉ,
1: ओ
0: यानी कि कच्चा, पका हुआ और फ्राई किया हुआ, ये
1: हाँ
0: तीनों को एक साथ में नहीं खाना चाहिए, ये
1: अच्छा
0: अलग अलग खाना चाहिए। से आप जो भी रॉ खाते हो, वो रॉ जो होता है पेट में जाने के बाद वो 20-25 मिनट रहता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, आपका 20 मिनट में पेट खाली हो जाता है। बोलते ना पेट खाली है, तो पेट, अभी डॉक्टर बोलते ना कि ये दवाई लेने का, खाली पेट लेने का, या दवाई लेने का यानी कि खाना
1: जी
0: खाने के बाद खाने का, पेट यहां पर होता है, पूरा पेट नहीं होता है, स्टमक तो इतना ही छोटा हमारा, एक मुट्ठी के बराबर स्टमक होता है, उसके अंदर वो एसिड्स होते हैं, जूसेस होते हैं। तो हम जो रॉ खाते हैं वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं रहता है, इसके लिए पहले आपको सॉलिड्स या फ्रूट से जो भी है रॉ जो होता है आप खाने के बाद, फिर आधा घंटे के बाद आप कुक्ड या फ्राइड खा सकते हैं।
1: अच्छा
0: सो फ्राइड अगर आप खाते हो तो उसका गुण अलग हो जाता है, और कुक्ड यानी कि बॉइल्ड जो खाते हो उसका न्यूट्रिशन अलग हो जाता है। कुक्ड जो होता है उसका न्यूट्रिशन, और फ्राइड नेगेटिव न्यूट्रिशन, और रॉ जो ऑलरेडी वहां पे पड़ा है वो अभी वो काम कर रहा है, उससे पहले हमने सब तीनों मिला देंगे तो उसमें से जो हमको जो पॉजिटिव न्यूट्रिशन जो शरीर को चाहिए था वो हमें नहीं मिला, वो कचरे में चले जाता, गोडाउन में चले जाता है।
1: ओहो
0: ये गोडाउन की तरह हमारे शरीर में, दुनिया भर बहुत सारे गोडाउन है हमारे शरीर में, तो जो जाना चाहिए था, आंख के लिए जाना चाहिए था, नाक के लिए, कान के लिए, मसल्स के लिए, ब्रेन के लिए, पूरा न्यूट्रिशन हमें दिया था जरूर, मगर पहुंचा गलत जगह पर, बिकॉज हमने सही तरीके से नहीं आया, यानी कि चिट्ठी तो लिखा हमने मगर एड्रेस ही नहीं लिखा, तो क्या हो गया, इतना मेहनत करके चिट्ठी लिखा मगर आपने एड्रेस ठीक से नहीं
1: पहुंचा
0: लिया
1: नहीं
0: तो पहुंचा ही नहीं। तो ये
1: बिल्कुल
0: जो खाना जो हमको खाना है सही तरीके से खाना है, और दूसरी बात है कि चबा के खाना है, खाना आधा घंटे तक खाना है आराम से, कोई भी चीज को आपको 15-20 बार चबाना जरूरी है, मुंह के अंदर सलाइवा के साथ मिक्स होकर के अंदर जाएगा तब जाकर के पूरा बॉडी काम करने लगेगा, नहीं तो आपको न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगा नहीं है, तो माल फंक्शन करेगा बॉडी, जब माल फंक्शन बॉडी करेगा तो नेचुरली इरिटेटेड रहेंगे, गुस्सा करेंगे और लेथार्जिक रहेंगे, काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, काम तो
1: बिल्कुल
0: किया आपने मगर मन से काम नहीं किया, उसको जो
1: जी
0: मार्क मिलना चाहिए था नहीं मिला, आपने पूरा मेहनत किया था, 99% आना जरूरी था मगर मुश्किल में 72% 50% आता है, क्योंकि आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, बिकॉज आपका न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट सही नहीं था।
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: खाना आपको सही तरीके से खाना है, चबा के खाना है, सलाइवा के साथ मिक्स करके आपको खाना है। दैट मीन्स मैं दो चीज बोलता हूं कि आपको प्यास नहीं लगना चाहिए, भूख नहीं लगना चाहिए और नींद नहीं आना चाहिए, ये तीन चीज आपको नहीं आना चाहिए, अगर आता है दैट मीन्स आप बीमार है। तो एक मेरा जो आंसर आपको अटपटा लगा, नहीं
1: नहीं
0: लगा
1: नहीं
0: आपको,
1: अगर आपने नींद पूरी है तो नींद क्यों आएगी,
0: देखिए
1: लेकिन
0: बस यही तो बात
1: ये
0: है, आपको अगर
1: हाँ
0: आपको
1: भूख
0: नींद आ
1: वाली
0: रहा है,
1: बात
0: आपको अगर भूख लग रही है, दैट
1: हाँ
0: मीन्स आपको खाना खाना जरूरी था, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट,
1: हाँ हाँ
0: आपको हर 3-4 घंटे में कुत्ते को तो एनर्जी देना था,
1: जी
0: आपने 3-4-5 घंटे तक कुछ खाए नहीं तो नेचुरल आपको भूख लगेगी, फिर
1: बिल्कुल
0: जाकर के आप हॉकिंग करेंगे यानी कि ज्यादा खाएंगे और उल्टा सीधा खाएंगे, जो कुछ भी मिलता हो खा जाएंगे। अगर आपने कैलकुलेटेड तरीके से खाना खा लिया तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, बिकॉज आपको खाना देना जरूरी है, आप सोचेंगे मुझे भूख नहीं लगती इसके लिए मैं खाना नहीं खाऊंगी, वो गलत होगा, शरीर मांग रहा है लेकिन कुछ कारणवश आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाकी भूख तो आपको लगेगा, शरीर को लग रहा है मगर आपको ब्रेन में वो सिग्नल नहीं मिल रहा
1: जी जी जी
0: है, वो न्यूट्रिशन तो मांग रहा है वो तो, लेकिन इसके लिए बोलता भूख आपको नहीं लगना चाहिए, आपको खाना देना जरूरी है, प्यास नहीं लगना चाहिए, आपको हर आधा घंटे में पानी पीना जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: नींद नहीं आना चाहिए मगर आपको सोना जरूरी है, आप सो जाएंगे तो नींद नहीं आएगी आपको, नींद आना मतलब बीमारी है,

0: आपको आंख जल रही है, फिर भी ड्राइव कर रहे हो, आपको नींद आ रही है, फिर भी आप पिक्चर देख रहे हो, नींद आ रही है, आप फिर भी काम कर रहे हो, तो वो काम में एनर्जी नहीं रहेगी, 100% तो नहीं दे पाएंगे,
1: क्वालिटी नहीं मिलेगी,
0: नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको सोना जरूरी है। वो 8 घंटे अगर आपने सो लिया ना, पूरे दिन में नींद आपको आएगी नहीं। फिर आपने पूरा बाकी फॉर्मूला पूरा कर लिया तो आपको 8-9 बजे तो नींद आप सो ही जाएंगे, नींद आना ही नहीं चाहिए आपको। तो ये हो गया आपका, खाना हो गया आपका, नींद, 8 घंटा सोना जरूरी है। फिर आता है ब्रेथ लेने का तरीका होता है, श्वास आप कैसा लेते हो
1: जी,
0: दैट इज व्हाट श्वास लेने को आजकल हम श्वास लेते ही नहीं ठीक से। कुछ लोग श्वास लेना ही भूल जाते, उनको आइडिया नहीं कि वो श्वास ले रहे कि नहीं ले रहे, नहीं मालूम है। बिना श्वास का इंसान 1 मिनट भी जीना मुश्किल हो जाता है। आप पानी के बिना 2 महीना जी सकते हो।
1: तो कैसे फोकस करें?
0: तो ये जो श्वास लेने का फोकस कैसे होता है कि ये तो आपको बहुत सिंपल, जब हम पैदा होते हैं बच्चों को कोई सिखाया नहीं जाता है, बच्चा सही तरीके से श्वास लेता है जब पेट से बच्चा बाहर आता है। अब देखो तो उसका जब श्वास लेता है तो उसका पेट ऊपर आता है, आगे जा करके हमारा पेट श्वास लेता है तो पेट अंदर चले जाता है। हम पेट अंदर लेते हैं, छाती को बाहर निकालते हैं श्वास लेने के लिए, पेट अंदर चले जाता है श्वास लेते हो तो। एक्चुअली गलत होता है, श्वास लेने का वो छोटा बच्चा आपको सिखाएगा, पेट से बाहर आया बच्चा है ना वो सिखा देगा। उसको आप ऑब्जर्व करो, वो श्वास ले रहा है तो पेट उसका ऊपर हो रहा
1: है।
0: हाँ, तो हमको डीप ब्रीथिंग करना जरूरी। एक बार श्वास लेना शुरू करेंगे तो पूरा दुनिया समझ जाएगा इंसान वो कैसा होता है। कि श्वास जब लेते हो तो नाक से जाता है तो क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है। आप एक क्वेश्चन मार्क छोटा सा लिखते हो तो छोटा सा लिखते हैं ऐसा, वही चीज आप 1 फुट का क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो कैसा लिखते हो, एक ऐसा लिख कर एक क्वेश्चन मार्क हम ले लेते हैं। ऐसे हमको श्वास लेना है, 1 फुट का श्वास लेना है। नाक से श्वास गया मस्तिष्क होकर के वो सीधा लंग्स तक पहुंचाना जरूरी है। हर श्वास यहां तक पहुंचना जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, श्वास 1/2 इंच का लेते, 1 इंच का लेते, 2 इंच का लेते, हमको 12 इंच तक का श्वास खींचना है।
1: जी जी,
0: हाँ, तब जाकर के हमको दुनिया समझ में आती है। अगर हम आधा श्वास लेते हैं तो हमको दुनिया या सामने के लोग या हम बच्चे भी समझ में नहीं आएंगे, हमारा माँ बाप भी हमको समझ में नहीं आएंगे, हमारा गुरु भी समझ में नहीं आएंगे
1: जी।
0: और हमारा बॉस भी समझ में नहीं आएंगे और हमारा काम भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? हम श्वास अच्छे से नहीं लेते। आप अच्छे से श्वास लेके देखिए तो आपको हर वो चीज समझ में आ जाएगा, आप भी हैप्पी रहेंगे। अचानक आप में एक एनर्जी आने लगती है कि हाँ यार मुझे ये भी आता है, हाँ मुझे वो भी आता है, ये तो मैं बहुत और भी अच्छा कर सकता था। इसके लिए जो ट्रेनिंग में श्वास का क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरा श्वास लेना है और पूरा श्वास छोड़ना है। जितना आप इनहेल ले करते हो और उतना आपका ऑक्सीजन इनटेक होता है, उतना आपका ब्लड सेल्स एक्टिवेट होते हैं। जितना ब्लड सेल्स एक्टिवेट होता है उतना हमारा शरीर चुस्त रहेगा और मस्त रहेगा, कभी भी कोई बीमारी आपको आसपास भी नहीं भटकेगा। इसके लिए बोलते हैं कि श्वास लेना क्रिया बहुत ही अच्छे से आपको कर लेना चाहिए। सो द ब्रीथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और श्वास को कुछ लोग रोकते हैं, श्वास को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, आप कुछ कंपटीशन कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, उस वक्त श्वास लेकर के 5 सेकंड रुक करके फिर श्वास छोड़ना होता है। आप कुछ काम कर रहे हो उस वक्त श्वास नाक से लेना है, नाक और मुंह से श्वास को छोड़ना है। जैसे हम फूंक मारते हैं, जो नाक और मुंह से श्वास, थके हुए हैं तो नाक और मुंह से श्वास को छोड़ना है
1: जी।
0: लेना है सिर्फ नाक से और आराम से लेना है, ये कभी नहीं करना है।
1: अच्छा,
0: हाँ, जल्दी जल्दी श्वास लेते वो नहीं करना,
1: वो तो बहुत सारे लोग ऐसे
0: नहीं करना चाहिए वो करना। हाँ, परीक्षण जैसे कपालभाती हम करते हैं, हाँ। जो अनुलोम विलोम वगैरह करते हैं वो नोस्ट्रल क्लीन करने के लिए ठीक है,
1: लेकिन अमूमन
0: नहीं करना चाहिए, नॉर्मल ब्रीथिंग करना चाहिए। जानवर को कभी आपने देखे नहीं, वो भी हमारे साथ ही पैदा हुए, वो भी हमारे साथ ही जाएंगे, तो वो तो कभी अनुलोम विलोम नहीं करते, वो तो कभी कपालभाति नहीं करते, वो तो कभी योगा नहीं करते, फिर भी अच्छा जी लेते। तो मैटर ही बनता है, हम इन ह्यूमंस थोड़ा एडवांस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके हम कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं, बट योगी क्रिया इज अलग है। जब योग परीक्षक जो होते हैं वो सिखाते वो अलग चीज होते हैं, बिकॉज आपका सिस्टम और एनहांस कर देते हैं उसके अंदर, और आपको अच्छे से जीने का कला आ जाता है। इसके लिए अच्छे से इंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप सीखेंगे, आपको पूरा जिसके पास नॉलेज है उनके अंडर में सीखना जरूरी होता है, कुछ भी करना नहीं होता है। तो ब्रीथिंग इज ए वेरी सिंपल टेक्निक, श्वास अच्छे से अंदर लेना है, श्वास अच्छे से आपको बाहर छोड़ना जरूरी है। तब जाकर के 4 पॉइंट होता है, यानी कि आपको पानी पीने के लिए आना चाहिए, खाना खाना आना चाहिए, नींद सही तरीके से आना चाहिए,
1: सांस
0: अच्छे से लेने आना चाहिए, तो 4 हो गया, प्लस 1 परिश्रम, वो इज इक्वल टू करेंगे तो 100 साल की जिंदगी आपका सही है। अच्छा। और कोई चीज तो है नहीं है, कुदरत ने तो एक ही चीज बोला कि भाई आपको ये शरीर मैं दे रहा हूं एज ए बाड़े के तौर पर, मुझे इतना देना है आपको रिटर्न में। रिटर्न में क्या देना है? पानी, खाना, नींद, हवा और मेहनत। अब मेहनत कैसा करना है, मेहनत मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत परिश्रम जो सिर्फ 4% देना है।

0: 4% मेहनत देना है। तो 4% में क्या क्या आएगा, आप थोड़ा सा झुकेंगे, आपका जो कोणी जो एल्बो जो होते हैं ना ये कान से ऊपर जाना चाहिए कम से कम दिन में 100 बार कोई भी हालत में। आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कोई डब्बा ऊपर रख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं थोड़ा एक बार ऐसा कर लिया, एक बार ऐसा कर लिया, हो गया दो हो गया, फिर घर में थोड़ा अंगड़ाई लिया 2-3 बार, पांच छह काउंट में हो गया। कभी हाथ कोई भी कारण आपको उठाते रहना चाहिए, तो भी आपका शोल्डर अच्छा हो जाएगा। थोड़ा नेक को मोमेंटम देना है अच्छे से, एक बजे वो बजे देखना, ये बजे देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, आपका C1 C2 या पर सर्वाइकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया, थोड़ा इधर से कुछ गिरा उठा लिया, इधर से गिरा कुछ उठा लिया, या अगर जैसे झाड़ू पोछा कटका लगाते हैं हम घर में, उसमें भी एक्सरसाइज हो जाता है। कुछ वजन उठा करके ऊपर रख दिया, कुछ ऊपर से लेके नीचे रख दिया, या आप थोड़ा सा चल लिए, हम एक ही घंटा चलते हैं। सिर्फ चलना एक्सरसाइज नहीं, चलना तो एक इंग्रेडिएंट है। आप एक पाव भाजी बना रहे हैं उसके अंदर 50 मसाला डाल रहे तो वॉक एक मसाला है, अभी भी 25 मसाला बाकी रहता है। तो उसमें एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग्स, उठक बैठक, वजन उठाना रखना, ये पूरा करना जरूरी है। इसके लिए कैलकुलेटेड एक्सरसाइज प्रोग्राम वेलनेस मैनेजमेंट में आता है कि कितना वजन उठाना चाहिए, कितना वजन रखना चाहिए, कैसा उठाना चाहिए, कैसा स्ट्रेचिंग करना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, ये पूरा थोड़ा बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। कुछ माहौल बनता है, एरिया बनता है, इसके लिए एक जगह जाकर के सीखने से अच्छा लगता है। आप घर में भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, यानी कि 4% आपको मेहनत तो करना है, जैसे कुएं से पानी निकालना, पेड़ चढ़ना, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नारियल पानी पीना है तो फिर आप पेड़ भी चढ़ना जरूरी होता है।
1: क्या बात है,
0: नहीं तो आप पानी पीने के लायक ही नहीं है, क्योंकि कुदरत ये बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोई पेड़ तो नहीं चढ़ सकते हैं, टेक्निक तो हम तो आता नहीं है, फिर भी नारियल पानी तो पीना है, पीना है तो ठीक है, आप 1 किलो चल के आकर के फिर पानी पियो। आप गाड़ी पे आए, गाड़ी से नीचे उतरेंगे नहीं, बैठे बैठे अपना नारियल पिया और निकल गया, तो वो कोई काम का नहीं हो, तो वो अंदर जाकर के गैस ही करेगा। तो इसका मतलब आप आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर साइकिलिंग करके आए, चल के आए, एक नारियल पानी पीते हो, वो उसका काम करेगा,
1: फायदा।
0: दैट मीन्स क्या है कि मेहनत के सामने आपको उसका रिजल्ट आता है। आप मेहनत नहीं करेंगे फिर भी आप खाते जाएंगे पीते जाएंगे तो फिर आपको रिजल्ट आने वाला नहीं। इसके लिए मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 4+1=100, 100 साल की जिंदगी पूरा होता है। सो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये अगर इंसान समझ गया तो कभी भी उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं।
1: बिल्कुल। आप डॉक्टर साहब 100 साल की जिंदगी की बात कर रहे हैं और आपका ये कहना है कि वृद्धावस्था में भी युवा रहा जा सकता है, वो क्या नुस्खा है जरा बताइए, क्योंकि अभी तो कॉम्पिटिशन सा बना हुआ है कि हम कैसे लंबे समय तक युवा बने रहे। और देखने में तो सभी को लगता है कि आज तो सेल्फी का जमाना है, तो सभी चाहते हैं कि युवा बने, सेल्फी लें, तो बताइए ये जरा नुस्खे बताइए हमारे।
0: एक तो मैं आपके सामने बैठा हूँ तो आपने मेरा तो एज तो आपने देख लिया। मैं ट्रेन में भी अगर आता हूँ तो मुझे सीनियर सिटीजन का दर्जा है
1: जी।
0: फिर भी मुझे अगर वो जगह मुझे मिली है तो 40-50 साल के जो होते हैं, जो वृद्धावस्था में दिखते हैं, वो हमारी तरफ देख करके गुस्सा करते हैं, आप इतने यंग है तो आप सीनियर सिटीजन में कैसे बैठे,
1: झूठ बोल रहे हैं।
0: ये हमने बहुत फेस किया हुआ है। तो रियलिटी है कि भाई आपको यंग एट हार्ट, एज इज जस्ट अ नंबर, वो एक नंबर होता है। आप इतने साल के हो, इतना साल पैदा होकर के मेरे इतना साल हो गया, मगर वो दिखना जरूरी नहीं। बुढ़ापा ए बीमारी बोलते हैं हम इसको, बुढ़ापा नहीं चाहिए हमें। उम्र भले उनका 90 साल क्यों ना हो, अब यू शुड लुक एंड यू शुड लिव यंग। वो कैसा पॉसिबल है, यही फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसा है, आपको हर आधे घंटे में पानी पीना है। देखिए कितना भी आप मेरे को क्वेश्चन करेंगे, हम घूम फिर के वहीं पर ही आते हैं। तो अल्टीमेटली एक बात होती है कि पानी हर आधे घंटे में इंसान को पीना है
1: जी,
0: प्यास लगे या नहीं लगे, हर आधे घंटे में पानी पीना चाहिए। और खाना 3 साथ में नहीं खाना चाहिए, कौन सा, रॉ, कुक्ड और फ्राइड, ये तीनों एक साथ में नहीं खाना चाहिए। फिर आता है नींद, 24 घंटे में एक ही बार सोना चाहिए, रात को 9-10 बजे सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो उसके बाद आपके पास 2-3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम होता है, उस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ही दुनिया का रिच इंसान बन जाएंगे आप, हेल्थ वाइज और फाइनेंस वाइज, बिकॉज आपके पास एडवांस टाइम रहता है। मैं तो लेट उठ के भाग दौड़ करते हैं, उसके बाद पूरा दिन उनका बहुत खराब जाता है। इसके लिए जल्दी सोने का अगर प्रैक्टिस कर लिया, आप दिया तो 24 घंटा ही है, आप 12 बजे सोते हैं फिर लेट उठते, वो नहीं, आप वही चीज को जल्दी जल्दी करो, 2 घंटा एडवांस रहो, तो आपका वो सर्कल आप अच्छे से, यानी कि अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। नींद है आपका बेस है, पूंजी बोलते हैं उसको, FD बोलते हैं हम अपना भाषा में, नींद आपका FD है, उससे इंटरेस्ट मिलती है, उससे इंटरेस्ट से आपका 16 घंटा चलता है। अगर आपने अपना FD तोड़ दिया, मान लीजिए आपका नींद 1 लाख रुपया का है, तो आपका FD है, आपने उसमें से 50,000 खर्चा कर लिया, आपने उसका इंटरेस्ट जो आता है कम आता है, आपका 16 घंटा नहीं चलेगा, आप समझे ना। तो क्या होता है कि भाई FD को तोड़ना नहीं है, FD

0: को फिक्स रखो आप, उसको और अच्छे से उसको एनहांस करो, तो उससे जो इंटरेस्ट आता है उससे हमें जीना है, तो हमको एफडी को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। तो ये जो स्लीप को ज्यादा छेड़ना नहीं हमें, 16 घंटा का हमारा जो पिरामिड बनता है, 8 घंटा हैप्पीनेस होता है, हैप्पीनेस हेल्थ एंड उसका जो होता है ना दैट इज अ स्लीप बनता है, वो जो 8 घंटे का स्लीप के ऊपर आपका पिरामिड बना हुआ है, दैट मीन्स 8 आवर्स का 16 घंटा डिवाइड होता है, जो वो जो 16 घंटा जो बैठा है आपका 8 घंटे का नींद पर। सो वो नींद आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये पिरामिड बहुत अच्छा बन जाता है, हेल्थ हैप्पीनेस और होप बोलते हैं। आप सुबह उठेंगे वो फुली उठेंगे, आप जैसे उठते हो तो आप कुदरत को शुक्रिया अदा बोलो उठाने के लिए, और 16 घंटा अगर आपका अच्छा गया है तो रात को वापस थैंक यू बोल के सो जाओ कि आज का दिन मेरा 16 घंटा बहुत अच्छे से गया। क्योंकि इंसान को जीना है सिर्फ 16 घंटा, 8 घंटा आपको नींद पे निकालना है, तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है अपने को।
1: बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। और डॉक्टर राज, आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपकी बातों से बहुत सारे लोग इस समय प्रेरित हो रहे होंगे, तो आपने कौन सी डिग्री हासिल की है? अगर हमारे श्रोता भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने को फिट फाट रखना चाहते हैं, तो क्या पढ़ाई करें और किस तरह से आए?
0: देखिए, पढ़ाई तो नॉर्मल रूटीन में होता है कि कोई अनपढ़ भी होना जो भी वो फिटनेस एक्सपर्ट बन सकता है, बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत बड़ा काम आता है।
1: लेकिन आपने पीएचडी?
0: मैंने पीएचडी किया अल्टरनेटिव मेडिसिन में, और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैंने वेलनेस में किया हुआ है, जो अपोलो हॉस्पिटल होता है वो ऑर्गेनाइज करता है। उसके अलावा भी हमने बहुत ज्यादा जो छोटे छोटे जो कैंप्स होते हैं, जो 1 मंथ का होता है, 2 मंथ का होता है, जो छोटे छोटे जो होता है, जो एक्सपर्ट के अंडर शारीरिक तौर पर किसी और का काम करते हैं, तो आपके पास वो आवड़त जिसको बोलते हैं ना, जो आपका वो आना जरूरी है, यू हैव टू बी एक्सपर्ट। तो इसके लिए हमको आयर जो हमसे ज्यादा नॉलेज वाले से आपको सीखना जरूरी होता है। फिर भी इसका डिग्रीज होते हैं, आपको जब वेलनेस होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, उसके अलावा योग परीक्षण केंद्र होता है, बहुत जगह पर है, जैसे बेंगलोर में विवेकानंद इंस्टीट्यूट है, उत्तराखंड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत जगह पर कॉलेजेस पूरा खुली हुई है, नेट में बहुत सारा मिल जाता है, इंटरनेशनल वेलनेस भी होता है
1: जी।
0: बहुत जगह पर वेलनेस में ट्रेनिंग में आना चाहते हो तो मिलता है आपको, यूनिवर्सिटीज उसका डिग्रीज देती है
1: जी।
0: योगा डिग्री भी होता है
1: जी।
0: तो कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील
1: जी,
0: बट पैशन होना जरूरी है।
1: हाँ।
0: सिर्फ डिग्री होने से कुछ नहीं होता है, आपको पैशन होना जरूरी है। इसके लिए मैं अगर इस फील्ड में हूँ तो मैं बचपन से हूँ, मैं 12 साल का था, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ।
1: अच्छा।
0: तो आज मेरा 63 ईयर्स, आज की तारीख में भी मैं क्लासेस लेता हूँ, मेरा सूरत में क्लासेस चलती है, आयु फिटनेस वेलनेस मैनेजमेंट करके मेरा ऑर्गेनाइजेशन है WAYU, तो इसमें हमारा डेली रूटीन चलता है। उसके अलावा भी ऑनलाइन में भी मैं परीक्षण करता हूँ, तो हम एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं
1: जी, जी।
0: तो ये बात भी है
1: जी। तो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो जुड़ना चाहेंगे आपसे जुड़ भी सकते हैं और ऐसी कोई डिग्री हासिल कर सकते हैं। अब छोटे छोटे बहुत संक्षेप में आप बताइए, कुछ छोटे सवाल छोटे जवाब
0: जी।
1: तो हम सब तो आवाज की दुनिया में काम करते हैं, तो जो आवाज की दुनिया में काम करते हैं उनके लिए पानी कितना और कैसे पीना चाहिए, बहुत संक्षेप में बताइए।
0: जी, एक तो पहली बात तो माइक्रोफोन जो होता है ये आपका मॉइस्चर को खींचता है, ये जो माइक्रोफोन, ओके तो फिर नेचुरली आपके पास तो पानी होना जरूरी है, और पानी को डायरेक्ट नहीं पीना है, पानी मुंह में रखना है, रखने के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड रखने के बाद वो पानी को टिप्पा टिप्पा निकलना है।
1: अच्छा।
0: एक साथ में गल्प नहीं करना है, और पॉइंट वाइज आपको निकलना है, यानी कि गला मॉइस्चर रखना है ऑल द टाइम, ये तो मॉइस्चर रखना है। दूसरा क्या होता है कि गुनगुना गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी ज्यादा नहीं हल्दी, और थोड़ा सा प्योर घी अथवा कोकोनट ऑयल थोड़ा सा डाल के आपको गले में रखना है। रखने के बाद
1: ये उसको पानी में या दूध में?
0: पानी में,
1: ओके
0: सिर्फ पानी में उसको रख के थोड़ा सा आप अंदर डालेंगे तो क्या होता है कि आपका ये गला मॉइस्चर रहेगा, और वहां पे जो थोड़ा बहुत डैमेज होगा वो हील हो जाएगा। और उसके अलावा भी छोटी छोटी काम, और जैसे कि आकार का बोलना जरूरी होता है, दैट इज अ नॉर्मल रूटीन, आकार उकार मकार में आकार जो होता है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: अच्छा।
0: गल्प करते रहना चाहिए, बार बार आपको मुंह में सलाइवा लाना है, ऐसा टंग से मुंह में रोल करने के बाद मुंह में सलाइवा आता है, सलाइवा को गल्प करना चाहिए, गल्प करो, ये बिल्कुल मॉइस्चर हो जाएगा, वापस फ्री हो जाएगा आपका गला।
1: क्या बात है भाई। तो जो लोग वॉइसिंग डबिंग में काम करते
0: उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट,
1: ये बड़ी कारगर बात बताई। तो ये आपने बताया कि अकार, तो अकार कितने सेकंड करना चाहिए, और मकार क्या है वो क्या बताया?
0: अकार उकार मकार से ओमकार बनी हुई है, ओमकार इज नॉट ओ एम, इट इज आ ओ मा ए यू एम, अकार उकार मकार होता है, तो वो बोलने का तरीका होता है जब आप मकार डालते हो तो आपका जो टंग जो है ना ऊपर पैलेट पर टच होना चाहिए, बाकी कुदरत ने दिया हुआ साउंड है, आप अगर अंतरिक्ष का साउंड देखें

0: देखेंगे तो ओमकारी आता है,
1: जी
0: बट
1: जी
0: वो ओम ओम नहीं है, वो यम नहीं, वो आ वो मा। अब बराबर कान डाल के सुनेंगे तो यही आवाज करेगा, यानी कि मुंह खुला उकार पे आ गया, मुंह बंद किया टंग ऊपर गया तो वो मकार पे आ जाता है।
1: जी जी
0: तो ये मकार इस कुंभक होता है।
1: अभी हमारे श्रोताओं के लिए बताइए कि बिना किसी महंगे उपकरण के, जिम जाने के अलावा घर पे बैठे बैठे वो कौन सी एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं हमारे श्रोता, बहुत संक्षेप में बताइए।
0: देखिए बहुत सिंपल है, कोई भी मिनरल वाटर बॉटल होता है वो एक एक लीटर का दो, या उसमें पानी खाली करके उसके अंदर सैंड भर देने का होता है, 2 किलो का हो जाता है।
1: जी जी
0: अब सैंड भर देंगे, ऐसा 5-6 बॉटल रख देने का, 2 किलो का एक रखने का, 1 किलो का एक, आधा किलो का एक रखने का, कुछ नहीं खाली उसको उठा करके नीचे रखना होता है,
1: उससे हाथ की
0: एक्सरसाइज हो जाती है
1: जी।
0: ओके, आप वो लेकर के उठक बैठक कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का टाइम ऐसा है, आप कोई भी यूट्यूब में या फिर कोई भी डाल दो तो आपको 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का एक्सरसाइज तो दिखाई देता है। फिर भी हर एक को पुशअप्स आना चाहिए, स्क्वाट करना आना चाहिए, अपराइजिंग यानी कि दोनों हाथ को सर के ऊपर लेकर के आसमान की तरफ अपने आप को खींचना चाहिए। दिन में 25-50 बार ऐसा करते रहेंगे, सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और रही शावर लेने की, लोगों को बहुत आदत है शावर के नीचे आके खड़े हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आप बैठ के नहाना चाहिए, बाल्टी से पानी लेकर के नहाना सबसे अच्छा होता है। खड़े खड़े जो नहाते हैं ना वो सही नहीं होता है। और रोज साबुन लगाने की जरूरत नहीं होती है।
1: जी जी,
0: साबुन आपको वीक में एक या दो ही बार लगाना होता है, और सिर्फ हाथ में आते ही लोग बहुत साबुन लगाते, बहुत शैम्पू लगाते, बहुत यू नो कंडीशनर लगाते, नेसेसिटी नहीं होती है। स्किन का मॉइस्चर भी निकल जाता है उससे, बहुत ज्यादा क्रीम्स वगैरह जो लगाते वो भी नहीं लगाना चाहिए, यानी कि वो खून चूस लेता है, यानी कि अंदर चले जाता है। तो जो कुछ भी हम खा सकते हैं, जो हम खाते हैं वो हमको स्किन में लगाना है। आप जो चीज नहीं खाते हैं वो स्किन में लगाएंगे, वो क्या होगा, वो सीधा पोर्स के अंदर जाकर के ब्लड के साथ अंदर जाकर इंटरफेयर करता है।
1: जी,
0: ये पर छोटी छोटी बातें याद रखना जरूरी है।
1: और फिटनेस के जरिए क्या दर्द में भी राहत मिल सकती है? बहुत सारे लोगों को तकलीफें होती
0: हैं। जी, नी का इश्यूज है बहुत लोगों को, एंकल का इश्यूज है, सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है। रिहेबिलिटेशन हम करते हैं जिनको जो तकलीफ है, स्लीप एपनिया होता है या फिर अल्जाइमर होता है या फिर बहुत सारे ऐसे जो तकलीफ से ये करते हैं कि उनके लिए वो आते हैं, तो एक्सरसाइज उनके हिसाब से होता है। सो बैठे बैठे पाँव को थोड़ा सा लंबा करना
1: जी,
0: या फिर यू नो नेक का एक्सरसाइज करना, इन चीजों से बहुत उनको इजाज़त मिल जाती है। यानी कि सही तरीके से वेलनेस मैनेजमेंट में आते हैं, सीखते हैं तो उनको 100% रिजल्ट मिलता है। मेरे पास दिन में 100 जन आते हैं
1: जी,
0: और सभी बाहर गाँव से भी आते हैं, वो बहुत अच्छे होके जाते हैं। तो 3-4 दिन का उनका रूटीन होता है, 1 दिन का रूटीन होता है, वही 2-3 घंटे भी आके सीख के जाते तो उनको रिजल्ट मिलता मिलता मिलता ही है।
1: जी
0: जी,
1: बढ़िया बात, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। और बस एक लाइन में हमें जवाब दीजिए, वो ये कि 5 तत्व की आपने बात की, जहाँ वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि, तो ये 5 तत्वों के माध्यम से आज की आधुनिक जीवन शैली में इनका कितना महत्व है और क्या संभव है ये?
0: नहीं, आधुनिक बोलिए या कोई भी एंशियंट, यानी कि माँ तो माँ ही होती है, माँ का गर्भ से बाहर आए तो इसमें आधुनिक भी नहीं चलता है या फिर ये भी नहीं चलता, माँ माँ ही होती है, बाप बाप ही होते हैं। तो माँ तो ये बनता है कि आप कितना भी बड़े क्यों ना हो, आप 100 साल से ज्यादा नहीं जी सकते, ओके, आप उससे नीचे ही रहेंगे। बट हमें कुदरत ने हमको दिया है तो एज ए चैलेंज आप उसको करके जाओ, नहीं तो हमको वापस आना पड़ेगा, ओके, फिर हमको अच्छा शरीर नहीं मिलेगा। कितना योनि पसार होने के बाद हमको ये शरीर मिला, अच्छा शरीर मिला है तो उसे अच्छे से जी के जाना है, अपने को दुनिया को कुछ दे के जाना है, समझा के जाना है, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना है। हर दिन आप अच्छे से जी लो तो आपके पास सब कुछ मिल जाता है। तो रियलिटी है कि भाई आधुनिक या युग हो, कोई भी युग में आपको अच्छे जीने के लिए 5 तत्वों से अगर आए हैं तो आपको 5 तत्वों का जो नियम है, कानून है, वो कानून के हिसाब से जीना पड़ेगा। दैट मीन्स हर आधे घंटे में पानी पीना है, हर 3-4 घंटे में खाना खाना है, 8 घंटे का नींद करना है, और 1 मिनट में 10 से 15 बार श्वास अंदर बाहर लेना है, और दिन में कम से कम आपको आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक परिश्रम करना है, जिसमें आपको थोड़ा कैलोरी बर्न हो, दिन में 2-3 हजार कैलोरी बर्न हो जाए, उतना नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, कम से कम 800-900 कैलोरी बर्न करने की कोशिश करना चाहिए, जिंदगी अच्छे से निभा सकते
1: जी। डॉक्टर राज, आपने पूरे प्रोग्राम के दौरान इतनी बार पानी पीने के लिए कहा है और इतने सही तरीके से नींद प्रॉपर लेने के लिए कहा है, जो कि कम हो रही नींद आजकल, और न्यूट्रिशन की ओर इतनी बार इशारा किया है, ध्यान देने को बोला है, तो हमारे श्रोता जरूर आज से सजग हो जाएंगे इस ओर। अब चलते चलते बताइए कि इसी में हम गाने को भी शामिल कर लेते, संगीत भी एक माध्यम है जिससे सुकून मिलता है, कौन सा गाना आपकी ओर से हम नजर करें अपने श्रोताओं?
0: देखिए इस वक्त मुझे क्या आ रहा है, तो मैं बोला अच्छा जिंदगी जीना है तो फिर एक गाना जो मेरा फेवरेट है, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के, गाने में बहुत एनर्जी है और

0: आई थिंक ये हेलन जी उसमें डांस किया,
1: मस्ती से
0: कोई
1: जीने की बात कही
0: जीने की
1: थी
0: बात है, तो वो गाना मेरा फेवरेट है ऑल द टाइम। सो आई थिंक श्रोता अभी बहुत एंजॉय करेंगे इसे।
1: जी, सुनते हैं।

0: तो डॉक्टर राज, बहुत सारी जानकारी दी आपने, आपका तहे दिल से शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
1: थैंक यू वेरी
0: नमस्कार।
1: मच कॉलिंग मी हियर एंड आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सब अच्छे रहिए, ठीक रहिए एंड खुश रहिए, 100 साल जिंदगी पूरा कीजिए खुशी
0: क्या बात,
1: खुशी। थैंक
0: शुक्रिया शुक्रिया,
1: यू,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: ये थी वेलनेस गुरु डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भवरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकालेखा और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान फिल्मकार गुरुदत्त को और महान गजल सम्राट जगजीत सिंह को।

0: सुन सुन सुन जालिमा,
1: अरे जा जा जा जा,
0: अरे सुन सुन सुन सुन
1: जा जा जा जा।
2: यह आवाजें थी गीता दत्त और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम था आर पार। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर।
3: मेरी दुनिया

ये आवाजें थी मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस 55। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन ओपी नैयर की थी।

हेमंत कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म कागज के फूल, फिल्म का गाना। गीतकार थे कैफी आजमी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है 14वीं का चांद। आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार शकील बदायूनी और संगीत रवि का।

0: डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी, उनसे होगी संगीत साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत सी रामचंद्र का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल, आवाज लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है बहू रानी।

फिल्म बहुरानी का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज लता मंगेशकर की थी। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है साहेब बीबी और गुलाम। इसे शकील बदायूं ने लिखा है और धुन हेमंत कुमार की है।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ

0: लता मंगेशकर और हेमंत कुमार को अभी आपने फिल्म जाल में सुना। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल में अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की, और ये फिल्म है अर्थ।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।

0: कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा गीत आपने सुना। स्वर जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के थे। फिल्म का नाम था साथ साथ।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इंडिवर की रचना, जगजीत सिंह का संगीत, फिल्म का नाम है प्रेम गीत और स्वर जगजीत सिंह का ही है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका सुरीला सफर इस कार्यक्रम में। तो आज का हमारा सफर उन पंछियों के नाम है जो मौसम के साथ हजारों मील की यात्रा करते हैं, है ना? नए आसमान, नई दिशाएं और मंजिल की तलाश करते हैं। तो इनकी उड़ान हमें भी कुछ सोचने का मौका देती है, संदेश देती है। तो आइए, पंखों के साथ कल्पनाओं को भी हम उड़ान दें और सुने आज का ये सुरीला सफर। चलिए पहले आज की इबारत पढ़ देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आसमान में पंछियों का एक झुंड हजारों मील दूर की यात्रा पर निकला है। ना उनके हाथ में कोई नक्शा है, ना रास्ते में कोई मील का पत्थर, फिर भी प्रकृति की अदृश्य दिशा को पहचानते हुए वो आगे बढ़ते हैं। मौसम बदलता है, हवाएं बदलती हैं, धरती के रंग बदलते हैं, लेकिन उनकी यात्रा जारी रहती है। इन प्रवासी पंछियों को देखकर एक सवाल मन में उठता है, क्या सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का नाम है, या सफर अपने भीतर कुछ नया खोजने का नाम भी है? हम इंसान भी तो ऐसे ही मुसाफिर हैं। कभी रोजगार हमें घर से दूर ले जाता है, कभी रिश्ते, कभी जिम्मेदारियां और कभी अपने सपने। हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसी उड़ान भरते हैं जहां मंजिलों का पता तो होता है लेकिन रास्तों की मुश्किलों का अंदाजा नहीं होता। तो प्रवासी पंछी हम सभी को बात सिखाते हैं, दूर जाना पर अपनी जड़ों को भूलना नहीं। मौसम अनुकूल होने पर ही लौटते हैं अपने लिए परिचित ठिकानों की ओर। शायद इसीलिए उनकी उड़ान में केवल बिछो नहीं होता, लौटने की उम्मीद भी छिपी होती है। जब इन पंछियों को देखकर हमारा मन भी उड़ान भरता है तो संगीत उस उड़ान को आवाज दे देता है, है ना? तो आइए आज सुरीला सफर में पंखों की सरसराहट सुने, खुले आसमान का विस्तार महसूस करें और उन गीतों के साथ उड़ चलें जो हमें याद दिलाते हैं कि आसमान सिर्फ पंछियों के लिए नहीं, सपने देखने वालों के लिए भी खुला है।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था चोरी चोरी। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये साल में एक दिन दो बार 9 मई और साल में ये दिन दो बार 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि प्रवासी पक्षी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर प्रवास करते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों, उनके संरक्षण और उनके आवास स्थलों को बचाने के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पक्षी दिवस और बहुत बढ़िया थीम लेकर आप आई हैं, और आज सुरीला सफर में पक्षियों के साथ हम भी नीले अंबर में सुरीले मधुर गीतों के साथ सैर करेंगे। बिल्कुल। और वही एक श्रोता ने लिखा है कि हमारा मन भी कभी कभी उड़ान भरता है, यादों के पंख लगाकर बीते हुए दिनों में पहुंच जाता है, संगीत की धुनों के साथ अनजानी राहों पर निकल जाता है और सपनों के आसमान में विचरने लगता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, मन की उड़ान कभी थमती नहीं। आखिर पंछी हो या इंसान, उड़ान ही तो जीवन को नए अर्थ देती है और अपनी जड़ों की ओर लौटने का सुख उस उड़ान को पूर्णता देता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की सुंदर सी इबारत में इसमें प्रवासी पक्षियों की उड़ान, जीवन का सफर, अपनों से बिछड़ना, अपनी जड़ों की ओर लौटना और सपनों को पाने की चाह है। मेरे मायके के नजदीक सांभर झील में सर्दियों में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। फरवरी मार्च तक रुकते हैं और इसके बाद वापस चले जाते हैं। प्रवासी पक्षी हमें सिखाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उड़ान भरना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को याद रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रास्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और परिस्थितियां भी, पर उम्मीद का साथ नहीं छूटना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिंजरे में पंछी कमजोर हो जाता है, वही जब उसे आजाद कर दे तो वो आसमान को छू लेता है। शायद पिंजरे में बंद पंछी हमें यही कहता है, जो भी मैं मांगू क्या मुझको दे पाओगे। कैद में पंछी पूछ रहा, क्या खुला गगन दे पाओगे। जब बेड़ियां तुम्हें पसंद नहीं, फिर मुझको क्यों पकड़ा है। अपने स्वार्थ की खातिर मुझे क्यों पिंजरे में जकड़ा है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी है। बहुत सुंदर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र के बोल, सुबीर सेन की आवाज और फिल्म का नाम है आस का पंछी। अच्छा बताइए, क्या आपने कोई पंछी पाला है? बताइएगा।

छूलूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर,

हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल मेरा एक आस का पंछी, यानी इस फिल्म में राजेंद्र कुमार थे। वहीं एक श्रोता लिख रही है कि पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग का एक ऐसा सदाबहार गीत है जो आज भी श्रोताओं को ऊर्जा और खुशी से भर देता है, और ये गीत आजादी, उल्लास और बेफिक्री का एक खूबसूरत प्रतीक है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, जीवन जीने और रोजगार की तलाश में अपनी उड़ान भरता है और सफल होता है, यही हमें पक्षियों से सीखना चाहिए। बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिख रही हैं कि मेरे पतिदेव ने भी मुझे आजाद होकर उड़ने की इजाजत दी है क्योंकि मैं भी अपना बिजनेस करती हूं और वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और इसी तरह हर एक को अपने जीवन साथी को आजादी देनी चाहिए, जो सही आजादी होती है उसे देना चाहिए ताकि अपनी उड़ान हर इंसान भर सके। वहीं बहुत सारे श्रोताओं ने आज के इस गीत को पसंद किया है और लिखते हैं कि बात सही है, लेकिन जब सेवा में कार्यरत थे तब घर की और ऑफिस की जिम्मेदारी के कारण मस्त गगन में उड़ने का मौका कम मिला। अब जब सेवानिवृत्त होने के बाद नौकरी से आजाद हुए, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अब शरीर साथ नहीं दे रहा। उड़ने का मन जरूर होता है लेकिन पंख

सिकुड़कर बैठ जाना पड़ता है, फिर भी मन को मजबूत बनाकर जरूर उड़ा जा सकता है। इस बात पर एक मुहावरा इन्होंने लिखा है, मन होए तो मालवे जवाई। ये गुजराती मुहावरा है, मतलब मन करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं। रूबरू न सही विविध भारती की प्रसारण तरंग रूपी पंख लगाकर बहुत सुंदर लिखा है, अपनी छोटी बहन यानी मैं के संग जब सुरीली उड़ान भरेंगे तब मेरे मन का बावरा पंछी बार बार जरूर डोलने लगेगा। बिल्कुल, इस वक्त आप मेरे साथ ही हैं और हम हवा में उड़ रहे हैं, है ना? महसूस किया आपने? जी हाँ, हम अभी हवा में उड़ ही रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत। अरे, इससे पहले तो गाना आपसे सवाल पूछना था, चलिए सवाल पूछती हूँ। हाँ, एक सवाल तो मैंने लगे हाथों पूछ ही लिया था यूं ही कि आपने कोई पंछी पाला है तो बताइए। हाँ, जो मेरे दो सवाल हमेशा रहते हैं, वो पहला सवाल ये है कि अगर आपको किसी भी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? बताइए, कहाँ जाना चाहेंगे उड़कर? और अगर थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो ये भी बता दीजिएगा कि क्यों क्यों जाना चाहेंगे वहाँ। सवाल फिर से नोट कर लीजिए, अगर आपको भी किसी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? और हमारा दूसरा सवाल है कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं, है ना, लेकिन क्या इंसान अपने मन में जो खींची हुई सीमाएं हैं उन्हें पार कर पाता है या नहीं? आपने अपने जीवन में, अपने मन में जो सीमाएं पाल ली है, सीमा रेखा खींच दी है, उसे आप पार कर पाते हैं कभी? बताइएगा। तो सवालों के जवाब का हम इंतजार करते हैं और सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है बाबुल, स्वर लता मंगेशकर का, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहब।

हमारे श्रोता ने हमारे सवाल का जवाब लिखा है। लिखते हैं कि हमें अगर उड़ने का मौका मिला तो हम यूरोप जाना चाहेंगे। अच्छा क्यों, ये तो आपने नहीं बताया, ये भी बताइए क्यों जाना चाहेंगे। और एक श्रोता लिखते हैं कि अगर हमको कभी उड़ने का मौका मिले तो मैं दूर से ये देखना चाहूंगा कि मेरी इस सफलता से कितने लोग खुश है और कितने दुखी। अरे आप फिर भी वो जो मानव का स्वभाव है उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ, आप ये देखना पसंद करेंगे कि भाई मैं उड़ रहा हूँ तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दुखी है मेरे इस उड़ान से। नहीं नहीं, आपको सिर्फ उड़ान भरनी है और निकल जाना है दूर, बहुत दूर, तभी तो मजा है उस उड़ान का, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रभात में पक्षियों की मधुर कलरव की मीठी मधुर आवाज से गगन पर विहार करते सुनाई देती है तो मीठी नींद से जागाती है। मैं हाल सूरत पर हूँ, पर एक साल में 3 बार राजस्थान के हिंडौन सिटी के ग्रामीण इलाके में करीब 5 महीने रहा हूँ। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक गाँव में रहा। खेत खलिहानों में मोर मोरनिया पक्षी बहुत आते हैं। हम दाना पानी मीठी नमकीन चना बिछा कर रखते हैं तो कुछ देर बाद वो आते हैं। अपने आप मन हो तब दाना रोटी नमकीन खाते हैं और हम उन पक्षियों को खाते हुए मधुर आवाजों से करीबी से सुनते भी हैं और मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत भाग्यशाली हैं आप अगर आप ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा समय निकालते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि बिहार में सर्दियों के दौरान साइबेरिया, यूरोप, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर दराज के देशों से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं और इनके ठहरने के लिए बिहार में कई प्रमुख आर्द्रभूमि झीलें और पक्षी अभयारण्य हैं। और आपने लिखा है जमुई जिला झाझा, ये बिहार का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय स्थल है जिसे रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ साइबेरिया और अन्य देशों से बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं। उदयपुर झील जहाँ पश्चिमी चंपारण जिला है, राजगीर की पहाड़ियां, नालंदा जिला, राजगीर की पहाड़ियों और जंगल के यूरोप और मध्य एशिया से कई प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। और पटना पुराना सचिवालय के पास जो है जलाशय, पटना शहर के भीतर स्थित इस जलाशय में ठंड के मौसम में विदेशी और प्रवासी पक्षी मेहमान के तौर पर आते हैं। और भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर जिले में जो है, यहाँ मध्य एशिया से विभिन्न प्रकार की बतखें और सारस प्रवास के लिए आते हैं। नागी नकटी जमुई, भीम बांध और पटना, इन प्रवासी पक्षियों को देखना बड़ा ही सुंदर और मनोरम लगता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमें जब भी मौका मिलता है, जब एक साथ छुट्टियां होती हैं और एक्स्ट्रा छुट्टियां लेकर सपरिवार तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए हम जाना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा मन ही पंछी ही तो है जो सतत आसमान की ऊंचाई पर पहुंच जाना चाहता है। बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मन बिना टिकट बिना किसी साधन के हजारों मीलों का सफर करेंगे सुरीली सफर के साथ। बिल्कुल, आज हम टिकट लेकर नहीं उड़ रहे हैं बल्कि बिना टिकट के इस यात्रा पर निकल चुके हैं, है ना। आप भी महसूस कर रहे हैं ना इस हवाई यात्रा को।

यह आवाजें थी आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था 9-2-11। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। हमारे श्रोता अपनी टिप्पणी में बहुत सी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता का लिखना है कि खुले आसमान में उड़ने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले विविध भारती का मुंबई और दिल्ली का जो विविध भारती स्टूडियो देखने की उड़ान वो भरेंगे। क्या बात है। वही एक श्रोता ने अपनी बात रखी है लेकिन कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। आप लिखते हैं कि थाईलैंड राष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान में पंछियों के साथ 2 घंटे, बस इतना ही आपने लिखा है। शायद आप ये कहना चाहते हैं वहां पर आपने 2 घंटे बिताए, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि 1968 में 6th class में पढ़ते हुए जंगल से तोते का बच्चा लेकर आए, अभी उसके पंख भी नहीं आए थे। रुई के फाये से दूध पानी चोंच में डालकर उसको बड़ा किया और एक मराठी भाषी मित्र को दिया, उसने उसे मराठी सिखा दी। इकड़े आला कुठे जला, अच्छी मराठी बोलता था तोता। मैं बाहर चला गया, उनका भी तबादला हो गया और बाद में पता नहीं कि किसको दिया तोता। 20 साल बाद एक गली में उसकी आवाज पहचान ली और मराठी में बात की तो उसने भी जवाब देकर पहचान पूरी कर ली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। सच बताऊं मैंने भी ऐसे ही एक तोता मैना पाले और तोता उड़ गया एक दिन। अब मैना उदास हो गई, मैंने फिर उसको भी उड़ा दिया। मुझे लगा कि शायद इतने दिन मेरे साथ रहे हैं तो वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम इन पंछियों से प्यार करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा दिल लगा बैठते हैं और फिर उनके उड़ान भरने के बाद हमें दुख भी होता है और शायद कई दिन तक ये दुख रहा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो जहां सपनों की उड़ान देखनी है उस यथार्थ को प्रवासी पंछियों की उड़ान जैसा दिखाया गया है, जो बड़ा लंबा रास्ता तय करके यहां तक पहुंचते हैं और फिर अपने जन्म स्थान को मौसम अनुकूल होने के बाद लौट जाते हैं। बिल्कुल सही लिखा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि प्रवासी पंछियों का आवागमन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि ज्ञान या विवेक किताबों या विद्यालयों तक सीमित नहीं है। प्रवासी पक्षी प्रकृति के नियमों के साथ पूरी तरह तालमेल से रहते हैं। ये हवा के रुख, हवा में उपस्थित गंध, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ब्रह्मांड में सितारों की स्थिति को बिना किसी कंपास के समझ लेते हैं। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण यह है कि पंछी प्रकृति से अलग हटकर नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा बनकर जीते हैं। यहाँ ऋतु से आशय ब्रह्मांड की वो प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। पक्षियों का ये एक निश्चित समय पर उड़ान भरना और बिना रास्ता भटके नियत स्थान पर पहुंचकर प्रवास काल को पूर्ण कर वापस लौटना इसी ऋतु का प्रमाण है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की भारत, मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरता है। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते गाना भी नहीं याद आता है, लेकिन शायद मन कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो उड़ान भरिए ना, मन की उड़ान को भला किसने रोका है। आइए मन की उड़ान भरते हैं इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है अनाड़ी, आवाजें लता मंगेशकर और सखियों की, शब्दकार हसरत जयपुरी और धुन शंकर जयकिशन की।

लगता है हमारे श्रोताओं को पंछियों से बहुत प्यार है, इसलिए बहुत अच्छी बातें वो लिख रहे हैं। पढ़ने में हमें भी मजा आ रहा है और हमें लगता है जो सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गांव में हमारे घर के आंगन में कुछ मैना रहा करती थी जो पालतू नहीं थी पर वहीं पर रहती थी। हम आंगन में रोटी के बहुत बारीक टुकड़े डाल देते थे और वो उन पर झपटती थी, आपस में लड़ती थी, कई प्रकार की आवाजें निकालती थी और बहुत शरारती होती थी। अच्छा, आपने दृश्य सामने देखा, कितना मजा आया होगा, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमने एक तोता पाला था जो हमारी तरह ही बोलता था। एक दिन उसको अरे आपने मैगी खिला दी, उसको बहुत पसंद आ गई। जब तो भूखा होता मेरा नाम लेकर बोलता किट्टी मैगी किट्टी मैगी। पापा ने उसको बोला कोई मैगी नहीं खाएगा तो वो तपाक से बोला पापा गंदे हैं। ये सब सुनकर हम बहुत हंसे। बिल्कुल सही कहा, तोतों की कहानियां तो बड़ी गजब की है भाई। बहुत ही मजा आता है जब हम तोता पालते हैं या हमारे घर में आता है और अपनी अलग अंदाज से वो बात करता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपने कहा कि क्या हम जाना चाहेंगे। बिल्कुल हम उड़ान पर जाना चाहेंगे। कुछ संगी साथी बिछड़ गए हैं उन्हें ढूंढने के कि वे कहां पर है उनसे मिलने के लिए। अरे आपने बहुत गंभीर बात लिख दी है ना। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही प्यारी टिप्पणी की है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ कल क्या हो ये किसने जाना, ये भी तो आप जानते हैं। एक श्रोता का कहना है कि आज की इबारत मदमस्त आजाद पंछी को याद करने की है, बिल्कुल वैसी ही है। और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने कभी नहीं पाला पंछी, लेकिन क्योंकि पंछी को पिंजरे में रखना ठीक नहीं है, वे खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं पंछी पाले तो नहीं है पर दाना पानी रखने से बहुत सारी चिड़िया बुलबुल और गिलहरियों का आना जाना लगा रहता है। गिलहरी तो बिल्कुल पालतू जैसी ही है, मूंगफली न मिले तो चिक चिक करती है, बिल्कुल बहुत ही प्यारी लगती है गिलहरी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक महीने के बाद विविध भारती से जुड़ा हूं। अरे क्या हुआ, एक महीने आप नहीं जुड़ पाए, चलिए अब लगातार जुड़े रहिएगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत व्यस्त हूं, किसी खास काम की वजह से नहीं जुड़ पाऊंगा आज के इस कार्यक्रम से। चलिए हो सकता है आप किसी महत्वपूर्ण काम की वजह से आज का कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप फ्री हो तो विविध भारती से जुड़े रहिएगा। एक श्रोता ने कहा है कि आपने पूछा कि क्या कोई पंछी पाला है, तो मेरा ये मानना है कि एक प्रकार से किसी की गुलामी का प्रतीक होता है। परिंदों की उड़ान उन पर ही छोड़ देनी चाहिए, ना कि पिंजरे में कैद करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर। किसी

को कैद करना, चाहे पंछी हो चाहे इंसान हो, सोचिए क्या दर्द होता है उनका, है ना। आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा गीत, चितलकर यानी सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में है, राजेंद्र किशन के बोल हैं, आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर की ही हैं, फिल्म का नाम है बारिश। अच्छा ये बताइएगा, किसी पंछी से आपको कोई खास लगाव रहा है कभी?

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की इबादत से ये बात सामने आई कि आज खुले आसमान तले पंछियों की तरह उड़ान भरने वाले मानव के मन की उड़ान के आकलन की भी बात होगी। इसके अतिरिक्त उड़ान की दिशा और दशा की तुलना भी पंछियों की उड़ान से भली भांति तरीके से की जाएगी। अब देखना यह है कि आज हम लोग किस तरह से समूचे एक घंटे के लिए अपनी उड़ान के साथ उड़ते हुए जीवन की उड़ान में सफल होते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, मन की उड़ान तो हम कभी भी भर सकते हैं इस एक घंटे में, तो क्या हम पूरे दिन शायद कहीं ना कहीं हमारा मन उड़ता ही है। लेकिन हाँ, ये एक घंटा जो सुरीला सफर आज हमने मन की उड़ान को दिया है, पंछियों की उड़ान को दिया है, उसमें हम बहुत दूर तक सफर कर सकते हैं। सफर कर सकते हैं आप, है ना? बताइएगा कर रहे हैं कि नहीं। मैं एक शोधा लिखते हैं कि प्रवासी पक्षी मीलों सफर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं मौसम के अनुसार और फिर वापस लौट आते हैं। हम भी कल्पना की दुनिया में उड़ान भरने लगते हैं, सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने जीवन को नई दिशा देते हैं और गुनगुनाने लगते हैं। उड़ चला

पंछी बन के मन मेरा सागर के पार। बहुत अच्छा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मन की उड़ान का मतलब हुआ कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, असीमित सोचने की क्षमता। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव, जिम्मेदारियों और बंधनों से थक जाते हैं, तब हमारा मन एक नई ऊर्जा की तलाश में उड़ान भरता है। ये उड़ान कभी पुरानी खूबसूरत यादों की गलियों में होती है, तो कभी आने वाले कल के हसीन सपनों में। और एक लेखक की कलम, एक चित्रकार के रंग और एक वैज्ञानिक की खोज, सब मन की इसी उड़ान का परिणाम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब आपने लिखा है। आपकी जो अंतिम लाइन है उसने हमारा मन जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान भी पंछियों की तरह जीवन भर सफर ही करता रहता है, क्योंकि इंसान को भी सही दिशा का ज्ञान नहीं होता। जीवन के सफर में हमारे द्वारा किया गया कर्मों के अनुसार एक अदृश्य शक्ति पक्षियों की तरह हमसे भी पहुंचा देती है। अच्छा, आपने कुछ लिखा है, पंछी बनी उड़ती फिरूं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम अपने कर्मों के अनुसार उड़ान भरते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंछी तो मैंने पहले एक तोता पाला था जो एक बार पिंजरा खुला उड़ गया, और उसके बाद मेरे पास अभी एक कछुआ है जिसकी मैं अच्छे तरीके से देखभाल करता हूँ। वैसे मुझे पक्षी पसंद है और मैं रोज उन्हें दाना भी डालता हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि सुबह सुबह उड़ते हैं तो मोर का टहू का सुनाई देता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। आसमान में पंछियों का झुंड लाइन में उड़ता देखकर मन को बड़ा आनंद आता है। आसमान में छोटी छोटी चिड़िया उड़ती हैं, चहकती हैं, दाना खाती हैं, तो देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि जी नहीं, मैंने आज कोई पंछी को पिंजरे में, आज तक किसी पंछी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखा है। आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाले पक्षियों को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, पाप लगता है। बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर में मैंने गार्डन मेंटेन किया हुआ है, जहां बहुत से फ्लावर लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं, और सुबह सुबह जो है रंग बिरंगी तितलियां और चिड़ियाएं आती हैं, उनकी आवाज सुनना बहुत पसंद होता है, दिल खुश हो जाता है उनको देखकर और उनकी आवाज सुनकर। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बेटी चिड़ियों को पालने का बहुत शौक है, मेरी बेटी को, अच्छा, चिड़िया पालने का बहुत शौक है। कई बार लेकर एक उड़ गई और फिर एक मर भी गई, फिर बहुत दुख हुआ, इसलिए अब हम नहीं लाने देती हूँ। अच्छा, आपने थोड़ा साफ नहीं लिखा है, इसलिए अब मैं होना चाहिए ना, नहीं लाने देती हूँ। पंछी आसमान में उड़ते हुए अच्छे दिखते हैं, न कि पिंजरे में। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। जब कोई पंछी हम पालते हैं या अपने आसपास देखते हैं और वो उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो दृश्य बहुत बहुत बहुत खतरनाक होता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ऐसी कल्पना करके भी, और आज हमारी कल्पना बहुत सुखद है। ये विषय बड़ा अजीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरे घर में एक तोता था, नानी ने पाला था। ससुराल में तो पूरा कबूतरों का झुंडी पाला हुआ था। अच्छा, पर पंछियों को पालना नहीं चाहिए। अभी मेरे फ्लैट के ऊपर एक परिवार तोता रखे हुए था। सुबह सुबह जब अपनी मधुर मीठी आवाज में मम्मी मम्मी बोलता है, तो ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा बुला रहा है और मन खुश हो जाता है। कभी कभी वो धीरे से डांटती है तो चुप हो जाता है, पूछता है क्या बात है, तो इस बात को रिपीट भी करता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पंछी हमारा मन बहलाते हैं, लेकिन जब वो कैद में होते हैं तो उनका ही मन जानता है कि वो क्या चाहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम हरे कांच की चूड़ियां। शब्दकार हैं शैलेंद्र और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। बहुत ही खूबसूरत गीत।

आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या आपने अपनी जो सीमा रेखाएं बना रखी हैं मन में, उन सीमाओं को कभी आपने तोड़ा है?

तो हम हमारे दो सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि अगर आपको भी किसी पंछी की तरह उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? हमारे कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा जवाब नहीं मिले हैं। और हमारा दूसरा सवाल था कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं, लेकिन क्या इंसान अपने मन में खींची हुई सीमाओं को कभी पार कर पाता है? सोचिए, एक गंभीर सवाल है और इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, ज्यादा नहीं तो। हमारे श्रोता का कहना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर आपकी हर तरह से मुकम्मल परिपूर्ण इबारत पढ़कर मन उड़ान भरने की चाहत रखेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चंचल मन भी पंछी की तरह होता है, अभी अभी धरती पर होता है और देखते ही देखते आसमान में उड़ जाता है। मन जब उड़ान भरता है तब जमीन की बंदिशों को पीछे छोड़कर कल्पना आजादी और नए क्षितिज की तलाश में खो जाता है। अंबर को छूने, बीता कल भुलाने और बादलों के संग आंख मिचोली खेलने की चाहत में मन पूरी तरह बेफिक्र और आनंदित होता है। ही आनंद आज आपकी बातें और गीतों से मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी इबारत लिखी है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक परिपोषण, वंश संरक्षण, उत्तरदायित्व निर्वहन, प्राकृतिक सामंजस्य संग समुचित संतुलन ही प्रवास परिभ्रमण को प्रेरित करता है। चाहे प्राणी जगत हो या पशु पंछी जगत हो, अपनी नस्ल पहचान वंश को बचाए रखना ही प्राणी जगत का मूल उद्देश्य है। उन्हीं की उत्तरदायित्व में स्थानांतर होता है। इस प्रक्रिया में भी अपनी मूल कला, स्थान और परिवेश को दिल में जीवंत जागृत रखता है और कालांतर में उन्हें पुनः गृह वापसी को प्रेरित करता है। नई ऊर्जा उत्सर्जित करती विषय पर कार्यक्रम ही महोदया की पहचान है। अरे वाह, इस सफर का साक्षी बन हम सफर बन गर्वित होंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी शुद्ध हिंदी में बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते

की बहुत ही सुंदर है आज की इबारत और मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सुंदर है, इसका जो सार मैंने निकाला कि वो ये, सपने देखो और उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचो, लेकिन अपनी जमीन उसकी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि जिंदगी में उड़ान सिर्फ कामयाबी पाने का नाम नहीं, एक श्रोता लिखते हैं, बल्कि अपने टूटे हुए हौसलों को समेट कर दोबारा मुस्कुराने का नाम है। जब रास्ते अकेले हों, आंखें आंसुओं से भरी हों और दिल थक चुका हो, तब भी एक गहरी सांस लेकर खुद पर भरोसा करना ही सच्ची उड़ान है। बशीर बद्र का एक शेर है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था सेहरा। शब्दकार हसरत जयपुरी थे और तर्ज राम लाल की थी। हमारी श्रोता लिखते हैं कि पिछली सर्दियों में अपनी छत पर कई वर्षों से दाना पानी बारहमास रखता हूँ। पिछली सर्दियों में एक फाख्ता के जोड़े ने अंडे दिए, पर उनका बनाया हुआ घोंसला बराबर स्थान नहीं बना था, जिससे उनके घोंसले के तिनके गिर जाया करते थे। फिर मैंने वो स्थान बराबर किया और उनका घोंसला ठीक किया, उस पर एक गर्म कपड़ा बिछाया और उस पर अंडे रख दिए। तब से अभी तक फाख्ते वहीं पर अंडे देते हैं और अभी भी दो अंडे रखे हुए हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काम किया, बहुत बड़ा काम किया आपने। आपने उनके घर को बनाया जो बार बार टूट जाता था। बहुत बड़ा काम है ये। और अब हमारी उड़ान कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक पहुंच चुकी है, जहां हम चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म भाभी का ये गीत।

तो दोस्तों, आज इस उड़ान में आप हमारे साथ थे, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रवासी पंछियों की जो लंबी यात्रा है, उनका संरक्षण और उनकी जो प्राकृतिक आवास है, उन्हें बचाने का प्रयास करना और दुनिया भर में जागरूकता फैलाना, ये हम सभी का कर्तव्य है। और हाँ, अपने मन की रक्षा भी हमें करनी है, यानी मन की उड़ान को कभी कम नहीं होने देना है, इस उम्मीद के साथ कि हम इस उड़ान को जारी रखेंगे। अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी डाक दिवस पर आधारित है। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी कारण विश्व डाक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 1 जुलाई सन 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना। पहली बार जब वर्ष 1766 में भारत में डाक व्यवस्था शुरू की गई, आज ये विभाग गांव शहरों में बड़ी संख्या में सेवाएं दे रहा है। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1854 को हुई। भारतीय डाक विभाग 9

0: क्या किया बाबू?
1: क्या रे?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी का

चिट्ठी, खत और पत्र केवल कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं होते, वे दो दिलों के बीच बने उस पुल की तरह होते हैं जिसे दूरी भी तोड़ नहीं पाती। वे अपने साथ किसी अपने की आवाज, उसकी याद और उसके मन की धड़कन लेकर आती। चिट्ठी लिखना और पत्र पाना, एक इंतजार के बीच कितनी व्याकुलता होती थी। डाकिया के आने की राह देखना, अपने नाम की चिट्ठी देखकर मुस्कुराना, सब में एक मीठी सी खुशी छुपी होती थी। कितनी चिट्ठियों को संभाल कर रखा जाता था। आज जिनके पास ये चिट्ठियां हैं, वे उनमें माता पिता, दोस्त, पति पत्नी, भाई बहन, अन्य रिश्तेदारों का प्यार, चिंता, प्रतीक्षा, प्रेम की भावनाओं से आज भी जुड़ जाते होंगे। सब कुछ उन कागजों में सांस लेने लग जाता है। वो दौर आंखों के आगे तैर जाता है।

आज तकनीकी आधुनिकता के दौर में सब चिट्ठियां इंटरनेट और मोबाइल्स में आ गया है, लेकिन पत्रों को लिखने, भेजने और जवाब पाने का इंतजार भी दिल में खुशी ले आता है। ये माना कि मोबाइल में फटाफट लिखा और एक क्लिक पर सामने वाले के पास पहुंच गया, लेकिन वो चिट्ठी पत्रों की जगह तो नहीं ले सकता। आज डिजिटल दुनिया ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया है, लेकिन कभी कभी लगता है हमें फिर से उस चिट्ठी वाले समय की जरूरत है, जहां किसी के दो शब्द पाने के लिए दिल घंटों नहीं दिनों तक इंतजार करता था। चिट्ठियां चली गईं, डाकिया चले गए, पर किसी अपने के संदेश का इंतजार आज भी वही है, क्योंकि माध्यम बदले हैं, भावनाएं नहीं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
1: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
0: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
2: हमने कल

0: शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
1: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे CJP समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने CJP की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
3: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
4: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और

0: वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
1: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
2: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
1: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
0: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
5: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
4: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और 4th स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी

0: से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्योहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। फिल्म पाकीज़ा, शुरुआत कर रहे हैं इसी गाने से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे आखिरी दांव फिल्म का ये गाना। लिखा था इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आनंद बख्शी का लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म थी अमर प्रेम। संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोरोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।

0: हैं हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: सुखी
1: बम्बई का बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देवबर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत महबूब की मेहंदी फिल्म के गाने से, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फरमाइश भेजी आप सभी श्रोताओं ने संतोष मिरजकर पुणे महाराष्ट्र से और अमित खातरकर, निहारिका शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारस मणिवाग, पंजाब राव और संदीप पाटिल ने फरमाइश भेजी थी सारथी जिला बैतूल से। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी सतीश पिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाखी, लखविंदर सिंह संधु, महावीर संधु और इनका पूरा परिवार मालोट कैंप पंजाब से, माधव नामदेव, सीमा नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से, देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा, राधिका प्रभा देवी और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई थी बालोद छत्तीसगढ़ से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म याराना, किशोर कुमार की आवाज़ है।

याराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता खुर्सीपार भिलाई छत्तीसगढ़ से सतीश चौहान, शिवम और निर्मला चौहान, और पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल, इन्होंने फरमाइश भेजी है चकला बाजार सामना से। और ये फरमाइश आई है हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान उत्तम और इनके परिवार के अन्य लोग, जाखूद राजस्थान से पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभुदयाल खटक और इनके मित्रगण, बीर शहर से रणजीत कुमार नामदेव, शोरात रीतेश, आकाश रश्मि रंजना और गबरू। और फरमाइश आई है, इन्होंने नाम भेजे हैं जयराम पाटिल, मंजू, बालीराम पाटिल, शरीफा, नेहा, संध्या, गोलू, तनिष्का, रावी, देवांश और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई है इंदौर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

लता मंगेशकर की आवाज में ये था आंखें फिल्म का गाना, रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता कापसी रोड अकोला से संतोष राव बाकड़े, ज्योति ताई, पवन कुमार और इनका पूरा परिवार, बिलासपुर से वाघमारे परिवार, और फरमाइश आई थी गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविन्द्र रौनक सेन की ओर से, हिवरखेड़ से वासुदेव वाघ, लक्ष्मीबाई वाघ, संजय, ज्योति, आनंदी और इनके परिजन, बेरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक, प्राची और तनु।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना, संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म थी अनामिका। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और इनका पूरा परिवार, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बरता, नीलम बरता, नीतन नितिन, पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका और हार्दिक। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की ओर से शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि, सृष्टि और इनका पूरा परिवार, शिंदे चौक सोलापुर महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से फरमाइश आई गन्नूलाल रजक, KRS, अश्विनी कुमार और गणेश राव की ओर से। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश।

सावन को आने दो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यसुदास की आवाज में, संगीतकार राजकमल थे और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गुरुमीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर और इनका पूरा परिवार ग्राम तंगौरी से फरमाइश आई थी। नारायण प्रसाद वर्मा, मयंक जीत वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, पुष्पांजलि वर्मा की ओर से फरमाइश आई थी नवगढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश गद्रे और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई बरगी नगर जबलपुर से। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी अहिल्या नगर से के जैन और रंजीता की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: बेमिसाल फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देवबर्मन की तर्ज। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित वर्मा और इनका पूरा परिवार, और साथ में ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा का भी नाम है। गोवर्धन जिला वाशिम से रविन्द्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत और इनके अन्य साथी। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन, रानी और इनके परिजन। और जिला नांदेड़ हिम्मत नगर से ये फरमाइश आई है, वाशीनाथ ये उलकर, बबीता, अनिष्का, तन्मय और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश आई है। और गुलबदन, गुरुदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनके साथियों की ओर से फरमाइश आई है, जिला तरन तारण पंजाब से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। चलने से पहले आपको बताते हैं, इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर तेजश्री कामले। अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग, श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक प्लास्टिक की घास। आज आप सुनेंगे इस नाटक का पहला भाग। निर्देशक हैं दीना नाथ।

0: नई दिल्ली 17 जून। मौसम बिल्कुल नॉर्मल यानी बेहद गर्म और खुश्क। सूरज अपने सही वक्त पर यानी 5:23 पर तुलू हुआ और इस वक्त यानी सुबह के 8:59 पर पूरे आबोताब से रोशन है। लोधी रोड के सरकारी क्वार्टर F2 15/614 के बाहर श्री HP शर्मा के नाम की छोटी सी नेम प्लेट को मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा साफ कर रही हैं। बाहर कमरे में 1930 के मॉडल का क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक टिक टिक टिक टिक चल रहा है और जैसे ही क्लॉक की बड़ी सुई 12 के डिजिट पर पहुंचती है क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक 9 बजने का ऐलान करता है और इसके साथ ही शर्मा जी अंगड़ाई लेकर उठ खड़े होते हैं। ना, शर्मा जी उन लोगों में से नहीं जो 9 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया करते हैं। शर्मा जी तमाम जिंदगी बाकायदा सुबह 5:30 उठते रहे। स्नान आदि से फारिग होकर बाकायदा सुबह की सैर के लिए निकलते हैं। पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करते हैं और फिर ठीक 8 बजे सिर्फ घंटा भर के लिए छोटी सी झपकी लेते हैं ताकि ताजा दम होकर दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है,
1: दफ्तर में ओंघने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है।
0: अंगड़ाई लेकर उठ चुकने के बाद रोजाना के मामूल के मुताबिक तौलिया लेकर शर्मा जी बाथरूम में घुसते हैं और मिसेस शर्मा रसोई में। शर्मा जी बाथरूम से बाहर निकलकर साथ वाले बेडरूम में झांकते हैं। बड़ा लड़का किशन या कृष्ण कुमार बुशर्ट और खाकी पैंट पहने अखबार पढ़ रहा है। उनकी लड़की उषा शर्मा मामूली सी सूती साड़ी पहने किसी गाइड में से कॉपी पर नोट्स लिख रही है। उससे छोटा बेटा विनय कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबें इकट्ठी कर रहा है। यानी शर्मा जी को शिकायत का कोई मौका नहीं। सब

0: कुछ ठीक है, वो बाहर के कमरे की तरफ पढ़ते हैं। एन उसी वक्त मिसेस शर्मा खाने का डिब्बा शर्मा जी को थमा देती हैं, जिसे शर्मा जी अपने थैले में डाल थैला साइकिल के हैंडल पर टांग देते हैं। साइकिल की गद्दी के नीचे से छोटा सा कपड़ा निकाल कर गद्दी और हैंडल साफ करते हैं। पहियों की हवा और ब्रेक चेक करने के बाद जैसे ही साइकिल की घंटी पर उनका हाथ पहुंचता है, क्लॉक 9:15 बजने का ऐलान करता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, पिछले 25 वर्षों से वो सदा ऐसा ही करते आ रहे हैं। उनका कहना है,
1: चलने से पहले साइकिल के ब्रेक्स और घंटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए, सेफ्टी सेज।
0: घर से दफ्तर का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है, इसलिए वो दफ्तर हमेशा 9:35 पर पहुंचते हैं, यानी दफ्तर शुरू होने के 5 मिनट बाद। वक्त से पहले या एन वक्त पर दफ्तर पहुंचने वालों के बारे में शर्मा जी का कहना है,
1: सिर्फ 3 किस्म के लोग दफ्तर में वक्त से पहले पहुंचते हैं। एक वो जो अपने अफसरों के खुशामदी है, ताकि अफसरों के आने पर उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग सर कह सके। दूसरे वो जिनकी घरेलू जिंदगी इतनी नाखुशगवार है कि नाश्ता दफ्तर में आकर करते हैं। तीसरे वो जो दूसरों की मेजों से स्टेशनरी चुराते हैं और दूसरी हेरा फेरियां करते हैं।
0: चुनाचे आज भी अपने उसूल और मामूल के मुताबिक श्री H.P. शर्मा दफ्तर के लिए रवाना हुए। उनके रवाना होते ही रोजाना के मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में आकर लेट गईं। मिस उषा शर्मा ने झटपट साड़ी उतारी और लो कट स्लीव लेस फड़कदार कुर्ता पजामा पहना। कृष्ण कुमार ने अखबार फेंका, जेब में सिगरेट माचिस डाली और घर के बाहर। विनय ने अलमारी से नीली जीन्स और आई लव यू वाली टॉप निकाल सीटी बजाते हुए बाल संवारने शुरू कर दिए। 17 जून का दिन सबके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ बिल्कुल वैसे हो रहा था जैसा कि सदा से होता चला आया है। इंसान गुजरते वक्त के तजुर्बों, अपनी उमंगों और अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर आने वाले कल के रंगीन ख्वाब बुनता है। लेकिन होनी एक अजीब ही चीज है। होनी आने वाले अगले पल की जरा भी आहट नहीं देती, और जब कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो कहते हैं होनी अटल है। कौन जानता था कि 17 जून को होनी क्या रंग दिखाने वाली है। मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में पूरी रफ्तार से चल रहे पंखे के नीचे आराम कर रही थीं कि अचानक उन्हें बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी।
2: अरे उषा, विनय, अरे किशन, अरे देखो ना बाहर कौन है, अरे देखो ना बाहर जाके के कौन है, तरकारी भाजी वाला हो तो कह देना कि नहीं चाहिए। अरे हे, लगता है चले गए। अरे रुक भैया रुक, मैं अभी आती हूँ, ऐसी भी क्या उतारी। आप कैसे घर चले आए इस वक्त, तब तो ठीक है ना आप? अरे आप ठीक ठाक है ना? क्या हो गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हे भगवान, आप बिल्कुल, क्या कुछ हुआ है? बैठे बैठे मैं पानी लाती हूँ। अरे नहीं, इतनी गर्मी है, प्यास लगी होगी, जरूर आपकी तबीयत खराब है। पता ये ना, क्या बुखार है, कहीं लू तो नहीं लग गई?
3: नहीं नहीं।
2: तो फिर क्या हुआ है बताइए ना, बताते क्यों नहीं? आपको मेरे सिर की कसम, मेरा तो दिल थक थक कर रहा है। ओ, आज सुबह सुबह मेरी आंख भी फड़क रही थी, बताइए ना क्या हुआ है?
3: क्या बताऊं?
2: अच्छा अच्छा ये तो बता दीजिए कि तबीयत तो खराब नहीं है ना?
3: नहीं।
2: तो फिर और क्या बात है, नौकरी तो आपकी पक्की है, उसका तो कोई भय नहीं, फिर क्या हुआ है?
3: बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, बहुत बड़ा अन्याय, महान अनर्थ।
2: क्या?
3: ट्रांसफर।
2: ट्रांसफर आपकी?
3: हाँ, आज सुबह ही 10:29 पर यह मनहूस खबर मुझे मिली।
2: हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया,
3: क्या बताऊं लाजवंती। खबर मिलते ही मेरे पांव तले से वो जमीन खिसक गई जहाँ पिछले 25 वर्षों से अपने जूते खिस रहा हूँ। अब क्या होगा लाजवंती?
2: किस्मत फूट गई हमारी, किस्मत फूट गई। हाय हाय, कैसा दुर्भाग्य है हमारा। हाय हाय राम, हाय, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ?
3: आगरा।

0: हाय क्या हो गया लाजवंती बहन?
1: पहले मैंने भाई साहब को घर लौटते देखा, फिर तुम्हारे रोने की आवाज आई तो मैंने सुशीला बहन को भी बुला लिया।
0: हाय कौन था बहन?
1: कोई आपका सगा था या भाई साहब का?
0: दिल्ली में था कि बाहर?
2: नहीं बहन, ये बात नहीं। आए जीना मरना तो भगवान के हाथ है। आए हमारे साथ पूरी अनर्थ हो गया।
0: हौसला रखो बहन, हौसला रखो।
1: अरे बच्चे तो ठीक ठाक हैं।
2: आए भगवान उन्हें लंबी आयु दे, सब ठीक है।
0: बहन फिर हुआ क्या?
2: अरे किस्मत फूट गई हमारी तो किस्मत।
1: भाई साहब की नौकरी?
2: अरे पक्की नौकरी है उनकी, सरकारी पक्की नौकरी। पर क्या बताऊं? आए क्या बताऊं, भगवान ने कैसा अनर्थ कर दिया।
1: अनर्थ?
2: अनर्थ। आए इनकी ट्रांसफर हो गई।
0: हाय राम,
1: सबर करो बहन, धीरज रखो।
3: लाजवंती हौसला रखो।
2: तुझे मालूम था कि एक दिन ये आस पड़ोस ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
0: बस धीरज रखो बहन, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा।
2: उपाय निकलेगा? अरे क्या उपाय निकलेगा, हमारा तो घर बार ही उजड़ गया।
0: बस बस बहन उठो, देखो पानी वानी पियो, भाई साहब कितनी गर्मी में बाहर से आए हैं, मुंह हाथ धो और इन्हें जलपान करा। मन को शांत रखो बहन और इसका कोई उपाय सोचो।
2: ठीक तो कहती हो बहन।
1: तुम कोई फिक्र ना करो मिसेस शर्मा, थोड़ी देर आराम कर लो, वो जलपान मैं भिजवाए देती
2: हूँ। नहीं नहीं बहन, नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट करो।
1: आए कष्ट कैसा, दुख सुख में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। आओ सुशीला बहन।
4: हौसला रखो बहन, भगवान सब ठीक करेगा।
1: अभी मुन्नी के हाथ पानी वानी भिजवाती हूँ।
3: लाजवंती क्या सोच रही हो? लाजवंती
2: आपने उसका क्या बिगाड़ा था जिसने आपको यूं उजाड़ा है? कौन है वो जरा जरा उनसे पूछिए तो।
3: ना जाने कौन है।
2: किस कंबख्त ने दिया है ये ऑर्डर?
3: अरे ये ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं, न मालूम किस अफसर के दस्तखत हैं। फिर जिसके दस्तखत होते हैं उसको भी ऑर्डर ऊपर से आते हैं। दरअसल ऑर्डर करने वाला कौन है क्या मालूम।
2: जब आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो उस अनजाने कलमुहे ने किस जन्म का बैर निकाला है हमारे साथ?
3: किसने क्या बैर निकाला है लाजवंती, ये तो अपने ही पिछले कर्मों का फल है।
5: अम्मा खाना लगा दो तो जरा जल्दी से, मुझे फौरन वापस जाना है।
6: पिताजी आप?
3: कृष्ण तुम
6: इस वक्त यहाँ?
3: इस वक्त यहाँ?
6: आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी? अम्मा आप आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? बात क्या है?
2: क्या बताऊं बेटे,
6: हुआ क्या है कुछ बताइए तो।
3: आज सुबह 10:29 पर मुझे ये मनहूस खबर मिली है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है।
6: ओ, तो उन्होंने वार कर ही डाला।
3: किसने, किस पर?
6: जालिम हुक्मरानों ने, अपने गुलामों पर।
3: क्या बक रहे हो तुम, कैसे जालिम हुक्मरान, कहाँ के गुलाम? अरे हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक
6: हैं। ये सब धोखा है, आप अपने आप को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक समझते हैं?
3: बेशक।
6: तो फिर आपका ट्रांसफर करने से पहले आपसे पूछा क्यों नहीं गया? इकबाल ने तो अपने शेर में भी कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी मर्जी क्या है।
3: रजा रजा।
6: अब हाँ हाँ वही वही मतलब है, जब खुदा को भी बंदे की मर्जी जाने बिना ट्रांसफर करने का हक नहीं है तो फिर उन्होंने आपकी ट्रांसफर कैसे कर दी, क्यों कर दी? क्या इसलिए कि आप कमजोर हैं, हालात के गुलाम हैं? आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 उनकी खिदमत गुजारी में कुर्बान कर डाले और बदले में मौका मिलते ही उन्होंने आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर डाला। क्या आप अब भी इनकलाब का नारा नहीं लगाएंगे, इस जबरदस्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मेरे साथ मिलकर बोलिए इनकलाब।

0: इतने सालों से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी आपको जरा भी खबर नहीं रहती?
1: मैडम,
0: आपकी ट्रांसफर होने वाली है, इसकी खबर तक न मिली आपको?
1: खबर आज ही आई है।
0: आज ऑर्डर आए हैं, आप जरा भी होशियारी से काम लेते तो इसकी खबर आपको पहले हो सकती थी।
1: तुम्हारा मतलब क्या है?
0: खबर पहले मिल जाती तो ऑर्डर रुक सकते थे।
1: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऊपर से आते हैं, ये कोई मेरे हाथ की बात है?
0: पिताजी, आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपकी ट्रांसफर से हमारी जिंदगी, हमारे एजुकेशन, हमारे करियर का क्या बनेगा।
1: तो ट्रांसफर क्या मैं खुद करवा रहा हूँ?
0: लेकिन ट्रांसफर ना हो इसकी कोशिश तो कर सकते थे आप, और ट्रांसफर हुई भी थी तो किसी अच्छी जगह हो सकती थी, बंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, कहीं करवा लेते तो भी इज्जत रह जाती। अब क्लास में किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे डैडी की ट्रांसफर आगे हुई है? सब कहेंगे आगे के पागलखाने में जा रहे हैं।
1: तू क्या बक रहा है बेवकूफ कहीं का?
0: डोंट माइंड पिताजी, एक बात मैं साफ बताई देता हूं, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता।
1: तुम दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते?
0: कैसे जा सकता हूं, यहां मेरा करियर है, एक अपना सोशल सर्कल है।
1: तुम्हारा सोशल सर्कल?
0: मैं आपकी तरह जिंदगी भर दफ्तर में क्लर्क ही नहीं कर सकता। अगर आप ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते तो आप लोग जाइए, मैं यहां हॉस्टल में रह लूंगा।
1: क्या तू यहां हॉस्टल में रह लेगा? और खर्चा कौन देगा?
0: ऑफ कोर्स आपको देना होगा।
1: मैं इस तनख्वाह में तुम्हें हॉस्टल का खर्चा दे सकता हूं?
0: तो ना सही, मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा।
1: और मेरे इस घर बार के साथ, इसके साथ नहीं रहोगे?
0: मैं घर के साथ चिपका रहूं या अपना फ्यूचर देखूं? आज आप ये ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते, आगे चले जाएंगे, फिर वहां से निकाल वो आपको वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे, वहां से गाजियाबाद कर देंगे, वहां से धनबाद, और धनबाद से फिरोजाबाद। माल गाड़ी की तरह आपको यहां से वहां, वहां से यहां शंटिंग करते फिरेंगे। हम साथ साथ अपनी जिंदगी कहां बर्बाद करते रहेंगे पिताजी?
1: मेरे साथ, अपने परिवार के साथ रहने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूं? मेरी औलाद मुझे इस तरह, मैं सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर हो जा मेरी नजरों से।
2: विनय, अपने पिताजी के सामने जबान खोलते तुझे शर्म आनी चाहिए।
0: नहीं अम्मा, मैंने ये सब कुछ मैं क्या बताऊं? अम्मा मैं क्या बताऊं, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा।
1: निकल जा मेरे घर से, चला जा यहां से, जहां तुझे रहना रह ले। बाप का घर छोड़कर दिल्ली में जहां रह सकता है रह ले।
2: ओहो, आप क्यों बच्चों पर क्रोध करते हैं? जिसे बाप का घर कह रहे हो वो अब कितने दिन और हमारा है? आए राम, किसे पता था कि एक दिन यूं बैठे बिठा है सारा घर बार उजड़ जाएगा।
0: आई एम सॉरी पिताजी, ट्रांसफर की बात सुनकर मुझे ऐसा शॉक लगा कि मैं न जाने क्या क्या कह गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
1: तुम लोग क्या समझते हो बेटे, मैं क्या कम परेशान हूं? पिछले 25 वर्षों में पहली बार दफ्तर से भाग कर आया हूं और सुबह से इस खटिया पर पड़ा हूं।
0: लेकिन पिताजी, खटिया पर पड़े रहने से क्या होगा, कुछ कीजिए ना।
1: हाँ, कर रहा हूं। कल सुबह एक मीटिंग होने वाली है, बस उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा।
3: अगले रोज यानी 18 जून सुबह 11 बजे मिस्टर शर्मा के ऑफिस में।
4: भाई साहब, आजी भाई साहब, जी चालान देखकर जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए, कैश जमा करवाना है।
5: लंच के बाद आना।
4: लंच के बाद आपका कैश काउंटर बंद हो जाता है
5: तो
4: जनाब?
5: फिर सुबह जरा जल्दी आना था।
4: लेकिन जनाब वक्त तो अभी भी है।
5: कहाँ है वक्त, 11 बज रहे हैं, स्टाफ की मीटिंग है।
6: अरे ललित बाबू, 11 बज गए, चलो भाई बड्डे बाबू जी की मीटिंग का वक्त हो गया है।
5: चलो।
4: अरे भाई साहब, बस एक मिनट की बात थी, एक नजर देख जाते, बड़ी मेहरबानी होती आपकी। बात यह है, आज पैसा जमा कराना बहुत जरूरी था।
5: कमाल है साहब, यहाँ बड़े बाबू की जिंदगी मौत का सवाल बना हुआ है और आपको पैसा जमा करवाने की पड़ी है। आपके सीने में इंसान का दिल है या पत्थर?
6: ओए चलो ना ललित बाबू, ये पब्लिक तो हमको अपना घरेलू नौकर समझती
5: है। चलो चलो चलो चलो,
7: आओ आओ ललित बाबू, आओ इधर आओ, आओ भाई आओ।
6: नमस्कार बड़े बाबू जी।
5: अरे बड़े बाबू, आप तो बस एक ही दिन में इतने कमजोर लग रहे हैं जैसे महीने भर की बीमारी से उठे हैं।
6: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
7: अरे भैया, ट्रांसफर की चोट लकवे से कम नहीं होती, अचानक आती है और इंसान को अधमुआ करके चली जाती है।
6: फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि बड़े बाबू की बर्दाश्त का जवाब नहीं।
5: सो तो है, पर अब सोचना ये है कि इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए।
7: कुछ ना कुछ एक्शन तो लिए ही जाना चाहिए। रामलाल, जरा कैंटीन से जरा चाय तो लिया।
8: कितने चाय?
7: यही 4-5, और 4-5 प्लेट बढ़ेगी।
8: और पैसे?
6: ये ले, मैं देता हूँ।
5: अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बड़े बाबू, ये नहीं हो सकता बड़े बाबू,
6: ऐसा नहीं हो सकता। एक ही बात है भैया, एक ही बात है, एक दिन में क्या मैं इतना पराया हो गया? चलो चलो, जैसे बड़े बाबू जी कहते हैं कर लो।
5: ले ले, ये ले 10 का नोट और लपक के ले आ जा।
8: मेरी राय में तो बड़े बाबू सबसे पहले आपको करमाकर साहब से मिल लेना चाहिए। क्यों भाइयों?
9: हाँ बिल्कुल।

0: मगर वो क्या कर सकता है?
1: बड़े बाबू जी, आप तो जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसीजर में कच्चा नहीं होना चाहिए। देखो ना, वो है आपका इमीडिएट अफसर, उसको बाईपास करके सीधा ऊपर जाना अगेंस्ट द प्रोसीजर हो जाएगा। क्यों भाई?
2: सही
1: है,
0: अच्छा तो फिर पहले मैं करमारकर साहब से ही मिल लेता हूँ। और क्या,
2: और फिर आपने तो कितना कुछ किया है करमारकर साहब के लिए।
0: हाँ सो तो है,
3: बस एक नोट लिख दे वो तो रुक गई ट्रांसफर। क्यों भाई?
4: बिल्कुल
2: सही बात,
4: बिल्कुल सही
0: बात।
2: आज ही मिल लीजिए,
0: पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
2: बिल्कुल नहीं, आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत?
5: अपॉइंटमेंट ली तो मामला भाप, अगला पहले से ही कोई एक्सक्यूज सोच लेगा, बस सीधा जा पहुंचे उसके पास। क्यों भाई?
6: बिल्कुल ठीक बात है।
0: तो ठीक है, मैं आज ही करमारकर साहब से मिल लेता हूँ।
7: मीटिंग से उठना मिस्टर शर्मा का, और उसी रोज यानी 18 जून को ही जाना करमारकर साहब के पास।
8: मे आई कम इन सर?
9: आओ आओ मिस्टर शर्मा, कम इन कम इन, आओ बैठो। कैसे आया?
0: सर आपसे थोड़ा वो एक पर्सनल काम था।
9: हाँ हाँ बोलो।
0: सर वो बात ये थी कि
10: आपने तो इतना कुछ किया करमारकर साहब,
11: सर आपको याद होगा जब आप दिल्ली आए थे तो आपको स्टेशन पर रिसीव करने मैं ही आया था।
9: हाँ याद है।
11: जब आपको सरकारी क्वार्टर न मिला था तो गुप्ता जी के क्वार्टर का आधा कमरा मैंने ही दिलवाया था सर।
9: याद है बरोबर।
11: पहले 2-3 महीने आपकी सारी फाइलें मैं ही अपनी बाइसिकल पर आपके घर पहुंचाता रहा हूँ।
9: बरोबर।
11: और एक दिन वो भीनी भीनी सुगंध वाला रुमाल जो आप दफ्तर में भूल गए थे, जिस पर अंग्रेजी का शब्द।
9: बरोबर बरोबर मिस्टर शर्मा, हमको सब कुछ याद है। You have done a lot for me.
11: आपको सब कुछ याद है?
9: Of course.
11: अगर सचमुच अपने सारे करियर में पूरे फर्ज से ड्यूटी मैंने निभाई है, सच्चे दिल से आपकी सेवा की है, तो बस एक काम कर दीजिए मेरा।
9: बोलो बोलो क्या काम है?
11: सर आपको तो मालूम है मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
9: मालूम जरूर है पर उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बाय गॉड, ये ऑर्डर हमारा नहीं है।
11: ये मैं जानता हूँ सर, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ट्रांसफर रुकवा सकते हैं।
9: क्या मैं रुकवा सकता हूँ?
11: बेशक सर बेशक, आप रुकवा सकते हैं।
9: लेकिन ऑर्डर तो बहुत ऊपर और ऊपर से आया है।
11: कहीं से भी आया हो सर, ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए। सर मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर
9: ये क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा?
11: सर मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ।
9: अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बात बोलो मिस्टर शर्मा, आप ट्रांसफर रुकवाना क्यों चाहते हैं?
11: आप क्या पूछ रहे हैं सर?
9: क्यों?
11: हम पिछले सैकड़ों सालों से दिल्ली में रहते आ रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, और उससे पहले सुना है मेरे परदादाजी भी दिल्ली में आने वाली हर हुकूमत में सरकारी मुलाजिम रहे हैं। और आज तक उनमें से कभी किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ। अच्छा। जरा सोचिए करमारकर साहब, अगर मेरी ट्रांसफर न रुकती तो शर्मा बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी सर।
9: ओ आई सी।
11: हमारे पूर्वज इसी धरती पर जन्मे, इसी धरती पर परवान चढ़े और इसी धरती पर राख हो गए। हमारी नाल घड़ी है सर, नाल घड़ी है इस धरती में। आप ही बताइए अब इस उम्र में कहां परदेश में जाकर भटकता फिरूंगा सर।
9: गवर्नमेंट सर्विस में तो ट्रांसफर होता ही रहता है। अब अपन को ही देख लो, अपने देश शोलापुर से कितनी दूर आकर सर्विस कर रहे हैं।
11: आपकी नाल न गड़ी होगी ना सर वहाँ पर। फिर आप जवान थे, अकेले थे, और वो खुशबू वाला रुमाल।
9: बरोबर, तुम ठीक कहते हो मिस्टर शर्मा, पर ये नाल गड़ी वाली बात समझ नहीं आई।
11: नाल सर, वो नाल बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है। नाल क्या बोलते हैं सर उसको? हाँ अम्बिलिकल कॉर्ड।
9: अच्छा, कभी देखा नहीं।
11: सर आपकी शादी कहाँ हुई है? बच्चा तो बाद की चीज है ना सर। और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल वो जमीन में गाड़ दी जाती है सर, जमीन में।
9: ओ आई सी।
11: मेरी माँ ने भी धरती में गाड़ दी थी सर।
9: कहाँ?
11: वो घर के आंगन में सर।
9: लोधी रोड के क्वार्टर में?
11: नो सर, पुरानी दिल्ली में।
9: ओ वो तो 10-12 मील होगा।
11: यस सर।
9: तो नालगढ़ी से कितनी दूर तक जा सकते हो?
11: आप समझे नहीं, है तो अपनी धरती ना सर, सेम सिटी।
9: पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली?
11: सर है तो दिल्ली ना।
9: यस यू आर राइट।
11: अब आप समझे ये बात, आप ही समझ सकते थे इसको, ऊपर वाले नहीं सर। बस सर अब आप सारी बात समझ गए ना, तो सर ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए।
9: हम रुकवा सकते हैं?
11: यस सर आप रुकवा सकते हैं।
9: ओके हम रुकवा देंगे।
0: थैंक यू सर।
9: नो नो नो

0: Why thank me? It is my duty.
1: Thank you very much. मैं अब चलता हूँ.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Mr. Sharma.
1: Yes sir.
0: आपने ये तो बताया ही नहीं कि ट्रांसफर रोकने के लिए हमको करना क्या होगा.
1: बस सर, आप एक DO लिख दीजिए. हाँ. ये स्पेशल केस है, ये ट्रांसफर रोक दी जाए.
0: Is that all?
1: Yes sir.
0: Okay. हम लिख देंगे.
1: Thank you sir. Thank you. अच्छा, अब मैं चलता हूँ सर.
0: अच्छा, but listen.
1: Yes sir.
0: ये DO लिखकर भेजने से ऊपर वाले ये तो ना समझेंगे कि मेरा कोई इंटरेस्ट है. You know भाई, ये ऑफिसर लोग बहुत सस्पिशियस होते हैं.
1: सर आप ये लिखिए ना कि काम बहुत है. हाँ. शर्मा बहुत पुराना आदमी है, इसको रिलीव नहीं किया जा सकता.
0: हाँ हाँ, ये ठीक है.
1: थैंक यू सर.
0: अच्छा अच्छा,
1: थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.
0: पर मिस्टर शर्मा.
1: यस सर.
0: वो ये भी तो कह सकते हैं कि ट्रांसफर में एक आदमी लेकर बदले में दूसरा आदमी दे रहे हैं. भाई स्टाफ टैंक वही रहेगी ना.
1: सर आप जरा स्ट्रॉन्ग DO भेजिए ना.
0: सुनो, नालगड़ी मेंशन कर दें.
1: नो सर, वो उनकी समझ में नहीं आएगा सर.
0: मिस्टर शर्मा.
1: यस सर.
0: आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर मुझे दे दें, मैं उसे थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड कर दूंगा.
1: वो तो सर.
0: कोई बात नहीं, हम फौरन पास ऑन कर देगा. भाई तुम तो जानते ही हो, हमारी पोजीशन बस एक पोस्ट ऑफिस की है. जैसे ऊपर का ऑर्डर हमने आपको पास ऑन कर दिया, आपका रिप्रेजेंटेशन ऊपर फॉरवर्ड कर देगा. डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेगा.
1: ओके सर.
0: ऑल द बेस्ट.
1: थैंक यू सर.
0: ऑल द बेस्ट.
1: थैंक यू.
2: प्लास्टिक की घास. श्रोताओं, आज आपने सुना इस नाटक का पहला भाग. लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ. आपको बता दें, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में. अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है.

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। ऐसा अक्सर होता है जब फिल्मी पर्दे पर हम किसी विशेष अभिनेता या अभिनेत्री को किसी किरदार में ढलते देखते हैं तो हमारे मुंह से बरबस ही निकलता है कि ये किरदार इनके अलावा तो कोई निभा ही नहीं सकता था। लेकिन कोई किरदार किसी अभिनेता अभिनेत्री पर कैसा लगेगा या कहें कि किसी खास किरदार में कौन सा एक्टर ढल सकता है, ये पहचानना भी एक कला है और उस कला में माहिर होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। तो क्या होता है इनका काम और किस तरह कागज पर लिखे किरदारों के लिए एक्टर्स का चुनाव ये करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमें आज मिलने वाला है क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी। तो गौतम जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, यहाँ पर मेरा सौभाग्य है, यहाँ बुलाया आप लोग ने मुझे।
2: तो गौतम जी, इससे पहले कि आपके काम के बारे में हम बात करें, आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आप कैसे पले बढ़े और क्या आप मुंबई में रहते हैं या बाहर रहते थे और किस तरह से आना हुआ आप?
3: नहीं, मैं बम्बई का ही हूँ, यहाँ की पैदाइश है
2: जी।
3: और मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं, तो उनका खुद का एक नर्सिंग होम भी था और वो हमेशा चाहते थे कि मैं मेडिसिन करूं और मेरी बहन ने ऑलरेडी उन्हें कह दिया था कि उससे मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है
2: जी।
3: तो क्योंकि मेरे पास 18 की उम्र में कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या लाइफ में, तो मैंने भी मेडिसिन कर लिया कैसे तैसे स्ट्रगल के साथ। और मेडिसिन करते करते मुझे एक्चुअली बीच में एक रीजन से मुझे मेरे आंटी के घर जाना पड़ा बेलगाम में, वहां रोजा फिल्म लगी थी, तमिल में लगी थी, मणिरत्नम सर की, तो वो मैंने देखी। और उसके पहले क्या था, मैं फिल्में बहुत देखता था, मतलब छुट्टियों में दिन में 3 फिल्में देखता था वीडियो कैसेट पे, वीसीआर पे। पर जब रोजा देखी तो मुझे एक फिल्म देखने वाले से इंटरेस्ट आया कि अब मुझे ना फिल्म में इन्वॉल्व होना है। वो फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ, रहमान के म्यूजिक से और संतोष सिवन की सिनेमाटोग्राफी और मनी सर का डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। पहली बार एक ऐसे लेवल की फिल्म देखी जो मुझे लगा हाँ ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म है, और ऐसी फिल्म में पार्ट होना, ऐसी फिल्म का बहुत बड़ी बात होगी करके ये मेरे मन में बैठ गया। और फिर मैं अगले दिन फिर अकेले वही फिल्म देखने गया और फिर वो और भी फीलिंग स्ट्रांग हो गई। पर तब मैं आई थिंक सेकेंड ईयर MBBS में था और वहां से आई थिंक वो सीड

0: ये कि आमतौर पे लोग जब फिल्म इंडस्ट्री की ओर आते हैं तो सबसे ज्यादा तो एक्टर बनने आते हैं। उसके बाद हो सकता है कोई गीतकार बनना चाहता हो, कोई राइटर बनना चाहता हो, कोई डायरेक्टर बनना चाहता हो। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ये बनने का ख्याल कैसे आया आपको?
1: मेरी कोशिश रही थी कि मैं असिस्ट करूं और इवेंचुअली डायरेक्ट करूं, तो मेरा रास्ता वैसे शुरू हुआ। मैंने पहले एड फिल्म्स में असिस्ट किया
0: जी
1: और फिर मुझे उसमें इतना मजा नहीं आया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फिल्म्स में असिस्ट करना है। तब आपके फेवरेट कोई डायरेक्टर्स होते हैं,
0: जी
1: वो शॉर्टलिस्ट करके उनको चेस करने लगा मैं, बट कहीं बात नहीं बनी क्योंकि मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री में,
0: हाँ
1: कोई पहचान नहीं थी। मुझे पता चला कि जेवियर्स इंस्टीट्यूट का XIC का कोर्स है, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का पार्ट टाइम कोर्स है कुछ, तो मैंने उसका एंट्रेंस दिया और उसमें पास हुआ और फिर मेरा वो फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का कोर्स था। आई थिंक 9-10 महीने का कोर्स था, शाम को होते थे क्लासेस और वीकेंड को फुल डे होता था। तो VT में जेवियर्स में जाता था और वहां अच्छा एक ग्रुप बन गया, हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे हुए। वहां से मुझे फिल्म्स डिवीजन के लिए फिल्में बनाने का मौका मिला। मैं और मेरे ग्रुप को, हम 4 जन थे, तो हमने गुजरात अर्थक्वेक पे भी कुछ फिल्में बनाई थी। वहां से मेरी जर्नी, वहां फिल्म्स डिवीजन के लिए काम करने के बाद मुझे लगा अभी कुछ फिल्म मेकिंग में फिनेस नहीं था, तो
0: जी
1: मैंने फिर एड फिल्म्स ज्वाइन किए। एक मेरे कजिन ब्रदर की बचपन की दोस्त थी जो एड फिल्म्स में काम करती थी, तो उससे बात की, तो फिर मैंने 1-1.5 साल एड फिल्म्स में असिस्ट किया, बहुत सीखा उधर, पैसे भी कमाना शुरू किए, अच्छे खासे पैसे भी आते थे, बट मजा नहीं आ रहा था क्योंकि रियलिज्म नहीं था तब। अर्ली 2000 में एड्स बहुत चकाचक चीजें होती थी, ये रियल कैरेक्टर्स और ये सब होते ही नहीं थे।
0: अच्छा
1: हाँ, तब एड्स बहुत अलग बनते थे 2001-2002 में। फिर मैंने बोला कि अच्छा, 1.5 साल मैंने काम किया उधर और फिर मैंने बोला हाँ भाई फिल्म में करना है, कैसे तैसे फिल्म में करना है। तो मैं अप्रोच करता था, श्याम बेनेगल को अप्रोच किया, गोविंद नियालानी को अप्रोच किया, बट किधर कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा हाँ रियलिस्टिक फिल्मों में असिस्ट करना है। और फिर मैंने सत्या देखी हुई थी और सत्या का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और तब अनुराग का नाम सुना था कि उन्होंने 5 करके एक फिल्म बनाई है, और फिर उनके इंटरव्यूज आई थिंक पढ़ता था तभी, आई डोंट नो वीडियो इंटरव्यूज कितने थे उनके। उनका जो विजन था वो मुझे बहुत प्रभावित हुआ, मुझे लगा हाँ इनको असिस्ट करना चाहिए करके, तो उनके पीछे लगा रहा मैं। और एक पॉइंट आया जब मैंने उन्हें कहा कि प्लीज मुझे असिस्ट करने का मौका दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सारा खर्चा उठा लूंगा, बस मुझे सीखने दो। तब उन्होंने आई थिंक मेरा पागलपन देख के बोला
0: जी,
1: कि ठीक है तुम आ जाओ मेरी टीम में।
0: तो जैसे आप उनके पीछे लगे रहे, तो क्या थी ये प्रक्रिया पीछे लगने? मतलब किस तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से कैसे आप
1: मतलब
0: उनके पीछे
1: मेरा
0: लगे?
1: लक तब था, ये तो 2001-2002 की बात है, तब DVD हुआ करती थी, तो एक DVD लाइब्रेरी थी, बम्बई के एक इलाका है बांद्रा, और वहां का जो ओनर था DVD लाइब्रेरी का ओनर, वो बड़े प्यारे इंसान थे छगन भाई, तो अनुराग भी वो लाइब्रेरी में आता था। तो मैंने बोला कि छगन भाई जरा अनुराग से कुछ मीटिंग करा लो यार, मुझे असिस्ट करना है उन्हें। तो उन्होंने फिर मुझे एक ऐसा, जस्ट एक दिन ऐसा रहा कि मैं भी था वहां और वो आए और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया, और वहां से जब उन्हें पता चला कि मैं डॉक्टर हूं जो असिस्ट करना चाहता हूँ, तो उनको और भी इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा तुम डॉक्टर हो के तुम असिस्ट करना चाहते हो।
0: जी
1: बोला हाँ, अब मैंने छोड़ दिया है मेडिसिन, मुझे बस फिल्मों में असिस्ट करना है करके, वहां से शुरुआत हुई।
0: तो मतलब आपको डायरेक्शन की ओर जाना है, ऐसा आपका इंटरेस्ट आ गया,
1: हाँ।
0: और इसलिए आप फिर अनुराग जी से मिले, तो सीधा कास्टिंग के हिसाब से
1: नहीं
0: शुरू हुआ या कैसे शुरू हुआ असिस्टेंट डायरेक्टर का?
1: मतलब जो एसोसिएट थे राजकुमार गुप्ता,
0: जी
1: जो बड़े डायरेक्टर है रेड 1, रेड 2, आमिर, नो वन किल जैसिका
0: जी
1: के, वो एसोसिएट थे अनुराग के, और जब ब्लैक फ्राइडे शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि देख कि तू कास्टिंग संभालेगा। तो पहले कैसा होता था कि 4 या 5-6 AD होते थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कास्टिंग करेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट्यूम देखेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर सेट देखेगा, ऐसा कुछ हॉलीवुड वाला सिस्टम जो अब है
0: जी
1: जो एकदम स्पेसिफिक है, वो तब नहीं था कि 4-5 AD सब डिपार्टमेंट संभाल लो। तो प्री प्रोडक्शन में मेरा काम था कास्टिंग का, शूट के टाइम मैं कंटिन्यूटी लिखता था
0: जी
1: और पोस्ट में मुझे नहीं इन्वॉल्व किया था, बट मैं अटेंड करता था ऐसे ही। तो जब ब्लैक फ्राइडे तैयार हुई, पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तब अनुराग ने मुझे बताया कि अच्छा मैं तुझे कास्टिंग डायरेक्टर की क्रेडिट दे रहा हूं। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी क्रेडिट होती है।
0: जी
1: तब मैंने जाके हॉलीवुड की फिल्में देखी और उसमें मैंने देखा कि एक्टर्स के नाम के बाद कास्टिंग करके क्रेडिट आती है, तब मुझे

0: अच्छा, देर इज अ क्रेडिट लाइक दिस इन फिल्म्स, सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर अनुराग ही मेरा नाम रेकमेंड करता था, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे को बनने के बाद भी 3 साल लगे रिलीज होने को। तो अनुराग खुद बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते थे, तो एक दो जगह मेरा नाम रेकमेंड करता कि इसको ले लो कास्टिंग के लिए।
1: अच्छा,
0: तो ऐसे मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स उसके मिले जिसमें वो डायलॉग लिख रहा था और मैं कास्टिंग कर रहा था, तो वहां से थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी शुरू हुई।
1: जी, तो कैसी प्रक्रिया रहती है इसकी कास्टिंग की, ये जानना चाहेंगे आपसे।
0: कास्टिंग में क्या होता है कि हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है। यूजुअली क्या होता है, अगर एक फिल्म को शुरुआत होने के लिए, अगर छोटी फिल्म नहीं हो, अगर एक मीडियम साइज की फिल्म हो, तो यूजुअली एक दो बड़े स्टार होते हैं। तो जब उनकी कास्टिंग हो जाती है तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भैया आप शुरू कर लो काम।
1: जी।
0: तो बड़े एक दो जो भी कलाकार है वो रहेंगे, उसके अलावा जो भी डायलॉग वाले कैरेक्टर हैं उनको हमें कास्ट करना पड़ता है। तो हमें वो स्क्रिप्ट मिलती है, फिर हम हर कैरेक्टर का एक अच्छा सीन निकालते हैं, उसके फिर हम कॉपीज हम एक्टर्स को देते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये रोल में सूट होंगे। तो इस तरह से हम फिर पूरी एक लिस्ट बनाते हैं कैरेक्टर्स की, जो स्पीकिंग पार्ट्स है, जिनके डायलॉग्स है, उनकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर हर कैरेक्टर के हमारे जो डेटाबेस में है, हमारी जानकारी में जो अच्छे एक्टर्स है, जिनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, जिन्होंने थिएटर, NSD, FTII या जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जिसने 10-15 साल थिएटर किया हो, वैसे सब नाम हमारे पास होते हैं। तो हम उसमें देखते कि किसका चेहरा ये कैरेक्टर से मिलता है, तो वैसे हम 8-10 शॉर्टलिस्ट करते, उनको वो एक सीन भेजते, फिर वो उनको टाइम देते थे कि भैया 2 दिन बाद आपको 4-5 के बीच में आके ये सीन करना है। फिर वो एक्टर आता है, परफॉर्म करता है, फिर उसमें से जो 8-10 जन जो हमने ऑडिशन किए, उसमें जो हमें जो बेस्ट 3-4 लगते हैं, वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं कि देखो ये 3 बेस्ट थे, आप देखो, उनको अगर नहीं पसंद आए कोई भी तो और लोगों को ऑडिशन करते, वरना वो 3-4 में से कोई एक लॉक कर लेते हैं।
1: तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, पहले आपकी नजरों से गुजरती है सारी चीजें कि कौन आपको कौन लगता है उस किरदार में फिट बैठेगा, और देन आप आगे लेके जाते हैं। गौतम जी, इतनी बातों के बीच एक गाना तो होना चाहिए।
0: हाँ, एक पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी बहुत पसंद है।
1: जी, सुन लेते।

0: तो गौतम जी, आपने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब अपनी शुरुआत कर ली, हर डायरेक्टर का काम करने का कुछ तरीका अलग होता है उनकी कास्टिंग जब आप करते हैं उनकी फिल्म के लिए, या कास्टिंग का अपना एक ही तरीका है?
1: यूजुअली एक ही तरीका होता है, सिर्फ है कि कोई डायरेक्टर का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही प्रोसेस होता है। अनुराग जैसे डायरेक्टर को 5 सेकंड लगते हैं डिसाइड करने को कि ये एक्टर फिट है कि नहीं उनके लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को और टाइम लगता है और उनको ज्यादा ऑप्शन

0: ऑप्शंस देखना पसंद करते हैं,
1: जी.
0: कोई थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं, लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं, अलग अलग टाइप के, बट प्रोसेस ज्यादातर सेम ही होता है.
1: आपकी ओर से प्रोसेस सेम है और डायरेक्टर्स का नजरिया है.
0: हाँ, बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो एक्टर्स दोनों परफेक्टली फिट है, समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाएं. तो जैसे विशाल जी के साथ हुआ था, विशाल भारद्वाज के साथ, हम दोनों कंफ्यूज थे कि हु इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन सर ने बोला कि इसका इंट्रोडक्शन लगाओ. तो एक्टर का इंट्रोडक्शन देख के उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हो गई. तो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ी फिट हो रही थी और ज्यादा, वो लॉक हो गया.
1: तो ऐसे मुश्किल मौके
0: ऐसे भी कभी कभी होता है. कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी फिट नहीं होते क्योंकि टेक्निकली सिनेमाटोग्राफर के वजह, या अगर हाइट डिफरेंस हो, या जब आप कॉम्बिनेशन कास्टिंग कर रहे हो, एक फैमिली की कास्टिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू कीप ऑल द फोर कैरेक्टर्स इन माइंड कि चलो ये चार जन एक फैमिली के लगने चाहिए. तो भी कभी कभार होता है कि एक अच्छा ऑडिशन नहीं सिलेक्ट होता, वो भी होता है, बट दैट इज रेयर. मोस्टली द बेस्ट ऑडिशन गोज थ्रू यूजुअली.
1: तो अगर कोई बाय चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं आर्टिस्ट, आपने जिनका ऑडिशन लिया है और भेजा है, तो उनको बताने का कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस होता है कि कभी कोई बुरा नाम आने, कुछ ऐसा ना लगे उन्हें कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए?
0: देखो, एक्टर को तो बुरा लगता ही है, पर हम उन्हें कोशिश करते हैं समझाने की कि ये इसमें आपकी गलती नहीं है. कि मैं हमेशा एक्टर को तो पर्सनली मत लो क्योंकि बहुत चीजें जाती है इन एक कैरेक्टर को फाइनल करने में. तो पर्सनली ना ले और ऑडिशन करते रहें विद द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑडिशन करें, नेगेटिवली ना ले और आगे बढ़े. क्योंकि ये सब एक्टर के साथ होता है, हर एक्टर को बहुत समय लगता है टू रीच दैट सक्सेसफुल पोजीशन. एवरी एक्टर, आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है थ्रू रिपीटेड फेलियर्स.
1: तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर को आपने, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन वो बुरा मान गए, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ हो कि नहीं?
0: हाँ, ऐसे भी थे एक्टर्स. एक एक्टर है, दो चार साल पहले मैंने उसके साथ तीन चार बार काम किया है. उसका कॉल आया मुझे कि गौतम भाई, मैंने फिल्म में असिस्ट किया और मुझे समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कास्टिंग होती है, और मैं खामखा आपको कोसता था कि आपने मुझे कास्ट नहीं किया करके. तो जब एक एक्टर कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है कास्टिंग असिस्टेंट की तरह, या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन में काम करता है, तो उन्हें पता चल जाता है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कैसे कास्टिंग होती है, क्या जाता है डिसीजन मेकिंग में, और उन्हें फिर बेटर समझ आता है. इसलिए मैं हर एक्टर को बोलता हूँ, पर्सनली मत लो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करो. कोशिश करो कि आप जो पिछले साल जो आपकी एक्टिंग एबिलिटी थी, इस साल उस पिछले साल से बहुत बेटर होनी चाहिए. तो क्राफ्ट पे काम करते रहो, वो मेरी एडवाइस होती है हर एक्टर को. और आपका टाइम आएगा, ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है. यहाँ लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं.
1: पूरे वक्त अपने कला को निखारते रहिए, तराशते रहिए.
0: हाँ,
1: अगर हम देव डी की बात करें जिसकी कास्टिंग आपने की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? क्योंकि इसकी कास्ट एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल अलग तरह की कास्ट है, कुछ टिपिकल किरदार उसमें बहुत कम है. तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने चुना?
0: आई थिंक अनुराग भी काफी इन्वॉल्व होता है कास्टिंग में, और अभय तो पहले से ही था कास्ट. अभय का ही आइडिया था आई थिंक एक मॉडर्न डे देवदास बनाना, और अनुराग ने और विक्रम ने शायद वो स्क्रिप्ट लिखी. और माही को आई थिंक अनुराग ने ही एक पार्टी में देखा था, जो कल्कि का पार्ट है
1: जी,
0: चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी. और जैसा पार्ट था वो पार्ट आज बहुत कॉमन दिखता है, बट 2007 में वो बहुत ही शॉकिंग था एक्टर्स के लिए. तो वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ये ट्राई भी नहीं करना है करके. बट इसमें हमने बहुत एक्टर्स को ऑडिशन किया था, राधिका आप्टे को किया था, रिचा चड्डा, ऑल दीज पीपल वर टेस्टेड. फाइनली वी वेंट विद कल्कि,
1: और बिल्कुल सही लगती हूँ किरदार. हाँ, हाँ, जैसा कह रहे थे,
0: हाँ,
1: ऐसा लगता है वो ही वो उस किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हैं.
0: हाँ,
1: तो यहाँ पर हम एक गाना भी सुन ले, क्योंकि इतनी सारी मेहनत की आपने इसके पीछे. तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का.
0: हाँ, ये देवडी का गाना है, अमित त्रिवेदी का, साली खुशी आई थिंक.
1: खुशियों को याद करते हुए गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर.

0: तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत से किरदार को सोच के ही कहानी लिखी जाती कि इसमें यही व्यक्ति अच्छा लगेगा, और उसने मना कर दिया मान लीजिए उस एक्टर ने, फिर उसके बाद जब किरदार खोजना होता है तो मुश्किल ज्यादा होती है क्या? जैसे किसी खास एक्टर को सोच के लिखा गया हो और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं करना इसमें काम.
1: मतलब आई थिंक ये बात है कि देखो मुश्किल तो होती है लेकिन दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है.
0: जी
1: नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, लाइक आपको हमेशा एक अच्छा एक्टर मिल ही जाएगा और फिर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा रीराइट करते हो उसे मन में रख के.
0: और सबसे ज्यादा टाइम किस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपको लगा?
1: सबसे ज्यादा वक्त एक हमने एक प्रोजेक्ट के लिए किया जो शेल्व हो गया था. हमने ऑलमोस्ट 4-4.5 मंथ्स कास्टिंग की थी मिडनाइट चिल्ड्रेन की, जो विशाल जी बना रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए. वो मैं अनमोल आहूजा जो कास्टिंग बे के चलाते हैं हम दोनों मिलके कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा कास्ट था वो. लेकिन सैडली प्रोजेक्ट शेल्व हो गया था वहां. आई थिंक उससे ज्यादा टाइम मैंने कोई प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं किया.
0: और सबसे कम किस में लगा आपको समय?
1: सबसे कम आई थिंक काफी कम, सबसे कम नहीं बट काफी कम टाइम लगा नो वन किल जेसिका में, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ एक महीना ही था, महीना या सवा महीना था, और बड़ा कास्ट था, 50-70 स्पीकिंग पार्ट्स थे. बट वो था कि हम बिकॉज शूट दिल्ली में था तो हमने दिल्ली में ही सारा टैलेंट 3-4 हफ्ते में टेस्ट करके, आई थिंक टचवुड राज को 95% ऑफ द ऑप्शंस पसंद आए थे. काफी मतलब लगा था जो मुश्किल होगा लेकिन बहुत स्मूथली हुआ वो.
0: क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी जैसे कि आप बता
1: हाँ,
0: रहे हैं.
1: और
0: और
1: टाइम बहुत कम था.
0: जी अगर सेक्रेट गेम्स की हम बात करें तो ये अगर मुझे सही जानकारी है तो भारत की पहली ओरिजिनल ओटीटी सीरीज है ये, और उसकी कास्टिंग भी आपने की है.
1: मैंने सीजन 2 की थी, सीजन 1 मुकेश छाबड़ा ने किया था.
0: जी पर ओटीटी और फिल्म्स की कास्टिंग में कुछ ऐसा फर्क रहता है?
1: नहीं कुछ फर्क नहीं होता है. ओटीटी में फिल्म वाला ही सुर होता है परफॉर्मेंस का, तो बस वो एक लंबी फिल्म होती है लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं. फर्क आती है जब आप टीवी सीरियल जो सास बहू टाइप के टीवी सीरियल होते हैं उनके एक्टर्स अलग होते हैं, उनका परफॉर्मेंस हाइटेंड होता है, थोड़ा रियलिज्म से थोड़ा ऊपर होता है वो,
0: जी
1: तो वहां अलग एक्टर्स होते हैं. जैसे मेरे को तकलीफ होती है जब कुछ एक्टर्स को मैंने, जिन्होंने बहुत सारा सोप ऑपेरा वाले शोज किए तो उनको फिल्म में अडेप्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए टाइम लगता है. कर पाते हैं इवेंचुअली बट थोड़ा सा वो मीडियम से इस मीडियम में आने को टाइम लगता है. बट वेब और फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है.
0: और आपने कभी ऐसा सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम आप करते हैं, उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं ऐसा कुछ?
1: अभी भी डायरेक्ट करने का सपना तो है ही है, वही पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ.
0: और कुछ कभी किया हो बीच में, मतलब ऐसे कास्टिंग के काम के बीच में ऐसा कुछ अपना कुछ काम करते हैं? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इस रोल में तो मैं ही फिट बैठता हूँ?
1: नहीं, मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है.
0: और आपके ऑफिस में अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई हो तो कभी ऐसा लगता है कि ये इस रोल
1: मैं
0: में फिट
1: कोशिश करता
0: बैठेगा?
1: हूँ कि अपनी टीम को कास्ट ही नहीं करूँ. क्या है क्योंकि दूसरे एक्टर्स को फिर बुरा लगता है, एक्टर्स को लगता है कि अच्छा ये कास्टिंग के जरिए काम मिल जाएगा करके, वो भी बहुत गलत होता है.
0: हाँ
1: तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है. तो बिगनिंग में एक दो बार हुआ होगा कि चलो टीम को ही कास्ट कर लो या छोटे छोटे पार्ट जिसमें इतना फर्क नहीं पड़ता हो. बट जब कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, जब बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनको काम नहीं मिला और जो कास्टिंग असिस्टेंट्स को काम मिला, तो एक्टर्स में बहुत एंगर देखा मैंने.
0: जी
1: तो वो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, तो मैंने तब वो रूल ही बना दिया मेरे टीम के साथ कि भाई अगर आप मुझे असिस्ट कर रहे हो

0: आपको मैं ऑडिशन नहीं करूंगा। अगर आपको एक्ट करना है तो आपका कास्टिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये रूल मैंने बना दिया।
1: तो अगर किसी को आपकी टीम में से कास्ट होना है किसी फिल्म में तो उसको टीम छोड़नी पड़ेगी।
0: हाँ, और फिर एज एन एक्टर ऑडिशन करना पड़ेगा, फिर उनकी जगह नहीं है मेरे टीम में।
1: तो मतलब वो फेयरली हो ताकि सब,
0: हाँ, ताकि जो लोग पूरा टाइम एक्टिंग में घुसे हुए हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें एक बेटर चांस मिले।
1: तो गौतम जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुनते चलें और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेखा भारद्वाज जी ने जो गाया है कबीरा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं।

0: तो गौतम जी, जब कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की कास्टिंग होती है, तो मेन कैरेक्टर की, जैसे आपने बताया कि पहले मेन कैरेक्टर्स की जब कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद आगे के कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने बताया संवाद वाले कुछ कैरेक्टर होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई संवाद नहीं होता है, पर वो फिल्म में नजर आते हैं, बार बार भी नजर आते हैं, तो किस तरह से ये सारी कास्टिंग का काम होता है?
1: देखो, पहले तो आप प्राइमरी कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जिनका सबसे ज्यादा किरदार है, उनकी कास्टिंग पहले होती है। फिर हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे जाते हैं जिनके 3-4 सीन हो, साइड बाय साइड हो ही जाता है, वो भी प्राइमरी के साथ शुरू करते हैं। फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी कवर हो जाते हैं, तब टर्शरी होते एक लाइन वाले, वो फिर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज सारे कैरेक्टर्स को बुलाते हैं, सारे एक्टर्स को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही लाइन बोलनी है, तो 5-7-10 मिनट में एक एक ऑडिशन हो जाता है। तो 4-5 दिन जाते हैं, सारे टर्शरी करते हैं, बाकी जो नॉन स्पीकिंग पार्ट है, अगर उसमें टर्शरी में भी कोई है जिसको बिना डायलॉग के इमोट करना है, एक्सप्रेशन देनी है, तो भी हम एक्टर्स ही ढूंढते हैं उसके लिए। और फिर बाकी रहता है जो क्राउड, फिर एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो प्रोडक्शन जब डायरेक्टर डिमांड करता है कि हाँ मुझे सपोज ये मार्केट का सीन है, मार्केट के सीन में मुझे 70-80 लोग चाहिए एज अ क्राउड इन द मार्केट, तो वो फिर वैसे वो स्ट्रेटा के लोग एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि कहाँ है। डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन है, मतलब एक मॉल में है तो अलग होगा, एक सब्जी मंडी होगा तो अलग टाइप का क्राउड होगा, तो वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो लेकर आता है, उन जूनियर आर्टिस्ट ही कहलाते हैं वो।
0: मतलब कि अगर गांव का सीन है तो उनकी, हाँ, उस तरह के लोग दिखने वाले एकदम कोई बहुत ज्यादा

0: शहरी जो दिख रहे हैं उनको नहीं लेंगे, तो इस तरह से वो आप चुनाव कर लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो गौतम जी, अगर किसी एक्टर को हम कास्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम उसे चेहरा उसका है, कैसी कद काठी, ये तो देखते ही हैं। उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप जज करते हैं?
1: देखो, हर एक्टर को आपके दिमाग में जो विजुअल है एक कैरेक्टर का, उसमें अगर वो बैठता है तो वो एक फर्स्ट प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए। बाकी फिर है कि एक्टर कितना स्ट्रांग है, दैट इज द फाइनल मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी एक्टिंग एबिलिटी पे बात आ जाती है। फिर अगर वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है, वो मैटर नहीं करता। फिर अगर एक स्ट्रॉन्गर एक्टर ऑप्शन है तो यूजुअली अ डायरेक्टर विल गो विथ हिम और हर।
0: क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से
1: हाँ,
0: वो,
1: वो ऐसे लेयर्स लाएगा परफॉर्मेंस में जो शायद एक वीकर एक्टर नहीं ला पाए।
0: और आप जब कभी फिल्म देखने जाते हैं तो कहते हैं कि जब इस मीडिया में कोई काम करने लगता है तो वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से ही फिल्में देखता है।
1: बट कभी कभी हो जाता है, जब आपको अगर कास्टिंग गलत लगती है या सेट ठीक नहीं लगते हैं तो वो नोटिस में आता है। जो भी ज्यादा फिल्में देखते हैं, आई एम नॉट सेइंग जो काम करते हैं, बट जो काम करते हैं, जो बहुत सारी फिल्में देखते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को। तो एक दफा आप वो कुछ नोटिस करने लगे तो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है फिल्म देखने का।
0: पर्दे के पीछे की बातें जब आप जान रहे तो
1: हाँ,
0: फिर
1: जान
0: वो
1: जाते
0: आप
1: हो कि
0: सारी
1: अरे
0: चीजें देख।
1: यहाँ ये रह गया, इन्होंने ये ठीक नहीं किया।
0: अगर कोई इंडस्ट्री में आता है, कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है वो, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई कोर्स है या बस करने की कला है सब?
1: आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर के कोर्स तो अभी तक आई डोंट थिंक है, बट आपको आके कोई कास्टिंग डायरेक्टर को ही असिस्ट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग की एक इंस्टिंक्ट होती है जो मुझे लगता है कि मेरे में थी,
0: हाँ
1: इवन दो मुझे ये करना नहीं था, ये तो मुझे पता भी नहीं था। बट ये था कि जब आप एक एक्टर को देखते हो एक पर्टिकुलर किरदार में और आप बोल रहे हो कि यार ये तो वो लग ही नहीं रहा, जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो। आई थिंक एक इंस्टिंक्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग बट देर इज एन इंस्टिंक्ट।
0: हाँ मतलब वो स्टोरी को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगेगा, और इस तरह से आपको एक अंदाजा।
1: हाँ, वो होता ही है। मतलब अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर को चेहरे दिख जाते, अगर एक चेहरा दिख गया तो उसको लगता है हाँ ये यहाँ पे अच्छा बैठेगा करके,
0: जी
1: और एक आपको एक इंटरेस्टिंग चेहरा पहचानने की एबिलिटी आ जाती है।
0: कोई अगर एक्टर बनने के लिए यहाँ आते हैं, पहचाने कैसे कि असल में कास्टिंग डायरेक्टर क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं काम दिला सकता हूँ, ऐसे भी लोगों से हम मिल लेते हैं,
1: हाँ, जब
0: मिले।
1: भी एक्टर्स आते हैं ना, जो भी बॉम्बे आते हैं, एक तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक्टिंग सीखने मत आना, कभी सीख के आओ, ट्रेन करके आओ, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है,
0: जी
1: सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और एक दफा आपके पास पैसे नहीं हो, अगर आप एक रईस खानदान से नहीं हो, तो आप एक्सप्लॉयट हो जाओगे। यहाँ बहुत बहुत डिफिकल्ट जगह है रहने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। इसीलिए मैं हर कोई एस्पायरिंग एक्टर को कहता हूँ, आपके होम टाउन में, आपके घर के पास कोई भी थिएटर ग्रुप हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, वहां ज्वाइन करो। एक्टिंग ऐसे आप कुछ एक हफ्ते भर का कोर्स करके आप एक्टर नहीं बनते हो, बहुत टाइम लगता है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, लाइफ टाइम लग जाती है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। तो मेरी एडवाइस वही रहती है कि आप जाके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, या एक NSD जैसा इंस्टीट्यूशन हो, ड्रामा इंस्टीट्यूट, या FTI जैसा, या ड्रामा स्कूल, ऐसे लॉन्ग फॉर्म इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करें, या आपके आसपास के शहर में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, 4-5 साल थिएटर करें, पूरा क्राफ्ट समझे और फिर बॉम्बे आए। क्योंकि फिर क्या है, जब आप आओगे, आपके थोड़े से जो रेडार्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कौन बुद्धू बना रहे और कौन जेन्युइन है करके। आई थिंक है, जेन्युइन लोग भी है बट फ्रॉड्स भी बहुत है। वो फिर फेक ऑडिशंस करते हैं एक्सप्लॉयट करने के लिए, या फिर आपसे पैसा मांगेंगे कि आप 50,000 दे दो या 20,000 दे दो, आपको रोल फाइनल होगा और आपको कुछ बता देंगे, ये सीन दे देंगे, और बाद जब शूट का टाइम होगा वो लोग ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसा भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। इसीलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ जो एक्टर बनना चाहता है या बनना चाहती है, कि ट्रेन करके आओ, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द इंडस्ट्री देन।
0: और उनके भी एक अनुभव रहेंगे एक्टिंग के, तो वो
1: हाँ
0: ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।
1: हाँ और अब जब आप थिएटर वेटर करके आओगे तो बॉम्बे आओगे तो आपको भी थिएटर सर्किट के और लोग मिलेंगे,
0: हाँ
1: वो भी एक होता है, आपका कोई ना कोई पहचान वाला होता है बम्बई में। फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट आ जाओगे बिना एनी नॉलेज, तो आपका फायदा उठाया जाएगा।
0: तो जिन फिल्मों के लिए आपने कास्टिंग की है, उनमें से कौन सी आपके सबसे दिल के करीब है?
1: आई थिंक पहली वाली ब्लैक फ्राइडे, पहली फिल्म आई थिंक यूजुअली स्पेशली होती है सबके लिए, और क्वांटिटी भी ज्यादा थी, 172 स्पीकिंग

0: पार्ट्स थे और 2 महीने थे और बस मैं था और एक वो एक और असिस्टेंट होता था क्यूज के लिए, बस हम दो ही मिलके पूरी कास्टिंग हमने की। बहुत ही मुश्किल था, सुबह से लेके रात तक बस ऑडिशन पे ऑडिशन पे ऑडिशन एंड विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। सबसे डिफिकल्ट बट खुशी वही कास्ट को देख के लगती है।
1: तो ये आपको मतलब याद रहेगी ये फिल्म, और इससे ऐसा कह सकते हैं कि इससे आपकी एक ट्रेनिंग हो गई पहली फिल्म।
0: हाँ हाँ ब्लैक फ्राइडे ने सारा जो कुछ भी मैं हूँ उस फिल्म के वजह से हूँ।
1: तो गौतम जी, जब ब्लैक फ्राइडे की इतनी बात हो रही है तो उस फिल्म से कोई गाना सुन ले।
0: अरे बंदे है ना, इंडियन ओशन का गाना
1: बहुत ही प्यारा गाना है, चलिए सुन ले।

0: तो ये आप लोगों के पास ये पूरा आर्टिस्ट का एक कोई बैंक होता है, डेटाबेस होता है, किस
1: देखिए
0: तरह से
1: जैसे
0: आपने?
1: आप और काम करते जाते हैं, आपको नए नए एक्टर्स पता चल जाते हैं, और बस आपकी टीम भी होती है। मैं अपनी टीम को प्लेस देखने, थिएटर देखने भेजता हूँ, अगर मैं खुद नहीं जा पाऊँ। कोशिश करता हूँ जितना हो सका थिएटर देखूँ, शॉर्ट फिल्म्स देखूँ। इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग देखते हैं कोई अच्छा टैलेंट निकल आया क्या। तो मेरी एडवाइस वही होती है जो एक्टर्स जिनके पास अगर अभी कम काम है, कि अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, प्लेस करें, मिलके प्ले होस्ट करें, कास्टिंग की इंडस्ट्री जो है, कास्टिंग असिस्टेंट्स, कास्टिंग एसोसिएट्स, उनको इनवाइट करें अपने प्ले के लिए।

0: या शॉर्ट फिल्म बनाएं, सबको भेजें, 100 जन को भेजो, शायद 4 जन जो सही हो गए उनके पास पहुंच गया तो वो आपको बुलाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी पीस है जो आपको बहुत अफेक्ट की, कोई राइटिंग जो आपने थिएटर करते हुए कुछ आपको बहुत प्रभावित हुआ, तो वो इंस्टाग्राम पे परफॉर्म कर लो। जस्ट होप कि कोई सही इंसान कहीं पे भी हो वो आपको देख ले और आपको कॉन्टेक्ट करे, शायद शॉर्ट फिल्म के लिए, प्ले के लिए या जिसके लिए भी। यही कहता हूँ कि एक्टर्स को कि अपने आप को विजिबल रखो।
1: और अपने आप परफॉर्म करते रहे, अपना काम तो करते जाइए, मतलब अपनी तरफ से कोशिश आप जारी रखिए।
0: कोशिश जारी रखिए, अगर आप अच्छे एक्टर हो आप नोटिस हो जाओगे और आपको बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए।
1: तो इंस्टाग्राम में जो फॉलोवर्स किसी किसी ज्यादा होते हैं, तो ये भी कुछ असर करता है कास्टिंग के लिए?
0: ये मतलब प्रेशर आ जाता है प्रोड्यूसर से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जिसके पास ज्यादा फॉलोवर है उससे उनको ऑडियंस ज्यादा मिल जाएगी, TRPs या जो भी मेजर ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा मिल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि वो अगर वो इन्फ्लुएंसर को लोग अपने फोन पे देख रहे हैं तो वो शायद उन्हें थिएटर में देखने के लिए 500 रुपया तो शायद नहीं खर्च करें। उन्हें जब फोन पे फ्री पे मिल रहा है सब कुछ, और अगर वो इन्फ्लुएंसर वो ही कर रहा है, मैं नहीं कहता कि सब इन्फ्लुएंसर वैसे, बट अ मेजोरिटी ऑफ देम विल हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। उन्हें अपने कैरेक्टर जो इंस्टाग्राम पे प्ले करते उसके बाहर के कैरेक्टर प्ले करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उन्हें सिर्फ वही काम मिलेगा, जो वही रोल जो वो इंस्टाग्राम पे प्ले कर रहे हैं वही किरदार उनको फिल्म में मिलेगा। तो वो एक दो बार मिलेगा, उसके बाद नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो फोन पे ही फ्री पे मिल रहा है आपको।
1: तो ये बताइए कि अभी कौन सा गीत हम सुन ले आपकी पसंद से?
0: हाँ, वो डेली 6 का रहमान का रहना तू,
1: बहुत ही अच्छा गाना, हम सुन लेते हैं आपकी पसंद का।

0: गौतम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती थी वो कुछ अलग तरह से होती होगी, और अभी जैसे अब सोशल मीडिया का इतना दौर है तो कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं लोगों के फिल्मों में आने से पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कास्टिंग में चेंजेस आए हैं?
1: मैंने शुरुआत की 2003 में ब्लैक फ्राइडे के साथ। उसके पहले 90s सिनेमा था जिसमें सिनेमा ऐसा बन नहीं रहा था। एक बैंडिट क्वीन छोड़ दो आप, जो तिग्मांशु धूलिया जो पहले आई थिंक हिंदी सिनेमा के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो
0: जी
1: एक ही फिल्म थी आई थिंक तब की जो इतनी रियल थी। बट अदरवाइज जो हिंदी कमर्शियल सिनेमा बन रहा था 90s में 80s में, उसमें वही होता था कि अनुपम खेर फादर, फरीदा जलाल मदर, ये पर्सन दोस्त, और फिक्स्ड एक्टर्स होते थे। बाद में जब अनुराग और विशाल जी ने मकबूल बनाई या मकड़ी बनाई, जब हनी त्रेहान जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो टाइम था जब इन डायरेक्टर्स को रियलिस्टिक कास्टिंग चाहिए थी, तब थिएटर का इम्पोर्टेंस सबको लग

0: कि थिएटर के एक्टर करो, एनएसडी के एक्टर्स ढूंढो, हमें रियलिज्म चाहिए, जितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है चाहिए। तो वो 2001 दो तीन से वो चलता आ रहा है, टिल कोविड वही चल रहा था। अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि स्टूडियो के ऑडिशंस कम हो गए, तो अब सेल्फ टेस्ट बहुत होते हैं, तो अब लोगों को आदत भी पड़ गई है कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि यू नो सीन भेज दो, एक्टर वहीं अपने घर पे रिकॉर्ड करके भेज दे।
1: मतलब अब स्टूडियो में वो नहीं आते, वो खुद ही अपनी
0: वो पता नहीं क्यों, बट मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक स्टूडियो हायर करो, एक्टर को बुलाओ और ऑडिशन करो। हाँ, अगर बंबई के बाहर है वो एक्टर तो फिर आपको सेल्फ टेस्ट ही करना पड़ेगा, बट कोविड के पीक में ये शुरू हुआ, जूम टेस्ट, सेल्फ टेस्ट। तो आजकल एक्टर्स को उसमें भी प्रिपेयर करना चाहिए कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे दे, उनको फिगर आउट करना चाहिए। यूट्यूब वीडियोज है उसके बारे में, वो शायद देखना चाहिए। और बाकी कास्टिंग असिस्टेंट्स हो या एसोसिएट्स हो या कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी इंटरेस्टिंग दिख जाता है तो अभी उनका एटलीस्ट आपको एक कांटेक्ट भी है। इंस्टाग्राम में आपको उनका वर्क ईमेल भी मिल जाता है, तो हम रीच आउट भी करते हैं अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर मिल गया हमको कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर बैठता है हमारी फिल्म में, तो हम उसे रीच आउट करते हैं और उन्हें कास्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं एक्टर्स को बोलता हूँ जिनके पास काम नहीं है फिलहाल, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए
1: अपने रील्स या ऐसे अपना काम आगे
0: रील्स,
1: बढ़ाते
0: ह्यूमर,
1: रहें।
0: कुछ भी जो भी आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट करता है वो पोस्ट करिए। हर एक कोई कॉमेडी रील्स नहीं कर सकता। जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, वो पोस्ट करिए, कहीं ना कहीं किसको वो अफेक्ट होगा और वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा।
1: जब आप किसी को बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, आप बुलाना प्रेफर करते हैं ज्यादा और वो खुद अगर कोई वीडियो बना के भेजते हैं, दोनों में क्या फर्क आ सकता है?
0: देखो, ऑडिशन रूम में कोई कैमरा पकड़ के बैठा है, एक असिस्टेंट आपको क्यूज दे रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस देख रहा है, चार पांच जन की टीम होती है एक प्रोजेक्ट पे, तो एक पूरी टीम होती है जिसमें हर एक का एक अलग काम होता है। वो कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको गाइड करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, करेक्ट करेगा आपको। लाइव उधर आपका बेटरमेंट होता जाएगा, घर पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, आप भेजोगे, फिर जब किसको टाइम होगा देखने का तब वो देगा, फिर वो मैसेज पे आपको रिप्लाई करेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आप वापस करोगे। अगर आपको कोई क्यू देने वाला दोस्त नहीं मिला घर पे, तो आपके मम्मी पापा क्यूज देंगे, जो बहुत खराब क्यूज होंगे मोस्टली। तो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ टेस्ट में, बट मैंने ऐसे भी देखा कोई दो तीन ऑडिशन सेल्फ टेस्ट इतने बढ़िया है क्यों, एक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे।
1: बेसिकली अगर वो आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें उनके कैरेक्टर के बारे में भी समझा सकते हैं और
0: बहुत इजी हो जाता है स्टूडियो में, बहुत इजी हो जाता है। सेल्फ टेस्ट में क्या है, एक्टर को सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो स्टूडियो में होता है वो आपको घर में करना पड़ेगा। आपको चार दोस्त लगेंगे, एक दोस्त आपको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा दोस्त आपको क्यूज देगा, तीसरा आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर, ये स्टूडियो में बढ़िया हो जाता है।
1: और वो भी निर्भर करता है कि आपके दोस्त कितना ज्यादा जुड़े हुए उस क्राफ्ट से।
0: अगर वो खुद एक्टर्स है तो शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाएगा।
1: और जैसा कि आप बोले थे कि सोशल मीडिया पर भी रीच आउट करते हैं आप लोग, तो फिर बहुत से लोग है, वही बात है कि तो किस तरह से पहचाने कि जो हमें बोल रहे हैं कि आपको कास्ट किया जा सकता है या आपने टेप भेजी, इस तरह से बोल रहे हैं अगर कोई, तो कितने जेन्युइन है, कितने रियल हमें वो चीज मिल रही है?
0: देखो, सोशल मीडिया में हम रीच आउट करते हैं जब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी दिखती है जो हमारे स्क्रिप्ट में बैठ रहा हो, कोई ह्यूमरस कैरेक्टर हो या कुछ हो, वो वहां हमको बाय चांस दिख गया और वो वही है जो कैरेक्टर है, अगर वो इज वेरी और ही और शी इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, देन वी रीच आउट कि हाँ भाई हमारे पास ये है, आप अब स्टूडियो में आके ये परफॉर्म कीजिए, ये हमारे सीन पे करिए। वो अब वो अच्छी तरह कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है,
1: पर जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को जो कि रोज रील बनाता है, उसका कोई एक कैरेक्टर आपको अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द लग रहा है, तो आपने उसे रीच आउट किया, लेकिन आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि वो पता करना पड़ता है कि कौन रियल है कौन नहीं है, तो वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हो?
0: नहीं, उनको तो फिर पता करना पड़ेगा। एक तो आजकल सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस है, आई थिंक आप इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स या हिंदी फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर टाइप करोगे तो आपको 5-10 नाम तो आ ही जाएंगे। तो आज जो भी सोशल मीडिया पे है आपको पता ही चलेगा, इंस्टाग्राम में आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है कौन है सब पता चलता है। अभी सब क्रेडिट्स देखते हैं, अगर आप फिल्म की क्रेडिट देखोगे कास्टिंग में कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है वो नाम टाइप कर लोगे उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, फिर आप देखिए उसके कोई असिस्टेंट टीम वाले कौन है या उसे मैसेज भेजिए, देखिए रीच आउट करिए। अगर आप बंबई में हैं तो आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैक्सिमम काम आरामनगर वर्सोवा में हो रहा है
1: जी,
0: तो वहां पहुंच जाइए।

0: वहां पे पता करिए कौन कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके ऑफिसेज में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, इंट्रोडक्शन के लिए बोलिए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एडवर्टाइज करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि इस दिन ये बजे से ये बजे तक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 200-200 एक्टर्स पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन देने, तो उनकी डेटाबेस में आ जाते हैं।
1: तो जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से किसी को चूज कर
0: हाँ,
1: सकते हैं।
0: चूज करते, बुला सकते हैं फॉरेन ऑडिशन।
1: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों में आपने बिल्कुल ही अलग तरह की कास्टिंग की है जो कभी पहले उस तरह से नजर नहीं आए। जैसे पटाखा की अगर हम बात करें तो
0: हाँ,
1: उसमें भी जो भी सब कास्ट है हमको कभी हमने उस तरह से कभी देखा ही नहीं। तो ये कैसे आप सोचते हैं कि वो किरदार में फिट बैठेंगे वो एक्टर जिन्होंने कभी
0: वो नहीं,
1: वैसा नहीं किया?
0: हम आई थिंक वो ही है, एक्टर का स्ट्रेंथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कैपेबिलिटी, अगर आपको पता हो कि ये एक अच्छा एक्टर है तो इसको हम टेस्ट करते हैं। बेसिकली हमने बहुत लोगों को वो दोनों लड़कियों के लिए टेस्ट किया था, और फाइनली सानिया और राधिका हुई, और वो दोनों बहुत ही अच्छी एक्टर्स हैं। इवन दो दोनों दिल्ली की हैं, बट फिर भी उन्होंने वो एक्सेंट और वो राजस्थानी बोली बहुत बढ़िया पकड़ी उन्होंने। उनका वर्कशॉप भी हुआ था, बट जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उनके घर पे रहे थे दोनों,
1: अपने किरदार को पकड़ने के लिए
0: हाँ,
1: अच्छे तरह से।
0: लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे थे। तो एक अच्छा एक्टर होता है वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू द कैरेक्टर।
1: वैसे सांड की आंख की अगर हम बात करें तो इसमें भी जब किरदार चुना तो उसमें भी आपने ऐसा पहले से ही नहीं सोचा था कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगी तो दूसरे किरदार लेंगे?
0: नहीं, भूमि और तापसी की कास्टिंग हो चुकी थी जब वो दोनों कास्ट हुए तो फिल्म बनी। आई थिंक डायरेक्टर वांटेड कि एक्चुअली सीनियर सिटीजन्स को कास्ट करे, बट रियलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग ऑफ फंडिंग इज वेरी डिफरेंट। तो आई थिंक दे वर नॉट गेटिंग फंड्स टू विद अ कास्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, हेंस दिस वाज डन।
1: कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को चूज किया हो, आपको लगा हो कि ये उस किरदार में ज्यादा अच्छा बैठेगा, फिट होगा, लेकिन फिर आगे जाके उन्हें ऐसा लगा हो निर्माता निर्देशक को कि हमें ये नहीं चाहिए?
0: एक बार हुआ था एक फिल्म में, अब मैं फिल्म नहीं बोलूंगा बट बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म है,
1: जी
0: मैं अच्छा दोस्त है वो, बट उसको मैंने प्ले में देखा था और एक रिहर्सल में देखा था, और उसका ऑडिशन इतना इनक्रेडिबल था कि मैंने अनुराग को दिखाया और अनुराग बोला हाँ करते हैं इसको कास्ट। लेकिन उसने कभी कैमरा पे काम किया नहीं था, सिर्फ थिएटर किया था, वो भी कॉलेज में। और जब वो उसका पहला दिन शूट का था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-08 की बात कर रहा हूँ, जब बड़े कैमरास होते थे, लाइट्स भी बहुत बड़ी होती थी, अब लाइटें भी छोटी हो गई हैं कंपैरेटिवली, उतना साइज नहीं होता है लाइट्स का। तो अगर आपको HMI लाइट्स लगाओ और 50 लोग आपको देख रहे हैं, वो फ्रीज हो गया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया था पहले दिन। फिर बाद में उसे कॉन्फिडेंस आया, उसको ये किया और वो उसने किया, बट नॉट टू हिज एबिलिटी। फिर उसने अपने आप पे काम किया और फिर वो अच्छे काम करने लगा, उसने काफी फिल्में की बाद में। लेकिन ये हुआ था, उसके बाद मेरा लेसन था कि भाई सिर्फ थिएटर में बहुत बढ़िया हो बट लेकिन अगर कैमरा का आइडिया नहीं है
1: जी
0: तो उसे पहले थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी। ऐसे रॉक लो मत, या जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट ऐसे भी है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, वो लोग छा गए कैमरा पे
1: कोई बिना ट्रेनिंग के वो
0: बिना।
1: आए और
0: दो बच्चे थे, स्लम के बच्चे थे, उनको अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट किया था, सलाम बालक ट्रस्ट जो मीरा नायर ने शुरू किया था, तो वहां के दो बच्चे कास्ट किए थे, उसमें से एक तो इतना नेचुरल था जिसने कुछ नहीं किया पहले भी, तो वो भी हो सकता।
1: तो वो आप कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड है
0: हाँ, वो
1: क्योंकि।
0: गिफ्टेड था, वो कॉन्फिडेंट था, नेचुरल था, बढ़िया था वो।
1: तो आप सेट पे भी मौजूद रहते हैं या आपका काम सेट के बाहर का ही रहता है?
0: यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, बट जहां जब डायरेक्टर्स पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं या जब ज्यादा रिलेशन है तो मैं जाता हूँ सेट पे जाता।
1: बट आपका सपना तो सेट में ही रहने का है, हालांकि जैसे आपने बताया।
0: हाँ, मेरा सपना तो डायरेक्ट करना ही है। अब मैं एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, पहली दो स्क्रिप्ट्स बना नहीं पाया, अब एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, होपफुली वो बन जाए।
1: तो आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम करें तो आप क्या पहले से किसी एक्टर को ऐसा मन में सोच के ही बना रहे हैं या आप उसे
0: नहीं,
1: बाद के लिए
0: पहले
1: छोड़?
0: पहले स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूंगा फिर कास्टिंग पे आऊंगा।
1: तो ये राइटिंग वाला पक्ष कब से आपका सामने आया? आपने
0: ये
1: मैं
0: मैंने
1: डायरेक्शन तो
0: वो,
1: आपने कहा।
0: हाँ, वो जब मैंने 5 साल के लिए बीच में कास्टिंग छोड़ दी थी
1: अच्छा
0: तो घनचक्कर थी, 2013 में मैंने कास्ट की थी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट रोक ही दिया था। फिर मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो नहीं बन पाई, फिर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की राइटर्स के साथ, फिर वो भी नहीं बन पाई, फिर एक बुरा दौर रहा मेरी लाइफ में, फिर उधर से कैसे तैसे निकल आया मैं, और फिर मैंने फिर से कास्टिंग शुरू की। मैंने बोला कि चलो फिर से कास्टिंग शुरू करते हैं, फिल्म कभी ना कभी तो बना लूंगा।
1: तो इस जो ये दौर रहा उसके नाम कोई गीत बताना चाहेंगे आप?
0: जिंदगी कैसी है बहेली,
1: ठीक है, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: तो गौतम जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें आपने हमसे की हैं, आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते होंगे या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें।
2: वही जो मैंने एक्टर्स के लिए कहा कि आप ट्रेन करके आइए, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, फिल्मों की किताब पढ़िए, फिल्म मेकिंग की किताब पढ़िए, एक्टिंग की किताब पढ़िए, कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हॉलीवुड के फेमस है उनके बारे में पढ़िए, उनके प्रोसेस, आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो जितना आप अपने आप को एजुकेट करके आएंगे उतना बेटर होगा आपको जब आप बॉम्बे आए। बट हर एक जो भी इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा वो वाली फील्ड में। अगर आप एडिटर बनना चाहते तो यूट्यूब पे सीखिए कोर्स, खुद प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, FTI प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ट्रेन करके आइए, दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस।
1: बस बिल्कुल, मतलब तैयार होके ही आइए आप।
2: हाँ, अनप्रिपेयर्ड मत आइए, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
1: गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो कास्टिंग से रिलेटेड बातें थी, जो हमें पता ही नहीं थी कि किस तरह से चुना जाता है किरदार को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार में हमें बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की।
2: जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए।
1: धन्यवाद।
3: बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत। संपादन सहयोग प्रभा भटनागर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। और अब दीजिए इजाजत।

0: ऊपर है दूपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर

0: पर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

102.7 एफएम पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: दोस्तों के साथ बिताई शाम में किसी खास जगह की जरूरत नहीं होती। कभी पार्क की बेंच, कभी छत का कोना, कभी चाय की छोटी सी दुकान और कभी बस सड़क किनारे खड़े होकर की गई बातचीत ही काफी होती है। बातें भी कैसी, कभी भविष्य के सपने, कभी बीती हुई शरारतें और कभी ऐसी हंसी जिसका कोई खास कारण ही नहीं होता। इन पलों में मोबाइल की स्क्रीन पीछे छूट जाती है और सामने होते हैं अपने लोग, और यही छोटी छोटी मुलाकातें जीवन की भाग दौड़ के बीच मन को सुकून देती हैं। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युववाणी में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री। कभी डाकिया हमारे घर के दरवाजे पर आता था तो उसके हाथ में सिर्फ एक लिफाफा नहीं, बल्कि किसी अपने की खबर, किसी रिश्ते की गर्माहट और कभी कभी दूर बैठे किसी खास इंसान की पूरी दुनिया होती थी। चिट्ठी का इंतजार अपने आप में एक एहसास था। जवाब आने में कई दिन लगते थे, लेकिन उन दिनों का इंतजार भी रिश्तों को और खास बना देता था। इसी खूबसूरत जुड़ाव और डाक व्यवस्था के महत्व को याद करने का यह दिन है राष्ट्रीय डाक दिवस, जो हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, एक समय था जब डाक हमारे जीवन का सबसे भरोसेमंद संचार माध्यम हुआ करती थी। घर से दूर पढ़ने गए बच्चों की चिट्ठियां हो, सैनिकों का अपने परिवार के नाम संदेश हो, नौकरी या परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी हो या फिर किसी रिश्तेदार का हालचाल, डाक हर जगह मौजूद थी। डाकिया केवल संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह गांव और शहर के लोगों के बीच भरोसे की एक मजबूत कड़ी हुआ करता था। दोस्तों, आज समय बदल गया है। मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल और सोशल मीडिया ने संदेश भेजना कुछ सेकंड का काम बना दिया है। अब चिट्ठी का इंतजार कम हो गया है, लेकिन डाक का महत्व खत्म नहीं हुआ। आज भी डाक विभाग देश के दूर दराज इलाकों तक सेवाएं पहुंचाता है। पत्रों के साथ पार्सल, स्पीड पोस्ट, वित्तीय सेवाएं और कई सरकारी सुविधाएं भी लोगों तक पहुंचती हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय डाक दिवस सिर्फ पुरानी यादों को ताजा करने का दिन नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के प्रति सम्मान जताने का अवसर है जिसने वर्षों तक देश को जोड़े रखा। तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, डाक की अपनी एक अलग पहचान हमेशा रहेगी, क्योंकि कुछ संदेश सिर्फ पहुंचते नहीं, याद बनकर दिल में बस जाते हैं।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे

0: दोस्तों, जब साहित्य में साधारण लोगों की असाधारण दुनिया दिखाई देती है तो वह सीधे दिल से जुड़ जाता है। आर के नारायण ऐसे ही लेखक थे, जिन्होंने अपनी सहज और सरल लेखन शैली से भारतीय जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को साहित्य की बड़ी कहानी बना दी। उनकी जयंती पर उन्हें याद करना भारतीय अंग्रेजी साहित्य के एक ऐसे लेखक को याद करना है जिसने अपनी अलग पहचान पूरी दुनिया में बनाई। आर के नारायण की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत करीब से देखा। उनके पात्र कोई दूर की दुनिया के लोग नहीं लगते, बल्कि हमारे आसपास के ही साधारण लोग दिखाई देते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मालगुडी डेज, इसका काल्पनिक शहर मालगुडी इसी वजह से पाठकों के दिल में बस गया। वहाँ की गलियाँ, लोग, वहाँ के रिश्ते, छोटी छोटी परेशानियाँ और जीवन की सहज खुशियाँ हमें अपने आसपास की दुनिया की याद दिलाती हैं। दोस्तों, नारायण जी का लेखन बहुत सरल था, लेकिन उस सरलता के भीतर गहरी समझ छिपी होती थी। वे बिना भारी भरकम शब्दों के समाज, मानवीय स्वभाव और रिश्तों की बारीकियों को सामने रख देते थे। उनके पात्रों में हास्य भी थे, संवेदना भी थी और जिंदगी की सच्चाई भी थी। दोस्तों, उनकी रचनाएं हमें यह समझाती है कि साहित्य के लिए हमेशा बड़ी घटनाओं की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक साधारण व्यक्ति की छोटी सी कहानी भी जीवन का बहुत बड़ा सच कह जाती है। दोस्तों, आर के नारायण जी की जयंती पर उन्हें याद करने का सबसे खूबसूरत तरीका यही है कि हम उनके साहित्य को पढ़ें और उन छोटी छोटी चीजों को महसूस करना सीखें, जिन्हें भागती हुई जिंदगी में अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। यही उनकी लेखनी की खूबसूरती थी कि सादगी में गहराई और सामान्य जीवन में असाधारण कहानी। कार्यक्रम में आइए इस क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और भेंटवार्ता सुनते हैं। विषय है सेहत संवाद, खान पान और बदलते मौसम का संबंध। इस विषय पर डॉक्टर संजय कुमार सिंह से बातचीत कर रही है रानी राश्री, आइए सुनते हैं। बेहतर स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे खान पान से होता है। जैसा हम आहार लेते हैं और वैसा ही हमारा शरीर और मन बनता है। श्रोताओं, आप भी जानते हैं कि संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर को आवश्यक पोषक तत्व, विटामिन, खनिज और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। जी हाँ, स्वस्थ जीवन के लिए सही समय पर संतुलित मात्रा में और पौष्टिक भोजन करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए इसी संदर्भ में सेहत संवाद, खान पान और मौसम का संबंध, इस विषय पर बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर संजय कुमार सिंह आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि एमडी वरिष्ठ होम्योपैथ चिकित्सक हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: सर। इस वक्त जो बदलता हुआ मौसम है, इस बदलते हुए मौसम में सर्दी जुकाम एक आम बात होती है, खांसी आसानी से हो जाती है, तो इसे हम मौसमी संक्रमण माने या फिर किसी बीमारी का संकेत माने या फिर नॉर्मल सर्दी जुकाम?
1: देखिए, मौसम के बदलना अपने आप में एक प्राकृतिक क्रिया है
0: जी।
1: जब मौसम शीत ऋतु है, उसके बाद बसंत ऋतु, बसंत के बाद गर्मी, बरसात, ये मौसम तो आता जाता रहता है
0: जी।
1: ऐसे में क्या करना चाहिए हमें कि हमारी जो दिनचर्या होती है बड़ी अनियमित हो जाती है। मौसम के अनुसार जब हम अपने दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं तो तरह तरह की दिक्कतें होती हैं। और आप ये जान लीजिए, मैं आपके श्रोताओं को भी ये बताना चाहता हूँ कि जब मौसम बदलते हैं तो उस समय छोटे छोटे जीवाणु या विषाणु ये काफी सक्रिय होते हैं
0: जी।
1: इनसे बचने के लिए हमें क्या है कि उस मौसम के अनुकूल अपनी व्यवस्था को हमें रखनी होती है। जैसे हमारा खान पान, जैसे भी आपने चर्चा किया, खान पान, हमारा जो है आहार विहार, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, शारीरिक व्यवस्थाएं, मानसिक व्यवस्थाएं और खान पान, सब कुछ पे हमें पैनी नजर रखनी होगी
0: जी। बिल्कुल सर, हम जब सही खान पान रखेंगे तभी हम स्वस्थ रहने की ओर आगे बढ़ेंगे। सर, इस मौसम में एक वायरल जो है उससे लोग अक्सर ग्रसित हो जाते हैं, तो ऐसे में हमें इसकी पहचान कैसे करें, इसके बारे में बताएं और क्या सावधानी रखें?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं

0: कि हम वायरस या बैक्टीरिया की बात ही न करें
1: जी।
0: कारण ये है कि भारतीय जनमानस के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत होती है कि कोई भी बैक्टीरिया और वायरस उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन फिर भी हाँ, हमारी नासमझी और हमारी थोड़ी सी अव्यवस्था के कारण हम प्रभावित होते हैं। देखिए, शरीर है तो शरीर के तंत्र हैं। जब शरीर के तंत्र हैं तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारा होता है, जो गले की म्यूकस मेम्ब्रेन काफ़ी बहुत ही नाजुक होती है, नाक मुंह और कान ये हमारे काफ़ी जो है नाजुक होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, जब मौसम बदलता है तो उस समय जो जीवाणु और विषाणु की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, जब ज़्यादा सक्रिय होते हैं तो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमें क्या होता है, सर्दी जुकाम होने लगता है। तो सर्दी जुकाम होता है तो इससे अब घबराने की जरूरत नहीं है कि ये वायरल हो गया अब मैं क्या करूं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि तुरंत एंटीबायोटिक, पेन किलर या तुरंत जो है बाजार से जा करके इसको दबाने वाली दवाएं खाते हैं। मेरे समझ से ये गलत है, ये परिपाटी गलत है। आपको याद होगा जो हमारे ऋषि मुनि या हमारे गांव के जो बुजुर्ग हुआ करते थे, वो प्राकृतिक परिवेश में रहना ज्यादा पसंद करते थे। मसलन जैसे गर्म पानी पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, काढ़े में भी किसका सेवन करते हैं, कहीं बाजार से कोई सामान नहीं खरीदते। उनके घरों में अदरक होता है, अजवाइन होता है और जो है विभिन्न प्रकार के जो दालचीनी से लेकर के जो विभिन्न अवयव जो घरों में इस्तेमाल होते हैं,
1: तुलसी है,
0: काली मिर्च, इनका प्रयोग करते हैं, मुलेठी का भी इस्तेमाल करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। और ये आप यकीन मानिए 2 से 3 दिन में धीरे धीरे अपने आप उसकी गति धीमी हो जाती है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अपने आप पुनः जो है अपनी स्वस्थ स्थिति में ले आ देता है शरीर को।
1: सर, जैसा कि अभी आपने कहा सर्दी जुकाम की जो बात आई, तो बदलते मौसम में जिन्हें गले की समस्या रहती है, तो ऐसे में गले और श्वसन तंत्र से समस्याएं लोगों में इस मौसम में बढ़ जाती है
0: जी।
1: और साथ ही साथ एलर्जी की जिनकी समस्या है वो भी काफी हद तक बढ़ जाती है
0: जी।
1: तो इसके कारण और समाधान क्या कुछ हो सकते हैं, इसके बारे में बताएं।
0: सबसे पहले तो हमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने दिनचर्या को नियमित करना होगा
1: जी।
0: पहला, आप सुबह समय से उठिए और यदि मौसम बदल रहा है तो अपने नाक कान मुंह को अच्छे से ढक के रखिए। यदि कोई किसी को जो है जुकाम हो गया है तो खुले में न छींके। छींकने का जो प्रक्रिया है वो मुंह में रुमाल रखें, क्योंकि आपके जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, जो आपके श्वसन कण से जो छोटे छोटे छोटे वायरस निकलते हैं, वो आपके अगल बगल के लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि यदि आप रुमाल रखते हैं, गमछा रखते हैं या जो है मास्क लगाते हैं तो और अच्छा है। अभी जैसे कोरोना में क्या हुआ था, हम लोग कोविड के समय मास्क का ही ज्यादा इस्तेमाल करते थे, छींकते और खांसते समय हम लोग गमछे का इस्तेमाल करते थे और हम लोगों ने कोविड के समय में सबसे ज्यादा गर्म पानी और काढ़े का इस्तेमाल किया, चाहे वो जो है गुरु का रहा हो, चाहे वह चिरायता रहा हो, चाहे वह कोई भी तुलसी पेय पदार्थ रहा हो, हम उसी का इस्तेमाल करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको सर्दी जुखाम हो जाए तो घबराए नहीं, क्योंकि वायरस के नाम पे यदि आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो अपने शरीर को आप एक तरह से प्रताड़ित करते हैं
1: जी। बिल्कुल, एंटीबायोटिक कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को नुकसान ही पहुंचाता है। हमें लगता है कि हम जल्दी ठीक हो रहे हैं
0: जी,
1: लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बाद में परेशान करते हैं।
0: साइड इफेक्ट के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं
1: जी
0: आपके श्रोताओं को कि एंटीबायोटिक का वायरस के ऊपर कोई रोल ही नहीं है
1: जी।
0: ये तो हम अनावश्यक कचरा ले रहे हैं। यदि आप विज्ञान का यदि अध्ययन करें तो वायरस के ऊपर किसी भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। ये शरीर अपने आप में ही एक एंटीबायोटिक है। यदि प्रतिरोधक क्षमता आपकी स्ट्रांग है तो आप अपने आप उससे होने वाले कुप्रभावों से बचे रह सकते हैं और सबको बचाए रख सकते हैं।
1: ये बात सर आपने बहुत सही कही, क्योंकि आम तौर पर देखा गया है कि हम यही मानते हैं कि अगर हमें वायरल हुआ है तो वो एंटीबायोटिक से खत्म होगा, जबकि आपने कहा कि इसका रोल कोई खास नहीं है। सर, साथ ही साथ आप हमें ये बताएं, इस बदलते मौसम में जो हम आसानी से बीमार पड़ जाते हैं, तो इसमें हमारे आहार का क्या रोल है?
0: हाँ, देखिए, हमारे खान पान का, जैसे आपने शुरू में कहा था कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन
1: जी,
0: तो मैं इस पे 100% सहमत हूँ और सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भोजन हो वो सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन का मतलब ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है और अपने वृद्धावस्था तक जाता है तो चावल दाल रोटी सब्जी ही खाता है
1: जी।
0: और भगवान ने, प्रकृति ने हम लोगों को बहुत कई तरह के फलों से नवाजा है। किसी भी मौसम को आप उठा के देख लीजिए, कोई ना कोई फल आपको देता है
1: जी।
0: अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगे बाजार से फल लें, जो आपको आसानी से सस्ते फल उपलब्ध हों, जिनके ऊपर कम से कम रसायन का प्रयोग किया गया हो, यदि आप उसका सेवन करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं तो निसंदेह आपके बॉडी का इम्यून पावर अपने आप मजबूत हो जाएगा
1: जी। बिल्कुल, खान पान में जो हम सब्जियां खाते हैं, दाल चावल जो भी खाते हैं, उसके साथ साथ हमें फल को जरूर इंक्लूड करना चाहिए, जरूर शामिल करना चाहिए। सर, प्रतिरोधक क्षमता देखा गया है कि आमतौर पर आजकल के बच्चे जो फास्ट फूड खाते हैं उनमें कम पाई जाती है, तो नियमित तौर पर हम उन माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इस चीज को मेंटेन करें?

0: बच्चों में?
1: देखिए, मैं सभी माता पिता से आग्रह करना चाहता हूँ आपके सम्मानित रेडियो के माध्यम से कि सबसे पहले तो वो फास्ट फूड को त्याग दें। फास्ट फूड बच्चे की आयु कम कर रही है, बच्चे की नहीं, हम सबकी आयु कम कर रही है और विभिन्न प्रकार के रोगों को हमें जो है ग्रहण दे रही है। ऐसे में हमें जरूरत है आप बच्चे के साथ खेलिए, कूदिए, आप समय ही नहीं देते। पहले के समय में क्या लोग करते थे, बच्चों को खूब दौड़ाते थे और जब दौड़ता था बच्चा तो उसका चेहरा एकदम गुलाबी लाल हो जाता था। क्यों होता था? क्योंकि उसके फेफड़े की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती थी। फेफड़े की क्षमता बढ़ती है तो ऑक्सीजन कैरी करने की जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ जाती है। जब शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और शरीर का जो टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलेगा, शरीर को सारी कोशिकाओं को जब ऊर्जा मिलती है तो वह आपको तरोताजा रखने में मदद करती है और आपके इम्यून पावर को स्ट्रांग करने में मदद करती है।
0: जी बिल्कुल। और अगर खान पान का नियमित तौर पर अगर हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर ही होगी, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बल्कि हमें जो फास्ट फूड मार्केट में है, चाहे हम घर में अक्सर जो बच्चों को तुरंत दे देते हैं कहने पर, वो हमें नहीं देना चाहिए।
1: जी
0: बिल्कुल सर, इम्यून पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो घर का सारा काम तो निपटाती हैं लेकिन इस बदलते मौसम में अगर वो बीमार पड़ रही हैं तो वो इस बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं देती कि उनकी इम्यून कम है, या उन्हें क्या ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में बताएं।
1: देखिए, प्रश्न आपका काफी जो है रुचिकर है कि महिलाओं को कोई ध्यान नहीं देता, जबकि सारे घर का काम महिलाएं ही करती हैं। बस महिला जो है बच्चे को और घर के बुजुर्गों को इतना खास ध्यान रखती हैं कि वो स्वस्थ रहें, लेकिन अपने सेहत पर वो ध्यान नहीं रखती हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं को आयरन की कमी बहुत होती है
0: जी।
1: उन्हें अपने खाने में पालक हो गया, बथुआ हो गया, इसका सेवन जरूर करें और छोटे बच्चों को इसका सूप बना करके दें। फ्रूट जूस जैसे होता है, जैसे आप फलों के जूस देते हैं, वैसे ही जो है हरी हरी सब्जियों के सूप बना करके उन्हें समय समय पर दें, जिससे कि माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म तत्व और बृहद तत्व, दोनों बच्चे को मिल सके। बच्चे को ही नहीं, जब घर में बनेगा तो गृहिणी भी लेगी, घर के सारे सदस्य भी लेंगे, बच्चे भी लेंगे। तो यदि हम सीजनल सब्जियों का यदि हम जूस देते हैं, उनका प्रयोग कराते हैं, तो जाहिर सी बात है कि महिला, स्त्री, पुरुष सभी लोग जो है, जितने भी घर में सदस्य हैं, सब लोग स्वस्थ रहेंगे।
0: जी बिल्कुल। और अगर बच्चे आनाकानी कर रहे हैं तो उन्हें कुछ रोचक बना के दें ताकि वो इस चीज को खा सके, पी सके।
1: बच्चे बड़े नकल करते हैं, यदि बड़े जो हैं, यदि खाना यदि खा रहे हैं बुजुर्ग, तो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा लौकी की सब्जी नहीं खाएगा। आइडियल किसको मानते हैं? घर के लोगों को मानते हैं। यदि घर के लोग खा रहे हैं तो हम उसे बहाने से कह सकते हैं कि देखो दादू खा रहे हैं, भैया खा रहा है, तो तुम्हें भी थोड़ा सा खाना चाहिए।
0: और जब उसको साथ में बैठाकर अगर खिलाएंगे, वो देखेगा तब उस चीज को वो सीखेगा भी। जी बिल्कुल सर, इस बदलते मौसम में एक समस्या जो आमतौर पर देखी गई है, स्किन की एलर्जी, जैसे कि स्किन का रफ हो जाना, थोड़ी सी खुजलाहट जैसा महसूस करना और साथ ही साथ बालों का झड़ना। लोग इससे अक्सर मतलब इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि शायद हेयर फॉल किस कारण हो रहा है, उन्हें पता नहीं चलता है कि क्योर कैसे करें उस चीज को। तो स्किन और बालों के लिए कोई खास टिप्स?
1: देखिए, मैं होम्योपैथ चिकित्सक हूँ, तो मैं होम्योपैथ के दृष्टि से आपको बता रहा हूँ कि बालों की जो समस्या है यह किसी तत्व की कमी से नहीं, बल्कि पेट की जो पाचन सिस्टम है आपका, उसकी गड़बड़ी की वजह से जो है पूरे शरीर पे उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो है टेंशन, आज के युग में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो टेंशन नहीं करता है, और जब आप टेंशन करोगे तो टेंशन कहाँ होगा? मस्तिष्क में होगा। और सर में जो है क्या है कि जब ब्लड का फ्लो कम होगा और जब हमारे तत्व की कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि आपके जो बाल हैं वो जो है टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या है कि हमें अपने खान पान को सही रखें, अपने पाचन तंत्र को हम सही रखें। और कुछ होम्योपैथ में बड़ी रुचिकर दवाएं हैं, दवाएं मैं नहीं कहूंगा बल्कि उन्हें टॉनिक कहूंगा, जैसे अल्फा अल्फा एक ड्रिंक आता है, अल्फा अल्फा मदर टिंचर होता है, एविना सेटाइवा मदर टिंचर होता है, या नक्सबोमिका होता है। कहने का मतलब कि रोग के रोगी के अनुसार, लेकिन हम अल्फा अल्फा और एविना सेटाइवा तो बिना रोग के भी हम दे सकते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अल्फा अल्फा की तो खूबी यह है कि आपके शरीर की मसल डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा काम करता है, शरीर की उपापचयी क्रियाओं में। जैसे छोटा बच्चा है, पतला दुबला है, घर वाले परेशान है, कुछ खाता नहीं है, उसको खाने के साथ अल्फा अल्फा आप दें, एविना सेटाइवा दें, तो जाहिर सी बात है कि उसकी मेधा तो बढ़ेगी, उसकी तो बढ़ेगी, साथ में भी उपापचयी क्रिया उसकी सही होगी, तो सारे अनाज उसके शरीर में लगेंगे और उसका शरीर का जो विकास होगा। लेकिन ये दवाएं किसी डॉक्टर के निगरानी में लें या उनकी उचित सलाह से लें तो ज्यादा अच्छा होगा।
0: जी बिल्कुल, किसी भी दवा को यूज करने से पहले अगर हम सलाह लेते हैं तो ज्यादा कारगर होगा, और जो मन में एक भ्रम होता है, संशय होता है, वो चीजें नहीं होंगी।
1: देखिए बदलते मौसम में क्या है कि यदि त्वचा की आयलिंग यदि आप नहीं करते हैं, लोग साबुन से नहा तो लेते हैं लेकिन साबुन उच्च क्वालिटी का न रहने की वजह से सफेद सफेद रैशेज आपके स्किन में आ जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपको तेल, जैसे जो भी हो, सरसों का तेल हो या जो भी आप अपने घरों में नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करें, और बच्चे को

0: विटामिन ई युक्त भोजन दें। अब विटामिन ई कहाँ से मिलेगा उसे? तो विटामिन ई के लिए जैसे कभी उसको नारियल पानी आपने दे दिया, कभी उसे आपने पपीते को दे दिया, कहने का मतलब आप ऐसा चीज दीजिए जिसका पेट भी साफ हो और वो जो है पपीता हो गया, अब आम का सीजन आ रहा आम दीजिए, चीकू का सीजन है चीकू दीजिए, अमरूद का सीजन है, मैं तो ज्यादा प्रेफर करता हूँ पपीता और अमरूद, जो हर सीजन में पपीता और अमरूद मिल जाता है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है। यदि बच्चों को वेजिटेबल खाने के साथ साथ फ्रूट सैलड की आदत आप डाल दें, जो सीजन में आपको मिलता है वही आप उन्हें दें, जाहिर सी बात है कि उनको जो है उनके बाल भी टूटने रुकेंगे और उनके जो त्वचा वो भी जो है काफी चमकीली होगी, चमकीली इन द सेंस कि एक देखने में
1: जैसे
0: अच्छा
1: बाल होने चाहिए एग्जैक्टली वो
0: एग्जैक्टली वही होंगे
1: जी, जो जी है। बिल्कुल, बच्चों के जो नखरे उठाने के लिए हम उनकी फरमाइश को पूरा कर देते हैं, उनसे थोड़ा सा हट के हमें ये सारी चीजें अप्रोच जरूर करनी चाहिए। सर, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए किन आदतों को विकसित करना चाहिए हमारे अंदर, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: आकाशवाणी ओबरा के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि पहले तो अपने दिनचर्या को नियमित रखें, आप समय से सोएं और समय से उठें, मोबाइल को अपने हाथ में हर वक्त न लेके चलें। आप टहलने जाते हैं सुबह, आप मोबाइल फ्री होकर के टहलिए। दूसरी चीज, आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ करिए, शरीर में इतनी जो है आपको पसीना हो जाए जिससे कि आपके शरीर का टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकल जाए, और कुछ समय तक अपने घर परिवार वालों के साथ बैठ के हंसी और ठिठोली करिए और खुल के हंसिए। यदि आप हंसते हैं तो निसंदेह आप स्वस्थ रहते हैं, और जब स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे।
1: जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। आज इस बातचीत के माध्यम से जो आपने खान पान से जुड़ी और सेहत से जुड़ी कई सारी जानकारियां दी, जाहिर सी बात है हमारे श्रोता इस बात को सुनेंगे और इस बदलते हुए मौसम में वो कैसे स्वस्थ रहेंगे, इन तमाम बातों को वो अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। आज हमसे डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी बातचीत कर रहे थे, जो कि एमडी वरिष्ठ होम्योपैथ चिकित्सक हैं। इस खास बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, अभी आप भेंटवार्ता सुन रहे थे, विषय था सेहत संवाद, खान पान और बदलते मौसम का संबंध। इस विषय पर डॉक्टर संजय कुमार सिंह से बातचीत कर रही थी रानी राजश्री। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपनी सेहत का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम थकान को सामान्य मान लेते हैं, तनाव को जिंदगी का हिस्सा समझ लेते हैं और मन की परेशानियों को चुपचाप अपने भीतर दबाते रहते हैं। इसी सोच को बदलने और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल आज के दिन यानी कि 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब केवल किसी मानसिक बीमारी का न होना नहीं है, इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को समझ सकें, मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सकें, दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बना सकें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकें। जैसे शरीर को आराम और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही दोस्तों मन को भी सुकून, अपनापन और समझ की जरूरत होती है। दोस्तों, आज बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग किसी न किसी तरह के तनाव से गुजर रहे हैं। पढ़ाई, नौकरी, परिवार, रिश्ते, आर्थिक दबाव और सोशल मीडिया की लगातार तुलना, ये सब हमारे मन में असर डाल सकते हैं। ऐसे में किसी परेशान व्यक्ति को यह कह देना कि इतना मत सोचो, समाधान नहीं है ये, जरूरत है उसकी बात सुनने की, उसे समझने की और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेने की। दोस्तों, हमें मानसिक स्वास्थ्य को लेकर शर्म या झिझक की जगह संवेदनशीलता और समझ उत्पन्न करनी होगी। किसी से पूछ लेना कि तुम ठीक हो, कभी कभी बहुत बड़ी मदद बन सकता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हमें यही संदेश देता है कि मन की देखभाल कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। स्वस्थ मन ही स्वस्थ जीवन और बेहतर समाज की नींव रखता है। दोस्तों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के इस विचार के साथ कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। जी हाँ दोस्तों, आज आप जो अच्छी आदतें अपनाएंगे जैसे कि अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी, वही तय करेंगे कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम युवावाणी से अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रानी राजश्री को। नमस्कार।

अभी वह श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी बहनों को अनीता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों आप सब कैसी हैं? उम्मीद है आप सब अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और खुश होंगी और अपने घर परिवार का ध्यान रख रही होंगी। बहनों घर में बहुत सारे काम होते हैं जिसे आप बखूबी निभाती हैं और काम के साथ साथ घर में हमारे रिश्ते भी होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, हमें सभी का ध्यान रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। हर रिश्ते को महत्व देना होता है, हम किसी को भी अनदेखा नहीं कर सकते, फिर चाहे वो घर के बुजुर्ग हों या बच्चे, हम सभी का ध्यान हमें रखना जरूरी है। यही एक गृहलक्ष्मी करती भी हैं। गृहलक्ष्मी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इनका काम क्यों करें, हमें इससे क्या लाभ है, बल्कि प्रेम पूर्वक अपनी क्षमता के अनुसार उनका ध्यान रखें और कार्य करें। सभी रिश्ते को बनाए रखें, सभी का सम्मान करें, छोटे हों या बड़े। प्रेम से और मीठी बोली से आप सबका दिल जीत सकती हैं। बहनों इससे आपको भी खुशी मिलेगी और परिवार भी खुश रहेगा। बहनों इसके अलावा सबसे ज़्यादा अहम है आपका वैवाहिक जीवन, जिसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहनों नवविवाहिता पति पत्नी में आपस में प्रेम और विश्वास होना चाहिए, तभी रिश्ते आगे बढ़ते हैं और समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। पर जिम्मेदारियों से घबराकर रिश्तों में दूरियां नहीं आनी चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पत्नी चाहे बच्चों को संभालती हो, घर के कार्य करती हो, सभी का ध्यान रखती हो, पर उसे अपने विवाहित जीवन का भी ध्यान रखना चाहिए। पति को समय से नाश्ता खाना देना चाहिए, उनकी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए, सम्मान और आदर से बात करना भी जरूरी है। पति के ऑफिस या काम पर से आने के बाद उनके साथ कुछ समय बिताएं, बातें करें, अगर मन हो तो कहीं घूमने जाएं, इससे रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। बहनों अगर पत्नी पति के खुशियों का ख्याल रखती है, छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होती या ज़्यादा वाद विवाद नहीं करती, तो पति भी पत्नी को सबसे ज़्यादा मान सम्मान देते हैं और देना भी चाहिए। वो भी पत्नी की खुशियों का ध्यान रखते हैं। अगर आपके पति थोड़े गुस्से वाले हैं तो भी आप अपनी नम्रता विनम्रता और शिष्टाचार से उनको बदल देंगी। ठीक इसी तरह पति भी अपने प्यार सहानुभूति और सहयोग से पत्नी का दिल जीत सकते हैं। वो भी पत्नी की पसंद और नापसंद का ध्यान रख सकते हैं। उन्हें भी चाहिए कि वो शिष्टाचार के नियमों का पालन करें और पत्नी को सम्मान दें। गलत शब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि मुंह से निकला हुआ एक गलत शब्द दिल पर लग जाता है जो जल्दी भूलता नहीं, जिससे मन मुटाव हो सकता है। शादी में प्रेम विश्वास जिम्मेदारी और समझौता होता है, इसलिए दोनों को हर हाल में निभाना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। किसी एक को जरूर एडजस्ट करना चाहिए। शिष्टाचार और नैतिक कर्तव्य पूरे करने चाहिए, इससे रिश्ते बने रहते हैं। कभी कभी पत्नी की तबीयत ठीक न हो तो उस दिन पति को पत्नी के काम में सहयोग करना चाहिए, पूरा सहयोग देना चाहिए और फोन पर भी उनका हाल पूछना चाहिए। इससे पत्नी को बहुत खुशी मिलेगी और यही

0: बहनों आइए अब कुछ और बातें करते हैं। बहनों कहते हैं स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है, इसलिए हमें स्वस्थ रहने का पूरा प्रयास करना चाहिए, फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है, इसलिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। बहनों शरीर के साथ साथ हमें मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा तनाव नहीं पालना चाहिए, ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए, जहाँ तक हो सके खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि आज के समय में लोगों के पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिससे व्यक्ति तनावग्रस्त हो सकता है, पर हमें तनाव से बचना चाहिए। मैंने आज हम इसी विषय पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज यानी 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। बहनों विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की पहल पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। बहनों पहली बार यह दिवस 1992 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य मानसिक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना और दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना है। आज हम बहनों इसी विषय पर से संबंधित एक भेंट वार्ता लाए हैं जिसका विषय है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, और इसके भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर जितेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज लोढ़ी सोनभद्र, और उनसे बातचीत की है साजिदा बेगम ने।
1: एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति की सोच, भावनाओं को और उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। इसमें डिप्रेशन, चिंता, ओसीडी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह कई लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या तब मानसिक बीमारी बन जाती है जब लगातार संकेत मिल रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। आज इसी विषय पर बातचीत करते हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेश गुप्ता जी, जो कि मेडिकल कॉलेज लोढ़ी सोनभद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और मानसिक बीमारी से आपका आशय क्या है?
2: देखिए, मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति ही नहीं है, यह हमारी सोच, भावनाओं, व्यवहार और जीवन की परिस्थितियों से सामंजस्य बनाने की क्षमता से जुड़ा है। जब सोच, भावनाओं या व्यवहार में ऐसे बदलाव आने लगे कि व्यक्ति की पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते या रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगे, तो यह मानसिक स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। मानसिक बीमारी का मतलब पागलपन नहीं है। डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी और नशे से जुड़ी समस्याएं भी मानसिक स्वास्थ्य विकारों के उदाहरण हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, मानसिक बीमारियां कितनी सामान्य होती हैं या कितनी आगे मुश्किल होती हैं, और इसके अलावा भारत और पूरी दुनिया में इससे कितने लोग प्रभावित हैं?
2: जी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं काफी सामान्य हैं।
1: जी,
2: भारत में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार हर 10 में से एक वयस्क व्यक्ति मानसिक समस्याओं का शिकार है। 2023 के WHO के आंकड़ों के अनुसार विश्व में हर 7 में से एक व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि मानसिक बीमारी से जब इतने सारे लोग प्रभावित हैं और किसी को भी हो सकती है, तो मानसिक बीमारी के प्रमुख कारण क्या होते हैं?
2: जी देखिए, मानसिक बीमारियों के आमतौर पर कोई एक कारण नहीं होते हैं।
1: जी,
2: इसके लिए जैविक, आनुवांशिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण मिलकर भूमिका निभाते हैं, जिसे हम बायोसाइको सोशल मॉडल ऑफ मेंटल इलनेस कहते हैं।
1: जी जी, तो ये बताइए कि मानसिक बीमारी कितने तरह की होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचाने कि ये मानसिक बीमारी है?
2: जी, मानसिक बीमारियां अलग अलग प्रकार की होती हैं और उनके लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे डिप्रेशन का मरीज अगर आता है तो उसमें लगातार उदासी रहती है।
1: जी,
2: जो चीजें या गतिविधियां उसको पहले पसंद होती हैं उसमें उसकी रुचि कम हो जाती है। उसे अत्यधिक कमजोरी,

0: और जल्दी थकना, नींद या भूख में बदलाव आना, आत्महत्या के विचार आना आदि आते हैं। अगर कोई एंजाइटी डिसऑर्डर का मरीज है तो उसे अत्यधिक या बार बार होने वाली बिना व्यर्थ की चिंता और भय, बेचैनी, घबराहट, धड़कन तेज होना, पसीना आना, नींद ना आना और कंसंट्रेशन में परेशानी होती है। इसके साथ ही बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज होता है, वो कभी, उसके पास दो फेज होते हैं। कभी एक उदासी का फेज होता है जिसमें वो बहुत सुस्त रहता है, उसका डिप्रेशन के फीचर आते हैं, और दूसरा एक मैनिया का फेज होता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता है, उसको सोने की जरूरत नहीं पड़ती और वो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा खर्च करता है इत्यादि। इसी प्रकार से सिजोफ्रेनिया का मरीज होता है जिसको हम लेमैन टर्म में पागलपन की बीमारी बोलते हैं। उसमें ये लक्षण दिखे आते हैं कि वो व्यक्ति अकेले में बैठ के बुदबुदाता है, बेवजह कसक करता है, बिना किसी कारण के हंसता है या रोता है, उल्टी सीधी हरकत करता है, उसके कानों में कोई आवाजें आती हैं। उसी प्रकार से ओसीडी का मरीज आता है तो उसमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं कि एक ही विचार उसको बार बार आते रहते हैं
1: जी।
0: बार बार साफ सफाई करता है वो, बार बार हाथ धोता है, बार बार दरवाजा चेक करता है। उसी तरह से डिमेंशिया की अगर बीमारी का मरीज है तो उसके याददाश्त में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। बुढ़ापे में आप देखते होंगे कि कुछ लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, कम सोने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, तो ये डिमेंशिया के लक्षण हैं। बात करें तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हिस्टीरिया बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि महिलाएं होती जनरली वो बार बार बेहोश हो जाती हैं, दांत लग जाता है, उनके ऊपर भूत प्रेत की सवारी आने लगती है।
1: तो डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि उनके ऊपर भूत प्रेत का साया आता है, तो क्या ये सच में आता है या उनका मानना रहता है?
0: जी, लोगों का मानना रहता है, ऐसा भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, वो सजेस्टिबिलिटी पे काम करते हैं। उनको जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये भूत प्रेत और चीज़ें जो सामाजिक जो धारणा है वो ऐसे घर कई की गई होती है कि वो बाद में उनको वैसे ही दिखाई देती है या उसको लक्षण उसके आते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है।
1: जी जी,
0: तो ये भी एक बीमारी है जिसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलते हैं।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है और कैसे इसका इलाज किया जा सकता है?
0: जी, एक लक्षण होने मात्र से मानसिक बीमारियों की डायग्नोसिस नहीं की जा सकती। मनोचिकित्सक लक्षणों की प्रकृति, अवधि, गंभीरता, व्यक्ति की फंक्शनिंग और व्यक्तिगत और पारिवारिक इतिहास का मूल्यांकन करते हैं और आवश्यकता होने पर साइकोलॉजिकल टेस्ट एवं शारीरिक जांचें भी की जाती हैं। इसके आधार पर बीमारी के अनुसार काउंसलिंग, दवाएं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, परिवारों का सहयोग एवं रिहैबिलिटेशन किया जाता है। बहुत से मानसिक विकारों में प्रभावी उपचार उपलब्ध है। उचित उपचार और फॉलो अप से व्यक्ति अपने परिवार, काम और सामाजिक जीवन में अच्छी तरह आगे बढ़कर सामान्य जिंदगी जी सकता है। याद रखें, मानसिक बीमारी कमजोरी नहीं है और मदद लेना भी कमजोरी नहीं है।
1: जी जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम सब स्वस्थ रहें शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए?
0: जी, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है। मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जैसा ही महत्व देना चाहिए
1: जी।
0: हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, नियमित फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए
1: जी।
0: संतुलित आहार लेना चाहिए, परिवारों और मित्र से जुड़े रहना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: नशे से दूरी, तनाव को स्वस्थ तरीके से संभालना मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण है। यदि परिवार में किसी व्यक्ति के व्यवहार या भावनाओं में लगातार बदलाव दिखाई दे तो उसे दोष न दे, उसका मजाक न बनाए, उसकी बातें सुने, जरूरत पड़ने पर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क करें। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या या सेल्फ हार्म के विचार व्यक्त करता है तो उसे कभी भी अकेला न छोड़ें और तुरंत प्रोफेशनल या इमरजेंसी हेल्प लें। भारत में मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए टेली मानस नंबर भी उपलब्ध है जो कि 14416 है। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 14416। अगर किसी को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी इमरजेंसी है तो वो टेली मानस पर भी संपर्क कर सकता है या वो डायरेक्ट जाके किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क कर सकता है। याद रखें, मन के घाव दिखते नहीं, मन के भाव समझिए, मन की बात छुपाइए नहीं, किसी अपने से कहिए। इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर आइए, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अनुभवों की आवाजों को सुने और उन्हें बेहतर बदलाव का आधार बनाए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इधर ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र होने

0: के कारण यहाँ पर जागरूकता की बहुत कमी है।
1: जी जी बहुत बहुत।
0: तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप आम लोगों को कैसे जागरूक करेंगे?
1: जी, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि मानसिक बीमारियों को लेकर जो समाज में मौजूद गलत फहमियाँ हैं और कलंक है, उसको सबसे पहले हमें कम करना पड़ेगा। गाँवों और दूरदराज के क्षेत्रों में सरल भाषा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों, पंचायत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से तनाव, अवसाद, चिंता और नशे की समस्या एवं गंभीर मानसिक बीमारियों के शुरुआती लक्षणों की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा न्यूज़पेपर, रेडियो और अन्य सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कैंपेन चलाया जा सकता है।
0: जी जी बिल्कुल। और अक्सर देखा जाता है कि लोग जैसे कोई चिंता में रहते हैं या फिर बहुत डिप्रेशन में रहते हैं तो और लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि इनको पता नहीं क्या चिंता हो गई है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, लोगों को यह समझना होगा कि मानसिक बीमारी भी शारीरिक बीमारी जैसी ही महत्वपूर्ण है। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को शुगर होता है, उसी तरीके से मानसिक बीमारियां भी हैं। मानसिक बीमारियां सेम जैसे शारीरिक बीमारियां होती है, वैसे ही मानसिक बीमारियां होती हैं। तो वो भी ट्रीटमेंट की उनमें जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप केवल उसको कहें कि तुम ज्यादा मत सोचो, ज्यादा टेंशन मत लो तो वो ठीक हो जाएगा, तुम ऐसे ही करते हो, ये चीज नहीं है। आप बीमार हो, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाओगे।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, आपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विषय पर अच्छी बातचीत की और हम लोगों को अच्छी जानकारियां दी और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: बहनों, इस संदेश से पहले आपने भेंटवार्ता सुना, जिसका विषय था मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, और भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर जितेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज लोढ़ी सोनभद्र, और उनसे बातचीत की थी साजिदा बेगम ने। बहनों, आइए फिर से आते हैं अपनी चर्चा की ओर और बात करते हैं नेशनल पोस्ट डे की। जी हाँ बहनों, आज हम बातें करेंगे नेशनल पोस्ट डे की, क्योंकि आज यानी 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे है। बहनों, भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी आज के दिन। बहनों, यह दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य है डाक सेवाओं को महत्व देना। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भारतीय डाक विभाग के योगदान और उसकी उपयोगिता को सम्मान देना, और साथ ही डाक विभाग के कर्मचारियों और डाकियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और अमूल्य सेवाओं की सराहना करना, साथ ही उस ऐतिहासिक दिन को याद करना जब इसकी स्थापना हुई थी। मैंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसे शुरू किया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दूर दराज क्षेत्रों में भी सेवाएं देता है, जिससे हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं और हमारे संदेश पत्रों के माध्यम से एक दूसरे के पास पहुँचते हैं। आज भी डाक विभाग का उतना ही महत्व है जितना कि पहले था। आज भी कितने गांव ऐसे हैं जहां पत्रों का ही साधन है, नेटवर्क की समस्या से वहां मोबाइल भी काम नहीं करता है। इसलिए हम इस दिन को बड़े सम्मान से मनाते हैं। बहनों, देखिए, दिवस की बातें चल रही हैं तो याद आया कि कल यानी 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो हम कल बालिका दिवस मनाएंगे। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं। बहनों, हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया। बहनों, यह दिन लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है, साथ ही लड़कियों के सशक्तिकरण, उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर

ध्यान केंद्रित करता है। लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए भी प्रयास है। इसके अलावा भ्रूण हत्या को बंद करवाना, बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाने के लिए हम यह दिवस मनाते हैं। साथ ही इसका उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और लड़के लड़कियों में भेदभाव समाप्त हो जाए और लड़कियों को भी समान अवसर हर जगह हर क्षेत्र में प्राप्त हो सके। बहनों, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी बेहतर किया जा सके। इसके अलावा सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, जिससे लड़कियों की शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ और भ्रूण हत्या में भी गिरावट आया और लड़कियों का सम्मान बढ़ा। बहनों, इसके अलावा सरकार द्वारा बालिकाओं के कल्याण के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई, जिससे बेटियों के विवाह के लिए धन को एकत्रित किया जा सके। इसके अलावा किशोरियों के लिए योजना, जिसमें किशोरियों को शिक्षित करना, सशक्त बनाना, उन्हें सुविधाएं देना, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। तो बहनों, देखिए, बातें तो हमने बहुत कर ली, अब आपको गीत का भी इंतजार होगा, तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, गीत तो बहुत ही अच्छा था और आप सबको जरूर पसंद आया होगा। गीत के बाद आइए बात करते हैं पौष्टिक भोजन की। बहनों, पौष्टिक भोजन में सभी जरूरी तत्व शामिल होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज से भरपूर चीज़ें होती हैं। एक स्वस्थ और पौष्टिक थाली में साबुत अनाज, दलिया, ओट्स, बाजरा या गेहूं की रोटी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन के लिए दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, पनीर, दूध, दही होना चाहिए। साथ ही फल और हरी सब्जियां, जिनमें पालक, गाजर, सेब, केला। इसके अतिरिक्त वसा के लिए शुद्ध देसी घी, बादाम, अखरोट और अन्य चीज़ें होनी चाहिए। तो बहनों, हम भोजन पौष्टिक और संतुलित करें, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। बहनों, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और बात पौष्टिक भोजन की हो रही है, तो नवरात्रि में भी बहनें पूजा पाठ करेंगी, व्रत रखेंगी, तो व्रत में भी हम कुछ न कुछ आहार ग्रहण करते ही हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि नवरात्रि में व्रत रहने वाली बहनों को एक साबुदाना से बना साबुदाना डोनट बता दें। इसको बनाने की विधि इस तरह है, सामग्री नोट कर लें बहनें। उबले हुए आलू 4, उबली हुई अरबी 8-10, 1 कप साबुदाना, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, स्वादानुसार सेंधा नमक, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, तलने के लिए थोड़ा सा तेल। बहनों, बनाने की विधि नोट कर लें। सबसे पहले साबुदाने को 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर अलग रख दें। अच्छी तरह फूल जाने पर इसे निचोड़ लें। आलू अरबी छीलकर मैश कर लें। तेल को छोड़कर बाकी सामग्री को अच्छी तरह से मिलाएं। तैयार मिश्रण की बॉल्स बनाएं और हर बॉल्स को हथेली से दबाकर बीच में छेद करते हुए डोनट का आकार दें। गर्म तेल में इसे सुनहरा होने तक तल लें। हरी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकती हैं। तो बहनों, व्रत में आप इसे जरूर बनाएं और जरूर खाएं और खिलाएं। तो बहनों, हमारे देखिए अब कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने को है, तो अगले कार्यक्रम में हम फिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए अपनी बहन अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, समाचारन के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर जिला के उतरौला तहसील के बिलरिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 803 करोड़ रुपया से बेसी के लागत वाला 78 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। इस मौका पर आयोजित जनसभा के संबोधित करत मुख्यमंत्री कहले कि डबल इंजन का सरकार बलरामपुर के विकास पर खास ध्यान दिले हो। उनके बलरामपुर में विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज जैसन खास उपलब्धियों के जिक्र करत कहले कि बलरामपुर अब पछड़ा जिला नहीं है, बलून ई गरीबन, किसानन और नौजवानन के आकांक्षा के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। के दौरान मुख्यमंत्री सरकार के कई गो जन कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों के सम्मानित कैले। मुफ्त राशन पावे बदे नया मोबाइल खरीद ले या ओटीपी सत्यापन अनिवार्य कैल गैले के लेके सोशल मीडिया पर फैलावल जा रहल अफवाहन पर खाद्य और रसद विभाग विराम लगा देले है। विभाग के अपर आयुक्त सत्यदेव की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहल गैल है कि मुफ्त राशन पावे बदे कौनो भी लाभार्थी के नया मोबाइल खरीद ले के कौनो जरूरत नहीं बा। वहां के ऐसे भ्रामक सूचना पर ध्यान न देने की अपील कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ शासक प्रमुख के रूप में 25 बरस पूरा कर ले हवे। सेवा और सुशासन के नजरिया से प्रेरित समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जिंदगी में बदलाव हो रहा है। आज खास श्रृंखला में जानब कि खेल महाकुंभ से लेके खेलो इंडिया जैसन पहलन से इन नजरिया के वास्तव में कैसे बदला जा रहा बा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
2: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, तो अपनी दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
1: हाल ही में संपन्न एशियन खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहलों भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पितर लोगों के प्रति श्रद्धा अर्पित कैले के 15 दिन के पितृपक्ष आज कुमार कृष्ण पक्ष अमावस्या के पितृ विसर्जन के साथ ही पूरा हो गयी। पितृ विसर्जन अमावस्या पर लोग पवित्र नदियन और सरोवरन में स्नान करके अपने पूर्वज लोगों का तर्पण और पिंडदान कैले। वाराणसी में पिंडदान करे बदे भिनैये से गंगा नदी के घाटन पर लोगों की भीड़ उमड़ रहा है। चित्रकूटों में ढेर संख्या में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में स्नान करके पितर लोगों के तर्पण कैले। दिल्ली से शारदीय नवरात्र के शुरुआत हो रहा है। दिल्ली में श्रद्धालु अपने अपने घरन में कलशा बैठा के नवरात्र पूजन के शुरुआत करी है। नवरात्र के पहला दिन में माँ भगवती के पहला स्वरूप माता शैलपुत्री का पूजा अर्चना कर जायी। नवरात्र के देखकर प्रदेश के सज्जो देवी मंदिरन और शक्तिपीठन में तैयारी पूरा कर लिहल गयी बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के प्रमुख दुर्गा मंदिरन पर CCTV से निगरानी और सुरक्षा इंतजाम मजबूत कैले के निर्देश दे रहे हैं। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में आज आधी रात से शारदीय नवरात्र मेला शुरू हो जाई। ओजा श्रद्धालुओं के सुरक्षा और सुविधा बदे प्रशासन पुरहर इंतजाम कैले है। शारदीय नवरात्र के मौका पर मैहर में आयोजित होखे वाला मेला के देखत रेल प्रशासन श्रद्धालु

0: आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्कृत पत्रिका संस्कृति भारती, और रात्रि 10:00 सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से ही अनुप्रसारित कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। पुराने फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के अंतर्गत रात्रि 9:15 पर। श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम का लुत्फ आप उठा सकेंगे रात्रि 8:00 और रात्रि 8:30 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 8:15 पर। मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस का प्रसारण समय होगा शाम 7:31 पर। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।
1: द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 से संबंधित एक विशेष सूचना। वाराणसी खंड स्नातक और वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता कृपया ध्यान दें। कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी सोनभद्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। कृपया मुख्य तिथियों पर विशेष ध्यान दें। चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख मंगलवार 29 सितंबर 2026, नामांकन की आखिरी तारीख मंगलवार 6 अक्टूबर 2026, नामों की वापसी की अंतिम तारीख शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026, मतदान का दिन शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026, मतदान का समय प्रातः 8:00 से शाम 4:00 तक, मतगणना का दिन मंगलवार 27 अक्टूबर 2026। वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्माननीय मतदाताओं, याद रखें, लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और सही समय पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जिलाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सोनभद्र द्वारा जनहित में जारी।
0: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार मिथुन सोनी, पुत्र लालू सोनी, निवासी ग्राम कादल, थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र से दिनांक 31 अगस्त 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 18 वर्ष, लंबाई 5 फीट 5 इंच, इनका रंग सांवला, चेहरा गोल और छरहरा बदन है। इन्होंने सफेद शर्ट, नीली पैंट और सफेद जूता पहना हुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार रिजवाना खातून, पुत्री मोहम्मद तौफीक, निवासी ग्राम रगरम, टोला बरवा खान, थाना कोन, जनपद सोनभद्र, जो दिनांक 17 सितंबर 2026 से लापता है। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 22 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल, एकहरा बदन, आंख कान नाक औसत है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा सूचित पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: मुराओ भैया देखा तोरो के राम राम और पंच भैया लोगन के भी राम राम हो।
0: सब लोगन के राम रामी बा भैया। पंचीते के डुगडुगी बज गए हुए और मौसम के मिजाज भी देखत हुआ कि भैया देखा कभी ठंडा कभी गर्म करत हुए, और ऐसने में अपने अंचल के न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहले भैया।
1: भैया देखा जब ऐसा बात रहला कि मौसम के उतार चढ़ाव होला ना, तो देखा सबसे पहले हम लोगन के सजग और सतर्क रहले के जरूरत बा। काहे कि ऐसने में देखा हम लोग तो सोचिला कि अभी देखा बरसात बा, गर्मी बा
0: हाँ भैया,
1: और धीरे धीरे देखा जाड़ा भी लागत बा, तो इसमें हम लोगन के बहुत सतर्क रहले के जरूरत बा। जैसे जाड़ा पाला जब लग जाला भैया, तो हम लोगन के तरह तरह के बड़ बेरामी हो जाला, और ओकरे साथे साथे देखा हम लोगन के जौन अपन दिल दिमाग भी रहला ना,
0: हाँ भैया,
1: वो देखा कमजोर होखे लागला।
0: एकदम सही कहत हुआ भगेलू भैया। इसने मौसम में सर्दी जुखाम और बुखार होखे के संभावना रहेला, तो हम लोगन के अपने स्वास्थ्य, अपने लइकन बचवन के स्वास्थ्य और अपने पशु चगुआ के निगरानी करत रहे के चाहिए। और भैया देखा आज के परिवेश ऐसा न हुए कि हर लोगन भैया देखा भागम भाग वाला स्थिति में हुए
1: काहे नहीं।
0: भैया। सब लोगन के अपने काम से एकदम फुर्सत नहीं हुए। एक सवेरे से जौन उठत हुआ तो रात भैया देखा 10 भी बज जात बा, तब भी काम खत्म नहीं होत हुआ। ऐसे में भैया देखा मानसिक रूप से भी
1: तनाव
0: बिल्कुल
1: हो जाला।
0: तनाव हो जाला, लेकिन वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे के चाहिए और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे के चाहिए, तभी जाके भैया देखा अपन जोन भी काम बा ओकरा सुचारू रूप से भैया देखा हम लोगन कर सकेला जा।
1: तो भैया हो देखा यही से कहल गेल बा ना कि जब जागा तबे सवेरा, तो देखा आज बा 10 अक्टूबर,
0: बिल्कुल
1: और आज के दिना देखा हर जगह विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनावल जात बा।
0: अच्छा
1: काहे
0: अच्छा
1: कि देखा हर दिने कौनो न कौनो दिवस के रूप में मनावल जाला, लेकिन अब बात देखा आवला कि ये दिवस काहे खातिर मनावल जाला।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: दिवस भैया ये मनावल जाला कि हम लोगन के जौन पुरान बात बा, जे भैया लोग तो जानत होन तो जनते होन, लेकिन कुछ भैया लोग नहीं जानत होन कि तो फिर से जौन बात रहला ओकर ताजा करे खातिर ये दिवस मनावल जाला। और ये दिवस जब मनावल जाला तो एक जगह सबके जुटा करके जानकारी देवल जाला।
0: बिल्कुल सही कहत हुआ भगेलू भैया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पहली बार 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ द्वारा भैया देखा मनावल गेल रहले, और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनावे के भी उद्देश्य भैया जैसन कि आप कहला कि जौन भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हुअन उनके समस्याओं के प्रति भैया देखा लोगन के जागरूक करना, और जौन भी उनकर सुविधा बा वो स्वास्थ्य संबंधी ओकरा बढ़ा करके उनके भैया देखा निदान करना हुए। और निश्चित रूप से भैया देखा मानसिक रूप से स्वस्थ अगर रह के हुए तो हम लोगन के भी अपने दिनचर्या पर ध्यान देने की जरूरत हुए। सुबह उठे से लेकर रात के भैया देखा सोए तक के जौन दिनचर्या हुआ हुए ओकरा भैया देखा नियमित रूप से जब हम लोगन करब भैया देखा ओकरा में टहलना हो गेल, व्यायाम हो गेल, योग हो गेल, समय से खाना हो गेल, भरपूर नींद हो गेल, तभी जाके हम लोगन भैया देखा मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकेला और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सकेला।
1: तो
0: तो
1: भैया देखा तो यही तरीके से ना आज पंच भैया लोगन के बीच में भी हम लोग वैसने मिलल जुलल बात शामिल कैले हैं, जैसे कि कहला कि तनाव मुक्त रहे के चाहिए, स्वस्थ रहे के चाहिए, भरपूर नींद लेवे के चाहिए। तो
0: बिल्कुल
1: आज डॉक्टर संजय कुमार सिंह भैया जोन होम्यो मनोरोग चिकित्सक हवन, इन्हीं के जबानी जानल जाए कि तनाव मुक्त रहे और स्वस्थ रहे, के तरीका से ये बात बतावत हवन। और मुन्ना भी एकदम फरिया फरिया के पूछत हवन।
0: एकदम भैया सुनल जाए।
2: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन चुका है। छोटे से लेकर बड़े तक आज हर तीसरा व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। तनाव की स्थिति तब होती है जब हम दबाव लेने लगते और जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं। यह समस्या शारीरिक रूप से कमजोर करने के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी आहत करती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति न तो ठीक से काम कर पाता है और न ही अपने जीवन का खुलकर आनंद उठा पाता है। कार्यशैली और संबंधों पर बुरा असर तो पड़ने ही लगता है, साथ ही साथ उसके अंदर जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि तनाव में रहने वाले अधिकतर लोग

0: कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं, यानी आत्महत्या तक की सोचने लगते हैं और कभी कभी कर भी बैठते हैं। इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जिले के वरिष्ठ होम्योपैथ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे इस तनाव के बारे में?
1: धन्यवाद, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया। देखिए, मानसिक तनाव, आपने जो कई बातें बताई, जी भाग दौड़, दिनचर्या, अस्त व्यस्त होना, तो मैं पहले सबसे आपको ये बता दूं कि कुदरत की जो अनमोल चीज है, जैसे प्रकृति ने मुझे इस पृथ्वी पे भेजा है, तो जाहिर सी बात है कि उसने कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें बराबर प्रयत्नशील रहना है। कहते हैं ना, जब बच्चा प्रसव जब होता है, माँ प्रसव के दौरान जो है वो कराहती है, चिल्लाती है, ऐसा नहीं है, उस कराहने में भी उसका एक आनंद होता है। और बच्चा जब प्रकृति के पास आता है, बाहर आता है और जब एक खुशनुमा माहौल पाता है वो, तो उसमें अपने आप को किलकारियों के द्वारा लोगों का मन प्रफुल्लित करता है। जब वही बच्चा बड़ा होता है, तो बड़े होने के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती। अब जिम्मेदारी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? जैसे पढ़ रहा है तो क्या हुआ, लोग उसको मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, मेरा बच्चा टॉप करना चाहिए। अब बच्चे से कभी ये नहीं पूछते हैं कि हाँ तुम्हें क्या जरूरत है, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो। अब जब अपने कैरियर को लेकर के जब वो परेशान रहता है, तब उस समय उसे काउंसलिंग की जरूरत हो। अब जैसे आप हमारे किसान भाइयों को देख लीजिए, जो उनसे बड़ा धैर्यशील कौन होगा, जो बराबर दैवीय आपदा के शिकार होते हैं फिर भी वो हंसते रहते हैं। हमारा ये कहना है कि जब आप किसी भी समस्या से ग्रसित होते हैं, तो प्रकृति ने हर समस्या का निदान दिया है, हम उस समस्या के निदान के लिए प्रयास हमें करना चाहिए। हम पहले क्या होता है, नकारात्मक भावना के लोगों के द्वारा जब हम सामना करते हैं, तो नकारात्मक लोग भाव वाले ज्यादा व्यक्ति मिलते हैं और सकारात्मक भाव वाले बहुत कम मिलते हैं। अब जैसे आपको कोई व्यक्ति मिलता है तो पूछता है, क्या हाल है भाई, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? अब आपकी तबीयत ठीक है, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक रूप से आपको जो है वो ऐसा प्रदर्शित करता है, तो आपको लगता है मैं बीमार हूँ। उसी तरह से कोई भी समस्या आपके सामने आती है, चाहे वो आर्थिक चाहे वो पारिवारिक हो, हर समस्या का निदान है। हमें जरूरत है उस समस्या के निदान को बैठ करके सोचने की। और यदि हम दिन भर अपने कार्यों के बारे में सोचें कि आज हमने क्या किया, और परमात्मा को धन्यवाद दें कि आज हमने बहुत अच्छा काम किया, चलो ये गड़बड़ हुआ इसको हमें दूर करना है, तो मैं समझता हूँ कि मानसिक तनाव रूपी व्यवस्था काफी कम हो सकती है लोगों की।
0: जी जी, यानी कहने का मतलब कि अगर कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो अगर हम उसको ठंडे दिमाग से, और एक तो आपने कहा कि ऐसे लोगों के पास जो सकारात्मक सोच वाले हैं, उनके साथ बैठ करके अगर हम लोग मशविरा किया जाए और उनसे कुछ उसके बारे में चर्चा की जाए, तो उसका कुछ न कुछ हल निकलेगा। परेशानी वहां पे आ जा रही है जहां पर कि इस तरह के जो नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच हम बढ़ जाते हैं, या फिर जब हमारा ऐसा माहौल मिल जाता है, आसपास के लोग हमारा सहयोग नहीं करते हैं, तो डॉक्टर साहब हमें लगता है तब हमारे अंदर की जो शक्ति है वो थोड़ा छीण होने लगती है, फिर हम कमजोर होने लगते हैं।
1: जी जी, एकदम सही आपने कहा। देखिए, शक्ति छीण होती है, इसी को दूर करने के लिए तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा जो सकारात्मक किताबों को पढ़ना होगा, लोगों के बीच में रहना होगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे दूरदर्शन या रेडियो के माध्यम से पहले चित्रहार गाना बजा करता था, विविध भारती या विभिन्न तरह के जो आपके आकाशवाणी के माध्यम से जो ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा जो है जो गीत संगीत के जो प्रोग्राम चलते थे, और गांव में चौपाल पे लोग क्या करते थे, रेडियो लोग बैठते थे, और रेडियो के कार्यक्रम में क्या होता था कि उन्हें जानकारी के साथ साथ उनका मनोरंजन भी होता था, और वो मनोरंजन इस तरह का होता था कि वो दिल खोल करके हंसते थे। जब उसमें कहते थे राम राम भैया, राम राम, तो लोग हंसते थे, लोग बोलते थे। ऐसा नहीं था कि रेडियो के माध्यम से उनकी बात स्टूडियो तक जा रही, लेकिन वो उनको लगता था कि अगला मुझे राम राम कहा है तो मुझे भी राम राम कहना है, मैंने एक अभिवादन का तरीका था। और आप ये जान लीजिए कि आप जो है हमेशा घर की समस्या को घर में रहने दीजिए, ऑफिस की समस्या को ऑफिस में रहने दीजिए, रास्ते में जो समस्या है आप उसको शॉर्ट लिस्टेड करने की कोशिश करिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, जो काम मेरे से नहीं होना है हम उसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं।
0: तो कहने का मतलब कि अपनी क्षमता के हिसाब से हम कदम बढ़ाएं, और अगर कोई परेशानी आती है तो जरूर उसके समाधान का भी हल निकलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए कि कुछ परिवार में या अपने समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनका जो मानसिक स्तर होता है वो अलग अलग होता है, वो उतना सोच नहीं पाते हैं। जैसे कोई बच्चे हैं, एक बच्चा होता है बहुत जल्दी जल्दी समझ लेता है, एक बच्चा होता है थोड़ा तो जल्दी नहीं समझ में आता है। तो सर, जैसे अगर इस तरह के बच्चे हैं या इस तरह के लोग हमारे आसपास हैं, तो क्या उनके मानसिक स्तर को, उनकी सोच को और विकसित करने के लिए भी कुछ किया जा सकता
1: है? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक बच्चा बहुत तेज है, बहुत जल्दी ग्राह्य करता है, एक बच्चा जल्दी ग्राह्य नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं है। घर परिवार के लोगों को एक साथ बैठ कर उनके साथ बैठना होगा और शेयर करना होगा। आपको मैं बताऊं, संयुक्त परिवार और जो न्यूक्लियर फैमिली जिसको कहते हैं, छोटा परिवार जिसको कहते हैं कि सिर्फ पति पत्नी और बच्चे, इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले। जब वो कंपाउंड फैमिली, आप संयुक्त परिवार में रहते थे, तो दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची सब साथ रहते थे, तो आपके बच्चे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो लोग उसको बताते थे कि देखिए आपका बच्चा यहाँ परेशान हो रहा है, इसको हमें दूर करना है। आप उनके साथ बैठ के मित्रवत व्यवहार करते, कोई प्रॉब्लम होती थी चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो चाहे कोई भी हो, घर का मुखिया बैठ करके उनकी समस्याओं को सुनता था, उसे दूर करने की कोशिश करता था। आज क्या है, हम काम के सिलसिले में बाहर निकल जाते हैं, महिलाएं काम के सिलसिले में रोना रोती हैं, में काम के लिए बहुत परेशान।

0: घर के पूरे काम को करने में पूरा समय निकल जाता है, ऐसा नहीं। हमें पति पत्नी हो या घर के मुखिया को थोड़ा सा समय निकाल करके बच्चों के साथ बैठना होगा, तभी हम उनके बारे में जान पाएंगे कि उनकी कमियां कहाँ पे हैं, क्यों उनका मानसिक स्तर हमारा बढ़ नहीं रहा है या क्यों मानसिक स्तर घट रहा है या कहाँ पे उनके विकास में बाधा आ रही है, उसे हमें दूर करना होगा।
1: ये तो सर अपने आसपास के लोग हैं उनके बीच हम रह करके इसको विकसित कर सकते हैं। कौन सा ऐसा लक्षण प्रतीत होने लगता है या कौन से ऐसी बातें दिखाई देने लगती हैं हम लोगों में जिससे कि हमको डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत पड़ जाती है या हम डॉक्टर के संरक्षण में रहें तभी हमको कुछ आराम मिल सकता है, ऐसे कौन कौन से लक्षण दिखते हैं?
0: देखिए, यदि बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को घर में कोई भी सदस्य हो यदि गुमसुम चुपचाप बैठा हुआ है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। जो बच्चा बहुत चंचल था आखिर गुमसुम क्यों हो गया, उसके पीछे कारण क्या है? जो बच्चा बहुत चंचल था गुमसुम हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण है। महिलाएं हैं, घर में काम करती थी, गुनगुनाती रहती थी, एकदम चुप बैठ गई। घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता था, यदि चुपचाप बहुत शांत रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से वो जो है परेशान है। अब आपको ये देखना है कि जब अंदरूनी रूप से परेशान है तो कोई ऐसा घातक कदम न उठा ले जिससे पूरे परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। जैसे होता क्या है, जैसे आपने अभी शुरुआत में कहा था कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मैं तो कहता हूं कि आत्महत्या करने वाला आदमी बुजदिल है, बहुत ही बड़ा बुजदिल आदमी है, क्योंकि प्रकृति ने भगवान ने आपको भेजा है तो आत्महत्या करने के लिए नहीं भेजा है। लेकिन आपको मैं बताऊं, आत्महत्या करने के पीछे एक कारण है, हमारे शरीर के कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं, मानसिक उद्वेग इस तरह का होता है कि कुछ पल के लिए जाते नहीं, एक आध दो सेकंड की बात आती है, एक दो सेकंड में कोई बंदा वहां आ गया, कोई व्यक्ति आ गया तो वो संभवतः व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता है, लेकिन एक दो सेकंड का ही जो आवेग होता है उसी आवेग में लोग गलत कदम उठा लेते हैं। इस आवेग को खत्म करने के लिए हमें जो है मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा, बैठ करके कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट योगा करें, मेडिटेशन करें, मन पसंद संगीत गीत नृत्य जिसका भी आप लुत्फ उठा सकते हैं उठाइए, और हमेशा जो है हंसने का प्रयास करिए, तब तो आप सभी मानसिक अवसादों से बच सकते हैं। अन्यथा फिर आपको जो है दवा लेने की जरूरत पड़ जाएगी, काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाएगी, और दवा जो आपके मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करने की जो स्थिति है वो होम्योपैथ में बड़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी दवाएं हैं, यदि काउंसलिंग करके उसको दिया जाए तो मैं समझता हूं कि उसका मानसिक विकार काफी हद तक कम हो जाएगा और वह व्यक्ति जो है अपने परिवार में हंसते हुए जो है रह सकता है।
1: जी जी, तो कहने का मतलब कि अगर किसी में ऐसे लक्षण प्रतीत होने लगे तो सबसे पहले तो उनको अपने पास बिठा करके बातचीत के माध्यम से उनको अच्छा माहौल दे करके उनकी समस्याओं को सुन करके इस परेशानी से उस व्यक्ति को निजात दिलाया जा सकता है, और फिर भी अगर ज्यादा परेशानी महसूस होती है तो डॉक्टरी सलाह लेकर के या फिर होम्योपैथ में जो भी चिकित्सा पद्धति है उसके अंतर्गत भी जा करके आप तनाव मुक्त रह सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ थे डॉक्टर संजय कुमार सिंह, आप जिले के वरिष्ठ होम्योपैथ मनोरोग चिकित्सक हैं, और आज हम सभी लोग बातचीत कर रहे थे कि तनाव मुक्त रहें और स्वस्थ रहें, तनाव मुक्त रहने के लिए कौन कौन सी बातों पर हमें ध्यान रखना है, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर साहब, आज आप स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: मुराओ भैया।
2: हाँ बघेलो भैया,
1: देखा कितना बढ़िया हम लोगों के अपन जो स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर संजय कुमार सिंह भैया बतौलन, हर तरह से एकदम फरिया फरिया के बतौलन कि कौने समय में हम लोगों के का करे के चाहिए।
2: बिल्कुल,
1: तो यह तरीके से हम लोगों के भी अपन जीवन में वही तरीके से अमल कैले के जरूरत बका है कि देखा कुछ ऐसा बर बरामी हो खलन ना कि जेकरा के कि हम लोग अपन योगा करके भी खत्म कर सकीला।
2: बिल्कुल एकदम सही कहा था भाई गिलो भैया, एकदम स्वस्थ और मस्त रह के हुए तो भैया देखा अपने दिनचर्या में योग के भी हम लोग उनके शामिल करे के चाहिए। और हम तो कहब कि भैया देखा एक ठो मनफेर के माध्यम से डॉक्टर संजय कुमार सिंह भैया के धन्यवाद देवल जाए, काहे कि इतना अच्छा जानकारी देलन हुए जेकरा से हम लोगन लाभ उठा सकीला। तो का कहत हुआ
1: तो भैया चलो सुनल जाए, लेकिन देखा उससे पहले एक संदेश भी बा, ओके सुन लिया।
2: बिल्कुल मुन्नर यादव उनका संगाते भैया के मन फेर एक ठो सुनल जाओ।
3: पापा लाइए 3,000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
4: है
3: नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो।

0: इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: भैया देखा कितना बढ़िया हम लोगन के मुन्नर यादव उनका संगतिया भैया गीत गौनाई सुनौलन, और देखा
1: बिल्कुल
0: गीत गौनाई भी होला तो देखा गीत गौनाई में हर तरह के संदेश हम लोगन के छिपल रहेला,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और इनकर गीत गौनाई से देखा हर तरह के संदेश हम लोगन के मिलल कि माटी के जाँच करावा, नया नया बीज मंगावा और ओकरे साथ देखा उन्नत फसल लगावा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हुआ भगेलू भैया। निश्चित रूप से भैया देखा इनकर कहानी भी सही रहे कि आज के परिवेश में जौन भैया देखा माटी के हालत हुए कि जौन भैया देखा हम लोग अंधाधुंध भैया रासायनिक खाद और दवा के उपयोग करत है जरा से माटी भैया देखा ऊसर हो गए हुए, और निश्चित रूप से भैया देखा फिर से हम लोगों के जौन बाकी मुड़ करके जैविक खेती की ओर बढ़ला की जरूरत हुए। और जैविक खेती जब हम लोगन करब तो भैया देखा ओकरा माटी में जीवांश के मात्रा बढ़ी और पैदावार भी बढ़ी और कई फायदा बा भैया ओकरा से।
0: और मुराव भी देखा जीवांश के बाद जब कहला ना तो जीवांश हम लोगों के बढ़ावे खातिर अपन कुछ तौर तरीका अपनौले के जरूरत बा, काहे कि देखा एक मुड़ दो मुड़ गाय गोरु हम लोग रखले है
1: बिल्कुल
0: तो ओकर देखा बनावे के तौर तरीका बा कि गोबर तो मिलवे करी लेकिन देखा ओके सड़ाई करके कंपोस्ट खाद बनावा, नाइडप खाद बनावा ये खेत में डाला, उससे हर तरह से हम लोगन के जीवांश की मात्रा मिलला। और ओकरे साथे साथे देखा एक बात यो कहते कि इसे जीवांश खाद हम लोगन के बनावे के बाद
1: हाँ भैया
0: तो हरा खाद के भी उपयोग करे के पड़ेला, जैसे कि देखा अब हम लोगन के जौन खेत खाली पहले से बा या हिसाबे से खाली हो गई तो मई जून के महीना में जोताई करके और ओमे देखा सनई ढांचा के बुआई कर दा, और जब पानी बरसी भैया तो खेत में ओके जोताई करके सड़ा दा तो देखा ओसे हरी खाद भी मिल जाला। और
1: बिल्कुल
0: रही बात एक और जैसे कि देखा हम लोग जब फसल उगाई ला तो सब तो हम लोगन के देखा कुछ ठूंठ तो रही जाला, सब तो काट करके खरियाने तक तो पहुँचाई नहीं,
1: बिल्कुल
0: तो वो अवशेष जोन रहला ओके हम लोगन के प्रबंधन कैले के जरूरत बा, काहे कि जब अवशेष बचला तो कुछ भैया लोगन के देखल जाला कि ओके जला दिहल जाला तो
1: बिल्कुल
0: जलावे के नहीं बा, काहे कि जलावे से हम लोगन के कई तरह के परेशानी होला हानि होला, तो हम लोगन के सड़ावे के चाहिए और ओसे हम लोगन के माटी में जब मिल जाए भैया तो एक खाद भी मिल जाला। और सबसे बड़न बात तो ये होला कि हम लोगन के फसल चक्र अपनौले के जरूरत होला,
1: बिल्कुल
0: काहे कि देखा फसल चक्र जब अपनावल जाए ना
1: हाँ
0: तो देखा हर तरह के हम लोगन के फायदा, जैसे कि अब हम लोग जो जौन भी खाद डाली ला तो कुछ प्रतिशत देखा हम लोगन के खाद आसमान में वायुमंडल में घूमत रहला, तो अब जैसे हम लोग गेहूँ लगौली तो हम लोगन के चना लगावे के बा, मसूर लगावे के बा, तिलहनी फसल में सरसों लगावे के बा, तो हम लोगन के तिलहनी दलहनी ये सब फसलन के मान फसल चक्र अपनावे के जरूरत बा, तो ये
1: बिल्कुल
0: तरीके से हम लोगन के अपन काम खेती के कर ले के बा और जीवांश बढ़ौले के जरूरत बा।
1: एकदम सही कहते हो भगेलू भैया। और भैया देखा जितना बात बतेला और निश्चित रूप से अगर हम लोगन ओकरा पालन करत है तो हम लोगन के माटी के सेहत बढ़े और उपजाऊ क्षमता भी बढ़े और ओकरे साथ साथ आस पास के जवन वातावरण बा वो भी भैया देखा स्वच्छ और बढ़िया रहे। और भैया देखा एक चीज और बा कि जौन भी उत्पादन भैया देखा हम लोगन अभी पैदा करत है और भैया देखा ओकरा खात है हम लोगन जा तो जौन पौष्टिकता हम लोगन के थाली तक पहुँचे के चाहिए। निश्चित रूप से वो पौष्टिकता अभी हम लोगन के थाली में मौजूद नहीं बा, तो जब हम लोगन अपने माटी में जीवांश के मात्रा बढ़ा दे पैदावार भी अच्छा हो लगी जैविक खाद से खेती हो लगी तो जौन गुणवत्ता भोजन में होए के चाहिए पौष्टिकता होए के चाहिए वो थाली तक पहुँचे और खा करके भैया देखा हम लोगन के मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहे।
0: तो भैया देखा हम लोगन के थाली सजौले के जरूरत बा, तो खाली दाले और भात और रोटी से काम नहीं चले के ओमे हर तरह के हम लोगन के पत्तेदार सब्जी के भी जरूरत पड़ेला, हर और फूल के जरूरत पड़ेला, तो ये तरीके से हम लोगन के हर ओरी नजरिया दौड़ौले के जरूरत बा।
1: एकदम एकदम सही कहत हो भगेलू भैया। आज के जोन बातचीत बा भेंटवार्ता क्रम भी बा कि पत्तेदार सब्जियों की खेती में सावधानियां अपन शकुंतला मौर्या बहिन आज अपने स्टूडियो में पहुंचल।

0: और
1: हाँ
0: अपन भोला भैया उनसे बातचीत करी है कि के तरह से भैया देखा पत्तेदार सब्जियां की खेती में सावधानियां बरते के चाहिए और पैदावार बढ़ावे के चाहिए। तो हम देखा कि वो लोगन बातचीत करे और हम लोगन सुनल जाए।
1: हाँ
2: श्रोताओं, आहार में विभिन्न प्रकार के साग सब्जी के होना बहुत जरूरी होता है, जिससे अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना की जा सकती है। जहाँ एक तरफ सब्जी अनाज दाल की बात आती है, तो वहीं दूसरी तरफ साग और उसके स्वादिष्टता को बढ़ाने के लिए धनिया या अन्य मसाले की भी आवश्यकता पड़ती है। आज एक साथ विभिन्न प्रकार के सब्जी और कंद के उत्पादन कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत रावशगंज ब्लॉक के मानपुर गांव से श्रीमती शकुंतला मौर्या जी स्टूडियो में आई हुई हैं। आपसे बातचीत होगी कि कौन कौन से साग सब्जी के उत्पादन आप कर रही हैं और एक साथ किन किन सब्जियों का उत्पादन, सागों का उत्पादन कर सकते हैं, इनसे बातचीत होगी। तो शकुंतला मौर्या जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग बातचीत किया जाए जो
1: हाँ,
2: ये आहार में हरियाली
1: हाँ
2: और विभिन्न
1: संतुलित आहार
2: विभिन्न
1: का।
2: विभिन्न प्रकार के
1: हाँ सा
2: जो साग
1: हाँ
2: सब्जियों
1: हरी
2: के,
1: हरी साग सब्जी।
2: जी जी जी जैसे हरा भी, लाल भी, वही में जोन बाकी पीला भी, हर तरह के सब्जियन के प्रयोग किया जाता है। कभी कभार ये भी है कि अगर सतरंगी आहार हो तो
1: हाँ
2: और स्वादिष्ट
1: और
2: माना
1: हाँ
2: जाता
1: और
2: है।
1: स्वादिष्ट हो।
2: तो आप कौन कौन से साग सब्जी उत्पादन कर रहे हैं इस समय?
1: इसमें तो भैया हमारे यहाँ लगल बा फूल गोभी लगल है, पत्ता गोभी लगल है, टमाटर भी लगत है, और जैसे कि ड्रैगन फ्रूट भी हमारे यहाँ भी बा,
2: अच्छा
1: फलत बा,
2: अच्छा अच्छा
1: निकलत
2: अच्छा
1: बा।
2: अच्छा अच्छा
1: हाँ, एकरे बाद भैया अब हम लोग नया सब्जी की तरफ आवत है जा, जो
2: बिल्कुल।
1: हरीदार पत्ते वाली सब्जी है। इसमें भैया हमन के ना पालक, मेथी, सोवा, धनिया,
2: अच्छा।
1: एकर भैया तैयारी होत है, खेत
2: हाँ,
1: बना था एकर तैयारी हुई बोवे बदे।
2: तो एके में लग जी है सर।
1: हाँ भैया, एकर जैसे ऐसे जैसे कि प्लाट नुमा बनावल जी,
2: हाँ
1: 6 फीट 7 फीट जैसे कि चौड़ा होके रही प्लाट के तरह बना देव जी। एकरे बाद जो मेड़ी हमन का तैयार हुई 6 7 फीट पर, ऊपर भैया जैसे कि अब पालक बोजाई, जन की प्लाट रही ओमन पालक बोजाई, धनिया बोजाई, सोवा बोजाई, और भैया जन हम लोग का मेड़ बची वो मेड़ पर हम लोग चुकंदर, मूली जैसे ऐसा सब जैसे कि हम लोग बो सकी लजाओ पर।
2: मतलब खेत के एक भी भाग शेष
1: हाँ
2: न
1: हाँ
2: रहे,
1: हाँ एक भी भाग
2: सब
1: शेष न रहे।
2: बिल्कुल सब में उत्पादन के लिए जुगत अपनावल जाए।
1: हाँ
2: तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये सबके खेत की तैयारी के बात कर जाए हम
1: हाँ
2: लोग,
1: भैया हाँ,
2: तो खेत की तैयारी कैसे करें?
1: खेत का तैयार भैया जैसे जमुने खेत में हम लोग के पालक लगाओ के, वो खेत में हम लोग का नेनुआ बोअल है पहले का बारिश वाला, तो जैसे
2: अच्छा।
1: भैया नेनुआ सब खत्म हो गल तब उमा का जैसे जन कुरहल घास पत्ता, जन कुछ झांगा उंगा, जन कुल हम लोग चढ़ैले रह लीजा, वो कुल के कुल काट पीट के घास हो सब पर साफ सुथरा कह के।
2: अच्छा अच्छा
1: हाँ,
2: अच्छा
1: तो ओके भैया हम लोग पावर टिलर हमारे यहाँ है, उससे हम लोग जोत दिले हिजा।
2: अच्छा
1: हाँ, जोतले के बाद भैया फिर वही पे मेड़ी बन गल है, तो वही मेड़ी उड़ी बना के तब खेत का तैयारी होता है इस समय।
2: अच्छा अच्छा जुताई होकर होता
1: हाँ,
2: है,
1: जुताई हो गल
2: जुताई
1: है।
2: करके मेढ़ी बन गई है।
1: हाँ, मेड़ी बन गल
2: तो
1: है।
2: सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि आप बतौलें कि सोया के भी करे के है, पालक भी, मेथी, धनिया और चुकंदर, और ये कि अगर हम लोग लेवल जाए तो एक तो जोन बाकी स्वास्थ्य वर्धक तो हल्ले है
1: हाँ
2: और
1: हाँ
2: स्वादिष्ट भी है।
1: हाँ स्वादिष्ट भी है।
2: अब
1: हाँ
2: धनिया जो साग सब्जी में पड़ जाए
1: हाँ
2: और वो कर सब्जी की जो एक रौनक तो बढ़ी जा
1: हाँ
2: रहा है।
1: रौनक भी बढ़ जाला, देखे भी
2: हाँ
1: अच्छा लगला।
2: बिल्कुल। तो सबसे महत्वपूर्ण धनिया की खेती अगर हम लोग कर जाए, हमें काका सावधानी बरती कि अच्छा धनिया हो या वो हमें जोन बाकी खोटाई भी होत रहे और फिर बार बार निकलत भी रहे।
1: हाँ, धनिया का भैया पहले बीज रहल जैसे कि वो एक धनिया जन हम लोग पहले गांव देहात में बोत रह ली जा, वो धनिया देसी बोलाए।
2: दर के जोन बोआए।
1: हाँ, जन दर के बोआए, तो वो धनिया का भैया थोड़ा सा आकार साइज बड़ा होला, ओमन तनी सुगंध सुगंध ज्यादा रहा,
2: हाँ
1: जन देसी धनिया बोला।
2: जी
1: अब भैया जन मार्केट में धनिया आ गल है, जन हम लोग धनिया बोत है, तो ई धनिया भैया हम लोग के अब दूसर धनिया आ गल है।
2: अच्छा।
1: जैसे कि जन पहले वाला जन धनिया देसी धनिया बोआत रहल, तो धनिया बार बार कटे न, ओके बस एक बार बोए दे, ओकर हल्का पतला पतला पत्ती हो और बहुत जल्दी ओमन से फूल निकल जाए।
2: ओके बीज।
1: हाँ, बीज बदे हो जाए, जैसे कि वो बहुत जल्दी फूल जाए ओमन, जैसे कि बहुत ज्यादा पत्ती वत्ती न बनावा, एकदम पतला पतला पेड़ रहो कर। तो वो भैया धनिया अब हम लोग के जैसे कि नहीं बुआ था,
2: अच्छा
1: वो धनिया जब भैया बोवे के हुई तो जे भैया बुहन तो जैसे कि जब सूखा धनिया जे मसाला में खायल जला तब ओकर धनिया उमन यूज होला।
2: अच्छा अच्छा।
1: अब भैया धनिया जैसे अभी कुल हम लोग के जो धनिया मार्केट में
2: पत्ता,
1: हाँ जो पत्ता वाला धनिया हम लोग के बोवे के बाद

0: एके भैया मार्केट में ले आओ बदे, हम लोग एक दूसर धनिया बोईल जा।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो दोनों के बुआई में कुछ अंतर करे खोला का
0: नहीं तो हाँ जैसे कि अंतर करके जौन अभी हम लोग के बीज वाला धनिया बोवे के हुई, जैसे कि जौन जैसे कि सूखा मसाला में खाए बदे वो धनिया थोड़ा भी लेट बुवाई।
1: अच्छा,
0: जौन मार्केट में बोवे वाला है ये धनिया भैया जैसे बोवल जाये देखे हम लोग एक एक दो कटाने के हम लोग काट भी सकी ले जा। हाँ, और जन देसी धनिया बुआ था तो कोई काट के नहीं बचत रहा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ,
1: तो धनिया के देख रेख में का सावधानी बरते के चाहिए?
0: धनिया के देख रेख में भैया सावधानी उसे कुछ नहीं बरते के है। धनिया अब पहले तो धनिया अब तो जैसे किस्म किस्म का धनियन का वरायटी आगल बा, इस वर्ष तो एक धनिया और अच्छी आई है।
1: अच्छा,
0: पहले का धनिया हम लोग बोए जाए तो 20 दिन लग जाए जमे में, 15 दिन लग जाए, बहुत मतलब लेट हो। अब भैया धनिया एक आएगा ये धनिया एकदम लोग जैसे बताओ थे कि 5-6 दिन में धनिया जम जाई
1: प्रजाति।
0: हाँ हाँ, प्रजाति तो भैया हम कितना याद नहीं बा लेकिन
1: अच्छा,
0: हाँ
1: अच्छा,
0: हाँ
1: मैंने वो के मंगला से कि जल्दी जमे वाला धनिया।
0: हाँ हाँ,
1: तो मिल जाये
0: बीज भंडार पर कहा तो मतलब वो लोग खुद बताए ना कि ये वाला धनिया ले जा, ये धनिया का अच्छा है 5-6 दिन में जम जाये।
1: अच्छा,
0: एक महीना के अंदर भैया धनिया और मार्केट जाए लायक हो जाये, अब बहुत जल्दी होकर विकास भी हुई।
1: अच्छा, तो रोग व्याधि नहीं लगे कुछ
0: धनिया भैया? ऐसे भी रोग व्याध नहीं लगा ला।
1: अच्छा,
0: जैसे कि धनिया सुगंधित होला उनके कीड़ा मकोड़ा खेबा नहीं करता।
1: मेथी
0: भी भैया सही है, जैसे कि मेथी का साग जैसे कि साग जैसे खाल जला तो इसमें भैया जो धनिया हम लोग जोन की जोन मेथी हम लोग इसमें बोबल जाये वो मेथी हम लोग कम से कम 200 रुपया पसेरी बिकी।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ इतना इसमें मेथी का जैसे कि ये समय के मेथी बोवल तैयार जे कर लही
1: आगे अगी
0: हाँ एकदम अगही जाए लगी, एक महीना के बाद मतलब वो तैयार हो जाये, वो हमन के कम से कम 200 रुपया पसेरी बिकी आराम से।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ,
1: बिल्कुल। और पालक पर भी ध्यान दो से?
0: हाँ भैया पालक। हाँ, पालक तो भैया जैसे कि जल्दी हो जाला।
1: अच्छा,
0: हाँ पालक जैसे हम लोग बो दे दवाई जा तो पालक जैसे कि पालक 5-6 दिन में जम जला, एक बाद भैया पालक बोले के एक महीना बाद उमन से पालक मतलब काटे लायक हो जी मार्केट ले जा लायक हो जी।
1: तो पालक में तो कभी कभी छेदा छेदा हमें?
0: हाँ हाँ, पालक में छेदा छेदा हो जला जिससे कि उमन तई कुछ जैसे कि पालक के पत्ती में सुगंध नहीं रहत, पालक के पत्ती में सुगंध न रही तो उमन कीड़ा मकोड़ा ज्यादा लगाना, तो जैसे कि कीटनाशक दवाई अपन हुआ एक आग बार छिड़के के होला ऐसे भी जैसे कि अब ठंडी का मौसम आवा था तो अपने आप किरोना खुद ही न लगी पालक में, लेकिन एक आग बार कीटनाशक दवाई पालक में मारे की पड़ी।
1: मारे की पड़ी। और सोया के?
0: सोवा में भैया कोनो रोग नहीं लगा।
1: अच्छा, अच्छा।
0: हाँ इसमें जैसे हम लोग सोवा जोन बोवत है जा अभी जैसे जब सोवा जम जाये तो वही सोवा जमले के एक महीना बाद उमन थोड़ा जैसे कि गलन के तरह रोगा वाला तो कहीं जही के जैसे कि सोवा हो कि 10 पेड़ यहाँ 10 पेड़ वहाँ जैसे कि सोवा गल जाये, ओकरे बाद भैया जैसे ओके सुधार करे बदे फफूंद नाशक दवाई का छिड़काव एक आग बार कर जला ओकरे बाद वो सोवा भी सही हो जाला।
1: अच्छा।
0: सोवा में कीड़ा कोनो नहीं लगता।
1: जी, जी।
0: सोवा में भी थोड़ा सुगंध हो तो उमन कीड़ा न लगी हन।
1: तो चुकंदर के भी देख रेख अलग से करे खोला
0: नहीं भैया? चुकंदर जैसे कि जन हम लोग के मेड़ी बनल है प्लाट बनल है वही के जन हम लोग के बीच बीच पर जैसे कि जन हम लोग के मेड़ी बनल है तो वही मेड़ी पर हम लोग भैया चुकंदर एक एक दाना बो देव जी।
1: अच्छा।
0: तो ऐसे हम लोग का सोवा भी हो जाये और पालक भी हो जाये मेथी भी हो जाये धनिया भी हो जाये और जन बीच में जन हम लोग का थोड़ा सा जगह बचल है ऊपर हम लोगों का
1: चुकंदर।
0: हाँ चुकंदर भी हो जाये जैसे मूली भी बो दही लजा।
1: हाँ मूली भी।
0: हाँ मूली भी हो सकला हो जला। हाँ
1: तो ये सब एक ही साथ तैयार हो जी सर?
0: थोड़ा सोवा में लेट हुई।
1: हाँ।
0: हाँ, सबसे जल्दी पालक हुई।
1: अच्छा, अच्छा।
0: इतना जैसे सब बुआ गल तो पालक मेथी
1: तो
0: 2-4 दिन के अंतर पर तैयार हो जी।
1: बिल्कुल। तो पालक के बार कटाई
0: भैया ये पालक काट के नहीं बिकत।
1: अच्छा,
0: मतलब हाँ पालक ऐसा बोवल जी कि जैसे कि बहुत ज्यादा घना भी पालक बोजी तो ओकर विकास नहीं होला एकदम पीला पीला हो जाये मतलब ओकर जन जड़ होला एकदम मजबूत न रही बढ़िया न रही।
1: पालक में अच्छा हरियाली बना?
0: हाँ पर पालक में अच्छा हरियाली रही थोड़ा थोड़ा जैसे कि दूर दूर कर पौधा जैसे बीज रही तो भैया अच्छा से बढ़िया मोटा मोटा पौधा हुई और देखे में भी पालक अच्छा लगी।
1: इस सब में कुछ खाद भी देवे खोला?
0: हाँ भैया देवे खोला खाद हो लेकिन जैसे कि पालक लोग में इस सब में खाद बहुत कम देवे खोला कैसे कि हम लोग के खेत में बकरी है हमारे यहाँ।
1: अच्छा, अच्छा।
0: हाँ तो बकरी कभी खाद फेकल है एक बाद बर्मी वाला भी खाद बनला वो जैसे हम लोग के बेसी बात वो छिड़ दी ला जा एक बाद गोबर का खाद गाय भैंस भी है तो गोबर की खाद जैसे कि हमेशा खेत में छिटात रहला ऐसे खेत हम लोग के दम बरियार है इस समय खाद देवे की जरूरत नहीं पड़त।
1: श्रोताओं देखें धनिया के बात है कि हर साग सब्जी में हम लोग का उपयोग कर सकीला। इतना बढ़िया जानकारी देवत रहने सोनभद्र जनपद अंतर्गत रावसगंज बल्लाक के मानपुर से श्रीमती शकुंतला बहन जी और स्टूडियो में आकर के इतना अच्छा सुझाव देवे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद भैया।

0: भोला भैया देखा तोरो के धन्यवाद बा, और शकुंतला मौर्य बहन के भी धन्यवाद बा, काहे कि इतना बढ़िया हम लोगन के जानकारी दिवोलन पत्तेदार सब्जियन के खेती के कैसे सावधानी रखे के बा और का का
1: बिल्कुल।
0: हम लोगन के करे के बा। तो ये तरीके से हम लोगन के भी अपन घरे, अगर भैया व्यवसाय के तौर से नहीं हम लोग कर सकीला तो अपन कम से कम घरे खाए खाती तो करे ही के पड़ी, और
1: बिल्कुल
0: जब खाए के करे के बाद तो कुछ सीख मिले के बाद। लेकिन भैया देखत है कि एकरे आगे भी हम लोगन के कुछ बात रहला, जैसे कि हम लोग तो पैदा कैली लेकिन ओकर भाव का बा, कहाँ के कौने भाव के बा हम लोगन के बेचे के बा, तो कहाँ के आज पाती तोहरे हाथे लगल बा।
1: बिल्कुल एकदम सही कहा था। भगेल भैया पैदा भैया देखा हम लोगों के साग साग सब्जी होखेला, तो भैया देखा जब अच्छा बाजार भाव मिलला तो भैया देखा खलीता भी भारी रहला और मन भैया देखा खेती किसानी में लगेला। तो आज बाजार भाव घोरावल से इंद्रासन मौर्या भैया भेजले हुए और पसेरी में हुए भैया। आलू सफेद वाला भैया देखा 65 से 70 रुपया पसेरी, लाल वाला 75 से 80 रुपया, प्याज डाले 200 से 225 रुपया पसेरी, लहसुन 600 से 650 रुपया और टमाटर रहले 260 से 280 रुपया पसेरी, मिर्चा 230 से 250 रुपया, बैगन 125 से 130 रुपया पसेरी, परवल 300 से 350 रुपया, कुंदरू 110 से 120 रुपया पसेरी, मूली रहले 180 से 200 रुपया पसेरी, धनिया 500 से 550 रुपया पसेरी, खीरा 140 से 150 रुपया पसेरी, बोरा 170 से 200 रुपया पसेरी, लौकी रहले 40 से 45 रुपया पसेरी, कोहड़ी 115 से 125 रुपया, करेला 110 से 115 रुपया पसेरी, मक्का भी आई रहे भैया 170 से 175 रुपया पसेरी, और पालक रहले 180 से 200 रुपया पसेरी, और गोभी रहले भैया फूल गोभी हो 800 से 1200 रुपया सैकड़ा, और नींबू भी आई रहले 300 से 350 रुपया प्रति सैकड़ा। ये रहे अपन घोरावल से बाजार भाव अपन इंद्रासन भैया भेजले रहलन और हमेशा बाजार भाव भेजलन, इनके भी धन्यवाद हुए भैया। और
0: भैया देखा अब तो हम लोगन के हर कुछ बात होगी, लेकिन अब पंचायती के समय भी होत बा ना, देखा धीरे धीरे पूरा हो ही रहल बा।
1: बिल्कुल
0: लेकिन हम ये कहल चाहते पंच भैया लोगन से
1: का भैया
0: कि भैया देखा हम लोगन के एक समाज में जवन कोढ़ बा, कुरीति बा, एकरा दूर कैले के जरूरत बा। काहे कि देखा हम लोग जवन बाल विवाह कर दहीला तो
1: हाँ
0: ऐसे हम लोगन के चाहे बचवा होखन चाहे बचिया होखन ये सब का देखा विकास नहीं हो पावेला।
1: बिल्कुल एकदम सही कहा हुआ भगेरु भैया। निश्चित रूप से भैया देखा सामाजिक बुराई हुए और सबके मिलजुल के भैया देखा एकर जोन बाकी खत्म करे के उपाय करे के चाहिए। और निश्चित रूप से भैया देखा जब उनकर बाल अवस्था में विवाह हो जाला तो उनकर पढ़ाई लिखाई शारीरिक विकास मानसिक विकास और सब कुछ रुक जाला और उनकर जोन बाकी सोच भी भैया देखा जोन बाकी कुंठित हो जाला। तो निश्चित रूप से भैया देखा सामाजिक बुराई हुए और एकर बहिष्कार सबके मिल के करे के चाहिए। कहीं भी ये तरह के भैया देखा शादी विवाह होखत हुए तो पुरजोर तरीके से भैया देखा ओकर विरोध करे के चाहिए, आवाज उठावे के चाहिए ताकि उनकर भविष्य उज्ज्वल हो सके और आगे पढ़ लिख करके प्रौढ़ होके तो जोन बाकी व्यस्क होके तब भैया देखा उनका शादी विवाह हो सके भैया।
0: अब ये देखा ये सब दूर करे के बाद ना, तो हम लोगन के जैसे अभी पंचायती लगल बा वही तरीके से अपन गांव गिराव में भी जगह जगह, चाहे भैया होखन चाहे भौजी लोग होखन, सब लोगन एक जगह जुट करके एकर बात एक दूसरे से साझा करन। और ओकरे साथे साथे ये भी नहीं हो सकेला भैया, तो देखा नुक्कड़ सभा भी अपना करके जागरूकता कैल जा सकेला। और देखा अब अपन पंचायती के समय पूरा हो गइल बा, काहे कि घड़ी के इशारा भी हो रहल बा।
1: एकदम भैया तो का कहत हुआ चल जाए सब पंचन
0: पंचन
1: के
0: के
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचों जय हिंद।
1: अभिषेक भैया।
0: हाँ पूर्व भैया।
1: देखो भैया, अपनी खेती बाड़ी की बात की जाए तो हमारे दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो अपन बीज, अपन माटी, अपन उर्वरक और पानी।
0: बिल्कुल अपूर्व भैया, और अगर ये सब चीजें नीके तेने मिल जाती हैं, नीकी होती हैं, तो जो अपन फसल होते, जो अपन उत्पादन होते, वो नीके तेने हमका मिलत है और हमारे सबका फायदा होते।
1: बिल्कुल भैया, और देखो अब तो खेती में यहाँ जहाँ पहले हम पंच देखित रहा कि सिर्फ बीज पर उर्वरक पर ध्यान देते रहे, लेकिन हुए पर देखो पानी पर भी ध्यान दे की जरूरत है।
0: बिल्कुल अपूर्व भैया, पानी बहुत जरूरी है, और काहे तेने पानी जब कम है तो उसका कम से कम इस्तेमाल होए, और कम इस्तेमाल के साथ साथ में यहाँ फसल में यहाँ ज्यादा उत्पादन होए, इस पर जोर देख जरूरत है।
1: बिल्कुल, यह के लिए देखो हम पंचन का प्रयास रहते हैं प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन होए।
0: बिल्कुल भैया,
1: ई के लिए हम तरह तरह की विधियां अपनाई है। देखो कबो कबो ड्रिप विधि द्वारा है, स्प्रिंकलर विधि द्वारा है सिंचाई करित है, और टपक सिंचाई भी देखो भैया एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हम जल बचा सकित है और अधिक फसल उत्पादन कर सकित है।
0: बिल्कुल अपूर्व भैया, इस सब विधिन का इस्तेमाल करके हम सीधे अपने फसल के कम पानी में ज्यादा मुनाफा, ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो हमेशा अपनी फसल का पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, पानी का दुरुपयोग न हो, ई के लिए हमका प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन पर ध्यान देकर चाहिए।
0: अपूर्व भैया, आप अपने किसान पंचन का दे दिन जाए आज के जानकारी जो है आज के खबरन में।
2: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देश भर में 22 अक्टूबर से खेत बचाओ अभियान शुरू करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय की पहली मासिक समीक्षा बैठक में इसकी घोषणा की। यह अभियान मुख्य रूप से मिट्टी की घटती उर्वरता, पराली प्रबंधन और रासायनिक खादों के असंतुलित इस्तेमाल जैसी समस्याओं पर केंद्रित होगा। इसके तहत कृषि वैज्ञानिक और विभागीय कर्मचारी सीधे खेतों तक पहुंचकर किसानों को मिट्टी की जांच, संतुलित खाद के प्रयोग और फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी देंगे। अभियान में राज्य सरकारें भी भागीदारी करेंगी। बैठक में बताया गया कि डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत अब तक 10 करोड़ 77 लाख किसानों की विशिष्ट किसान पहचान तैयार की जा चुकी है। वहीं इस वर्ष फसल बीमा योजना में किसानों के पंजीकरण में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि करना और खेती को टिकाऊ बनाना भी है।
1: अभिषेक भैया।
0: हाँ भैया,
1: आज की खबरन के बाद में देखो हम पंच खेती तो करते हैं, साथ में पशुपालन का भी कार्य करित है, और जहाँ पर हमरे लिए खाद्यान्न की आवश्यकता होते है, हुए पर अपने पशुओं के लिए हरे चारे की भी आवश्यकता होते है।
0: बिल्कुल अपूर्व भैया, तो आज अपने आज की बात में सुन लीजिए भेंटवार्ता।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहाँ पशुपालन आप कर रहे हैं, वहाँ रबी में हरा चारा उत्पादन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से संयुक्त निदेशक डॉक्टर केशव कुमार साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि रबी के मौसम में पशुपालक भाई बहन कौन कौन से हरे चारे का उत्पादन करें ताकि उनके जानवर भी पौष्टिक हरा चारा प्राप्त करें।
4: किसान भाइयों बहनों नमस्कार, जो रबी का मौसम है ये इतना अच्छा मौसम है जिसमें किसान भाई बहन चाहें तो प्रचुर मात्रा में हरे चारे का उत्पादन कर सकते हैं, और हरे चारे के उत्पादन के साथ साथ अगर उनको पशुओं को उपलब्ध कराया जाएगा तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, उनका दूध उत्पादन बढ़ जाएगा, और इस

0: इसलिए विशेष रूप से आप लोग इस मौसम में हरे चारे का उत्पादन जरूर करें।
1: कौन कौन सी फसलें हैं जिसको उगाएं इस समय अपनी फसल योजना में?
0: जी, इस समय सबसे अच्छा जो रबी में होता है बरसीम, जई और रिजका, ये तीन फसलें ऐसी हैं जो किसान भाई बहन अगर उगाते हैं तो पर्याप्त उत्पादन होगा, इसके साथ साथ पशुओं के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत चाव से खाएंगे।
1: बरसीम की बात करें डॉक्टर साहब, तो कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं?
0: इसके लिए जो कॉमन या बहुत ही प्रचलित वैरायटी है या प्रजाति है वो है BL1, BL10, BRD, B1 और मसक्वी, ये कॉमन इसमें आजकल प्रचलित हैं।
1: तो इसकी बुआई का उपयुक्त समय क्या है?
0: जी, बुआई का समय अब शुरू हो चुका है, पूरा अक्टूबर माह और 15 नवंबर इसके बीच बुआई कर देना जरूरी होता है ताकि समय पर इसका उत्पादन हो सके।
1: और आपने जई का नाम लिया, तो जई तो बहु कटान वाली होती है?
0: हाँ, जई की आप सिंगल कट भी कर सकते हैं और मल्टी कट भी कर सकते हैं, बहु कटान वाली भी है जई, तो जई की भी बुआई इसी समय कर देना उचित रहता है।
1: तो जई की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं डॉक्टर साहब?
0: जई के लिए केंट एक उन्नत किस्म है, OS6, JO1 और UPO2121।
1: और तीसरा हरा चारा रबी के लिए आपने लूसर्न यानी रिजका बताया,
0: जी हाँ,
1: इसकी कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं?
0: रिजका के लिए आनंद 2, T9 और LLC3, ये इसकी जो उन्नत प्रजाति हैं। और ये आपको और बता दूंगा कि रिजका के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे इनको लगाया जा सकता है।
1: अब चाहे बरसीम हो, जई हो
0: जी
1: या लूसर्न हो
0: जी,
1: इसके लिए खेत की तैयारी और खेत का चुनाव कैसा हो?
0: जी जी इसके लिए जो खेत अपना है उस खेत में सबसे पहले हम लोग एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं और इसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करते हैं और जुताई पूरा होने के बाद एक पाटा चला देते हैं जिससे मिट्टी जो भुरभुरी और समतल हो जाती है। और साथ ही ये भी ध्यान रखते हैं कि भविष्य में किसी तरह से जल भराव ना हो और जल निकासी की ठीक से व्यवस्था उसमें कर ली जाए।
1: बुआई के पहले बीज शोधन और बीज का उपचार भी आवश्यक है डॉक्टर साहब?
0: जी हाँ बिल्कुल, खासकर जो दलहनी फसलें हैं ये तो अपने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन अपने पास ले लेती हैं, लेकिन इसका उपचार कर देने से और इसके अंदर जड़ों में गांठ अच्छी बन जाती है। और उपचार करने के लिए गुड़ के घोल में जो राइजोबियम कल्चर होता है इसको मिला लेते हैं और इसको हल्के हाथ से मल देते हैं और छाया में सुखा देते हैं, इसके बाद इसकी बुआई करते हैं तो जड़ में ठीक से गांठें आती हैं और उन गांठों से जो वातावरण का नाइट्रोजन है अवशोषित हो जाता है जो आगे खाद का काम करता है।
1: ये जो भी फसलें हैं इनको फर्दा बुआई करें या मिश्रित भी कर सकते
0: हैं? मिश्रित में क्या करते हैं, बरसीम और जई को मिला लेते हैं और उसके साथ बुआई करते हैं और कभी कभी उसमें सरसों भी मिला दिया जाता है।
1: बरसीम के साथ?
0: बरसीम के साथ।
1: डॉक्टर साहब, चाहे बरसीम हो, जई हो या लूसर्न हो,
0: जी
1: तीनों हरा चारा की फसल है तो इनको भूख भी लगती होगी, तो इनकी भूख कैसे मिटे?
0: जी बिल्कुल सही बोला आपने, खेत में जो हम लोग इनको लगा देते हैं लगाने के साथ साथ इनकी बढ़वार के लिए जो जमीन में पोषक तत्व जरूरी होते हैं वो तो देना पड़ेगा। इसके लिए लगभग 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अगर प्रति एकड़ डाला जाए तो पर्याप्त मात्रा में उनको जो पोषक तत्व है फसल के लिए उपलब्ध हो जाएगी और आगे जाके फिर बरसीम और रिजका में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी तरह की खाद की। लेकिन तीसरी फसल हमारी जई है, जई में कुछ आवश्यकता पड़ती है, पहली कटाई के बाद उसमें थोड़ा सा कुछ यूरिया की आवश्यकता पड़ती है।
1: यानी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं?
0: जी हाँ बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, बीच बीच में फसल की प्यास भी बुझानी होगी?
0: हाँ बिल्कुल सही, इसके लिए जब प्यास बुझाने की बात आती है तो खासकर जो बरसीम है, बरसीम को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। पहले तो फसल की जब बुआई करते हैं बुआई के कुछ दिन के बाद ही हमको एक पानी उसमें लगा देना चाहिए,
1: तुरंत बाद।
0: और इसके साथ साथ हर 10-12 दिन के अंतराल पे भी इसकी सिंचाई करती रहनी चाहिए ताकि इसका जो उत्पादन है वो ऑप्टिमम मिल जाए, अच्छा से अच्छा मिल जाए।
1: और जई में?
0: जई में ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है और जई में चूंकि जई और रिजका में कम पानी की आवश्यकता होगी तो आप खेत में स्थिति देखते हुए इसको जैसे जमीन में नमी कम होने लगे तो इसको आप दोबारा सिंचाई कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, रबी में हरा चारा उत्पादन की बात चल रही है
0: जी,
1: तो कटाई प्रबंधन और चारे की बचत
0: जी
1: भी
0: जी
1: महत्वपूर्ण है?
0: बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर हम हरे चारे की कटाई में समय का ध्यान न रखें और बहुत जल्दी काट दें तो उत्पादन हमें कम मिलेगा और अगर देर कर दें तो उसमें जो फाइबर है रेशे ज्यादा हो जाएंगे, जो चारा कड़ा हो जाएगा तो पशु उसको चाव से नहीं खाएगा, तो इस तरह से इसको समय से ही काट लेना उचित रहेगा।

0: जिससे हम अधिक से अधिक उस उत्पादन ले सकें और पशु के लिए अच्छा रहे वो।
1: डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा हो जाता है कि हरा चारा ज्यादा उपलब्ध है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: क्या उसको सुरक्षित भी रखा जा सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये तो आजकल सभी किसान भाई बहनों को जानना चाहिए, और अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो आप दो तरह से इसको रख सकते हैं, एक तो बोलते हैं साइलेज और दूसरा बोलते हैं हे। हे क्या होता है कि पूरे फसल को, खड़ी फसल को जिसमें सब कुछ लगा होता है, वो लेके और सुखा दिया जाता है, और इसमें जो पोषक तत्व की मात्रा है वो पर्याप्त होती है। जब सूख जाएगा तो आवश्यकता अनुसार इसको आप काट के खिला सकते हैं। और दूसरा होता है साइलेज। साइलेज में क्या होता है, हरे फसल को ही हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं, काट के जमीन में उसको दबा देते हैं और अच्छी तरह से कवर कर देते हैं ताकि वो उसमें फर्मेंटेशन हो जाए, और उसके बाद वो 1 साल तक सुरक्षित रहता है। आवश्यकता अनुसार आप उसको खिलाते रह सकते हैं, जब खासकर मई जून में आपके पास हरे चारे की किल्लत होती है, उस समय अपने आप जो पशु हैं उनको आप अच्छे से दे सकते हैं इसको।
1: यानी एक तरह का पशुओं के लिए अचार हो गया।
0: जी हाँ, इसको पशुओं का अचार बोला जाता है साइलेज को।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे
0: जी
1: रबी में हरा चारा उत्पादन के बारे में।
0: जी
1: अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके पशुपालन निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी किसान भाइयों बहनों, मेरा नंबर नोट कर लें, 9415234589, 94-15-23-45-89, 9415-23-45-89।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं पशुपालक भाइयों बहनों का रबी में हरा चारा उत्पादन के बारे में डॉक्टर साहब?
0: जी मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग निश्चित रूप से अपना मन बना लें और योजना बना लें, और समय निकलने से पहले ही हरे चारे की बुआई करें ताकि उसके उत्पादन से आप अपने पशुओं को साल भर के लिए अच्छी इम्यूनिटी प्रदान कर सकें, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर सकें और उनका दूध उत्पादन बढ़ा सकें।
1: डॉक्टर केशव कुमार साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और रबी में हरा चारा उत्पादन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मान

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित का कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बेहद जानकारी के लिए बातें तो हुई गई, तो अब सुना दी जाए पंचन का एक लोकगीत। कहते हैं मनोरंजन बहुत जरूरी होते हैं अपने कार्यक्रम में, यहाँ पंच इंतजार करते हैं कि कोनो न कोनो लोकगीत हमका जरूर सुनावा जाए।

0: अभिषेक भैया,
1: हाँ भैया।
0: देखो लोकगीत तो बहुत बढ़िया रहा है और आज के किसान के कार्यक्रम में बता रहे हैं धान उत्पादन के बारे में।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं अमेठी जनपद के सिंहपुर ब्लॉक के पूरे बैसन मजरे जैतपुर, जहां के नॉनमेसी किसान अर्जुन सिंह भदौरिया भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। भदौरिया जी नमस्कार।
3: नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार।
2: भैया ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है,
3: हमारे खेत में इस समय धान की फसल खड़ी है। हाँ,
2: ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: डॉक्टर साहब, मेरी पढ़ाई लिखाई तो एमकॉम है और खेती से जुड़ाव इस तरह हुआ कि मेरे जो भी पैतृक हमारे पास भूमि थी वो उसरीली भूमि थी, तो वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था और उस चैलेंज को हम स्वीकार करते हुए इस ऊसर जमीन में हमने जो है फसलें अच्छी पैदा करनी शुरू की। और थोड़ा थोड़ा शुरू किया तो लोग देखने आने लगे, उससे हमारी रुचि बढ़ी और फिर खेती की तरफ झुकाव हो गया, फिर नौकरी की तरफ हम नहीं गए।
2: कितने साल पुरानी बात है?
3: ये लगभग 32 साल पुरानी बात है।
2: कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: हमारे पास जमीन है लगभग 18 एकड़, हाँ,
2: अच्छा, पूरे सम्मिलित परिवार की?
3: सम्मिलित परिवार की, जिसमें से हम 9 एकड़ में धान की खेती अपनी निजी किए हैं।
2: तो 9 एकड़ में कौन कौन सी वैरायटी है आपके खेत में?
3: 9 एकड़ में हमारे पास MTU 7029 है और एक पान की जमुना 804 है, हाइब्रिड वैरायटी है। के अलावा एक हमारे पास सरकारी बीज भंडार से लिया था, सुगंधा,
2: मालवी सुगंधा।
3: हाँ, मालवी सुगंधा, खाने में थोड़ा चावल अच्छा होता है तो अपने इष्ट मित्रों और स्वयं के खाने के लिए इसकी खेती की है।
2: तो इस समय फसल कैसी चल रही है आपकी?
3: इस समय जमुना 804 में बालियां झुक रही हैं, इसके अलावा इसमें सुगंधा में भी बालियां झुक गई हैं, MTU 7029 में बालियां आ रही हैं और इस बार हर वर्ष की अपेक्षा फसल अच्छी है, अभी बहुत अच्छी दिख रही है।
2: तो ये बताएं कि धान 9 एकड़ आपके पास है, रोपाई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और उसके पहले नर्सरी से लेकर के और फसल की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण

0: काम करते हैं धान की फसल में?
1: इस बार तो लगभग 4 एकड़ में हमने ढैंचा की भी हरी खाद की थी। इसके अलावा हमारे पड़ोस में वो आश्रय स्थल है, वहाँ से करीब 42 ट्राली गोबर की खाद भी हमने खरीद के डलवाई है। तो हम थोड़ा सा रासायनिक उर्वरकों की तरफ कम रुझान रखते हैं, देसी खादों की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं।
0: तो खेत का हीमोग्लोबिन आपका बढ़ा होगा?
1: बहुत बड़ा है। अब हम ये देखें कि तमाम लोग तमाम तरह की दवाएं डालते हैं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा और ये जो देसी खादें हैं इनका प्रयोग करने से हमको जरूरत नहीं पड़ती है कि हम किसी दवा का छिड़काव करें, या बहुत यूरिया डीएपी की ही हमको जरूरत पड़ती है। नाम मात्र जो खेत हमको लगता है कि डालने लायक उसी में डालते हैं। कुछ खेत तो ऐसे हैं जिनमें हम 4-5 साल से प्रयोग ही नहीं किए हैं, लगभग 1.5 एकड़ है उसमें कोई खाद डालते ही नहीं है।
0: तो धान की फसल कब तक आपकी तैयार हो जाएगी?
1: ये धान की फसल इस महीने के अंत तक तो ये सुगंधा तैयार हो जाएगी, लगभग 2-3 नवंबर तक काटने लायक हो जाएगी, और 10 नवंबर तक ये पान की 804 भी तैयार हो जाएगी, और
0: और
1: करीब
0: देरी रहेगी तो एमटीयू 70-29 में?
1: 70-29-20 नवंबर के बाद कटेगी लोग।
0: तो पिछले कई सालों से लगातार आप धान उत्पादन कर रहे हैं और आपने अपनी बीमार माटी को सुधार लिया है, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा लिया है, तो
1: जी
0: एकड़ पीछे लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
1: ये MTU 70-29 तो हमारी समझ से 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल मिल जाता है,
0: जी
1: और इसके अलावा पान का भी पिछली बार थोड़ी की थी उसका भी एवरेज बहुत बढ़िया था। तो इस बार भी हमें लगता है कि पिछली बार हम 25 कुंटल तक 1 एकड़ में काटे थे और एक ही एकड़ था, इस बार ज्यादा हमारे पास लगभग 6 एकड़ के आसपास है ये पान की
0: जी
1: 804। तो हमारी
0: और
1: समझ से 25 से ऊपर एक एकड़ में 25 कुंटल से ऊपर की ही पैदावार होनी है।
0: मालवी सुगंधा तो
1: मालवी सुगंधा 20-22 कुंटल तक आती है।
0: कुल मिला जुला करके आप खेती करके खुशहाल हैं?
1: जी हाँ, खेती करके खुशहाल है। बेटियों की शादी इसी खेती, कहीं हमने कोई और काम किया नहीं, बेटे को पढ़ाए लिखाए, तो कुछ ना करके सिर्फ खेती से माटी से अपनी जुड़ के ही हमने अपना कुछ किया है।
0: तो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते होंगे?
1: जी हमारे पास 2 साहीवाल गाय है, एक बछिया है, और करीब 7 से 8 लीटर दूध भी एक गाभिन है और एक से दूध निकलता है। तो जो खाया जाता है कुछ थोड़ा बहुत उसके खाने भर के लिए जो दाना पानी है पशु आहार है उसके लिए थोड़ा बहुत पड़ोस की एक डेयरी है पराग की, उसी पे ऐसे दूध भी चला जाता है।
0: जो खरीफ फसलों का खेत खाली होगा यानी धान का खेत खाली होगा तो उसमें रबी में क्या तैयारी है?
1: रबी में एक तो जो जल्दी तैयार हो जाएंगे उसमें तिलहन अपना सरसों की खेती होगी, और उसके बाद थोड़ी मटर की तैयारी है बैरिकेटिंग के लिए कि नील गाय का प्रकोप अधिक रहता है, तो उसमें मटर और चना 1 एकड़ का है उसमें मटर और चना करेंगे, थोड़ी सी मसूर भी करना है, इसके अलावा फिर और गेहूं ही रहेगा।
0: आप एक युवा किसान हैं और अपनी खेती में नौनमेसी प्रयोग करते रहते हैं, जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो नई पीढ़ी से हैं?
1: हम सभी किसान भाई बहनों को सलाह देना ये चाहते हैं कि अगर ज्यादा दिन तक अच्छी खेती करना है, गुणवत्तापूर्ण अनाज लेना है, तो देसी खादों की तरफ जाएं, गोबर की खाद डालें, कंपोस्ट बनाएं, कंपोस्ट डालें। तालाब अगर कोई आबादी के अंदर उसका गांव का कूड़ा कचरा जाता है उसकी थोड़ी बहुत नीचे की मिट्टी अगर निकाल के गर्मी के महीनों में खेत में चली जाए वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। और अगर ऊसर जमीन है तो प्रयास करें कि एक बार खूब गहरी जुताई करवा दें, चाहे मोर प्लाऊ से करा दें, तो जो ऊपर की कंकड़ की परत है एक बार टूट जाए अच्छे से, फिर उसमें जो है जिप्सम अगर मिल जा रही है तो ठीक है, नहीं जिप्सम मिल रही है तो गोबर की खाद भी, गोबर की खाद में थोड़ा समय लगेगा लेकिन जिप्सम मिलती है तो 1-2 साल में खेत ठीक हो जाएगा। तो खेती में सबसे जरूरी है कि देसी जो पुराने तरीके थे उनकी तरफ अगर जाएंगे तो हमारी खेती टिकाऊ होगी।
0: यानी जो पारंपरिक ज्ञान है और आधुनिक विज्ञान है उसका मेल करना है।
1: जी, दोनों का जब तक मेल नहीं होगा तब तक हम टिकाऊ खेती नहीं कर पाएंगे।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन

0: उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है 95-59-25-77, 9559962577, 95-59-26-77।
0: अर्जुन सिंह भदौरिया भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि आप इस समय 9 एकड़ धान की खेती कर रहे हैं, जिसमें कुल 3 प्रजातियां हैं, MTU 70-29 और मालवी सुगंधा की खेती आप कर रहे हैं।
1: जी
0: कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं और किसान भाइयों बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इतनी अच्छी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हर जो

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: अभिषेक भैया, पंच भाई का अपन पता बता दीन जाए।
7: भैया पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001।
6: और हमारे कार्यक्रम का ईमेल है
7: farmandhome@gmail.com।
6: तो यह के साथ देखो अभिषेक भैया, अपने कार्यक्रम का समय पूर्ण हो रहा है, तो पंच भाई से लीन जाए विदा।
7: जय हिंद।

0: प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सस्ता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 803 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार की योजनाओं से बलरामपुर ने स्थापित किए विकास के नए प्रतिमान। गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों के चलते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। रेलवे ने कई ट्रेनें की रद्द। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में किया जाएगा आयोजित। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कार्यक्रम में होंगे शामिल। और कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर प्रदेश भर के देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में तैयारियां पूरी। पर्यटन विभाग कराएगा प्रदेश के 24 जिलों के 26 देवी मंदिरों में

0: सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर के रेहड़ा बाजार विकास खंड के बिलरिया गांव में 803 करोड़ रुपए से अधिक की 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बलरामपुर के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की धनराशि भेजी गई है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर विकास के नए प्रतिमान स्थापित करने वाले जनपद के रूप में आगे बढ़ा है। श्री योगी ने कहा कि मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का सत्र शुरू हो चुका है। भवन तैयार होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
1: प्रगति की एक नई गति के साथ आगे बढ़ा करके बलरामपुर जनपद को आकांक्षात्मक जनपद से आगे बढ़ा करके संभावना वाले जनपद के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होता है। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि बलरामपुर में भी कभी विश्वविद्यालय होगा, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है बलरामपुर में मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय का सत्र प्रारंभ हो चुका है और बहुत शीघ्र उसका अपना भवन बनकर के तैयार होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बलरामपुर में आमंत्रित करके उसका भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम भी हम आयोजित करवाएंगे।
0: मुख्यमंत्री कल सुबह देवीपाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी देवी का दर्शन पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्ष 2017 के बाद कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। उन्होंने अन्नदाता किसान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार भी बताया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार आज अन्नदाता किसान को बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दशकों से लटकी सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं। प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 21% का योगदान कर रहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया है। उधर रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ी रद्द कर दी। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात जाम की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह पहल नशा मुक्त युवा विकसित भारत के विषय पर केंद्रित है। यह अभियान फिट इंडिया और नशा मुक्त समाज के निर्माण की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है। इस कार्यक्रम में उन खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने 2026 के आईची नागोया एशियाई खेलों में अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।

0: चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
1: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में भी आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
0: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त करना है। वाराणसी की रहने वाली सुनीता देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने के बाद जीवन बेहद आसान हो गया है।
2: पहले लकड़ी और उपलों पर खाना बनाना पड़ता था, जिससे धुआं होता था और आंखों में जलन भी होती थी। अब गैस सिलेंडर की मदद से कम समय में आसानी से खाना बना लेती हूँ। उज्ज्वला योजना ने हम जैसी महिलाओं के जीवन को सुविधाजनक बनाने में मदद की है, इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ।
0: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
3: कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर प्रदेश भर के देवी मंदिरों और शक्ति पीठों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मां विंध्यवासिनी धाम में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पर्यटन विभाग की तरफ से प्रदेश के 24 जिलों के 26 प्रमुख देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: विंध्याचल व उसके आसपास के मंदिरों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे मेला क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से 10 जोन और 21 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में कुल 2,526 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए 222 सीसीटीवी कैमरे और 4 ड्रोन लगाए गए हैं। वहीं रामनगरी अयोध्या में नवरात्र को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या मंडल के 5 जिलों में लगभग 10,000 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। इस बार शारदीय नवरात्र में प्रदेश के 24 जिलों के 26 प्रमुख देवी मंदिरों में शक्ति आराधना के साथ महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का संदेश गूंजेगा। मिशन शक्ति के तहत 17, 18 और 19 अक्टूबर को प्रदेश के चयनित मंदिरों में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे। सहारनपुर में आज एक सड़क हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा देवबंद में हाईवे स्थित फ्लाईओवर पर उस समय हुआ जब मां शाकंभरी देवी के दर्शन कर माता की ज्योत लेकर श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए लौट रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताया है। झांसी में आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। 21 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर की 29 टीमें भाग ले रही हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 803 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार की योजनाओं से बलरामपुर ने स्थापित किए विकास के नए प्रतिमान। गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों के चलते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। रेलवे ने कई ट्रेनें की रद्द। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में किया जाएगा आयोजित। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कार्यक्रम में होंगे शामिल। और कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर प्रदेश भर के देवी मंदिरों और शक्ति पीठों में तैयारियां पूरी। पर्यटन विभाग कराएगा प्रदेश के 24 जिलों के 26 देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है, FM 102.7 पर। प्रस्तुत है मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, सबरस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म सौदागर के इस गीत के साथ, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति के साथ मनहर उदास और सुखिंदर सिंह ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

श्रोताओं, सबरस कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे अनु मलिक के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शे का लिखा गीत, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म थी आरजू।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं आनंद वलिन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में फिल्म है छुपा रुस्तम।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे समीर का लिखा गीत आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में और आवाजें थी कुमार शानू, उदित नारायण और अलका याग्निक के। फिल्म थी सुहाग। कार्यक्रम के आखिर में ये सुनते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत। अनुराधा पौडवाल, जसविंदर नरूला और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। फिल्म है बादल।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के उभरा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं चंद गजलें।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम के आखिर में भी आप सुन रहे थे चंदन सिंह की, क्षमा कीजिएगा, चंदन दास की आवाज में ये प्यारी सी गजल। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में गुलजार के लिखे गीत के साथ, जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने। फिल्म है इजाजत।

श्रोतु भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म बाजार में, बोल में मीर तकी मीर के थे और तर्ज बनाई थी खयाम ने। श्रोतु कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मासूम से अनूप घोषाल की आवाज में, बोल गुलजार के हैं और तर्ज बनाई है आड़ी बर्मन ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे अजीम मलिक की लिखी गजल चंदन दास की आवाज में। कार्यक्रम का

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप हिंदी समाचार सुनेंगे। इसके तुरंत बाद रात्रि 9 बजे सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम

0: हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
2: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
3: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं,
4: स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए,
3: लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने

0: वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
3: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
2: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
4: मेरा नाम मुकेश भाई नाइका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
2: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपए के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
2: भारतीय सूचना सेवा के 1993

0: में बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो अविवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
1: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दो रास्ते। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और तर्ज बनाए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म पगला कहीं का में। गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इसी के साथ हमारा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति के इस सफर में आज सुनेंगे एक नए सांस्कृतिक गांव की कहानी, एक कलाकार की अनुपस्थिति से बातचीत, शहर की छतों पर उगती हरियाली और कुछ ऐसे नाम जिन्हें हम आज याद करेंगे। सबसे पहले हमारा संपादकीय। कल 11 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 अक्टूबर को बालिका दिवस घोषित किया। पहली बार ये दिवस 2012 में मनाया गया और इसकी जड़ें 1995 की बीजिंग घोषणा में है, जहां पहली बार बालिका को नीति विमर्श के केंद्र में रखा गया था। यानी दुनिया को ये मानने में भी सदियां लगी कि लड़की सिर्फ किसी की बेटी या बहन नहीं, अपने आप में एक स्वतंत्र नागरिक है। भारत की कहानी भी इस मायने में ज्यादा अलग नहीं थी और कुछ मायनों में अलग भी है। 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने लड़कियों का स्कूल खोला था। यानी बालिका शिक्षा का बीज हमारी ही मिट्टी में बहुत पहले पड़ चुका था। फिर भी आज के आंकड़े हमें एक आईना सा दिखाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2019-21 के अनुसार 20 से 24 साल की लगभग 23% लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले ही हो गया था। NFHS 4 में ये आंकड़ा करीब 27% था। इन आंकड़ों में ये गिरावट सुकून तो देती है, पर हर चौथी पांचवी बच्ची की शादी का बचपन में हो जाना कोई छोटी बात नहीं। जन्म के समय लिंगानुपात में भी थोड़ा सुधार दिखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू हुआ और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं भी आई। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा, मगर कार्यबल में उनकी भागीदारी का सवाल अब भी खड़ा है। सवाल अब सिर्फ स्कूल तक पहुंचने का नहीं, स्कूल के बाद आसमान तक पहुँचने का है। पढ़ने की आज़ादी के बाद चुनने की आज़ादी चाहिए, विषय

चुनने की, पेशा चुनने की, साथी चुनने की और ना चुनने की भी। हमारी संस्कृति में कन्या को देवी कहने की परंपरा है, पर देवी बना देना अक्सर इंसान ना बने रहने देने का तरीका भी बन जाता है। बालिका दिवस हमें याद दिलाता है कि उसे पूजा नहीं, पर्याप्त हवा, पर्याप्त पोषण, पर्याप्त पढ़ाई और बिना डर के एक रास्ता चाहिए। उसके हिस्से का आसमान उसे दान में नहीं मिलना चाहिए, वो उसका अपना है। हमें बस उसकी परवाज को संभालना है और उसके रास्ते की दुश्वारियां हटानी है। बेटियों के आसमान की बात के बाद अब बात जमीन की। एक ऐसी जमीन की जहां भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत एक गांव का रूप लेने जा रही है। नाम होगा कलाग्राम। इसकी परिकल्पना पर सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी CCRT के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर से बातचीत की गुलनिगार चौधरी ने। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम।

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सीसीआरटी क्या है, इसका इतिहास क्या है और ये कला के किन क्षेत्रों में काम करता है?
1: देखिए, ऐसा है कि सीसीआरटी दैट इज सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग, नाम में ही बहुत कुछ है कि ये कल्चरल रिसोर्सेस तैयार करती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो देश भर के स्कूल टीचर्स हैं, खास करके गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, उनको हम आर्ट कल्चर एजुकेशन लिटरेचर इसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ये कोर्स नहीं है। तो देश भर के जो स्कूल टीचर्स है उनको जब हम इसमें ट्रेन करते हैं तो वो हमारे एक कल्चरल एम्बेसडर्स बन जाते हैं। अब उनको सिर्फ आर्ट कल्चर एजुकेशन लिटरेचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये चारों स्पर्धाओं में सिर्फ उनको ट्रेनिंग करना, उससे संबंधित जो जो बातें हैं, फिर सारी कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं, तो इनको लेकर भी क्राफ्ट है, फोक आर्ट्स है, इनको भी लेकर के डांस ड्रामा म्यूजिक पेंटिंग है, स्कल्पचर है, तो ये जो सारी बातें हैं जिनका संबंध आर्ट और कल्चर से है, और फिर ये आर्ट और कल्चर को हम एजुकेशन के भी साथ में जोड़ते हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो सीसीआरटी ये आर्ट कल्चर एजुकेशन लिटरेचर में कला के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से एक ऐसी पर्सनैलिटी टीचर की बनाते हैं कि वो सही में एक कल्चरल एम्बेसडर करके काम करता है। ये फिर हमारे देश भर में काम करते हैं, फिर वो अपने बच्चों को ये सारी बातें पढ़ाए जो उन्होंने ट्रेन किया है, वो बातें सारी वो बच्चों तक पहुंचाते हैं। इसलिए देश भर में जो स्कूल के बच्चे हैं उन तक हमारी बात पहुंचती है। तो ये बहुत अहम, एक बहुत अच्छा एक कार्य है ऐसा मैं समझता हूं। तो इन सारी बातों को लेकर हमारा एक सेंटर है, 1979 में शुरू हुआ था द्वारका में। यहाँ पर फिर हमारी एक बहुत अलग, बहुत सुंदर ऐसी एक बिल्डिंग यहाँ पर बनी, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिल्डिंग बहुत ही शानदार है। यहाँ पे हम सब गतिविधियाँ करते हैं।
0: सीसीआरटी के द्वारा कला ग्राम नाम के इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
1: कला ग्राम तो निश्चित ही ये दो डिवीजन है और इसके पीछे एक सोच है। कला गुरुकुल जहाँ हम बात करते हैं, हमारा कहना है कि कला गुरुकुल में हम पूरा जो रिसर्च वर्क है, जो एकेडमिक फ्रेमवर्क है आर्ट कल्चर एजुकेशन लिटरेचर का, हम बड़े डिटेल में यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग भी आएंगे जो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, जो स्कॉलरशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, फेलोशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, टीचर्स को भी पढ़ाएंगे। एकेडमिक पार्ट जो होता है आर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें हो सकता है कि आगे चल के कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हम इसमें आर्ट और कल्चर को लेकर शुरू करेंगे। और दूसरा हमारा कलाग्राम का क्राफ्ट में, आर्ट्स में, तो उन लोगों को यहाँ पर बुलाने वाले हैं, उन लोगों के वर्कशॉप्स होंगे, वो लोग यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार करेंगे, वो लोग बच्चों को भी पढ़ाएंगे, वो प्रोडक्ट बच्चे भी तैयार करेंगे, टीचर्स भी तैयार करेंगे, उसका हम मार्केटिंग करेंगे और हम ये देखेंगे कि इससे कुछ रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, ताकि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं आर्ट के क्षेत्र में उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी इंडिजिनस जो भी कलाकृतियां बनती है उसको भी कहीं तो मार्केट मिलेगा। तो कलाग्राम में हम जैसे है कि आर्टिजन क्लस्टर्स क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए हम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में कुछ एग्जीबिशन और कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए कुछ स्पेसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमने और एक सोचा है कि कल्चरल टूरिज्म और इंटीग्रेटेड जोन्स इस प्रकार से हम उसमें तैयार करने की कोशिश करेंगे। उसका एक हमारा इकोनॉमिक मॉडल भी रहेगा जिसमें डायरेक्ट क्राफ्ट सेल्स, एग्जीबिशंस, कल्चरल फेस्टिवल्स, ऐसे सारी बातें रहेंगी। तो ये कला गुरुकुल और कला ग्राम ये दो लेवल पर काम करेंगे और दो लेवल पर काम करने के बाद में जब हम सोचेंगे

0: तो हमको दिखाई देगा कि एक और जहाँ पर एकेडमिक है वहीं दूसरी ओर प्रैक्टिकल भी, तो दोनों बातों में ट्रेनिंग यहाँ पे सबको दी जाएगी। देश भर के जितने आर्टिस्ट हैं उन सबको फायदा होगा उसका, क्योंकि यहाँ से आर्ट वर्क जो बनने वाले हैं वो बेचे भी जाएंगे, जिसमें एक रेवेन्यू जनरेशन भी होगा।
1: डॉक्टर साहब, तो इस प्रोग्राम में इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप किस तरह रहेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रेवेन्यू जनरेट किस तरह करेंगे आप?
0: हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक और जहां आप बोलते हो कि हम एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग बनेंगे या प्रैक्टिकली हम बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि अकेले के भरोसे तो होगा नहीं, तो पार्टनरशिप्स जो है वो भी करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में हमने सोचा है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स जो है ये हमारे सोसाइटी के साथ किन किन के साथ हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो गवर्नमेंट की कल्चरल बॉडीज है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, फिर यूनिवर्सिटीज है और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ में भी हम मिलकर के काम करेंगे, हो सकता है उनके साथ हम एमओयू भी करेंगे। कुछ इंटरनेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बहुत अच्छा काम करती है आर्ट और कल्चर को लेकर, हम उनके साथ भी काम करेंगे, उनके साथ में शायद कोलेबरेटिव प्रोग्राम जो हम बना सकते हैं। कुछ एनजीओज जो है जो हेरिटेज और आर्ट्स पर बहुत काम करते हैं, सीएसआर पार्टनर्स या प्राइवेट फाउंडेशन वगैरह जो होते हैं उनके भी साथ हम देखेंगे कि फंडिंग हमको सपोर्ट कैसा मिल सकता है, उनके साथ में एकेडमिक कोलैबोरेशन कैसा हो सकता है, एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो रेवेन्यू जनरेशन का है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और जब तक हम रेवेन्यू जनरेशन करेंगे नहीं तब तक ये ढंग से चलेगा नहीं। तो रेवेन्यू जनरेशन प्लान में भी एक्टिविटीज में भी हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जिसकी फी रहेगी, टिकटेड कल्चरल इवेंट्स रहेंगे, फेस्टिवल्स रहेंगे, फिर कुछ कंसल्टेंसी भी रहेगी और कल्चरल सर्विसेज भी हम देंगे जिसका हमको पैसा मिलेगा, फिर पब्लिकेशन रहेगा, सेल्स ऑफ बुक्स रहेंगे, एजुकेशनल मटेरियल भी हम सेल करेंगे, फिर प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स कल्चरल प्रोडक्ट्स ये भी हम जो तैयार करेंगे उसका भी हम प्रमोशन करेंगे, कल्चरल टूरिज्म एक्टिविटीज को हम बढ़ाएंगे, परफॉर्मेंसेज जो है प्रोडक्शन हम हमारे बढ़ाएंगे।
1: कलाग्राम कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइए, और कितने समय में कला प्रेमियों को ये सब देखने का मौका मिलेगा?
0: हमारे सीसीआईटी जो जहाँ पर स्टैब्लिश है द्वारका में, तो करीब करीब 10 एकड़ लैंड में सीसीआईटी है, हमारी प्रांगण में हम वहाँ पर एक कलाग्राम वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी हमारा अभी करीब करीब खत्म होते आ रहा है, 80% काम हमारा हो गया है, और हमारी जो एक्टिविटीज है वो अभी से वो शुरू हो जाएगी, मतलब वहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, बाकी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, ये सारा हमारा जो है एक्टिविटीज, एक्सटेंशन एक्टिविटीज वगैरह, फेलोशिप्स स्कॉलरशिप्स जो बच्चों को दी जाती है उनके साथ में लेकर जो एक्टिविटीज है वो सारा हमारा शुरू हो जाएगा। पब्लिक जो यहाँ पर आने वाली है उनको भी एक करीब करीब एक 6 महीने के अंदर में उनको यहाँ पे ये लोग विजिट कर सकेंगे, और यहाँ पे उनको ऐसा लगेगा कि ये सही में एक बहुत बड़ा कल्चरल हब बनाया गया है सीसीआईटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा।
1: आर्टिसंस के लिए स्टॉल्स या शॉप्स का क्या प्रावधान रहेगा कलाग्राम में?
0: अब इसमें क्या दो लेवल पर काम होगा, एक तो ऐसा है कि जो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप फेलोशिप होल्डर्स जो लड़के रहते हैं, जो काम करने वाले आर्टिस्ट है, एक अमेच्योर लेवल पर काम होता है, तो फेलोशिप और स्कॉलरशिप होल्डर्स जो बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारी अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि उनको हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए यहाँ पर हम एक्सपोर्ट स्लोप लाएंगे, है ना, उनके लिए कुछ कोर्सेज शुरू करेंगे, ये एक लेवल का काम हो गया। दूसरा ऐसा है कि हमको सिर्फ इतना ही नहीं करना है, हमको प्रोफेशनल लेवल पर भी काम करना है, तो प्रोफेशनल लेवल पर जब काम होगा तो देश भर में क्राफ्ट के बारे में इतना वर्क लोग करते हैं, जैसा बेल मेटल का वर्क है छत्तीसगढ़ में किया जाता है बस्तर, तो ऐसे जो जो ओरिजिनल इंडिजिनस काम करते हैं वो प्रैक्टिकल काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, उन लोगों के यहाँ पर वर्कशॉप्स होंगे। दूसरी बात ऐसी है कि एकदम हाई प्रोफेशनल लोग भी जो रहते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा पेंटर है, बहुत बड़ा स्कल्प्टर है, वो यहाँ पे आके रह सकेंगे, वो यहाँ रहेंगे, वो काम करेंगे, और उनको हम जगह भी देंगे, और उनके माध्यम से बाकी लोग भी काम सीखेंगे, वो भी एक काम यहाँ पर होगा। दूसरी बात ऐसा है जो हम स्टॉल्स यहाँ पर तैयार करने वाले हैं, तो जो स्टॉल्स हम तैयार करेंगे वो स्पेशली रेंटल बेसिस पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश भर में है लोग की जो प्रोफेशनली भी काम करते हैं, कमर्शियल लेवल पर काम करते हैं, उनको हम ये फैसिलिटी अवेल करके देंगे, उनको यहाँ पे स्टॉल्स के लिए जगह देंगे, लेकिन उसका एक रेंट रहेगा, इसके सिवा हमारा रेवेन्यू जनरेशन होगा नहीं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने प्रोफेशनल्स का बताया अभी हमें, तो क्या इसमें छोटे स्तर पर काम करने वाले आर्टिजन्स को भी कोई सुविधा मिलेगी या कोई डिस्काउंट जैसी कोई चीज मिलेगी, जिससे कि वो भी कला को आम लोगों तक पहुंचा सकें या अपनी कला को दुनिया को दिखा सकें?
0: बिल्कुल, हमने सोच के रखा है, क्योंकि सारे के सारे पैसा कमा लेते ऐसा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका काम प्रोफेशनल रहता है, वर्क उनका बहुत शानदार रहता है, तो उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग तो डाइंग आर्ट फॉर्म पे भी काम करने वाले हैं, बहुत सारे डाइंग आर्ट फॉर्म्स है भारत में, कई सालों से चल रहे हैं, वो लोग ऐसे आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, उनको हम यहाँ पे लाएंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, और वो आर्ट मरनी नहीं चाहिए।

अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम। सौजन्य गुल निगार चौधरी, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।

0: कला की सार्थकता का एक पहलू ये भी है कि कला समुदाय के साथ कैसे चलती है, उसके साथ कैसे निभा करती है। और इसी क्रम में हमारी अगली प्रस्तुति में हम मिलते हैं एक ऐसी कलाकार से जिनका काम अकेले में खामोशी में चलता है। आशिमा धीर सहगल की कला उन चीजों की हाजिरी लगाती रही है जो अब नहीं है, यानी अनुपस्थिति की हाजिरी। स्मृति अक्सर चीजों में नहीं, चीजों के न होने में बसती है। आशिमा की कला इसी न होने की पड़ताल है। गुजरा हुआ कल यहाँ एक धुंधला अक्स बनकर लौटता है। छूटी हुई जगहें, मिटे हुए निशान और बीते रिश्तों की परछाइयाँ अलग अलग माध्यमों में दर्ज हो जाती हैं। उनकी कला हमें बताती है कि अनुपस्थिति भी एक उपस्थिति है और याद करना भी एक तरह की हाजिरी लगाना है।
1: मुझे आर्ट और कल्चर में बहुत दिलचस्पी थी शुरू से, जब से मैं छोटी थी। व्हाट वाज हियर, ये उसके बारे में है। डज मैटर हैव मेमोरी? तो मैं एक आर्ट रेजिडेंसी के लिए गई 45 डेज के लिए हिमालयाज में, विच इज वहाँ पर ना रॉरिक म्यूजियम है नगर में। और वहाँ पर इस रेजिडेंसी में मुझे बहुत सारी चीजें समझ आई। आई बिगन टू इन्वेस्टिगेट दोज थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स की तो मेमोरी होती है, पर मैं सोचती थी कि इतनी अच्छी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स है यहाँ पर, सब गिरी हुई, कोई दिखता नहीं है इसको। वेरी ऑफन आई यूज टू थिंक दैट, मतलब ये रिमेम्बर करते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, सेलिब्रेशंस हुई, और साथ में यंगर पीपल कभी भी देखते भी नहीं है उसकी तरफ। सो आई डिसाइडेड टू ब्रिंग दोज इनटू कंटेम्पररी आर्ट।
2: जब मैं अपने ट्रेवल्स पे होती हूँ तो आर्किटेक्चर जब मैं देखती हूँ, उनकी डिटेल्स, जो मटेरियल और मैटर होता है जिससे वो बिल्डिंग्स बनी है, तो वो मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। और बहुत बारी सोचती हूँ कि कैन द वॉल स्पीक,
1: साथ में इन्वेस्टिगेट द आइडिया ऑफ डज मैटर हैव मेमोरी। तो ये स्लोली स्लोली मैं इन्वेस्टिगेट कर, जैसे मैं करती गई, मैंने रियलाइज किया कि मैटर तो बोल नहीं सकता, बट वी कैन स्टिल फाइंड आउट दैट मैटर हैज मेमोरी। बिकॉज जब आप कोई दरवाजे से आप जाते हो, स्पेशली नगर में, वहां जब वुड से और स्टोन से बना हुआ है, तो वो ना वेयर आउट हो जाता है। तो दोज आर द एविडेंसेस दैट मैटर डज रिमेम्बर, बिकॉज थ्रू दीज एविडेंसेज ऑफ चेंज ऑफ मैटर यू कैन मेक आउट दैट दे डू remember things. And very often you go to a temple, वहाँ पर भी आपको vibrations मिलती हैं। वहाँ पर जैसे hundreds of people have come there, और उधर उन्होंने दुआएं मांगी हैं, wishes मांगी हैं, तो जब आप जाते हो तो you automatically get some सुकून मिलता है। तो matter actually remember करता है कुछ चीज़, और वो हमारे को transmit करता है silently। और फिर मैं लोगों को बोल रही हूँ कि ये मेरे आर्ट वर्क है, उसमें देखो अंदर और पूछो कि इसमें क्या था, ये क्या था पहले और अभी क्या बन गया है। क्योंकि ना मैंने ये कपड़ा जौन सा है, ये मैंने अपने आप बनाया, ये बनाया है वेस्ट सिल्क का, और वेस्ट सिल्क बहुत फ्रेजाइल होता है। सो मैं दिखाना चाहती थी कि मेमोरी भी बहुत नाजुक है चीजों की, ये सब चीजों की मेमोरी, सब मेमोरी फ्रेजाइल है। और ये सब मेरे आर्टवर्क में मैं नाजुकपन दिखाना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने ऑर्गेन्जा यूज किया है क्लॉथ में, डबल ट्रिपल लेयर के, काफी लेयर्स के ऑर्गेन्जा किए हैं, और फिर हैंड स्टिचिंग करी है, और वो भी नाजुक दिखा रही है। और फिर ये सारी चीजें आप जब सब तरफ से देखोगे तो इनमें बहुत ज्यादा फ्रिजिलिटी या नाजुकपन है। तो मैंने ये सब चीजें जो फेंकी हुई चीजें थी उनको मैं ट्रांसफॉर्म करके आर्ट में लाना चाहती थी, ताकि मैं दिखाना

0: चाहती हूँ कि हमारे को मैटर जो होता है, चीजें जो होती हैं, उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे जापानीज कल्चर में भी है, कुछ भी ओल्ड हो जाता है ना, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो पहला आर्टवर्क है ट्रेसेस ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें दिख रहा है कि एक्चुअली बिल्डिंग्स काफी पूरी है, इमेजेस कंप्लीट। उसके बाद मतलब टू क्रिएट मेमोरी, मैंने उनको थोड़ा सा डिजोल्व किया है। ये डिजोल्व किया है बाय बर्निंग, बाय स्टिचिंग, बाय यू नो फोटोग्राफिकली ट्रांसफरिंग थिंग्स।
1: अनुपस्थिति की हाजिरी। अभी आपने ये लघु प्रस्तुति सुनी। सौजन्य नेत्रा, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। अनुपस्थिति को रंग और आकार देना आसान नहीं, पर अब हम चलते हैं मौजूदगी की ओर, एक ऐसी हरी मौजूदगी की ओर जो शहर की छतों पर उग रही है। और इसी निजी हरियाली के ठिकाने पर आधारित है हमारा लघु रूपक छत पर उगती जिंदगी।
2: सुबह सुबह छत का दरवाजा खुलता है
3: और कई मंजिला इमारतों के बीच एक छोटा सा हरा संसार मुस्कुराता है।
2: गमलों में तुलसी, पुराने टब में पुदीना, खाली पेंट के डब्बों में टमाटर,
3: कहीं ड्रमों में मौसमी सब्जियां, कहीं बोतलों में लटकती बेलें।
2: ये छतें अब सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं, मन के ठिकाने हैं।
3: पौधे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो इमारतों को ठंडा रखते हैं, धूल सोखते हैं, बारिश का पानी थामते हैं और शहरी गर्मी को घटाने में मदद करते हैं।
2: और सबसे बड़ी बात, ये हमें धैर्य सिखाते हैं, बीज रोपकर इंतजार करना, उस दौर में जब हर चीज इंस्टेंट है।
3: शुरुआत सिर्फ एक गमले से ही हो सकती है।
2: धूप कितनी आती है ये देखिए, हल्की मिट्टी, गोबर की खाद और रसोई का जैविक कचरा, और छत की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखिए।
3: कंक्रीट के इस जंगल में अपना एक पेड़, अपना एक फूल, अपना एक छोटा आसमान। प्रसिद्ध अर्बन गार्डनर किशी अरोड़ा कहती हैं,
4: अगर आपके पास कोई भी पौधा नहीं है तब भी आप एक गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली बीज पहले से ही होते हैं, किचन के अंदर हमेशा बीज होते हैं। आप अपना नमकदानी खोलिए, आपको उसी में तीन बीज मिल जाएंगे, धनिया, मेथी और राई, उसी से स्टार्ट कर लीजिए। और अगर वो नहीं तो टमाटर है, और टमाटर नहीं तो खीरा है। अगर आप इनकी सिर्फ एक स्लाइसेस काट के मिट्टी में लगा के गाड़ देंगे, आई प्रोमिस यू एक सैपलिंग निकलेगा उसके अंदर से। तो हमको बीज ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, हमारे घर के अंदर ही है। शुरुआत में सबसे पहले दो चीजें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आप देखिए आपके घर में सूरज की किरणें किस तरफ गिरती हैं। अगर आपकी बालकनी है, सोचिए आप अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर आपके पास बड़ा गार्डन है तब तो बात अलग है, क्योंकि वहां पे दोनों वर्जन होंगे, छाया वाला एरिया और धूप वाला एरिया। बट लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि आप एक घर में हैं जहां बालकनीज हैं, तो आप तो पहले देखिए कि आपके सूरज कितना आता है। अगर खूब धूप आती है तो धूप वाले पौधे रखेंगे, फूल वाले पौधे रखेंगे, और अगर छाया वाला है तो छाया वाले भी पौधे हैं, हर तरीके के पौधे होते हैं। तो पहले सूरज की किरणें कितनी आती हैं, एंड दूसरी चीज मिट्टी बनाना, जो मुझे लगता है हम बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, नहीं करना चाहिए वो। अगर आपके आसपास कोई पार्क है, वहां के माली से बात करिए, उनको थैंक यू बोलिए और एक कट्टा मिट्टी लेकर आइए, और उस मिट्टी के अंदर आप अपने घर के थोड़े बेसिक मसाले डालिए, जैसे हल्दी और जरा सा दालचीनी का पाउडर और जरा सा काली मिर्ची की, कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ हो तो वो अपने आप ठीक हो जाए। घर में हमारे पास ऑलरेडी बहुत चीजें होती हैं, पर हम उसे देखते नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं। मिट्टी, धूप का जब ध्यान रख लें, उसके बाद आप पौधा लगाएं। धूप के जगह अगर मिल रही है तो वहां पे धूप के पौधे, बहुत धूप के पौधे होते हैं, और नहीं तो फिर इंडोर पौधे, छाए वाले, वो लगाएं। और मिट्टी में जब आप कभी घर में खाना बना रहे होते हैं तो थोड़ा याद रखिए कि घर में हमारे जितने भी खाने के छिलके होते हैं उनकी कॉम्पोस्ट हमें बनानी चाहिए। खाद बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपके घर में किचन है और वहां पे कुछ भी खाना बन रहा है तो दो चीजें, वहां पे जितने भी खाने के चीजें जो आप फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर, प्लीज उसे मत फेंकिए। घर में हर किसी के दूध का बर्तन होता है, प्लास्टिक

0: के डब्बे होते हैं, कुछ भी होता है, आप उसमें कलेक्ट करिए एक दिन का। तो जैसे मेरे घर में सब्जियां बनी, एंड्स ट्रिमिंग्स होता है, कुछ होता है जिसे हम ग्रीन पार्ट कहते हैं। मैं बहुत बेसिक एक डेफिनेशन बता रही हूँ। मैं यहाँ पे नींबू हमेशा अलग कर देती हूँ कि मैं अपने नींबुओं से एंजाइम्स बनाती हूँ। तो पहली बात यह है कि जो भी खाने का जितना भी वेस्ट होता है डस्टबिन में मत डालिए, प्लीज एक डब्बे में इकट्ठा करिए। दूसरी चीज, घर में हर किसी के ढक्कन वाली बाल्टी जरूर होती है, वो बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी के नीचे एक या तो टब रख दीजिए, एक ट्रे रख दीजिए, बड़ी थाल रख दीजिए, कुछ ऐसा रख दीजिए नीचे कि आप जब उस बाल्टी में छेद कराएंगे कारपेंटर से, चारों तरफ छेद करा लीजिए एयर फ्लो के लिए। हम उस बाल्टी में छेद करा रहे हैं चारों तरफ। हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर सबसे पहले अपने खाने का जो भी हमारा ट्रिमिंग्स होती है वो डालते हैं, और फिर ये नाइट्रोजन पार्ट हुआ, फिर डालते हैं हम कार्बन पार्ट, जितने भी सूखी हुई चीजें होती हैं। कहीं से डिलीवरी आती है चेक करिए, अगर वो पेपर कार्डबोर्ड रिसाइक्लेबल है तो उसको फाड़िए, छोटा छोटा करिए, जितने सूखे पत्ते गिर, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ये पत्ते डालिए, इसे हम कार्बन बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम कर रहे हैं ग्रीन एंड ब्राउन का ऑल्टरनेटिव लेयर। पहले हमने खूब सारा नीचे ग्रीन ये ट्रिमिंग्स डाल दिया, फिर ब्राउन कार्बन डालिए, आपने ये ऑल्टरनेटिव लेयर बनाई और इस पे हल्का सा पानी का छिड़काव करा और फिर लास्ट में कार्बन डाल दिया और ढक दिया। थोड़े टाइम में ये कॉम्पोस्ट बन जाता है। इसको हिलाते रहना डेली और इसको एक थोड़ा सा शेडी डार्क सेमी शेड एरिया में, जहां पे आपको लगता है थोड़ा अलग कर सकते हैं, उसे कर दीजिए। जिससे कि कई लोगों को जैसे रिगली चीजों से इनसे के अंदर लगेंगी थोड़े कीड़े जो अच्छे होते हैं हमारे लिए बहुत, तो इसको थोड़ा सा कोने में करिए और ये डेली फॉलो करिए, तो आपके पास कॉम्पोस्ट थोड़े टाइम में रेडी हो जाएगी। नहीं बनाना चाहते कॉम्पोस्ट और आपको थोड़ा अजीब लगता है, तो जिस गमले में या जगह पे पौधा लगा हुआ है उसके साइड में आप थोड़ा सा खोद के ये खाने का जो मिक्सचर है अंदर डाल के मिट्टी से ढक दे, अर्थ वो अपने आप उसको तोड़ेगी और नीचे पोषण देगी इन सब पौधों को। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कभी चावल बनता है, दाल बनता है, इनको धोइए, इनका पानी आप फेंकिए मत, इनका पानी आप अपने पौधों को दीजिए, उसे थोड़े दूसरे पानी में डाइल्यूट करें, डाल दें। बहुत सारे सिंपल तरीके हैं अपने पौधों को पोषण देने के, बट जो मेन चीज है, पहले धूप देखिए, उसके बाद आप मिट्टी देखिए, और फिर हम डिटेल में जाते हैं कि अच्छा इसको और कैसे बड़ा करें। पर ग्रोइंग अ प्लांट बहुत सिंपल है, जिसे हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। मेरा छत ना, जिसे बोलते हैं एक बायोडाइवर्स एरिया है, मेरे छत पे पेरेनियल्स हैं जो पूरे साल उगते हैं, थोड़े ऑर्नामेंटल्स भी हैं, सब्जियां हैं, सीजनल है, सीजनल फूल है। जैसे अभी मौसम बदल रहा है, एक गार्डनर के लिए ये बहुत अच्छा मौसम होता है क्योंकि इस मौसम में प्रीटी मच सब कुछ उगता है। गर्मी से हम थोड़ा परेशान होते हैं, बट ये मौसम बहुत अच्छे वाला मौसम है जहां धूप भी होती है और एक हल्की सी ठंडक भी होती है रात में। एक चीज जो मैं अपने गार्डन में ऊपर फॉलो करती हूँ, मैं कोई भी केमिकल नहीं डालती हूँ, मुझे पेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक चेन है जो हमको जिस दिन समझ आ गई तो हम शायद इतना पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे। अगर छिपकली है तो वो एक कीड़े को खाती है तो वो कीड़ा उसका खाना बनता है और वो हमारे को उस कीड़े से बचाती है। तो ये एक चेन है जिसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए और उसको एक्चुअली रहने देना चाहिए। जितने बर्ड्स इंसेक्ट्स आपके टेरेस पे होंगे उतना अच्छा बायोडाइवर्सिटी होगा, उतना अच्छा फ्लोरा फौना होगा, और वो बहुत हेल्प करता है पौधों को खुश रहने में। ये ना सिर्फ मेरे को खाना और रिटर्न में हर डेली कुछ ना कुछ देता है, ये मेरी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा खुश रखता है। मतलब मुझे शायद अब इंसान इतने पसंद नहीं है जितने मुझे पौधे पसंद है।
1: ये शहर के बीच प्रकृति के लिए बचाई गई एक छोटी सी जगह है,
2: और शायद ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जीवन के साथ सह अस्तित्व की संस्कृति।
1: छत पर उगती जिंदगी के साथ संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।

हरियाली की इस बात के बाद अब पतझड़ का वो हिस्सा जब हम उन्हें याद करते हैं जो जाकर भी कहीं नहीं गए। कुछ जीवन समय से बड़े होते हैं, कुछ राग रंग शब्द अपने रचयिता के जाने के बाद भी हमारे सांस्कृतिक जीवन में बजते खिलते और दर्ज होते रहते हैं। आज के स्मृति शेष में हम याद कर रहे हैं भारतीय कला संस्कृति की कुछ ऐसी विभूतियों को। सेमनगुडी श्रीनिवास अय्यर, जिनकी गायकी में कर्नाटक संगीत की परंपरा, अनुशासन और भाव संपन्नता का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। उस्ताद अब्दुल करीम खां, जिनकी गायकी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय

0: संगीत में स्वर की ऐसी कोमल और भावपूर्ण दुनिया रची जिसकी छाप आगे की पीढ़ियों तक पहुंची। राजा रवि वर्मा, जिन्होंने भारतीय पौराणिक और सांस्कृतिक कल्पना को आधुनिक चित्रकला के माध्यम से एक बिल्कुल नई दृश्य भाषा दी। उस्ताद अली अकबर खां, सरोद का वो महान साधक जिनकी साधना ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व के मंचों तक पहुंचाया। बेगम अख्तर, जिनकी आवाज में गजल, ठुमरी और दादरा केवल संगीत नहीं एक पूरा भाव जगत बन जाते थे। इन सभी को याद करना सिर्फ श्रद्धांजलि देना नहीं है, ये अपनी सांस्कृतिक स्मृति को फिर से सुनना है, गुनना है। संस्कृति भारती के इस अंक का समापन हम बेहद भारी मन से कर रहे हैं। बीती 8 अक्टूबर को हिंदी और मराठी रंगमंच और सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर इस फानी दुनिया से गुजर गए। उनकी उम्र 75 साल की थी। ...2013 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नाना को सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं याद किया जाएगा, सूखे से जूझते किसानों के लिए काम हो या करगिल युद्ध के समय सैनिकों के बीच होना, और हाल ही में सीमा पार गोलाबारी से प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना। उनके संवादों की धार हमें हमेशा याद रहेगी, और ये भी कि वो एक ऐसे शख्स थे जो अपने कहे को जमीन पर निभाते थे। कला की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है, चाहे वो चीख में हो या खामोशी में। नाना पाटेकर ने ये बार बार साबित किया। पत्रिका की ओर से हम इस महान कलाकार को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है, अखिल भारतीय संगीत के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आप इस कार्यक्रम में कर्नाटिक शैली में गायन सुनेंगे। आज की कलाकार हैं अर्चना उपाध्याय।
2: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट यू आर गोइंग टू लिसन टू अ कर्नाटिक वोकल बाय अर्चना उपाध्याय।
1: अर्चना उपाध्याय एक प्रसिद्ध कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत गायिका है और आकाशवाणी की ए ग्रेड कलाकार हैं। आप विदुषी वसंत लक्ष्मी हेब्बार और डॉक्टर वी अरविंद हेब्बार से अपना संगीत प्रशिक्षण शुरू किया और थोड़े समय तक आप स्वर्गीय श्रीमती रंजनी हेब्बार से भी शिक्षा हासिल की। आजकल आप संगीत गुरु चित्रवीणा एन रविकिरण के मार्गदर्शन में शिक्षा ले रही हैं। अपनी सहगायिका समन्वी के साथ आप लतांगी सिस्टर्स के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप भारत और अमेरिका में 200 से अधिक संगीत समारोह में प्रस्तुति दी है, जिनमें द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई, क्लेवलैंड त्यागराज महोत्सव और शिकागो त्यागराज उत्सव जैसे प्रतिष्ठित मंच शामिल हैं। इसके अलावा आप भारत, दुबई और जर्मनी में प्रसिद्ध कथावाचक श्री विनय वाराणसी के साथ भी कई प्रस्तुतियां दी है। अर्चना को MS सुबलक्ष्मी फेलोशिप अवार्ड, युवा संगीत सम्राट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार और राग लय प्रभा जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। संगीत के साथ साथ आप कीर्तनास ऑफ कर्नाटक पुस्तक का सह लेखन किया है और दासार्चने प्रोजेक्ट के तहत 101 कृतियों की रिकॉर्डिंग भी की है।
2: अर्चना इज अ प्रोमिनेंट कर्नाटिक वोकल आर्टिस्ट एंड एन ए ग्रेडेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। She began her music training in 2008 under Vidwan Vasantalakshmi Hebbar and Dr. V. Aravinda Hebbar. She also had a brief training period under late Srimati Ranjani Hebbar and has been continuing her advanced learning under the guidance of Chitraveena N. Ravikiran at present. Alongside her duet partner Samanvi, together known as the Latangi Sisters, she has performed over 200 concerts across India and the US, including prestigious venues like the Music Academy Chennai, Cleveland Tyagaraja Festival, and Chicago Tyagaraja Utsavam. She has also collaborated with renowned storyteller Sri Vinay Varanasi across India.

0: Dubai and Germany. Archana's accolades include the M.S. Subbulakshmi Fellowship Award, first prize in the Yuva Sangeeta Samrat competition, and the Raga Laya Prabha Award. Additionally, she co-authored the book Kirtanas of Karnataka and recorded 101 compositions under the Dasarchane project.
1: आज के संगीत कार्यक्रम में आपको वायलिन पर साथ दे रही हैं तन्मयी उपंगला और मृदंगम पर हैं सुनाद कृष्णा अमय और मोरसिंग पर हैं बालकृष्णा होसमने. अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम की शुरुआत लालगुड़ी जी जयरामन जी की एक रचना एंतो प्रेमा वर्णा से कर रही हैं जो राग बहुदारी और आदि ताल में निबद्ध है.
0: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट शी विल बी अकंपनीड ऑन द वायलिन बाय तन्मयी उपंगला, ऑन द मृदंगम बाय सुनाद कृष्णा अमय एंड ऑन द मोरसिंग बालकृष्णा होसमने. अर्चना उपाध्याय विल बिगिन हर कॉन्सर्ट विद एंतो प्रेमा, a varna in raga bahudari set to aditala composed by Lalgudi G. Jayaraman.

0: राग बहुदारी के बाद अब प्रस्तुत है पुरंदरदास की एक रचना धूपारतिया, जो मोहन कल्याणी राग तथा आदिताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाय पुरंदरदासा, धूपारतिया, सेट इन राग मोहन कल्याणी एंड आदिताला।

0: अब प्रस्तुत है मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना श्री गुरु गुहा, जो राग उदय रविचंद्रिका तथा रूपक ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाय मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्री गुरु गुहा, विच इज सेट इन राग उदय रविचंद्रिका एंड रूपक ताला।

0: अपने कार्यक्रम को जारी रखते हुए अर्चना उपाध्याय अब प्रस्तुत करेंगी उतुकाडु वेंकट रवि की रचना रसिक महोत्तमा, जो राग सरसांगी तथा मिश्र चापुताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर कॉन्सर्ट, अर्चना उपाध्याय विल नाउ प्रेजेंट रसिक महोत्तमा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ उतुकाडु वेंकट कवि, विच इज सेट इन राग सरसांगी एंड मिश्र चापुताला।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर सोनाद कृष्णा अमय तथा मोरसिंह पर बालकृष्ण हसम ने। अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन त्यागराज की एक रचना चल रे रामा से कर रही हैं, जो राग आहिरी तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam, presented by Sunada Krishna Amai on Mridangam and Balakrishna Hosmane on Morsing. Archana Upadhyaya will now conclude her concert with Chellare Rama, a composition of Tyagaraja, which is set in Ahiri Rag and Mishra Chapu Tala.

0: अखिल भारतीय संगीत के कार्यक्रम में अब तक आप अर्चना उपाध्याय का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपके साथ वायलिन पर साथ कर रहे थे तन्मयी उपंगला तथा मृदंगम पर सुनाद कृष्णा अमय और मोरसिंग पर थे बालकृष्णा होसमने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मंगलूर के स्टेशन में रिकॉर्ड कर आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ आज का अखिल भारतीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: In tonight's national program of music, you were listening to a Carnatic vocal recital by Archana Upadhyaya. She was accompanied on the violin by Tanmayi Upadhyaya.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: India worked resolutely.
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तफ्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक

0: और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलीन से हार गए। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टीम छोड़कर चले जाने के कारण निलंबित कर दिया है। महासंघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। महासंघ ने कहा कि यह मामला अनुशासनात्मक जांच समिति को सौंप दिया गया है और उसके निष्कर्ष आने तक गोपनीय रखे जाएंगे। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के दौरान नए कोच जॉर्ज जीसस के साथ कम खेलने के समय पर विवाद के कारण पुर्तगाल टीम शिविर छोड़ दिया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के उमरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।